0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, When they are under stress, कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग, द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं, द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियाँ बनो।
2: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।

सुनहरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, दिस इज द ब्रेन, ओके 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 करोड़ सेल्स इन द ब्रेन इनटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 करोड़ सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माय सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: कर दर्शन।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। अगर पिछली कड़ी को देखें, हमने बात की थी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं जो हमारी हैप्पीनेस हमारे साथ नहीं रहने देते हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर आया था स्ट्रेस, जो आज जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसे हम मानने लगे हैं कि वो नॉर्मल है। लेकिन क्या वो नॉर्मल है? और जब हमने बहुत सी बातें देखी तो हमें समझ में आया कि यही बिलीफ सिस्टम है जिसके चलते हम खुश नहीं रह पाते हैं। तो आज थोड़ा सा और देखते हैं कि स्ट्रेस से जुड़े कैसे कितने बिलीफ सिस्टम्स हैं जिन पर चलते हुए हमने अपनी हैप्पीनेस को खो दिया है। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। जो कल हमारी बातचीत हो रही थी उसमें अगर पिछली कड़ी को देखें तो एक बहुत बड़ा मुद्दा आया, इसीलिए बहुत से कॉल्स भी कल हमारे पास आए कि ये जो स्टूडेंट लाइफ को लेके ही या बच्चों के एजुकेशन को लेके हमने कहा था कि एग्जाम्स के दौरान जो होता है वहीं सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि अपनी नॉर्मल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में मैंने एक्सेप्ट किया हुआ है, यू नो नॉर्मल अपने रिलेशनशिप्स में भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन बच्चों का जब फैक्टर आता है एग्जाम्स का, उसमें इतना क्लियरली विजिबल हो जाता है, क्योंकि उसके रिजल्ट्स कई बार बहुत घातक जब हो रहे हैं।
1: जैसे मेरी प्रोफेशनल लाइफ में अगर कोई स्ट्रेस है, मैं उसको अपने तक ही रखते, यू नो, मेरी पर्सनल में कुछ अंदर कॉम्प्लेक्स चल रहा, मैं उसको अपने तक ही रखती हूँ। लेकिन जब घर में बच्चे का एग्जाम है, वो एक घर में, वो एक माहौल में आ जाता है, इसलिए वो शायद ज़्यादा ऑब्वियस दिखता है कि, क्योंकि इट्स समथिंग जो हर एक फैमिली मेम्बर, पेरेंट भी, बच्चा भी, छोटे भाई बहन के ऊपर भी, क्योंकि यू सी अगर बड़े का टेंथ है तो छोटे के ऊपर ऑटोमेटिकली बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, एंड प्लस सारे पेरेंट्स की अटेंशन भी एक पर ज़्यादा चली जाती है। बहुत सारे सी अ चाइल्ड, अ यंगर चाइल्ड विल ऑल्सो गो थ्रू अ लिटिल बिट ऑफ निग्लेक्ट कि मेरी तरफ तो कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो तब इसलिए कहते कि लगता कि सबका एग्जाम है घर के अंदर, इसलिए भी एग्जाम एक ऐसा वो है कि यू नो पूरा घर, पूरा परिवार उसको एक्सपीरियंस करता, तो वो एक बहुत बड़ी फिर फीलिंग आती है कि दिस इज स्ट्रेस। बाकी सब में देर इज लॉट ऑफ स्ट्रेस इंटरनली दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग, but we probably you know don't realize it because it doesn't hit everyone in the family equally,
0: or in fact wo hit to kar raha hoga lekin wo different you know direct nahi kar raha hai, is par hum baat karenge। lekin isme jo kal baat jo pichli kadi mein nikal ke aayi thi wo tha wo formula, you know agar hum stress ki baat karte hain to stress is equal to pressure upon my inner strength, you know, so मेरी इनर स्ट्रेंथ इसमें और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है।
1: इनर स्ट्रेंथ ही इसमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज दिन तक हम प्रेशर्स को ब्लेम करते आए कि कंपटीशन बढ़ रहा है, सिलेबस बहुत बढ़ रहा है, सिलेबस को चेंज कर दो ताकि बच्चों का स्ट्रेस खत्म हो जाएगा।
0: अच्छा, और पिछले
1: ग्रेडिंग सिस्टम को, या ग्रेडिंग सिस्टम को
0: हुआ भी है चेंज।
1: सो यू सी फोकस सारा किस पर है, व्हिच इज ओके, डू लेट्स डू व्हाटएवर फॉर द एजुकेशन सिस्टम, लेकिन फोकस सारा किस पर है कि ये प्रेशर, ये न्यूमरेटर अगर कम होगा तो स्ट्रेस कम हो जाएगा। डेफिनेटली न्यूमरेटर कम होगा तो स्ट्रेस कम हो जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, एंड अगर जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है उसी के ऊपर मैं सारा अटेंशन दूँ तो मेरा स्ट्रेस और भी बढ़ता है, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में नहीं और मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करूँ। तो जब भी कोई परिस्थिति आती है, 10% न्यूमरेटर प्रेशर, 90% डिनोमिनेटर इनर स्ट्रेंथ। तो 10% यस मेरे कंट्रोल में नहीं, लेकिन 90% मेरे कंट्रोल में है, लेकिन हम वो 90% को इग्नोर करके उस 10% के ऊपर ही सारा देते। तो राजयोग जब हम सीखते तो वी वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड प्रेशर है, रहेगा, बढ़ता भी जाएगा जैसे जैसे परिस्थितियां चेंज होंगी। न्यूमरेटर को हमें बढ़ाना है और बहुत तीव्र गति से बढ़ाना है। सी अगर सिचुएशंस बहुत फास्ट चेंज हो रही है तो डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, उससे भी ज्यादा फास्ट स्पीड से हमें अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना।
0: इनफैक्ट वी शुड स्टार्ट एंटीसिपेटिंग, यू नो, कि क्या क्या हो सकता है।
1: नो नो, आप और फियर क्रिएट करोगे वो
0: अपने अंदर, यू नो, लाइक अपने अंदर।
1: नो सी अगेन, ये कैसे वर्क नहीं करेगा। जैसे अर्थक्वेक आया, ठीक है, तो अर्थक्वेक जो गुजरात में हिट हुआ तो बहुत नुकसान हुआ, तो उसके बाद सारा फोकस गया कि अर्थक्वेक की प्रिपरेशन होनी चाहिए, बिल्डिंग्स को क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सब, विच इज ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उसके बाद फिर सुनामी आ गया, एंड वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द सुनामी, वी हैड प्रिपेयर्ड फॉर द अर्थक्वेक. सो हम सिचुएशन स्पेसिफिक अपनी प्रेपरेशन नहीं कर सकते हैं कि ये सिचुएशन आएगी तो मुझे कैसे फेस करना है. मुझे सिर्फ स्ट्रांग रहना है और बहुत स्ट्रांग बनना है ताकि कोई भी सिचुएशन आ जाए, फिर वो चाहे
0: तभी वो डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया.
1: एग्जैक्टली, इट्स नॉट अर्थक्वेक मैनेजमेंट, इट्स नॉट, इट इज डिजास्टर. एनी डिजास्टर इट हिट्स यू, यू शुड बी एबल टू फेस इट. तो उसमें भी डिजास्टर मैनेजमेंट ना करके हम सेल्फ मैनेजमेंट करते कि सेल्फ मैनेजमेंट हो जाए तो कोई भी डिजास्टर आ जाए यू आर एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि आपको ही तो क्रॉस करना है. तो इसलिए डिनोमिनेटर इनर स्ट्रेंथ पर फोकस करेंगे, आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे, परिस्थितियां वही हैं, कंपटीशन वही है, लेकिन आपका स्ट्रेस फैक्टर कम होता जा रहा
0: है. तो शिवानी, यहाँ एक मेल में हमारे पास आया है जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ इसी को लेकर, कि एक पेरेंट का मेल है कि हमने पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो कंफर्टेबल रखा हुआ है और सारी चीज़ें जो होनी चाहिए वो की हुई हैं, लेकिन मुझे अपना फियर है, तो क्या वो मेरा फियर भी पहुंच रहा है? उस फियर को मैं कैसे ना पहुंचने दूं, यू नो, बच्चे तक? दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि हम अपनी तरफ से, क्योंकि इतना इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है, हर चैनल, हर अखबार जो है, हर हेल्पलाइन इसी पर बात करती है कि क्या किया जाए. तो उसको करने के लिए हम बच्चे को रिलैक्स करने के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन वो जो एबनॉर्मलिटी है, एंड देयर वाज दिस मेल, दिस इट सेड कि मेरे को रियलाइज हो गया कि मैं इतना कुछ उसे रिलैक्स करने के लिए कर रही थी लेकिन मैं एबनॉर्मल थी.
1: हम रिलैक्स करने के लिए, इट्स वेरी गुड कि हम रियलाइज कर रहे हैं कि हमें रिलैक्स करना है, लेकिन हम बाहर तो सब कुछ कर रहे हैं कि एक बहुत अच्छा वातावरण बना रहे हैं जिसमें बच्चा बहुत कंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर फियर क्रिएट हो रहा है तो वो वाइब्रेशन है. तो फिजिकल रिलैक्सेशन एक छोटा सा पार्ट प्ले करते, लेकिन मेंटल रिलैक्सेशन वो बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड मेंटली रिलैक्स होना मीन्स नो फियर. सी, हम फियर कैसे नहीं क्रिएट करें, हम किस चीज़ का फियर क्रिएट कर रहे हैं कि सपोज नहीं सक्सेसफुल हुए ये, फिर हमने उसके पीछे पीछे अपनी थॉट्स को देखते जाएं कि हमने सक्सेस के डेफिनेशन किस पर रखी थी, 95% मार्क्स, तो देन वी आर ट्राइंग टू से अगर 95 नहीं आए तो ही इज़ अ फेलियर. एंड ये हम एंटिसिपेट कर करके हम फियर क्रिएट कर रहे हैं, और जो हम फियर क्रिएट करेंगे वो मुझे इमोशनली ड्रेन आउट करता, मेरे बच्चे को बहुत इमोशनली वीक करता है. व्हाट वी नॉट रियलाइजिंग, बच्चा अभी बड़ा हो रहा है, यू नो, राइट फ्रॉम वो जो स्कूल एडमिशन एज टू वट एवर 10th स्टैंडर्ड. जैसे एक बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट होती है, बच्चे की एक इमोशनल डेवलपमेंट भी तो हो रही है. अब इस इमोशनल डेवलपमेंट की स्टेज में हम कौन सी एनर्जी सारा दिन देते हैं? अगर उस बच्चे को नेगेटिव एनर्जी, फियर की, इनसिक्योरिटी की मिलेगी, विल दैट चाइल्ड ग्रो अप टू बी अ स्ट्रॉन्ग चाइल्ड? हमें आज अगर हम देख रहे हैं कि आज के कॉर्पोरेट सेक्टर में इमोशनल इंटेलिजेंस इज समथिंग विच इज लुक्ड फॉर. गो 20 इयर्स बैक एंड वो था इंटेलिजेंस क्वेश्चन देखा जाता था, उसका एप्टीट्यूड टेस्ट होता था. आज हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इमोशनल स्टेबिलिटी का टेस्ट लिया जाता है. क्यों? देर इज अ शिफ्ट ना, कि ठीक है, अब तो बहुत सारे लोग हैं जो IIT से आ रहे हैं, IIM से आ रहे हैं, बट वी वॉन्ट वो लोग जो स्टेबल हैं. तो अब अगर कॉर्पोरेट सेक्टर का, जिसके लिए आप अपने बच्चे की तैयारी कर रहे हैं, जब उनका फोकस इमोशनल स्टेबिलिटी पर आ गया है, तो ये इमोशनल स्टेबिलिटी कौन क्रिएट करेगा बच्चे के अंदर? हमें क्रिएट करना पड़ेगा. हमारा बच्चा सक्सेसफुल जीवन में तभी हो पाएगा अगर वो इमोशनली स्टेबल है. हम इतना फियर, इतनी एक्सपेक्टेशंस का भी प्रेशर क्रिएट कर देते कि बच्चे उस एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर के कारण भी परफॉर्म नहीं कर पाते. यू नो, अगर हम अपने बच्चे को कह पाते कि यू स्टडी हार्ड एंड देन वट एवर हैपन्स आई एम फाइन विद इट, जितने भी आपके मार्क्स आए आई एम फाइन विद इट, बट प्रोवाइडेड आप अपना बेस्ट एप्टीट्यूड उसके अंदर लगा दो.
0: आई डोंट थिंक देयर इज एनी पेरेंट जो ये नहीं कहता होगा.
1: नहीं, हम ये सोचते हैं कि अगर हम ये कहेंगे कि आपके जितने भी मार्क्स आएंगे आई विल बी फाइन विद इट, तो हमें लगता है कि फिर बच्चे के ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं डेवलप हो रहा.
0: लेकिन आजकल सिस्टर शिवानी, मैं इसी पे आना चाहती थी, मैक्सिमम पेरेंट्स यही कहते हैं कि आप जो भी आएगा, यू आर माई चाइल्ड, आई एक्सेप्ट यू, आपके हम मुझे कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप अपना काम करते रहो. और मैक्सिमम पेरेंट्स से जब बात करो,
1: सिर्फ बोलने के लिए या सोच में भी? सी, बोलने वन थिंग इज कि आप ये बोल रहे हैं, लेकिन इंटरनली तो आपकी सोच और आपकी आपस में जो कॉन्वर्सेशन है, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर है, तो आप चाहते हो कि उसको यू नो रिलैक्स करो, तो हम कहते हैं कि कोई बात नहीं तुम पढ़ो. लेकिन क्या हमारी सोच वही है? हमारी सोच में क्या है? आई मेट वन गर्ल हुज इन द 12th स्टैंडर्ड. तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में बहुत मेरे ऊपर प्रेशर है कि आपको IIT से क्लियर करना है एंट्रेंस एग्जाम. तो कहती जैसे ही घर पहुंचती हूँ ना तो मेरे फादर शुरू हो जाते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो. एंड शी सेइंग अब मैं एक्चुअली एक डिप्रेशन की स्टेज एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि अब मैं जितना पढ़ती थी ना मेरे से उतना भी नहीं पढ़ा जा रहा है, क्यों मैं एकदम वो हो गई हूँ सुन सुन के. हाँ एंड शी सेज पता है मेरा स्कूल के बाद घर जाने को दिल नहीं करता कि जैसे ही घर जाएंगे ना तो वो शुरू हो जाएंगे. तो आई जस्ट थॉट के वी विल मीट हर फादर. तो उनके फादर से मिले तो आई जस्ट सेड कि आई सेड भाई साहब वी अंडरस्टैंड कि आपकी बहुत यू नो अच्छी भावना है बच्चे के प्रति, लेकिन कई बार थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है. सो ही जस्ट रिएक्टेड लाइक दैट. ही से तो आपका क्या मतलब है? नहीं बोलो, नहीं बोलो उसको पढ़ने के लिए. 6 महीने में फिनिश हो जाएगा, ये 6 महीना है मेरे को सिर्फ
0: आपकी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट,
1: ये मेरे पास सिर्फ 6 महीना है उसके ऊपर वो प्रेशर बिल्ड करके उससे वो क्लियर करवाने का. अगर ये 6 महीना मैंने नहीं बोला नहीं करवाया एंड इफ शी डजंट क्लियर देन व्हाट? बट वी आर नॉट रेडी टू सी कि वो जो मैं बोल रहा हूँ, वो जो मैं एनर्जी दे रहा हूँ, उसका उस बच्चे पे क्या इम्पैक्ट. बिकॉज वो गर्ल के तो फेस पे विजिबल था. आई डोंट नो व्हाई द पेरेंट कांट सी इट कि उसके फेस पे विजिबल है कि वो एकदम ऐसी स्थिति में चले गए. दैट
0: प्रेशर यू नो. अनदर थिंग व्हिच आई वांट टू टॉक अबाउट इफ वी आर रियली टॉकिंग अबाउट दिस इशू इज कि डू द पेरेंट्स और टीचर्स रियलाइज कि हो क्या गया है इन सिर्फ 2 सालों में? हम उन्हें मशीन बना देते हैं. आई मेट अ मदर, वो कहती है मैं नहीं चाहती हूँ. उनका बेटा आता है 3 बजे स्कूल से वापस, अभी 11th में है, 3:30 बजे वो चला जाता है इतनी दूर, आई थिंक 15 किलोमीटर गाड़ी उनके साथ जाती है कि वो कुछ क्लासेस ज्वाइन की हुई हैं IIT में एडमिशन के लिए. अभी 12th में तो वो बाद में आएगा, वहाँ पे वो 3:30 बजे निकल के 4:30 पहुँचता है, 7:30-8 बजे वापस आता है. हर रोज़ का उसका स्केड्यूल है. उसके बाद स्कूल में भी उसका एक कोचिंग का पैटर्न है जिसको वो अटेंड नहीं कर पा रहा, सैटरडे संडे वहाँ जाना होता है. तो शी ओनली सेड कि मैं परेशान, क्योंकि मदर को उसके साथ ही सारा काम छोड़ के पूरे 2 साल उन्होंने इस पर लगाया है. आई डोंट अंडरस्टैंड, शी सेड बिकॉज दिस इज़ वॉट माई यू नो सन वॉन्टेड. बट डू वी रियलाइज हम कई बार बच्चे के साथ भी तो काउंसलिंग नहीं कर पा रहे, उसको हम समझा नहीं सकते क्या?
1: True, that's
0: Why do we get under this pressure also?
1: Of course, अब बच्चा क्या करियर चूज करना चाहता है या फैमिली ने क्या डिसाइड किया आपस में, दैट ऑफ कोर्स ईच वन विल डिसाइड फॉर themselves. उसके लिए क्या एफर्ट करना है वो भी शायद नीड ऑफ द आवर है कि एफर्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है. लेकिन उस चीज़ के साथ साथ सिर्फ इधर ध्यान रख लें क्योंकि जितना ज़्यादा आपको एफर्ट करना पड़ रहा है, जैसे आपने कहा वीकडे भी सुबह से रात तक, सैटरडे संडे भी सुबह से रात तक.
0: What do you think, sister Shivani, actually, और ये बहुत बच्चे गुजर रहे हैं. आई थिंक टुडे वी रियली नीड टू टेक अ पॉज. मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ उसके उस बच्चे पे जो ऐसे इससे जा रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमें इतना मेंटल परसिवरेंस है हम कर लेंगे, और वो सिर्फ 17-18 साल के जो बच्चा है जो जिसपे खाने का भी उनका जो हालत हो चुकी होती है और जिस तरह से वो पूरा उनका लाइफस्टाइल हो चुका होता है. आई जस्ट वॉन्ट टू नो वॉट इज़ गोइंग टू हैपन टू दीज चिल्ड्रन जब ये आगे बड़े भी होंगे, और इनका फिजिकल क्या बर्नआउट नहीं होगा?
1: No, see what happens, इस एज ग्रुप में हमारे अंदर स्टैमिना बहुत है, फिजिकल भी बहुत स्टैमिना है, मेंटल भी बहुत स्टैमिना है. लेकिन आप इसलिए हमें लगता है कि 1 साल की तो बात है ना, लेट मी जस्ट गिव इट, क्योंकि अगेन ये एक यू नो जो वर्डिंग्स हैं वो है इस 1 साल पर तुम्हारी पूरी जीवन
0: यू नो
1: निर्भर करती है. हमने ये नहीं सोचा हमारी जिंदगी बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करती है, बट चलो कोई बात नहीं. इवन देन इफ दिस वन ईयर हैज़ एवरीथिंग, put in your best, whatever you want to do, but then equally take care. See, अगर आप इस शरीर से और इस मन से इतनी मेहनत करवा रहे हो तो साथ साथ उतना ही ज़्यादा आपको उसका ध्यान देना पड़ेगा कि physically तो फिर भी आई थिंक वी मस्ट बी लुकिंग आफ्टर ourselves, लेकिन मेंटली आई डोंट थिंक वी लुकिंग आफ्टर ourselves, क्योंकि जितना ज़्यादा हम ये एफर्ट कर रहे होते हैं उतना ज़्यादा हम उसके फ्यूचर के साथ अटैच्ड भी हो गए हैं कि जहाँ मैंने इतना एफर्ट किया है तो उसका रिजल्ट तो
0: आना है.
1: अच्छा होना ही होना है, रिजल्ट अच्छा ही होता है, लेकिन फिर कुछ एक केसेस में जहाँ रिजल्ट नहीं उतना फेवरेबल होता तो हम उसके लिए रेडी नहीं थे क्योंकि वो हर दिन, दिन और रात मेहनत करना बहुत अच्छी बात, लेकिन मेहनत के साथ साथ उस रिजल्ट के साथ पहले ही अटैच हो जाना कि ये होना ही है, आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होना ही, मतलब देर इज़ जस्ट नो पॉसिबिलिटी कि आप कुछ और करने वाले हैं, वो अटैचमेंट, वो पूरा जो घर के अंदर क्रिएट हो जाता, फिर बाय चांस अगर वो नहीं होता है तो फिर बच्चे के अंदर वो ताकत नहीं, तब पता चलता कि ताकत एक्चुअली नहीं थी.
0: नहीं, यू नो वही मैं कह रही हूँ, क्योंकि आप इतने ऑलरेडी इन दो सालों में ड्रेन्ड आउट हो चुके हैं.
1: ड्रेन्ड आउट पढ़ने से नहीं होते हो, ड्रेन्ड आउट मेहनत करने से नहीं होते हो, ड्रेन्ड आउट इस प्रेशर को फेस करने का राइट तरीका नहीं है उसे. एंड अगेन वी वुड से बी इन द प्रेजेंट, रोज मेहनत करनी है, रोज पढ़ो विदाउट क्रिएटिंग ऑल दीज फियरफुल थॉट्स, क्या होगा, होगा नहीं होगा, उसका तो हो गया, मेरा क्या होगा, यू नो इसमें कंपैरिजन आता, कंपटीशन आता, ये वाली थॉट्स को अगर आप सारा डिलीट कर सकते हो, इसलिए मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है एक स्टूडेंट लाइफ में. अगर एक स्टूडेंट रोज सुबह अपना दिन ये चार्जिंग से, पॉजिटिविटी से और राइट काइंड ऑफ थॉट्स से शुरू करे, मेहनत इज नॉट डैमेजिंग, मेहनत कर सकते हैं हम, बहुत मेहनत, इनफैक्ट हम जितना करते हैं उससे कई गुना ज्यादा कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड हमारी लीकेज नहीं कहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ एनर्जी तो उतनी ही है, उस एनर्जी को आप किस पर्पस के लिए फोकस
0: पकड़ के आप चल रहे हो, ना वो बहुत डैमेजिंग हो सकता है.
1: तो कई बच्चों का फिर ऐसे मालूम पड़ता कि अगर उनको वो रिजल्ट नहीं मिला जो जो एक्सपेक्टेड था, जरूरी नहीं होता कि फेलियर है, लेकिन जो रिजल्ट मैंने एक्सपेक्ट किया था वो रिजल्ट नहीं हुआ. दिल्ली में ये पिछले साल की बात है, देयर वाज दिस गर्ल हु केम सेकंड इन क्लास, वांटेड और एक्सपेक्टेड टू कम फर्स्ट इन क्लास, शी कमिटेड सुसाइड. How can someone commit suicide for coming second in class? I mean, second in class, you're one of the toppers of the class. Aap class mein second aane ke liye suicide commit jis bacche ne kiya hai, uski mental state ka hum imagine kar sakte ki wo first aane ke idea se itna zyada attached the ki wo second ko face karne ki unke andar ताकत ही नहीं
0: और थी. वो पूरा जो एनर्जी वो ऑलरेडी उतने टाइम में हो चुके हो.
1: ओवर, इट वाज जस्ट ओवर. तो हियर द चाइल्ड प्लस द पेरेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वर्क हार्ड, स्टडी, फोकस, एवरीथिंग, लेकिन रिजल्ट इट्स ओके, इट्स ओके, क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो रिजल्ट तो अच्छा आना ही आना है, लेकिन वो फियर वाली थॉट्स अभी क्रिएट करके अपने आप को ड्रेन आउट नहीं करो. क्योंकि क्या होता है, जब पेरेंट्स भी बहुत मेहनत कर रहे होते हैं बच्चे के साथ, बच्चा देखता है कि मेरा रिजल्ट पेरेंट्स के लिए बहुत मैटर करता है, यू नो फॉर ए चाइल्ड पेरेंट्स आर एवरीथिंग, और जब मुझे दिखाई देता कि मेरा ये मार्क्स जो आने वाले हैं ये मेरे पेरेंट्स के लिए, यू नो इट्स बिकम लाइक लाइफ एंड डेथ, यू कैन सी द पेरेंट्स की सारी खुशी, अगेन वो खुशी वो मार्क्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गई है, वो भी एक प्रेशर बच्चे के ऊपर क्रिएट हो जाता कि मुझे परफॉर्म करना है तो किसके लिए, अपने पेरेंट्स की हैप्पीनेस के लिए, मेरी हैप्पीनेस से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स की हैप्पीनेस मेरे मार्क्स पर जुड़ी है. ये सारे जो प्रेशर्स है ना, ये अननेसेसरी प्रेशर है. पढ़ाई का प्रेशर है वो इतना सही है, वो फेस कर लेंगे, लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर, मेरी हैप्पीनेस इस पर डिपेंडेंट है, आपकी पूरी लाइफ इस पर, ये जो प्रेशर्स हैं ये फिर वो न्यूमरेटर को बहुत ज़्यादा बड़ा कर देते हैं, एंड देन आई रियली डोंट हैव द स्ट्रेंथ to face up with it. And then we come across depression, students go into depression, nahi to student life mein depression, unheard of, student life mein diabetes, hypertension, unheard of, lekin aaj kyun, kyunki pressures bahut badhte ja rahe and coping skill koi sikha nahi raha, कोई भी नहीं सिखा रहा कि राइट थिंकिंग क्या है इसमें, कोई भी नहीं सिखा रहा कि कंपटीशन हेल्दी नहीं है, कंपैरिजन है, सभी यही सिखा रहे हैं कि कंपैरिजन करना है, कंपटीशन
0: जब तक नहीं. अगेन एंड अनदर थिंग व्हिच आई रियलाइज इज, जब उनके फादर ने कहा कि अगर मैं स्ट्रेस क्रिएट नहीं करूंगा तो वो पीक परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, सो दिस इज अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम हमारा कि जब तक स्ट्रेस नहीं होगा. इवन ऑफिस में, मतलब अगर मल्टीनेशनल में देखते हैं तो बॉस बोलता है अगर मैं नहीं क्रिएट करूंगा, कॉम्पिटिशन नहीं क्रिएट करूंगा, प्रेशर नहीं क्रिएट करूंगा, स्ट्रेस नहीं दूंगा,
1: परफॉर्मेंस. अब ये भी एक हमें सोचने की बात है कि स्ट्रेस मतलब फियर, फियर, और हम फियर को यूज कर रहे हैं मोटिवेशन क्रिएट करने के लिए, फियर इज अ मोटिवेटर. तो फियर एक नेगेटिव एनर्जी, मोटिवेशन एक पॉजिटिव एनर्जी, तो एक नेगेटिव एनर्जी से आप एक पॉजिटिव एनर्जी कैसे क्रिएट कर सकते हो? गिव लव, गिव कंपैशन, गिव सपोर्ट, लेकिन गिविंग फियर, ताकि फियर से वो मोटिवेट हो जाए, इट विल नेवर हैपन. कभी भी ऑफिस में अगर हम देखें कि सब लोग काम कर रहे हैं तो अपना बहुत अच्छा काम करते हैं अपने आप, जैसे ही अगर कोई ऐसा सीनियर आकर खड़ा हो जाए जो हमेशा ऐसे वाला है, यू नो, बहुत ऐसे आप देखेंगे कि सब की, या यू नो, जस्ट थिंग्स टू, बिकॉज वी हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, वो कहेंगे गलतियां तो निकालनी चाहिए, क्रिटिसाइज करते रहोगे ना तो ये अपने आप को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे. अगर इनको अप्रिशिएट ही करते रहे ना सारा दिन, तो अप्रिशिएट करेंगे तो इनकी परफॉर्मेंस, आई मीन दिस इज थॉट पैटर्न, कि अगर अप्रिशिएट करेंगे तो ये तो फिर अपना बेस्ट एफर्ट नहीं देंगे, ये सोचेंगे वी हैव रीच्ड आवर बेस्ट.
0: दैट्स व्हाट वी डू विद किड्स आल्सो. You know, we've stopped appreciating them because अगर हमने किया तो इनको फिर आगे पढ़ना बंद कर देंगे या ये कर नहीं पाएंगे आगे.
1: What we have to understand is energy का खेल है सर. Appreciate करोगे वो पॉजिटिव एनर्जी है. पॉजिटिव एनर्जी कभी भी किसी को ऐसे नहीं कर सकती है. पॉजिटिव एनर्जी हमेशा empower करेगी. एंड क्रिटिकल हो जाएंगे बात बात में, और वो भी इस इंटेंशन से क्रिटिसाइज करेंगे ना, तो अपने आप वो और ज़्यादा मेहनत करेगा, क्योंकि हम अपने बॉस की या अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को बीट करना चाहते हैं. तो अगर वो हमारे काम में गलतियाँ निकालेंगे तो हम मोटिवेट हो जाते हैं, ये बिलीफ सिस्टम है, कि ये फिर मोटिवेट होंगे और मेहनत करने के लिए. अगर बॉस ने आके जूनियर्स को प्रेस कर दिया, फिर तो वो बहुत अच्छा, बॉस खुश हो गया तो चलो, व्हाट एफर्ट डू आई हैव टू पुट. वेरी वेरी, what to say, call it wrong or what, this belief system
0: doesn't
1: needs to
0: work.
1: Be checked.
0: Actually, it is not working.
1: It doesn't work. क्योंकि जहाँ कोई मेहनत कर रहा है और आप जाकर उस पर critical हो जाते हैं, आप तुरंत उसकी energy को, फिर या तो वो सामने वाले के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो आपकी क्रिटिसिज्म के साथ, यू नो, इन्फ्लुएंस्ड ना हो जाए. लेकिन क्योंकि आज हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं एक दूसरे की एनर्जी से,
0: पर हम चाहते भी हैं कि वो हमारे क्रिटिसिज्म से इन्फ्लुएंस हो.
1: हाँ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो हमारी क्रिटिसिज्म से और अच्छा करें, बट दैट्स नॉट व्हाट इज गोइंग टू हैपन. क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज डिसएम्पावरमेंट. आपको फीडबैक देना है, यस, इट इज़ नॉट कि आप काम ठीक नहीं है फिर भी आप कहेंगे कि योर वर्क इज़ परफेक्ट. लेकिन एक है काम पर फीडबैक देना और एक है क्रिटिकल एनर्जी देना, दोनों में बहुत फ़र्क है. इसलिए वर्ड्स मैटर नहीं करते, वर्ड्स के पीछे का इंटेंशन मैटर करता है. आप फीडबैक देते हुए भी किसी को एम्पावर कर सकते हो, और कई बार ये बोलते हुए भी कि हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन यू नो, आप उसको डिसएम्पावर कर सकते हो. तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा फोकस है काम पर, कि ये काम और अच्छा करे, ये काम और अच्छा करे. हमें ये याद रखना पड़ेगा काम करने वाला कौन है. जो काम करने वाला है, ये शक्ति, उसको जब तक हम एम्पावर नहीं करेंगे तो काम और अच्छा नहीं होगा. हमारा रोल एज अ बॉस और एज अ पेरेंट इज टू फैसिलिटेट, टू गाइड एंड टू एम्पावर. काम वो लोग करेंगे, काम तो अपने आप हो जाएगा. जब एक सीनियर आकर खड़े होते हैं जो थोड़ा इस तरह की एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं, तो अगर मैं सही भी काम कर रही होती हूँ ना, तो वो एनर्जी के इन्फ्लुएंस के अंदर मेरे से गलतियाँ होने लगती हैं. एंड फिर वो गलतियाँ ढूंढ लेते हैं क्योंकि उसके अंदर अब गलती आ गई. लेकिन वो गलती इसलिए हो जाती क्योंकि वो फियर मेरे अंदर क्रिएट हो जाता, क्योंकि माई पास्ट एक्सपीरियंसेस ये आए हैं, अब ये उस तरह की एनर्जी देते हैं. और उनका आना ही, खड़े होना ही, और उस, यू नो, इंटेंशन के साथ खड़े होना, इट क्रिएट्स अ वाइब्रेशन इन द रूम. एंड यू नो, मतलब आप देखेंगे कि विद द एम्प्लॉयज जो अभी तक अच्छा काम कर रहे थे, अब सडनली उनसे गलतियां हो जाती, क्योंकि स्ट्रेस मेरी परफॉर्मेंस को इन्हेंस नहीं करता, वो हमेशा मेरी परफॉर्मेंस को नीचे ही लेकर आएगा.
0: लेकिन एक बात, बहुत लोग बहुत बार सोचते हैं कि जैसे ही मैं इनको प्रेस करता हूँ या अप्रिशिएट करता हूँ किसी के साथ भी अगर हम ले, तो यू नो, इनका सर चढ़ जाता है. ये शब्द बहुत बार यूज़ किया जाता है, एंड दिस इज समथिंग अ वेरी दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज. लेकिन ये बात कही जाती है मैक्सिमम लोग, चाहे वो घर पे हों, चाहे वो बाहर हों, या यू नो लाइक, और डिसरिस्पेक्ट शुरू कर देंगे. ज़रा सा मैंने इनको ढील दी ना, ये मेरे सर पर चढ़ के बैठेंगे.
1: चलो उनके बारे में नहीं बात करते, अपने बारे में सोचते हैं. क्योंकि अगर मैं सीनियर हूँ तो मेरे से ऊपर कोई और सीनियर है, नहीं भी है तो आई कैन इमेजिन तो ना, कि कोई अगर मेरे से सीनियर हो तो मुझे क्या अच्छा लगेगा, कि वो मेरे से कैसे काम करवाए, वो मेरे से कैसे बात करे. अच्छा, मैं सीनियर हूँ, बच्चा तो कभी था ना, तो जब मैं बच्चा था तो मैं क्या चाहता था कि मेरे पेरेंट्स कैसे बात करें मुझसे. क्या मेरी पर्सनालिटी ये थी कि अगर मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार से बात करते तो मैं उसका अनड्यू एडवांटेज ले लेता?
0: नहीं,
1: कभी भी नहीं. एंड
0: भले मैं तो अच्छा था,
1: सारे ही अच्छे होते हैं ना. नहीं, सारे ही वैसा करते. वी थिंक दैट हम ऐसा करते, बट एक्चुअली सारे ही ऐसे हैं. एवरी वन लाइक्स लव, एवरी वन लाइक्स सपोर्ट, एवरी वन लाइक्स कंपैशन. कोई मिला आज तक जो कहे मुझे क्रिटिसाइज करो तो मैं ज़्यादा अच्छा काम करूँगा? तो ये कई बार, हाँ, ये होता क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें आदत पड़ी है डांट से काम करवाने की. इसी तरह सामने वाले को भी आदत पड़ी है कि डांट तो पढ़नी ही है, तो हम दोनों के संस्कार थोड़े वैसे वाले हुए हुए हैं. लेकिन आप एक बार ट्राई करके देखो कि डांट से नहीं, प्यार से ही काम करना है. भले वो काम करें, हो सकता है 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 4 महीना लग जाए कि वो पूरा जो वर्क कल्चर है उसमें एक चेंज आए, लेकिन चेंज ज़रूर आएगा. एंड अब जो काम होगा ना पूरा, एक तो सब लोग बहुत आपस में नज़दीक हो जाएंगे, क्योंकि देन यू नो देयर इज़ द राइट एनर्जी फ्लोइंग. अभी देयर वॉज नेगेटिव एनर्जी फ्लोइंग. आप किसी को क्रिटिसाइज करो, फिर वो आपसे नफरत करे, तो यू नो बिटवीन द बॉस एंड द जूनियर, नॉट वेरी गुड एनर्जी. लेकिन जब ये प्यार और सपोर्ट, एक्सेप्टेंस की एनर्जी फ्लो करती, वी ऑल कम लाइक दिस, एंड देन हमें कोई कहेगा नहीं कि काम करो. हमारा खुद मन करेगा कि हम काम करें इनके लिए, इनकी कंपनी के लिए, क्योंकि इनकी कंपनी हम हमें अपनी लगती है. यू नो देयर इज अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द वर्क. आज कॉर्पोरेट सेक्टर में कहते हैं यू शुड फील, यू नो, ब्रिंग योर हार्ट टू वर्क. आप अपना दिमाग तो लेकर आ रहे हैं ऑफिस में, लेकिन अपना दिल घर पर छोड़कर आते हैं. योर बिलोंगिंगनेस इज एट होम, बिलोंगिंगनेस इज नॉट एट वर्क. व्हाई? बिकॉज दिस एनर्जी इज नॉट देयर. फिर आपको काम करवाना नहीं पड़ेगा, काम होता जाएगा. और इतनी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, किसी से कोई गलती होगी वो खुद से आकर सच बताएंगे आपको, क्योंकि उनको पता है कि आप डांटने वाले नहीं हैं. सो दैट ट्रस्ट एंड दैट बॉन्डिंग विच विल गेट क्रिएटेड, इट जस्ट हैज टू बी सीन, एक्सपेरिमेंट एंड करके देखें.
0: एंड फिर गलतियां भी कम होंगी, क्योंकि डर नहीं होगा ना. ऑफ कोर्स डर के कारण बहुत कुछ गलत होता जाता है.
1: डर के कारण एक विशेष साइकिल बनता. गलती हो जाती, फिर गलती को छिपाते हैं डर के कारण, फिर छिपाकर उसका ब्लेम किसी और पर डालते हैं. अगर बॉस ने मुझसे पकड़ लिया कि मेरी गलती हुई, मैं तुरंत बोलूंगी मेरी वजह से नहीं, उनकी वजह से. ब्लेम डाला, जैसे ही ब्लेम डाला, मेरा और उस सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप भी अफेक्ट हुआ. होल एनर्जी फ्लो गेट्स अफेक्टेड. एंड अगर ट्रांसपेरेंसी है, आई कैन से यस आई एम सॉरी, मेरे से गलती हुई. And it's finished.
0: और समवेयर यू नो मेरी कभी इंटेंशन थी नहीं ना, तो वो कॉन्फिडेंस रहेगा मुझे कि हाँ ठीक है, मैंने इंटेंशनली नहीं किया. अगेन अमेजिंग, हमने बच्चों से शुरू करके आज बात जो है, और स्ट्रेस को हमने जब ये देखा कि जब जितनी मेरी इनर स्टेबिलिटी, मेरा इनर रेजिस्टेंस पार बढ़ता जा रहा था, वो जो स्ट्रेस जो था वो और कम होता जाता है. इनफैक्ट जिसको हमने नॉर्मल मान के, जब हमने कहा कि जितना स्ट्रेस होगा उतनी मेरी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, तो यहाँ ये समझ में आया है कि स्ट्रेस जो था वो मेरी परफॉर्मेंस को इनफैक्ट और वीक कर रहा था, और उसके लिए मुझे स्ट्रेस को निगेट करना या निल पर लेकर आना बहुत ज़रूरी हो जाता है. सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच.
1: ओम
0: शांति. अगर आपके पास कोई सवाल मन में उठ रहा है, कोई बात है, आपका हम स्वागत करते हैं. आप हमें ईमेल पर या फिर फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 01242664555 9993445 9993446 9873666. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही. आने वाली कड़ियों में कुछ और बातें आपके साथ शेयर करेंगे. अभी आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

मेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवर लास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ही आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद घ्या
1: और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। इन दिनों हम ये बात कर रहे हैं कि जिंदगी जीते जीते कितनी बार ऐसा होता है कि हम हर्ट हो जाते हैं और फिर हमें लगता है कि जैसे किसी ने कोई गलती की है तो न्याय होना चाहिए, उसे पनिशमेंट ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन पनिशमेंट कौन देगा? क्या हम पनिशमेंट दे सकते हैं और पनिशमेंट क्या होनी चाहिए? ऐसे ही कई एस्पेक्ट्स हैं ज़िंदगी की, वो बातें जिन्हें आज तक हम स्वीकारते चले आ रहे थे कि यही नॉर्मल है, उन्हें एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, हमने बात ये की थी कि जब हम हर्ट हो जाते हैं तब कई बार मन करता है कि मन क्या है? मैं पहला रिएक्शन ये होता है कि आई वॉन्ट टू गिव बैक, और वही रिवेंज का, चाहे वो छोटे से छोटा एस्पेक्ट ले लें या क्रिमिनल जब बनते हैं तब भी वो एस्पेक्ट। और फिर बात आ जाती है कि पनिशमेंट की। न्याय ये कहता है, कानून ये कहता है कि अगेन छोटे से छोटा गलती, छोटे से छोटी गलती हो या फिर बड़े से बड़ा क्राइम, सज़ा बहुत ज़रूरी है। लेकिन सज़ा का एक बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट हमने पिछली बार बात की थी। जहाँ तक क्राइम की बात है, बहुत से लोग हैं जिनके पास अब ये सवाल ये है कि अगर क्राइम घटता है, अगर क्रिमिनल जिसे कहते हैं अपराधी ने अपराध किया है, तो फिर क्या करना चाहिए उसके साथ?
1: क्रिमिनल शब्द ही, जैसे हमने देखा कि वो हम किसको देते हैं। हम सब कहीं ना कहीं उस तरह से सोचते हैं, लेकिन किसी ने उसको कर्म में ला दिया तो हमने उसको क्रिमिनल टैग दे दिया। क्रिमिनल किसको हमने वो टैग दिया? हम में से ही कोई एक व्यक्ति, एक ह्यूमन बीइंग जो है अपने आप में एक बहुत शुद्ध पवित्र आत्मा, लेकिन अपने आप को भूला हुआ है, अपने आप को भूल चुका, लोगों के साथ व्यवहार करने के तरीके को भूल चुका, एंड हाउ दिस होल वर्ल्ड वर्क्स ही हैज़ फॉरगॉटन। सो ही इज़ लिविंग इन अ यू नो इग्नोरेंस, वो अज्ञानता की नींद में जिसको कहते हैं चल रहा है, और उस अज्ञानता के कारण से उससे कोई ऐसा कर्म हो गया है, चाहे वो क्रोधवश है, लोभवश है, लेकिन वो अज्ञानता से हुआ है और वो कोई ना कोई बात से अभिज्ञ है, उसे स्मृति नहीं है। अब वो स्मृति वापस लानी है। सो इट्स बेसिकली अ बिलीव सिस्टम which is a wrong belief system. He has forgotten the truth. सत्यता भूल चुका है और किसी wrong belief system पे उसका thought चल रहा है। और ये सिर्फ so-called criminal के साथ नहीं, ये हम सब के साथ होता है। हमारी इस पूरी series में ही हमने अपने कितने सारे wrong beliefs लिए हैं। तो criminal thinking ये हम सब के चलते हैं। And किसी की thinking behavior में आ जाती है,
0: convert हो जाती है।
1: There are so many beliefs which working in each one of us. Let's say for example, the belief is that the more I have, the more happy I will be. अब ये मेरी belief है कि मेरे पास जितना होगा या मेरे जो दूसरों के पास है
0: वो मेरे पास
1: अगर होगा तो मुझे खुशी मिलेगी। अब ये एक belief है। इस belief को हम में से कितने लोग नहीं सोचते हैं कि जो उसके पास है वो अगर मेरे पास होगा तो मुझे खुशी मिलेगी। सत्यता क्या है?
0: खुशी तो मुझे अपने आप से मिलती
1: है, अपने आप से मिलती है, लेकिन ये सत्यता ना जानने के कारण हमसे कोई ना कोई अपराध हो जाता है, क्योंकि जितने भी क्राइम्स हम हैं वो कितने सारे इस बिहेवियर पर बेस्ड है। सो द बिलीफ इज कि जो औरों के पास है वो मेरे पास होना चाहिए, और सत्यता क्या है कि मैं अपने आप में ऑलरेडी खुश हूँ। बिलीफ है कि दूसरे मेरे दुख का कारण है, दूसरों ने मेरे साथ गलत किया, दूसरों ने मुझे धोखा दिया। इस बिलीफ को लेकर कितने अपराध आज होते हैं।
0: एक्चुअली जब ये बिलीफ इतना हावी हो जाता है सो देन वी,
1: लेकिन है तो हम सबके साथ ना। है तो ये बिलीफ सबके साथ। और सत्यता क्या है कि कोई मुझे दुख नहीं दे सकता, कोई मुझे धोखा नहीं दे सकता। सक्सेस क्या है? सक्सेस है कि हम जितना अक्यूमुलेट कर लें, जहाँ हमारे पास सब कुछ आ जाएगा वो सक्सेस है। इस एक को लेकर आज कितने अपराध हो रहे हैं, कितने सारे आज हम जो पढ़ते हैं न्यूज में या जितने इंसिडेंट्स आज हो रहे हैं दिल्ली शहर में कि जो डोमेस्टिक हेल्प है घर में वो अपने ही जिनके लिए वो काम कर रहे थे उनको मार देते हैं। फॉर व्हाट?
0: एक्युमुलेशन एंड एंगर, मेजर एंगर बहुत बार देखा गया है।
1: एब्सोल्युटली। तो अक्यूमुलेट करने के लिए, वेल्थ अक्यूमुलेट, मेजोरिटी क्राइम्स वेल्थ अक्यूमुलेट करने के लिए हो रहे हैं। और सत्यता क्या है? That you don't need any of this. Success is क्या? हमारी internal satisfaction. तो कितने सारे ये wrong beliefs ही हैं, और वो wrong belief जब इतने बड़े इस तरह से कर्म में आ जाता, we will call them a criminal. अब उनको जिसने इस तरह की कोई गलती की, उनको दुनिया से दूर कर देना, उनके घर के लोगों से दूर कर देना और एक कटघरे में बंद कर देना सिर्फ, उससे उनकी बिलीफ में परिवर्तन नहीं आएगा। तो उनके हीलिंग के लिए, बिकॉज आफ्टर ऑल वी वॉन्ट कि वो जो पर्सनैलिटी वापस आएगी आफ्टर द सो कॉल्ड पनिशमेंट, दैट शुड बी अ हील्ड पर्सनैलिटी, रिफॉर्म्ड पर्सनैलिटी। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? उसके लिए हम कुछ नहीं करते हैं। तो वो आत्मा ऑलरेडी इग्नोरेंस में है और हम भी एक और इग्नोरेंस का कर्म करते जब हम कहते पनिशमेंट से परिवर्तन हो जाएगा, तो ये भी तो एक इग्नोरेंस है। पनिशमेंट से कौन सा परिवर्तन आज दिन तक हुआ? तो ये सिर्फ सो कॉल्ड क्रिमिनल के लिए नहीं, लेकिन बचपन से लेकर जो आज हमारे बच्चों के साथ भी इस तरह से पनिशमेंट देकर सिर्फ परिवर्तन करने की कोशिश करते, उसके ऊपर थोड़ा सा हमें मंथन करना होगा।
0: बहुत से हमारे दर्शक हैं जिनके दिमाग में ये सवाल आएगा कि तो फिर जब अपराध हो रहा है तो अपराधी को क्षमा कैसे किया जाए? अपराधी को अपराध की सज़ा तो मिलेगी ही, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट करना ज़रूरी है। इतना अपराध क्योंकि उसने कहीं ना कहीं वायलेट किया है दूसरे की इंडिपेंडेंस,
1: दैट इज ट्रू,
0: है ना, दूसरे की, कहीं ना कहीं दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो चोरी हो, चाहे कुछ हो, कहीं ना कहीं ही इज रिस्पॉन्सिबल।
1: Absolutely. We are not saying that, you know, the judiciary system doesn't work and all this should not be there. But the thing is ki ek bar you have got the person in your custody, ab aapne kya karna hai unke saath? उसमें आपके पास बहुत सारा पोटेंशियल है कि सिर्फ ये नहीं कि उनके अंदर जो एंगर है, रिजेंटमेंट है, उसको और बढ़ने दें, उनको हील करें। द सो कॉल्ड प्रिजन एरिया कैन बी मोर लाइक अ काउंसलिंग सेंटर, इट कैन बी मोर लाइक अ हीलिंग सेंटर, जहाँ क्योंकि पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ना, तो उसके लिए हम क्यों नहीं कुछ करते? बिकॉज दैट्स नॉट ओनली फॉर देम, इट्स फॉर ईच वन ऑफ अस। लेकिन उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि वो बिटरनेस से नहीं लेकिन हील्ड होकर बाहर।
0: एक्चुअली उनके साथ तो बहुत ही बुरा ना सिर्फ सलूक किया जाता है, एटीट्यूड में, हमारी पूरी सोच में ही, जहाँ अपराधी की बात आती है, जहाँ जेल की बात आती है, वहाँ हमें घृणा, एक घृणा से भर जाते हैं हम।
1: ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम, क्योंकि हमारा भाव क्या है, पनिशमेंट जब हम दे रहे हैं उसका भाव क्या है? सुधार लाना। पनिशमेंट हम इसलिए देते हैं ताकि व्यक्ति फिर से वो चीज ना करे, लेकिन उसके लिए हम कोई मेजर नहीं उठाते, सिर्फ उसको दुनिया से दूर एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपने रख दिया, उससे वो कर्म फिर से नहीं करेगा, देयर इज नो गारंटी, क्योंकि अंदर की हीलिंग तो हुई नहीं, उसने उसके परिवर्तन के लिए हमने कोई स्टेप उठाया नहीं। सो दैट इज समथिंग यू नो वी हैव टू टेक केयर ऑफ, एंड उसके लिए चाहिए कि जहाँ पे भी सब हैं वहाँ पे देयर हैज टू बी लॉट ऑफ एजुकेशन, अ लॉट ऑफ लर्निंग एंड अ लॉट ऑफ काउंसलिंग एंड अ लॉट ऑफ हीलिंग। एंड दिस सिस्टम इज नॉट फॉर क्रिमिनल्स बट फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर ईच वन ऑफ अस। जो आज गलतियाँ अगर हमारे से होती हैं तो जो हमारे साथ हैं उनकी ये एक सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि सिर्फ पनिश ना करें या सिर्फ रिवेंज ना लें। वो रॉन्ग मेथड क्यों हो जाता है? बिकॉज वो हमारे अंदर की बिटरनेस को और बढ़ा देता है। हमें इवन ऑफिस में, आपने ये गलत काम किया, आपके अगेंस्ट ये एक्शन लिया जाएगा, इट्स ऑलवेज एक्शन लिया जाएगा आपके अगेंस्ट। उससे क्या रिजल्ट निकलेगी? बिटरनेस और बढ़ती जा रही है, दूरियां और बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो मेथड वर्क नहीं कर रहा है, वी नीड टू वर्क ऑन दैट, कि मेथड ऐसा होना चाहिए जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो। अभी हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि गुस्से को और ये सारा जो अंदर बिटरनेस है इसको खत्म करना है, बट एक्चुअली हम जो कर रहे हैं उससे वो बढ़ रहा है। यू नो ऑफिस में भी कहेंगे डिसिप्लिनरी एक्शन, डिसिप्लिनरी एक्शन मीन्स यू वांट टू डिसिप्लिन द पर्सन, हैव यू रियली सक्सीडेड?
0: वही इसलिए मान लिया हमने कि भय से डिसिप्लिन हो जाता है।
1: अगेन
0: दिस इज अ मेजर बिलीव विद व्हिच वी आर वर्किंग, कि भय से ही डिसिप्लिन हो सकता है, भय जो है वो काम करवा सकता है, भय से आप कोई क्राइम भी नहीं करेंगे। एक और मुद्दा जो उठता है वो है कि एक बार माफी वाला फैक्टर जो है कि एक बार मिस्टेक को आप माफ कर सकते हैं। इवन ये भी कहते हैं कि कृष्ण भी जो है 99 टाइम्स माफ कर देते थे, 100वीं बार जो था ही सेड दैट इट हैज टू बी पनिश्ड। सो बार बार जब रिपीटेशन ऑफ द सेम मिस्टेक हैपेंस, देन
1: बार बार रिपीटेशन ऑफ द सेम मिस्टेक इज हैपनिंग बिकॉज नोबडी इज वर्किंग ऑन दैट पर्सन। आपको कहीं ना कहीं तो किसी को समय निकालना पड़ेगा ना उसके लिए, किसी को बैठकर चेक करना पड़ेगा कि व्हाई इज दैट मिस्टेक हैपनिंग, बिकॉज इट्स अ डीप रूटेड संस्कार। मिस्टेक वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, वो उससे होती जा रही है। हो सकता है कई बार आप देखो, हम अपने आप से नहीं होता, हम कितनी बार डिसाइड करते हैं कि गुस्सा नहीं करना फिर भी करते हैं, हम कितनी बार डिसाइड करते हैं कि हर्ट नहीं होना फिर भी करते हैं, तो 99 बार करते हैं या उससे ज्यादा बार करते हैं, तो हो
0: लेकिन सिस्टर शिवानी अगर बात यही आ जाती है कि हम ये कहते हैं कि हम अपने ऊपर तो काम कर नहीं पा रहे, अब उनके साथ काम, और उनके साथ मतलब क्योंकि हमने उन्हें बिल्कुल एक उस कैटेगरी में डाल दिया, खासकर क्रिमिनल्स की अगर हम बात करें, उनके रिफॉर्म्स की या उनके ट्रांसफॉर्मेशन की बात तो हम कभी सोच ही नहीं पाते। और इसी तरह से जुवेनाइल क्राइम जो है, वो बच्चे जो क्राइम करके रिफॉर्म हाउसेस में जा रहे हैं, दे आर आल्सो यू नो।
1: आप देखो रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ था शूट आउट का स्कूल में, जो गुड़गांव में हुआ, द होल स्कूल मतलब जितने बच्चों ने उस इंसिडेंट को विटनेस किया उस टाइम पर, दे वेंट इनटू अ डिप्रेशन। अब उन बच्चों के लिए जिन्होंने वो शूट आउट को देखा, उनके लिए बहुत काउंसलिंग हुई, साइकाइट्रिस्ट आए, लेकिन उस बच्चे के लिए कुछ भी नहीं हुआ जिसने एक्चुअली वो मर्डर किया था, क्योंकि उस बच्चे को अब एक बच्चा ना देखकर
0: एक
1: क्रिमिनल कर दिया। बाकी सब बच्चों के लिए हुआ, और सबसे ज्यादा किसको जरूरत थी? सबसे ज्यादा उस बच्चे को जरूरत थी, उस बच्चे के लिए नहीं कुछ किया गया।
0: Why is it? Why do we have hatred?
1: हेट्रेड आ गई ना, कंपैशन खत्म हो गया, प्यार खत्म हो गया, क्योंकि हमने टैग कर दिया, दे आर बैड पीपल। जैसे ही हमने, क्योंकि हम गुड और बैड के लेबल्स लगा देते हैं बहुत जल्दी, तो वी डोंट अंडरस्टैंड कि द एक्शन इज डिफरेंट एंड द पर्सन इज डिफरेंट। एक्शन गलत किया है, एब्सोल्युटली कर्म गलत किया है, लेकिन हमने बैड पीपल की कैटेगरी में उनको डाल दिया, फिर उनको काउंसलिंग या हीलिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो
0: है ही खराब,
1: तो खराब लोग हैं। अब जब बहुत सारे वो बच्चों से बात की गई, तो ये पता चला कि क्योंकि जैसे बुली सिस्टम या रैगिंग सिस्टम है इंस्टीट्यूट्स के अंदर, तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि हम लोग तो कितनी बार जैसे मन ही मन ये सोचते हैं कि मैं तो मार दूं इसको, या हम आपस में भी बात करते हैं, मेरा बस चले कि मैं तो मार दूं इसको, यू नो। हम लोग भी आपस में जब बात करते हैं, अगर किसी से हमें बहुत नफरत है या बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा दिल कर रहा है मैं मार दूं इसको,
0: किल हिम, आई वांट हिम डेड, यू नो, कितनी बार, सो दैट मींस
1: द थॉट इज देयर विद सो मेनी of us. तो इतने सारे बच्चों ने कहा कि हमारे अंदर ये thought आती है। अब किसी बच्चे ने वो thought को implement कर दिया, लेकिन वो भी उन्हीं की तरह है। और इस समय उससे शायद सबसे ज़्यादा, क्योंकि the pain that he will be going through, so punishment is not, you know, just that separating them from everybody and he'll reform.
0: Loneliness जो उसको,
1: what will be the future of that child? So that somewhere the entire education system, parents, judiciary system, everybody needs to start working on that little bit. कि counseling, healing, ये बहुत important है साथ में। आप action जो judiciary action है वो तो लेंगे, लेकिन एक बार वो आपके पास आ गए, फिर आपको उनके साथ क्या करना है, वो बहुत important हो जाए। Reform करने के लिए actually क्या चाहिए होता है? जैसे आपने कहा, एक तो motivation कि हम अपने आप को ही नहीं आज रिफॉर्म कर पा रहे, या हम अपने आप को ही नहीं हील कर पा रहे, तो हम औरों के लिए कहाँ से करेंगे। और दूसरा टाइम, टाइम फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
0: एंड देन अगेन माइंडसेट्स हैं कि क्रिमिनल्स कभी नहीं होते, आप कुछ भी कर लीजिए। इनफैक्ट एक और बहुत बड़ा माइंडसेट हमारे साथ चलता है कि जो सपोजिटली लोअर वर्कर्स हैं, दे नेवर चेंज, यू नो, दे विल ऑलवेज बी लाइक दिस।
1: लेबलिंग, अगेन लेबलिंग। तो वो जितना लेबल हम करते जाएंगे, तो वो जो स्टैम्पिंग है वो और ज्यादा होती जाती है। अगेन हम क्या कर रहे हैं, वही जो हमने कहा, उनको अपने बिलीफ सिस्टम के अंदर फिट कर रहे हैं। अगर किसी ने कुछ भी ऐसा किया कर्म थोड़ा सा, हम कहेंगे लेबर, वो तो सारे ही ऐसे होते हैं, यू नो, बिलीफ सिस्टम, वो बिलीफ सिस्टम में उनको फिट कर लेते हैं। तो रिफॉर्मेशन करने के लिए टाइम चाहिए, पेशेंस बहुत चाहिए, कंटिन्यूस दोनों तरफ से, जो जिसे रिफॉर्म होना है और जिसे वो करना है, दोनों के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए।
0: आई थिंक और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक बात है जो रिफॉर्म नहीं होने देती, वो समवेयर ये भी है, जो रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है उसको कंटिन्यूस अवेयरनेस है कि मैं रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा
1: हूँ। एब्सोल्युटली, एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग। और वो पहली बात जो उसकी कॉन्शियसनेस है वो ये है, अगर जो रिफॉर्म करने के निमित्त है, अगर उसके अंदर ये कॉन्शियसनेस होगी कि ये क्रिमिनल है, तो वो उसे रिफॉर्म नहीं कर सकता। उसका हर एक शब्द और हर एक एक्शन एक पनिशमेंट ही है, क्योंकि वो क्रिमिनल को कर रहा है। तो वो, और फिर एक रिफॉर्मर के अंदर एक नेचुरल संस्कार ये क्या बन जाता है, गलतियां निकालने का, कमजोरियां देखने का और जजमेंटल बनने का. दैट इज नॉट रिफॉर्मेशन, क्योंकि फिर तो आप एक सटल तरह से पनिशमेंट ही दे रहे हैं. नॉर्मली अगर आप एक सीन ऑफ क्राइम को देखते हैं या एक गलती होते हुए देखते हैं, किसी ने किसी के साथ गलती की, एंड आई एम थर्ड पर्सन, लेकिन जब इन्होंने इनको दर्द दिया, सो कॉल्ड जैसे हम सोचते, और मुझे भी वो दर्द महसूस होना शुरू हो गया, तो आई एम ऑल्सो अ विक्टिम. एंड अब आई एम इन द रोल ऑफ रिफॉर्मिंग, लेकिन बिकॉज आई एम अ विक्टिम, तो मुझे लगता है इन्होंने अत्याचार किया.
0: Because I empathized with that victim.
1: Yeah, but I could feel the pain, ना? मैंने पेन अपने साथ ले लिया, तो मुझे लगता है ये अपराधी है, ये क्रिमिनल है, इन्होंने गलत किया, तो मैं कभी उनकी हेल्प नहीं कर सकती. जैसे ही मुझे ये रियलाइजेशन आएगा कि ये जो पेन मैंने अभी अभी क्रिएट किया इस सीन को देख कर, ये मेरा अपना क्रिएशन था, उन्होंने जो करना था वो किया, लेकिन जो पेन मैंने क्रिएट किया ये मैंने अभी अभी अपना क्रिएट किया. Let it go. Let the pain go. जैसे pain चला जाएगा, I will be able to see that person as the person is, without judgment, without that good, bad, right, wrong. वो judgmental नहीं होना है. हम उसके साथ, जिसने attack किया है या जिसने गलती की है, उसके साथ empathize करना अब शुरू कर सकते हैं. उनको समझना शुरू कर सकते हैं कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया. When I understand कि मेरे अंदर clarity आई है कोई, मुझे जो चीजें जैसी हैं वैसे समझ में आने लग गई है, now I only have to empower. Reform नहीं करना है मुझे, मुझे उनको सशक्त करना है. वो भी मेरी तरह ही आत्मा है, लेकिन वो कुछ बातों को भूल चुकी है, तो मुझे सिर्फ उन बातों की स्मृति को लाना है. लेकिन मैं वो तब ला पाऊंगी जब मैं उनको वो रिस्पेक्ट से देख सकती हूँ. क्योंकि जैसे क्रिमिनल देखा, there you go.
0: जैसे हमने वो आत्मा देखा, आत्मस्वरूप अपना वाला, जैसे मैं हूँ वैसी देखा, बट आई थिंक
1: तब हम वो वाइब्रेशन भेज पाएंगे जो एम्पावरमेंट क्रिएट करेगी. और वो एम्पावरमेंट के लिए तभी हम कर पाएंगे जब हम उनको जज नहीं करेंगे कि ये क्रिमिनल है, वो भी मेरी तरह एक आत्मा है. जैसे वो थॉट क्रिएट कर लिया, यू सी व्हाट यू विल डू मैजिक विद देम. वो आप उनको रिफॉर्म नहीं करते हैं, बिकॉज द वर्क इज ऑल डन बाय मी myself, लेकिन वो खुद जो करने की उनको शक्ति चाहिए, बस वो हमें देनी है, वो स्मृति वापस लानी है. और उसके लिए हम ये टैग हटा दें कि क्रिमिनल है, और गुड बैड ये जो जजमेंटल हम बनने की कोशिश करते हैं ये हटा दें, और उनको रिस्पेक्ट और डिग्निटी, क्योंकि उस समय क्या हो गया है, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है. तो वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो हम सबको देते हैं, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी अगर हम उनको दें, अपने आप को वो एम्पावर कर देंगे. हमें नहीं करना. सोल कॉन्शियसनेस विल वर्क एवरीवेयर, एवरीवेयर. ये हम जो ऑलरेडी थॉट क्रिएट कर देते हैं, वो ऐसा कहेंगे, वो ऐसा करेंगे, तो हम वो ऑलरेडी एनर्जी ट्रांसमिट कर देते हैं, एंड देन वो ऐसा ही करेंगे.
0: तो हर नेगोशिएशन पे एक एम्पावर होके हम खुद जा सकते हैं.
1: अभी क्या होता है, या तो हम सुपीरियर फील करते हैं या इंफीरियर फील करते हैं, और सोल कॉन्शियसनेस में वी आर इक्वल. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हम तो सोल कॉन्शियस हैं, सामने वाला तो नहीं है, वो अपने अहंकार में है. लेकिन जब हम उसे वो दृष्टि से देखेंगे, तो है तो आत्मा, वो सिर्फ भूली हुई है. तो जब हम उसको उस दृष्टि से देखेंगे, तो उसके अंदर भी वो स्मृति जागृत होगी, और आत्मा के जो गुण है वो ऑटोमेटिकली जागृत हो जाते हैं. ये सारे गुण कुछ बोलने से जागृत नहीं होंगे. आप कितना भी बोल दीजिए कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे हैं, इट वोंट वर्क. इट हैज टू कम फ्रॉम डीप विद इन, बट इट्स वेरी डीप रूटेड. ये लगता है कि नहीं तो बहुत इजी है, हम जाकर वहां सोचेंगे कि ये तो आत्मा है,
0: हम भूल जाते हैं ना उस वक्त तो, क्योंकि बाकी सारी चीजों ने फॉग किया होता है.
1: थॉट भी नहीं आना चाहिए कि सामने वाले ने गलती की है, सामने वाला एक अपराधी है, सामने वाला, ये थॉट ट्रेस में भी नहीं होगा. तब वो प्योरिटी ऑफ वाइब्रेशन, इसको हम कहेंगे प्योरिटी ऑफ थॉट, जहाँ एक इम्प्योरिटी का ट्रेस भी नहीं है, दैट विल रीच टू द अदर सोल. And that will bring about empowerment.
0: That's wonderful, actually. अगर हम पूरे aspect को देखें तो सारे crime जो scenes हैं और इस वक्त जिस हालात में पूरा समाज है, मुझे लगता है कि आज हम में से हर कोई criminal है. You know, thought में नहीं, मतलब action में नहीं तो कहीं ना कहीं thought में तो है ही, लेकिन action में भी हम में से हर तीसरा बंदा जो है, तीसरा व्यक्ति criminal नजर आ रहा है. यहाँ अगर हम क्राइम के सीन से हटके अपने घर पे भी आ जाते हैं तो यही फिलॉसफी शायद हम अपने रिफॉर्मिंग ऑफ किड्स, यू नो, रिफॉर्मिंग ऑफ चिल्ड्रन, हमारे कि हमारा बच्चा बात नहीं मान रहा है, यही सही रास्ता है, ये ऐसे करना चाहिए उसे, लेकिन वो क्यों नहीं समझ पा रहा है, रिबेल हो रहा है, तो यहाँ शायद वो पनिशमेंट की वजह से।
1: जितना हम पनिशमेंट को यूज करते हैं तो मेजॉरिटी केसेस में ये देखा जाता कि जो रिबेल होने की नेचर है वो संस्कार और भी ज़्यादा कड़क होता जाता है। जो हम यू नो कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे बहुत ज़िद्दी हो गए हैं या बहुत ढीठ हो गए हैं कि अब कितना भी बोलो वो नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा जो शिक्षा देने का तरीका था वो कहीं ना कहीं यू नो वी यूज़ अ शॉर्टकट मेथड बिकॉज अगेन लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ पेशेंस एंड मोर देन दैट आई थिंक लैक ऑफ अवेयरनेस माई सेल्फ
0: आई डोंट नो सी दैट्स द बिगेस्ट थिंग क्योंकि कभी भी कोई पेरेंट जानते बूझते नहीं करना चाह रहा होगा लेकिन शायद वो जान ही नहीं पाते हैं कि कितना नुकसान हो रहा है पूरे एटीट्यूड से।
1: तो अपनी अवेकनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है इसलिए कि जब हम जागृत अवस्था में रहेंगे तो हम औरों को भी अपने साथ लेकर चलेंगे। और अभी भी आपने देखा होगा कि अपनी इस पूरी यात्रा के दौरान जितना हम अपने आप को समझ लेते हैं और हमें अंदर का पूरा मैकेनिज्म समझ में आता है कि ये सारा सिस्टम कैसे वर्क करता है, हम औरों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यू नो जब कोई सामने से गुस्सा करता है, नाउ फॉर एग्जांपल, हमें पता चलता है कि ये गुस्सा गुस्सा नहीं है, एक्चुअली ये अंदर कोई दर्द है, ये अंदर हर्ट है कोई, और ये दर्द एक गुस्से के रूप में बाहर आ रहा है। तो पहले हम कैसे रिएक्ट करते थे, गुस्सा कर दिया मुझे कैसे गुस्सा कर दिया, अब समझ में आता है ये गुस्सा थोड़ी है, ये तो अंदर कितना दर्द है। So now you cannot have hatred, you will have compassion. वो खुद इतने दर्द में है तो वो आपको भी सही पर्सपेक्टिव में नहीं देख पा रहे, तो उन्होंने वो कर्म किया, लेकिन उनको किस चीज की आवश्यकता है। अब वही बात हो गई, एक दर्द में है, अब मैं उसकी बात को लेके मैं भी दर्द में चले जाऊं तो हम दोनों को हेल्प कौन करेगा, और फिर मैं उनको और दर्द दूं। बच्चे ने गलती की पेरेंट के साथ तो पेरेंट भी दर्द में चला गया, बच्चे को और दर्द दिया। It's become a cycle. And then it is, how do we come out of this cycle? And then we say we're all in pain. So who will heal who? Everyone is a patient now. So that's why let me take up the responsibility. And इसीलिए जो हम कहते हैं meditation के लिए time नहीं है या I don't have time for myself, what we don't realize is it's not just for myself, it's for my family also.
0: For my all loved ones, you know, जिनके लिए मैं जिंदगी देने को तैयार हूँ, सब कुछ करने को तैयार हूँ, अनअवेयरनेस में मैं कहाँ तक कितना नुकसान। रिश्तों की बात करें, मतलब हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है, लेकिन इसको मैं जरूर थोड़ा सा छूना चाहूंगी कि आज जो रिश्तों में इतनी कड़वाहट, इतनी दूरियां, इतना कम्युनिकेशन गैप इधर इधर होते हुए नजर आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की बात करें या किसी भी तरह का रिश्ता, तो वहां पे भी शायद एक भी अगर जागरूक अवस्था में,
1: You need only one. कई बार घरों में लोग कहते हैं ओ जी मैंने अगर अपने ऊपर मेहनत की लेकिन बाकी सब लोग तो वैसे ही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बाकी सब वैसे ही रहेंगे। One person has to take up the responsibility. और वो एक करे, उससे औरों को तो बेनिफिट होगा, औरों को प्रेरणा भी मिलेगी करने की।
0: और उसमें एक को ये नहीं समझना पड़ेगा कि मैं एहसान कर रहा हूँ, यू नो समवेयर, ये इसके साथ भी कि मैं ही करता जा रहा हूँ, मैं ही कब तक करूँगा, मैं ही कर रहा हूँ।
1: जब हम कुछ करते हैं इस तरह से तो हमें लगता है कि मैं एहसान कर रहा हूँ, लेकिन जब अवेयरनेस से करेंगे तो हमें समझ में आएगा दिस इज द वे टू बी, इसके अलावा तो और कोई रास्ता ही,
0: और ये मेरे लिए जरूरी
1: है, दिस इज द नेचुरल वे ऑफ लिविंग। अभी तक जो हमारा वे ऑफ लिविंग था बिटरनेस को पकड़ के, हर्ट को पकड़ के, दैट वॉज नॉट अ नेचुरल वे ऑफ लिविंग। और सफरिंग किसके लिए, बहुत प्राउडली हम कहते हैं उन्होंने ये कहा, मैंने अभी तक वो बात नहीं भूली, इतने साल से मैंने वो बात पकड़ के रखी हुई है, नुकसान किसका है, उनका, वो भूल चुके, अपना। तो सारा दिन अपनी सफरिंग सेल्फ क्रिएटेड है। इवन ये अगर हमें समझ में आ जाए, बॉटम लाइन, आई क्रिएट माई ओन सफरिंग, टिल व्हेन,
0: टिल आई अंडरस्टैंड, टिल आई अवेक,
1: लेट मी स्टॉप नाउ, नोबडी क्रिएट सफरिंग फॉर मी, नोबडी कैन कॉज मी पेन, only and only me. So how much more do I want to cause pain for myself? When will I stop? That's it. And then मेरे को लगता है 10 minutes अपने लिए निकालना
0: मुश्किल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। In fact, that's it. ये तो हम understand कर ही चुके हैं और अब हर बार और clarity से आता जा रहा है कि meditation is empowering my own self, you know, healing की हम बात कर रहे थे, ना सिर्फ healing अपने लिए, पूरे परिवार के लिए और gradually पूरे समाज के लिए। जो अब बात ये करते हैं कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं, तो ये this is the way actually टू गो आउट एंड यू नो लाइक फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। सिस्टर शिवानी, आज की इस बातचीत ने कई परिपेक्ष तोड़े हैं, एक नया अंदाज दिया है जिंदगी को देखने का और किस तरह से क्राइम या क्रिमिनल्स को देखना है बड़े परिपेक्ष में देखें तो वो भी बदल रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। बहुत कुछ हमारे आसपास हो जाता है, चाहे वो समाज में हो या फिर घर में, एक ही अंदाज से अभी तक हम देखते आ रहे थे। देखने का नज़रिया अगर थोड़ा सा बदला जाए, जहाँ हम ये कहते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है या किसी और के साथ गलत हुआ और ऐसे में जिसने गलत किया है उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, तो एक बार फिर खुद को टटोलें और जिस परिप्रेक्ष्य में आज हमने देखा है क्राइम को, क्रिमिनल को और पनिशमेंट को, उसे कुछ देर बैठ के अपने साथ रखें और ये समझने की कोशिश करें कि क्या वो परिप्रेक्ष्य सही है। अगर अभी भी आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में अब वक्त है कि आपसे विदा लें, लेकिन इसी वादे के साथ कि ये सफ़र खुद को पहचानने का और पूरी ज़िंदगी को जो जिन रॉन्ग बिलीफ्स पे या जिस बिलीफ सिस्टम पर हम अभी तक ज़िंदगी जीते आ रहे हैं, जहां उसने हमें हील नहीं किया है, एक ऐसे प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें हीलिंग की तरफ लेकर जाएगा। फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाज़त। ओम शांति।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

और इस पर आपका गम।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा 3 दिन बिल्कुल नहीं, तो वो 3 दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: मुझे कुछ कहना है,
3: मुझे भी कुछ कहना है,
2: मुझे कुछ कहना है,

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होके बात कर ही लेनी है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
3: अक्सर हम सब एक दूसरे को कहते हैं और सुनते भी हैं, दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम, उगाने वाले का नाम क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता किसी कृषक या भोजन उगाने वाले उस व्यक्ति का नाम जिसकी वजह से वो भोजन हमारे प्लेट पर पहुंचता है? और दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि अगर कृषक अपना कार्य ना करें तो हम तक हमारे भोजन कैसे पहुंचेगा? और कृषक मेहनत भले कितना भी कर ले, लेकिन बढ़ती आबादी को भरपेट पालना देने के लिए ऐसा फसल उगाया जाए जो न केवल पेट भरे लेकिन पौष्टिकता से भी भरपूर हो, इसके पीछे कृषक का हाथ तो होता ही है, लेकिन साथ में होता है रिसर्च करने वाले, शोध करने वाले वैज्ञानिकों का हाथ। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं यशस्वी भारत कार्यक्रम, और आज के कार्यक्रम के हमारे जो मेहमान हैं वो ऐसे ही एक जाने माने वैज्ञानिक है। दोस्तों, वो इतने जाने माने हैं कि अगर आप गूगल में राइस एंड राम ये दो शब्द टाइप करते हैं, चावल और राम, तो इनका ही नाम आता है, डॉक्टर रामशेठ चौधरी जी का। डॉक्टर रामशेठ चौधरी जी भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात उनके नाम से जुड़ा हुआ ये है, वो है काला नमक चावल। ये वो चावल है जिसे कहा जाता है स्वयं गौतम बुद्ध जी खाया करते थे, और एक समय था जब ये काला नमक चावल पूरी तरीके से गायब हो चुका था, एक्सटिंक्ट हो गया था, लेकिन डॉक्टर रामशेठ चौधरी जी के अथक प्रयासों ने न केवल इस चावल को नया जीवन दिया, लेकिन इस चावल की बदौलत हम में से कई लोगों को बहुत सारा जीवन, बहुत सारा रोजगार और बहुत सारा भरपूरता का अनुभव कराया है। आइए मिलते हैं आज के हमारे मेहमान से, स्वागत करते हैं उनका हमारे स्टूडियो में, डॉक्टर रामशेठ चौधरी जी का। रेडियो मधुबन के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राम चौधरी जी। नमस्कार।
4: नमस्कार जी।
3: आप एक बहुत ही व्यस्त व्यक्ति हैं, क्योंकि समाज की सेवा में और अपने शोध संशोधन और रिसर्च आदि में आप बहुत व्यस्त रहते हैं, किसानों के बीच में जाने में आप व्यस्त रहते हैं, लेकिन उसमें से भी आपने समय निकाला, तो मैं समझता हूँ कि हमारे श्रोता साथियों को आज आपसे बहुत कुछ जानने सीखने को मिलेगा, लेकिन उस व्यस्तता में से समय निकालने के लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
4: बहुत धन्यवाद आपको।
3: डॉक्टर राम जी, हम चाहेंगे कि हम सबसे पहले वहां से शुरू करते हैं जहां से एक साधारण बच्चे की कहानी से, और वो बच्चा कैसे धीरे धीरे कुछ ऐसे इंस्पिरेशंस अपने जीवन में बटोरने लगता है जिससे उसके जीवन का एक राह तैयार हो जाता है। कैसे राम से डॉक्टर राम चौधरी आप बने, और क्या रहा आपका सफर, वो हम थोड़ा संक्षेप में जानना चाहेंगे, आपकी कहानी आपकी जुबानी।
4: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जन्म तो 1942 का है, आजादी से बहुत पहले का। उसके बाद शुरुआती दौर थी, किसान की फैमिली में पैदा हुए, खेत में ही बड़े पले हुए, और एजुकेशन हमारी शिक्षा भी खेती से ही शुरू हुई। और जबकि हम अपने जिले में पहला स्थान था हमारा 8वीं दर्जा में, लेकिन 9th क्लास में जाने के लिए जब सब्जेक्ट का चुनाव हुआ तो हमने कहा हम खेती ही पढ़ाएंगे, कृषि। आप विश्वास मानिए, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो हमारे जिले का बेस्ट कॉलेज था साइंस का, वहाँ एडमिशन से मैंने अपना नाम कटा लिया और हम एग्रीकल्चर स्कूल में आ गए। तो वो लगाव था मेरा शुरू से खेती से। बाद में कुछ दिनों बाद थोड़ा पछतावा हुआ, लोगों ने कहा अरे अब खेती पढ़ के क्या करोगे, वहाँ पढ़ते तो डॉक्टर बनते इंजीनियर बनते, तो थोड़ा पछतावा जरूर हुआ है आपको बता दूँ। मैंने कहा गलती की हमने, लेकिन अब तो ठीक है, गलती हो गई है तो हो गई है। उसके बाद फिर हमने हाई स्कूल किया, इंटरमीडिएट किया, बीएससी एग्रीकल्चर से किया, एमएससी एग्रीकल्चर से किया और पीएचडी भी एग्रीकल्चर से किया। और पहली नौकरी 1969 की है मेरी एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ का उत्तर प्रदेश का एक बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी थी जी बी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, अमेरिकन पैटर्न जो लैंड ग्रांट पैटर्न है उस पर बनी हुई पहली यूनिवर्सिटी थी। तो उसमें एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब मिला और फिर अनुसंधान के लिए हमको धान का विषय मिला। तो इस तरह से शुरुआत होती है हमारे
3: यहाँ। मैं जानना चाहूंगा राम जी, आई थिंक जी बी पंत यूनिवर्सिटी जो है वो भारत की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो केवल कृषि प्रधान यूनिवर्सिटी है। ये बहुत ही मतलब मैं कहूंगा कि हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि ऐसे एकदम एक्सक्लूसिव यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं। आपने अपने कार्य की शुरुआत वहां से की और आज भी आप वहां से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब आप ये कहानी शुरू कर रहे थे तब मुझे एक चीज का ख्याल आया कि क्या आपका परिवार शुरू से कृषि में था या केवल गाँव में आसपास आपने कृषि को देखा इस वजह से आपका उसमें रुचि था?
4: नहीं, हमारे पिताजी, हमारे पितामह, उनके पितामह सारे खेती से जुड़े थे। और आपको ये भी बता दूं कि नौकरी में आने वाले अपने परिवार के हम पहले व्यक्ति थे, बाकी लोग।
3: लेकिन वो नौकरी भी कृषि से जुड़ी हुई नौकरी में
4: क्योंकि इंटरेस्ट रहता है आपको
3: जी जी,
4: कि जहाँ से हम रास्ता अलग कर सकते थे वो रास्ता था नाइन्थ क्लास का एडमिशन। तो नाइन्थ क्लास के एडमिशन में हमने कृषि से ही जो है वो नौकरी ली। तो कृषि से ही नौकरी चली और चलती रही। तो इस नाते ये बड़ा अच्छा मौका रहा कि खेती बाड़ी वाले परिवार का पहला व्यक्ति नौकरी में आया तो भी खेती बाड़ी वाले परिवार की नौकरी जो है वो करनी पड़ गई। तो ये 10 साल चला, असिस्टेंट प्रोफेसर पंतनगर में, एसोसिएट प्रोफेसर और वहीं पे एसोसिएट डायरेक्टर, जो उनका क्रॉप रिसर्च सेंटर होता है उसके हम एसोसिएट डायरेक्टर भी थे 10 साल में। 10 साल के बाद फिर हमने पंतनगर छोड़ा। तो ये बिहार प्रांत है यहाँ का, बिहार प्रांत में तो क्योंकि काम ठीक था और ऊपर वाले की कृपा है, आप सबका आशीर्वाद कि बुद्धि भी ठीक ठाक थी, तो जो काम करते थे उसमें सफलता मिलती गई। तो चाहे वो वाइस चांसलर हो या कोई भी हो, सबको पसंद आता था हमारा काम। तो 5 साल में ही हमको उन्होंने चीफ साइंटिस्ट या मुख्य वैज्ञानिक से डायरेक्टर बना दिया पूरे इंस्टीट्यूट का। तो ये 5 साल के दौरान ये बिहार की राजधानी है पटना, वहाँ चला। उसके पश्चात फिर हमने विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जिसको कहते हैं इंग्लिश में, नाइजीरिया एक देश है अफ्रीका का, वहाँ हमने ज्वाइन किया। क्यों? वो नौकरी जो है वो पैसों की नौकरी नहीं थी, बल्कि वो नौकरी थी राइस की, एज ए राइस एक्सपर्ट हम वर्ल्ड बैंक नाइजीरिया में ज्वाइन किए। 5 साल के बाद कुछ ऐसा लगा हमें कि बहुत अच्छा जॉब है, बच्चे भी हमारे अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं, हमारा खुद का जो है तनख्वाह वगैरह बड़ा अच्छा था, बड़े अच्छे पर्क्स थे लेकिन उस जमाने में, हम 1984 की बात कर रहे हैं, तो 1984 में उस जमाने में भी एयर कंडीशन घर, एयर कंडीशन गाड़ी, एयर कंडीशन ऑफिस, गार्ड, सारा कुछ, सारी सुविधाएं थी। लेकिन हमें कुछ ऐसा लगा कि ये हमारा करियर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम क्रिएटिव व्यक्ति हैं, कुछ न कुछ हमारे प्रयास से निकल के आना चाहिए दुनिया के लिए। तो इस नाते हमने रिजाइन कर दिया। इससे पहले लोगों को ताज्जुब हुआ कि विश्व बैंक जैसी संस्था और इतना कंफर्टेबल जॉब और आप उसको रिजाइन कर रहे हो। हमने कहा देखिए, दिन के अंत में हमें एक ही चीज मिलती है और वो है मेरे कागजों पर दस्तखत, एक जगह से हो या 100 जगह हो, लेकिन निकलता वही था दस्तखत, डांट लगाओ, डपट लगाओ, ये करो, लोन लिया था, ये लोन क्यों नहीं, कि हमारा वो नेचर वो नहीं है, तो इस समय हमने उसको नियम किया। उस समय जो एक अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है जिसको ईरी कहते हैं, आई आर आर आई, तो आई आर

नहीं किया हुआ है। तो उदाहरण के तौर पर कंबोडिया में हमारी पहली पोस्टिंग हुई थी। कंबोडिया में लोग 3 दफा चावल खाते हैं, उड़ीसा की तरह ही, बंगाल की तरह ही। तो सुबह का नाश्ता चावल, दोपहर का भात चावल, शाम का भात भी चावल। और वहाँ चावल की बड़ी कमी थी, क्योंकि इसके पहले एक वहाँ बड़ी किलर गवर्नमेंट थी खमेर रूज की, उन्होंने देश को बर्बाद कर रखा था। जितने पढ़े लिखे लोग थे, करीब करीब 15 लाख लोगों को उन्होंने मार दिया था, पढ़े लिखे लोग। तो बड़ी पैथेटिक सिचुएशन थी। और उसी समय हमारी पोस्टिंग वहाँ हुई, तो काम करने का बहुत अच्छा मौका मिला, बहुत पसंद आया। और आपको बता दूं कि हम कंबोडिया में 5 साल थे, फिर हम बुला लिए गए हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में, वहाँ चले गए। और उसके बाद वहाँ भी हम रहे 5 साल, और हम उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ ज्वाइन कर लिए थे। 10 साल के बाद हमने ईरी भी छोड़ दिया था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में हम म्यांमार में पोस्टेड थे, यांगून उनकी जो कैपिटल है। यांगून में एक दिन हमारे सेटेलाइट फोन पर फोन आया कि आर यू डॉक्टर राम चौधरी। मैंने कहा हाँ हम ही हैं। बोले आप किस जमाने में ईरी में काम करते थे? हमने कहा हाँ करते थे। आप कंबोडिया में थे? उन्होंने कहा कि हमारी गवर्नमेंट आपको तलाश रही है। मैंने कहा भाई हमने क्या अपराध किया है, क्यों तलाश रही गवर्नमेंट? बोले नहीं, पहली खेप हमारी चावल की एक्सपोर्ट की जा रही है, और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे हुन सेन को जहाज का फीता काटना था जाने के लिए। तो उन्होंने पूछा, ताकि हमारे पास तो खुद खाने भर कोई चावल नहीं था, और हम एक्सपोर्ट कैसे कर रहे हैं? तो बोले एक यहाँ हिंदुस्तानी थे, उनका नाम था डॉक्टर राम चौधरी। मन भर आ रहा है उन क्षणों याद करके। तो बोले हमारी गवर्नमेंट, हम वहाँ गए और ये हमको खबर मिली, जो राजदूत हैं वहाँ कंबोडिया के म्यांमार में, फिर सारा टिकट का बंदोबस्त सब कुछ हुआ। वहाँ उनकी पूरी कैबिनेट बैठी, यूनाइटेड नेशंस की सारी ऑर्गेनाइजेशंस की और एम्बेसीज के लोग थे। और वहाँ हमको बड़े प्राउड मोमेंट थे कि प्राइम मिनिस्टर हुन सेन ने सोने का तमगा वो मेरे सीने पर जड़ा, और ये कहा कि थैंक यू वेरी मच, आपकी वैरायटीज, आपकी जो प्रजातियाँ हैं धान की विकसित की हुई, उसमें उन्होंने इतना पैदावार दिया है कि अब हम खुद खा रहे हैं, अब दूसरों को खिलाने के हैं। और वो प्रजातियां हमारा एक था, एक उद्देश्य कि हम क्या करें इस देश के लिए, कहाँ से क्या मंगावाएं। एक वैरायटी हमने उड़ीसा से भी मंगाई थी, एक हमने श्रीलंका से मंगाई थी, क्योंकि वहां की वो बेस्ट वैरायटी थी। जो उड़ीसा से वैरायटी थी उसका नाम हमने रखा शांति फियप, नंबर एक शांति फियप। एक खमेर भाषा का शब्द है, लेकिन हिंदी में भी लगभग वही है। शांति अब आ रही है, खमेर रूज गुरिल्ला खत्म हो रहे हैं कंबोडिया में। और जो श्रीलंका से वैरायटी आई थी उसको हमने शांति फियप 2 करके रखा, और ये मेजर प्रोडक्शन बूस्ट दिया कंबोडिया को। तो वो लोग अपने तो खाते थे, दूसरों को भी खिलाने में सक्षम हुए। तो ये एक बड़ा प्राउड मोमेंट था हमारे जीवन में, और ऐसा लगा कि हमने वर्ल्ड बैंक की आराम वाली नौकरी छोड़ के कोई गलती नहीं की है, क्योंकि यहाँ समाज का भला हो रहा। यही नहीं, कंबोडिया था, उनको खाने को भरपेट मिल रहा है, और अब वो दूसरे को भी खिलाने की स्थिति में हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि रही। तमगा गोल्ड का जो मिला वो तो अलग बात है, जो दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है अंकोर वाट, उसका एक नियम मिला, यहाँ मेरे ड्राइंग रूम में है वो सब मिला, वो तो अलग की बात थी। लेकिन एक संतोष मिला, एक गर्व के क्षण थे, वो एक बड़ी चीज हुई। फिर कहानी चलती रही, 10 साल हमारे जो है ईरी में गुजरे, और उसमें काम करने का बड़ा मौका मिला। फिर समझिए कि 40 देशों में तो रह के हमने काम किया, पूरा लैटिन अमेरिका, पूरा अफ्रीका, एशिया का ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ चावल होता हो और राम चौधरी नहीं गए हों। तो बड़ा अच्छा लगा। और अब ऐसा लगता है, यहाँ कोई अगर किसी देश की चर्चा करता है तो ऐसा लगता है मुझे जैसे दूसरे लोगों के लिए अपने वो शहर की बात कर रहे हैं। तो हम पूरी दुनिया से, विश्व से इतने वाकिफ हो गए हैं जैसे कोई अपने शहर से होता है। लेकिन जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ में आए, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको संक्षेप में FAO कहा जाता है, FAO ऑफ यूनाइटेड नेशंस, पहली पोस्टिंग हमारी उत्तरी कोरिया में हुई, प्योंगयांग में। और वहाँ का हम क्या बयान करें, हमको तो खैर बड़ा अच्छा लगा। जो मेरे व्यक्तिगत अनुभव हैं वो यही हैं कि डिसिप्लिन,

0: सारी जमीन किसी की नहीं है, तो जर जोरू जमीन, इसीलिए झगड़े होते हैं। तो ठीक है, जोरू तो आपकी है, लेकिन जर और जमीन ये दोनों सरकार की है। आप जिस खेत पर खेती कर रहे हो बस वही आपका है, जो पैदा होगा वो सरकार का है। तो एक ऐसे देश में 2 साल रहने का अनुभव मिला। अगला ट्रांसफर हमारा युगांडा में हुआ, और वहाँ पे वो साउथ सूडान के लोग एक तरह से वहाँ युद्ध चल रहे थे आपस में, साउथ सूडान में, साउथ और नॉर्थ के बीच में बड्डे के बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन वो ट्राइब ऐसे एक आपस में लड़ते थे। तो वो भाग भाग के सब युगांडा में, तो वहाँ फिर रिफ्यूजी के साथ काम करने का मौका मिला लगभग 3 साल। अच्छा लगा कि किसी तरह से आप किस भूखे लोगों को, जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो सब जो कुछ पोटली सर पर लेके भाग सके थे वही उतना था उनके पास, उनके लिए झोपड़ी बनाना, पानी का बंदोबस्त कराना, घर के आसपास उनको बताना कि भाई सब्जी उगा लो, ये उगा लो, जो जल्दी तैयार हो जाने वाले फल फूल हैं उनका बताना, उनको सिखाना पढ़ाना, अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद ही हमारी डिमांड कहीं और थी और हम वहाँ से ट्रांसफर हो गए इराक। तो वहाँ भी इसी तरह से हालात थे, जबकि इराक गरीब देश नहीं है, युगांडा जैसा नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ खाने पीने की कमी थी, क्योंकि लड़ाई में उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सब बर्बाद हो चुका था। 100 ट्रेनिंग हम वहाँ से ले आए इंडिया, और 1 साल की ट्रेनिंग हमको उसको बीज उत्पादन, बीज का प्रोसेसिंग, बीज का मार्केटिंग। तो 100 लोग यहाँ पे आए और हमने 100 मशीनें खरीदवाई अपने देश भारत से ही, और वहाँ ट्रेंड के बेसिस पर हमने इंस्टॉल करवाया इराक में।
1: भारत से आपने संसाधन तैयार करके इराक को दिया?
0: जी, तो यहाँ से हम खरीदवा के ले गए और वहाँ इंस्टॉल कराया, 100 लोगों को ट्रेनिंग दिलवाई 1 साल तक, और वो हमारे 100 राजदूत बन गए इंडिया के, जो इराक में जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया था वो सब हमें ठीक कराने का मौका मिला। वहाँ के बाद हमारी अगली पोस्टिंग और इंटरेस्टिंग देश में हुई, और सोचिए नॉर्थ कोरिया, युगांडा, अगला पोस्टिंग इराक के बाद हमारा अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में थोड़ा घूम वगैरह बहुत कम होता था, खाली वो जो यूनाइटेड नेशंस के ऑफिशियल्स रहते थे उसको कहते हैं ग्रीन विलेज। तो ग्रीन विलेज मनों को 3 लेयर की सिक्योरिटी मिली थी, बढ़िया बुलेट प्रूफ बम प्रूफ गाड़ियां थी सबके पास, और यून का सपोर्ट था। तो जबकि हमले तमाम हुए हम लोगों पे, लेकिन ये कि कोई यून ऑफिशियल वहाँ जाया नहीं गया। उसके बाद हमारी पोस्टिंग जो है वो म्यांमार में हुई, जिसको बर्मा कहते हैं।
1: आपकी कहानी सुनते हुए ऐसा लगता है कि चावल उगाना कोई आसान बात नहीं, इसमें जान का भी खतरा हो सकता है, क्योंकि आप ऐसे ऐसे जगहों पे आप गए हैं, या ऐसे ऐसे जगहों पे आपके कार्य ने, आपकी रुचि ने, या कहें आपके भाग्य ने आपको भेजा है, जहाँ पर रहना बहुत सहज नहीं है। चाहे आपने उत्तर कोरिया की बात कही, या आपने इराक की बात कही, या अफगानिस्तान की बात कही, या सूडान की भी बात कही, इनमें से कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं जो बहुत शांति में, जहाँ के राष्ट्र के लोग रह रहे थे उस समय, और आज भी थोड़ा हलचल है। लेकिन मुझे यहाँ पर जानने का ये प्रश्न मन में उठता है कि कभी आपको इस चीज का ख्याल नहीं आया कि मैं कुछ और भी तो कर सकता हूँ, क्यों मैं अपनी जान या अपने परिवार की जान जोखिम में डाल रहा हूँ? क्या चावल के प्रति या इस कार्य के प्रति आपका रुझान इतना ज्यादा था कि आप अपनी जान की भी परवाह नहीं करते थे? क्योंकि जनरली पारिवारिक व्यक्ति जो है वो परिवार का भी सोचता है, तो आपको कभी ख्याल नहीं आया?
0: देखिए, ये जो खासतौर से जो यूनाइटेड नेशंस की हमारी पोस्टिंग थी, उत्तरी कोरिया, युगांडा, इराक, अफगानिस्तान या म्यांमार, कभी परिवार हमारे साथ नहीं रहा, क्योंकि सब परिवार हमेशा भारत में रहा, गोरखपुर जो हमारा होम टाउन है यहीं पर था। तो इस तरह से परिवार से तो निश्चिंतता थी, हाँ खुद थे, लेकिन बड़ा मजा आता था इस बात पर कि आप कुछ समाज के लिए, कुछ दुनिया के लिए कर रहे हो, आप कुछ उन लोगों के लिए कर रहे हो जिनको वाकई आपकी जरूरत है। किसी हम शांत, मान लीजिए मेरी पोस्टिंग अमेरिका में हो जाती तो मेरे काम का ये महत्व नहीं होता, क्योंकि जिनको जरूरत है अगर उनके लिए कुछ काम करें तो बड़ा एक आत्मिक संतोष जैसा मिलता है। और मैं बता दूं कंबोडिया का कि मेरी गाड़ी पर भी M17 और रॉकेट से भी हमले हो चुके हैं, लेकिन ये भगवान बुद्ध का प्रसाद कहिए, ईश्वर का कहिए, वो हमें कुछ नहीं बिगड़ा। हमारा घर ब्लास्ट कर दिया गया था जिसमें हम रहते थे, क्योंकि अकेले रहते थे, ऑफिस ब्लास्ट हो चुका है तो, लेकिन कभी कभी हिले नहीं, अंदर जो होता है ना वो अंदर का हिला नहीं, क्योंकि ध्येय कुछ और था कि हमको इन लोगों के लिए कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। तो वो जो उद्देश्य था, अब आप अगर मेरे निवास में कभी आएंगे तो देखिए मेरा पूरा घर तंबुओं से भरा पड़ा है, इन देशों के यहाँ 45 से ज्यादा बड़े बड़े अवार्ड हमको मिले हुए हैं, लेकिन उसके लिए मैं कभी नहीं काम किया। हमने तो काम किया उन लोगों के लिए जिनको हमारी जरूरत थी, उसमें लोगों को पसंद आया। अब हम रिटायरमेंट शब्द में विश्वास नहीं करते, ये भी बता दूं, 2006 में दिसंबर में हम रिटायर हुए, या हम तो बोलते हैं हम आजाद हुए। उसके बाद जब आजादी के दौरान हम जब वापस लौटे करीब 35 साल बाद अपने देश, तो हमने यहाँ समस्या तलाशनी शुरू की, समाधान नहीं, समाधान तो हम खुद ही है, समस्या तलाशनी शुरू की। उन्होंने कहा भगवान बुद्ध का प्रसाद दे के यहाँ चावल होता था, है नहीं होता था, उसका नाम है काला नमक। तो काला नमक चावल
1: जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत ही रोचक कहानी है, लेकिन इस कहानी में बढ़ने से पहले, क्योंकि मैं श्रोताओं को भी चाहता हूँ कि आप बंधे रहे और सुनने के लिए इस कहानी को आप हमारे बीच में बंधे रहे, लेकिन मैं पहले ये जानना चाहूंगा कि कौन सी चीजें जो आपके जीवन में आप खुद के लिए या अपने कार्य के लिए एज अ फाउंडेशन, एज अ आधार मान करके चलते हैं।
0: देखिए, एक तो परिवार हमारा कोई चोर चुक्कों का नहीं था, किसान परिवार, सीधे साधे लोग, और उसी माहौल में हम पले। और खास तौर से मैं तो मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन पर, मेरी सोच पर, मेरी विचारधारा पर सबसे ज्यादा प्रभाव मेरी माता जी का पड़ा।
1: बिल्कुल, और हम चाहेंगे कि आप उनका नाम भी लें ताकि हमें भी पता चले भारत कैसे सुपुत्र की पालना करने वाली, जन्म देने वाली माँ कौन है।
0: जी, तो हमारी माता का नाम था श्री ठकुरा देवी। तो वो स्कूल की पढ़ाई उनकी नहीं थी, क्योंकि मेरे नाना जी वो खुद पढ़े लिखे थे, उन्होंने घर में इनको शिक्षा दी थी, तो कम से कम धार्मिक पुस्तकें गीता रामायण वो पढ़ लेती थी बड़े आराम से, और उनका जीवन भी इसी में प्रभावित था। मैं उनकी बात सुनाऊं, उस घर में मेरी माँ इकलौती अपने उम्र की पढ़ी लिखी थी, औरतों को डांटती थी साफ सफाई के बारे में कि सफाई करो, साफ कपड़े पहनो, कि क्या बदबूदार साड़ी पहन रखी है, तो इसलिए वो डांटती भी थी सबको। और वो पहली व्यक्ति थी जिन्होंने हमारे गांव में बकरी पालन शुरू कराया था। बोली कि आपके घर में तमाम किचन में चाहे घर में खाना बचता है, उसको खिला के एक बकरी तो बड़े आराम से पल सकती है, उसके दो बच्चे भी पल सकते हैं, और वो जो पैसा मिलेगा वो आपका पैसा है, आपके पति उसको आपसे छीनने नहीं आएंगे। आप विश्वास मानिए, मेरे गांव के आधा से ज्यादा घरों में लोगों ने बकरियां पाली, चलता रहा। एक उस समय हमारे जमाने में बड़ा अच्छा प्रयोग चलता था कि आप गांधी आसन को रोई ले आइए और चरखा चला के उसका सूत बनाइए, सूत अगर आपने आधा किलो बनाया है ले जाइए तो आपको एक किलो रुई मिल जाती थी। इस तरह से एक किलो रुई मिली, फिर आप एक किलो सूत उनको दीजिए, आपको डेढ़ किलो, इस तरह से सूत बढ़ा। घर की चादरें, औरतों के कपड़े, आदमी कपड़े भी वो आने लग गया। धीरे धीरे लोगों का, अरे ये तो बिना खरीदे हुए ये घर के सूत काटने से आ रहा है। घर के किनारे वो कहती थी सब्जियां लगाइए, गर्मी के दिनों में कहीं कोई सब्जी उन दिनों बाजार में नहीं मिलती थी, तो कहती थी दो चार घड़ा पानी डाल के वहीं पर अपना भिंडी या कोई साग वाग लगा लो, तंदुरुस्ती सबकी ठीक रहेगी, आपकी तंदुरुस्ती ठीक रहेगी, आपका मन लगा रहेगा।
1: मैं तो हैरान हो रहा हूँ राम जी ये सुनकर कि 1930 या 40 के समय में जब महिलाएं बहुत ज्यादा, मैं समझता हूँ, समाज में परिवर्तन लाने का किरदार नहीं निभा पा रही थी, ऐसे समय में विद्यालय भी ना जाकर के केवल गृह शिक्षा से, केवल माता पिता से शिक्षा प्राप्त एक महिला इतना दूरदर्शी हो सकती है, इतना ज्यादा भविष्य का सोच सकती है, इतनी मॉडर्न ख्यालातों की हो सकती है, ये बहुत ही दुर्लभ है। बेसिकली आपकी मम्मी का जो प्रयोजन था माताओं को संगठित करके उनको स्वावलंबी बनाने का प्रयोजन था, ये आपकी माता जी में आया, और इसकी वजह से आपने भी जो मुझे लिंक दिखता है कि आप भी अलग अलग देशों में जा करके उन देशों को स्वावलंबी बनाने का जो आपका एक उद्देश्य था वो झलकता है। आपके घर के बाजू से गंगा बह रही है, पहले आप वहां तो स्नान कर लीजिए, बाद में आप किसी दूर देश में जाए स्नान करने की बात करने के लिए। आपके घर में जो आपके माता पिता हैं या जो बुजुर्ग हैं, उनके पास एक धरोहर है, एक ज्ञान का, एक विजडम का, एक अनुभव का धरोहर है। अगर उस धरोहर को आपने धारण कर लिया, आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा।
0: अब मैं एक पुस्तक का थोड़ा कवर आपको दिखाना चाह रहा हूँ,
1: स्टोरी ऑफ काला नमक राइस। बिल्कुल, हम आने भी वाले थे इसी कहानी पर, क्योंकि श्रोताओं को हमने पकड़ रखा था कि अभी आप जाइएगा नहीं, क्योंकि एक और कहानी बाकी है। तो ये काला नमक की कहानी के बारे में कुछ बताइए।
0: ये भगवान बुद्ध की देन है, और कहा जाता है कि उन्होंने प्रसाद के रूप में, ज्ञान प्राप्त करने के बाद प्रसाद के रूप में ये पुस्तक निकाली। एक मैंने अभी कुछ महीना पहले ये भी छप के आई है, ये हिंदी में है, काला नमक धान अतीत से वर्तमान। ये भी इसमें भगवान बुद्ध को रखा हुआ है। तो ये चीजें, मैं अपनी बड़ाई नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूँ कि हम जब लौटे संयुक्त राष्ट्र संघ से आजाद होकर के, तो पूछ रहे थे लोगों से क्या समस्या, तो लोग यही कहते थे एक काला नमक धान होता था, है नहीं, होता था मतलब भूत काल में चला गया, ये खत्म हो जा रहा है। मैंने कहा मैं आ गया हूँ, ये चैलेंज, मैं आ गया हूँ और अब ये खत्म नहीं होने पाएगा, कतई नहीं करने हो पाएगा। अब पिछले गत 20 वर्षों में हम इसके ऊपर जुट गए दिन रात, मेरी अपनी आदत है, जहां जुटते हैं वहां एक जुनून के रूप में, जुनून कि रात दिन उसी के सपने देखना, उसी में डूबना उतराना। तो अब ये जो समाप्त हो रहा था वो हम दुनिया को खिला रहे हैं। 80,000 हेक्टेयर में इसकी खेती पहुंच चुकी है, किसानों की आमदनी सरकार कहती थी हम दुगुनी कर रहे हैं, मैं कहता हूं मैं तिगुनी करता हूं, क्योंकि इतनी ज्यादा ये महंगा है काला नमक, और ये विश्व का हमने डिक्लेयर किया है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ धान है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कहा मेरे से एक किसी एग्जीबिशन के दौरान कि आप डॉक्टर चौधरी क्यों कहते हैं कि आप ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ धान है। मैंने कहा महाराज जी ऐसा है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये लंबा होता था 2.5 मीटर का, और मैंने इसको छोटा कर दिया, 1 मीटर से कम कर दिया, उससे इसकी पैदावार दुगुनी हो गई। बोले बाकी जो आप कहते हो कि इसमें 2 गुना प्रोटीन है, 3 गुना आयरन है, 4 गुना इसमें जिंक है, विटामिन ए का पहला इकलौता धान है, उसके अलावा शुगर फ्री है, आज लोग कितने डायबिटिक हो रहे हैं कितने, तो ये सब क्या हुआ। हमने कहा ये कुछ नहीं, भगवान बुद्ध का प्रसाद है। तो अपना
1: लेकिन मुझे ये जानने का यहाँ बड़ा मन कर रहा है कि इसका नाम काला नमक क्यों है।
0: इसलिए इसका भूसी का रंग काला होता है, और ये नमकीन जो साल्टी सॉइल होती है, यहाँ तक कि समंदर के किनारे जहाँ समंदर का पानी भी आ जाता है खेतों में, वहां भी ये हो सकती है। तो बुजुर्गों ने इसका नाम इसीलिए काला नमक रखा, काला मैंने भूसी, इसका हस्क का कलर काला है, नमकीन जमीन भी हो जाता है, ये 9.5 pH तक बड़े आराम से हो जाता है काला नमक।
1: तो ये मतलब कमाल की बात है कि हमारे बुजुर्गों ने नाम भी ऐसा चुन करके रखा जिसमें पूरा भाव है। काला उसका भूसे का रंग है, नमकीन पानी में भी उग सकता है इसलिए वो काला नमक है। लेकिन क्या ये चावल का टेस्ट भी नमकीन होता है?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। चावल का टेस्ट तो ऐसा, हम लोग 365 दिन हमारे परिवार में हम लोग काला नमक ही खाते हैं, कारण एक तो शुगर फ्री है, और बाकी गुण उन्होंने बताया, बासमती का 2 गुना प्रोटीन है इसमें, 11% प्रोटीन है, 3 गुना आयरन है, 4 गुना इसमें जिंक है।
1: लेकिन ये बातें तो साधारण व्यक्ति जानते नहीं, जैसे नहीं मेरे लिए जब तक मैंने आपका बायो नहीं पढ़ा था तो मुझे काला नमक धान के बारे में पता नहीं था। एक साधारण व्यक्ति तक ये बातें क्यों नहीं पहुंचती, मेरा पहला सवाल ये है। और दूसरा, अगर पहुंच भी जाए ये खबर उन तक कि भाई ऐसा एक चावल है जो आपके सेहत के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा है, तो क्या वो उस चीज को प्रोक्योर कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी चीजों का दाम अधिकतर समय ज्यादा होता है।
0: अब उसमें हम लोग भी थोड़ा कंट्रोल करते हैं अपनी तरफ से, हमारे पास कई हजार किसान हैं जो एज ए कॉन्ट्रैक्ट ग्रोअर काम करते हैं, हम उनका प्रोक्योर करवाते हैं धान, क्योंकि यहाँ मिक्सिंग भी हो जाती है, उसी किस्म का चावल वाला दूसरा सस्ता वाला भी लोग मिला देते हैं, हमारे वहाँ से प्योर जाता है, और ये जो एक्सपोर्ट होता है वो भी कंट्रोल्ड है, जो लोकल कंजम्पशन में जाता है तो महंगा तो है थोड़ा, लेकिन कुछ लोगों ने कोशिश की, हमारा दाम जो है 120 रुपया किलो का है काला नमक का है, कुछ लोगों ने 2,000 रुपया किलो तक इसको बेचना शुरू किया है, मुझे पसंद नहीं आया, हमने कहा ना ये इतना ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। आप पैकिंग मटेरियल का दाम क्यों कंज्यूमर से ले रहे हो? सिंपल पैकिंग करिए, पैसा बचाइए, उसमें कंज्यूमर का भी फायदा हो जाए। अब कुछ लोगों ने लकड़ी के बक्से में मखमल वेलवेट बिछा के चावल रखना, ऊपर से रखना और बढ़िया उसका कवर बनाना। हमने कहा वो क्या फायदा, आधा किलो चावल तो खा लेगा एक दिन में, वो लकड़ी कहाँ से खाएगा? तो
1: लेकिन आज मान लीजिए राम जी, अगर मान लीजिए हमारे श्रोताओं को काला नमक ध्यान के बारे में पता चला और वो चाहेंगे कि वो अपने परिवार के प्लेट पे चावल को लाए, चलो रोज ना खा सके लेकिन कभी कभार अगर खाने का मन करे, तो क्या कोई जगह है जहाँ से इस चावल को खरीदा जा सकता है? और कैसे पहचाने कि भाई ये ओरिजिनल काला नमक चावल है और ना कि कोई डुप्लीकेट?
0: ये ब्रांडिंग की बात है, ये ब्रांडिंग की बात है। उसके बाद कुछ तो खैर देखिए हमें भी अपना लगना पड़ा कि हम इतना ज्यादा प्रोड्यूस करके और शुद्ध काला नमक मुहैया करवा रहे हैं लोगों को, एक्सपोर्ट भी करवा रहे हैं। अब पूरा साउथ ईस्ट एशिया के लिए हमने सिंगापुर चुना है, अभी हमने 550 क्विंटल वहां भेजा, वहां से फिर ये कंबोडिया, थाईलैंड, दूसरे देशों में जाता है जो बुद्धिस्ट देश हैं, और उस पर वो काला नमक नहीं लिखते, वो लिखते हैं बुद्धा होम राइस, कि भगवान बुद्ध के, क्योंकि प्रसाद है उन्हीं का दिया हुआ है। और हमारे वहाँ जो भी आते हैं बड़े, अभी राष्ट्रपति जी आई थी यहाँ गोरखपुर में, प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी आए थे, उनको हमने खिलाया। ये तस्वीर पता नहीं नजर आएगा कि नहीं, मैं छुप जा रहा हूँ इसके पीछे।
1: हाँ दिख रहा है बिल्कुल, महामहिम राष्ट्रपति जी आपको पद्मश्री सम्मान दे रहे हैं।
0: तो इसी नाते तो अब ये सब पब्लिसिटी है ना, तो आपको थोड़ा पब्लिसाइज भी करना पड़ेगा, तब इसका क्षेत्रफल बढ़ा 40 गुना। आपने सुना नहीं होगा 5 साल में किसी फसल का रकबा 40 गुना बढ़ गया, जो 2000 तक सिमट गया था पिछले साल 80,000, इस साल हमें पूरा उम्मीद है कि 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा में काला नमक की खेती होगी। तो पब्लिसिटी,
1: लेकिन जब मान लीजिए मैं इसे खरीदने जाऊं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये ओरिजिनल काला नमक है और कोई मुझे बुद्धू नहीं बना रहा है?
0: हाँ, ब्रांडिंग है, गवर्नमेंट आ रही है ब्रांडिंग पर, उस पे एक तो PKY योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, इसमें कोई केमिकल डालना मना है, तो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है।
1: ये मेरा अगला सवाल भी था कि क्या ये ऑर्गेनिक है या क्या ये प्राकृतिक तरीके से उगाया जाता है?
0: जी, हम लोग जितना भी उगा रहे हैं कई हजार किसानों से, वो सारा का सारा ऑर्गेनिक है, प्राकृतिक, और हम लोग उसके ऊपर लोगो देते हैं और वो गवर्नमेंट का लोगो होता है PKY, दो ब्रांड है,
1: कृषि
0: PKY ग्रीन एंड PKY ऑर्गेनिक, और कोई अगर फ्रॉड करता पकड़ा जाएगा तो वो दंड का भागी होगा। तो वो जो है
1: राम जी, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा और हमारे श्रोताओं के लिए मैं रिपीट करना चाहूंगा ताकि वो ध्यान से इस चीज को गांठ बांध ले, कि अगर मान लीजिए आपको काला नमक चावल लेना है और आप खरीदने जा रहे हैं, कहीं से आप खरीदते हैं, तो जैसे राम जी ने हमें बताया कि उसमें PKIB या PK ग्रीन,
0: PKY परंपरागत कृषि विकास योजना है, गवर्नमेंट योजना है
1: जी, परंपरागत कृषि विकास योजना PKY, ये लोगो देखना जरूर ध्यान से देखिएगा या गवर्नमेंट का लोगो जरूर ध्यान से देखिएगा, तभी वो ओरिजिनल काला नमक चावल है और जैसे कि राम जी ने बताया वो प्राकृतिक है, कंप्लीटली सेफ है, केमिकल से फ्री है
0: चावल का।
1: जी तो राम जी, मुझे ये चीज जानना था, जैसे आजकल जो विज्ञान है वो जलवायु परिवर्तन की वजह से हमारे सामने कई सारे ऐसे तथ्य लेकर के आ रहे हैं जो कि नए नहीं है, पारंपरिक है, लेकिन हमारे किसान या हमारा समाज उसको भूल गया था क्योंकि उन्हें उनको पैदावार ज्यादा करनी थी, वो ग्रीन रेवोल्यूशन ये वो बहुत सारी बातों में इतना फंस गए कि वो ये भूल गए कि भूमि की खुद की एक परंपरा है, उसका खुद का एक रहस्यमय तरीका है खुद को संजो करके पैदावार बनाए रखने का, जिसके लिए ही लोग कहते हैं कि मोनोकल्चर जो है या एक ही प्रकार की कृषि जो है वो सही नहीं है। कृषि में भी वो कहते हैं कि बार बार रोटेशन होना चाहिए, क्रॉप रोटेशन होना चाहिए, जैसे आज आपने चावल उगाया, अगली चावल और इस चावल के बीच में आप कुछ और उगाए। तो अगर कोई किसान आज सुन रहा है और मान लीजिए वो क्रॉप रोटेशन करना चाहता है, तो कौन से क्रॉप्स उनको उगाने चाहिए, क्या उसमें करना चाहिए जिससे वो क्रॉप रोटेशन भी कर ले और अगर उसको मन करे कि भाई मैं चावल की खेती में काला नमक चावल या कोई और दूसरे चावल मैं चाहूंगा आप बताएं जिनको उगा करके उनका लाभ भी होगा लेकिन माँ प्रकृति का हानि ना हो, ऐसा कुछ आप उपाय बता सकते हैं?
0: जी, अब जो मैं आपको नाम ले रहा था परंपरागत कृषि विकास योजना, ये परंपरागत है, पुराने जमाने में हमारे पुरखे किया करते थे, गवर्नमेंट इसको वापस ला रही है कि बिना केमिकल डाले हुए किस तरह से आप अच्छी फसल उगा सकते हो जो आपको बीमारियों से बचाएगा, कैंसर से बचाएगा, और उसका एक लोगो बनाया है गवर्नमेंट ने,
1: PGS इंडिया ऑर्गेनिक,
0: तो ये गवर्नमेंट की संस्था है और हम लोग उसके एक तरह से रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं, पूरा ईस्टर्न इंडिया हम देखते हैं, तो वो लोग ये लोगो देख के खरीद सकते हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं है, तो ये आपको दिखाएगा। और दूसरा, अगर किसी को ज्यादा जरूरत है 9450966091
1: जी,
0: तो यहाँ से आपको शुद्ध मिल जाएगा। और हमारे साथ एक दो नहीं, कई हजार किसान जो है वो जुड़े हुए हैं जिन जो पैदा करते हैं, और हम उनका स्थानीय लेवल पर बिकवा रहे हैं, और इसके अलावा एक्सपोर्ट भी हो रहा है। पहली दफा भी हमने 10 क्विंटल भेजा है अमेरिका, पहली दफा। अगला टारगेट हमारा इंग्लैंड का है, तो किस जमाने में इंग्लैंड जाता था यहाँ से चाव, बीच में बंद हो गया, तो ये जाएगा, और हम ये कहते हैं कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चावल है, ये छा जाएगा,
1: ये छा जाएगा। आप कहते हैं तो हमको मानना ही पड़ेगा। लेकिन जो मैं जानना चाहता था कि किसानों के, चलिए कई किसान हैं जो शायद इस चावल को उगाने में बाद में सक्षम हो पाएंगे या होना चाहते होंगे, लेकिन ये जो क्रॉप रोटेशन करना है, आप क्या राय देना चाहेंगे किसानों को कि अपने भूमि की उर्वरक शक्ति को कैसे बना करके रखें, या अपने भूमि की सेहत पे क्या क्या ध्यान देने जैसे बातें उनको ध्यान में रखनी चाहिए?
0: पहली बात तो मेरा ख्याल आपने इशारा कर ही दिया उनको क्या करना है। पहली बात कि एक फसल अगर धान की है तो दूसरी फसल कोई दलहनी हो। जो परंपरागत कृषि विकास योजना भारत सरकार की योजना है जिसको हम लोग यहाँ लागू करवा रहे हैं, उस योजना में यही कहा जाता है कि अगर आपको यूरिया डाई या केमिकल नहीं डालने हैं तो आप ग्रीन मैन्योरिंग करिए। ढेचा, ये भी दो दाल वाली फसल है, मूंग है, सनई है, तो ये बीच में डालते हैं, और अगली फसल आप कोई दलहनी करें। और अगली बात है कि भूमि को भी सुधारना है, पर्यावरण को सुधारना है, तो अगर यूरिया डालना आप बंद करेंगे मिट्टी अपने आप सुधरेगी। अब आजकल हम तो गांव में जाते हैं, बड़ी तकलीफ होती है, मैं अपने गांव में भी जाता हूं तो पानी शहर से जाता है। मैंने कहा भाई हम जब बचपन में थे तो हम तो तालाब का पानी पी लेते थे अक्टूबर महीने के बाद, जब थोड़ा साफ होता था पानी, तो अगर भैंस या गाय चरा रहे हैं दूर गांव से, दूर कहां जाएगा कोई गांव तक, तालाब का पानी पी लेते थे। और आज आप अपने कुएं का पानी नहीं पी पा रहे हैं, हैंडपंप का पानी पीते हैं। आप किसी गांव में जाके देख लीजिए, अभी जो है शहर का छना हुआ प्लास्टिक में वो पानी वहां पीने के लिए जा रहा है। मैंने कहा पानी किसने जहर कर दिया, क्या चाइना ने आपके ऊपर जहर फेंक दिया? बोले नहीं साबित, तो हम लोगों की कमजोरी है। मैंने कहा उससे उभरिए, आप परंपरागत कृषि विकास योजना अपनाइए, कोई भी जो है इस किस्म की जहर मत डालिए। आप कहते हो दवाई, कीड़ा मारने की दवाई, अगर कीड़ा मारने का दवाई होता, मेडिसिन होता, तो कीड़ा इतना मोटा हो जाता, कीड़ा मरता है 2% जो आपको पॉइजन डालने से कीड़ा मरता है, 98% जमीन में जा रहा है या आपके पास खुद भोजन में रिसाइकिल होके आ रहा है, तो उसको आपको बदलना होगा। अपनी जमीन सुधारनी होगी, वातावरण सुधारना होगा, जलाशय सुधारने होंगे। ये यूरिया वगैरह बह बह के तालाबों में जाता है, वहाँ काई होती है, एल्गी और नाइट्राइट वहाँ इतना हो रहा है कि लोग अगर कुएं का पानी पी लें तो उनको डायरिया हो जाएगा इतना। तो ये जो वातावरण इतना प्रदूषित है, इतना प्रदूषित हो गया है, इसको सुधारने के लिए हमको जैविक खेती या प्राकृतिक खेती की ओर आना पड़ेगा। इससे इतने फायदे हैं मैं गिना नहीं सकता। पहली बात है कि मनुष्य का स्वास्थ्य सुधरेगा, जानवरों का स्वास्थ्य सुधरेगा। अब देखिए कुछ लोग यहाँ अब दूध पैदा कर रहे हैं और वो जैविक दूध उसको कहते हैं, दूने दाम पर। आम दूध अगर 50 रुपया लीटर बिक रहा है तो जैविक दूध 100 रुपया लीटर बिक रहा, और उनका वो भी बिकने बगैर नहीं रह जा रहा। तो लोग कॉन्शियस हो रहे हैं धीरे धीरे जैविक का। तो एक तो शुद्ध आपको भोजन मिलेगा, शुद्ध वातावरण मिलेगा, शुद्ध हवा मिलेगी। फिर हम तो वो दिन देखना चाहते हैं जब हम फिर अपने गांव के कुएं और तालाब का पानी पीने लग जाएं, वो दिन
1: इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा जब आपके जैसे कई लोग जिन्होंने अनुभव किया है गांव का पानी भी पीने का, वो जरूर पी सके। लेकिन आज जो बातें आपने हमें बताई वो इतनी जरूरी बातें हैं और साथ में अंदर बहुत आशा भी जगाती है। जैसे कई बार ये सवाल उठता है कि ये जो प्राकृतिक कृषि है या जैविक कृषि है, इतना करके कहाँ हम पूरे देश का पेट भर सकते हैं? ये थोड़ा बहुत करना ठीक है, लेकिन इससे तो उपज इतना नहीं होगा कि पूरे भारत का या पूरे विश्व का हम पेट भर सकें। यहाँ तक कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन होते हैं वहां पर भी लोग ऐसे ही सवाल पूछते हैं, लेकिन जब आपके जैसे वैज्ञानिक या आपके जैसे शोधकर्ता जब सामने आते हैं और बताते हैं कि भाई हमने करके दिखाया है, हमारे पास एक जीता जागता उदाहरण है, तो लोगों की मान्यता या जो भ्रम है या भ्रांति है वो टूटती है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है राम जी, शायद आप भी मेरी बात से सहमत होंगे, कि साधारण व्यक्ति तक और जो आपका वर्ग है वैज्ञानिकों का या शोधकर्ताओं का वर्ग है, इनके बीच में बहुत बड़ी दूरी है। वो दूरी को कैसे कम किया जाए कि आपके पास समाधान है, वो समाधान साधारण किसान या साधारण व्यक्ति तक नहीं पहुंच रहा है। उन तक तो केवल दुश्चिंता पहुंच रही है, बुरी खबरें पहुंच रही है और ऐसी भ्रांतियां पहुंच रही कि भाई हमारे पास समाधान है ही नहीं, हम उगा ही नहीं सकते इतना, खिला ही नहीं सकते इतना, रासायनिक के बगैर काम चलेगा नहीं। तो इस दूरी को कैसे कम करें?
0: एक कहावत है अंग्रेजी की, सीइंग इज बिलीविंग। तो जो आदमी देखता है उस पर विश्वास करेगा, जो सुनता है उस पर विश्वास करेगा। अभी तक ये जो जहर बनाने वाली कंपनियां है, उनको एग्रो केमिकल्स को हम जहर ही कहते हैं, जहर बनाने वाली कंपनियां हैं, इन्होंने इतना दुष्प्रचार कर रखा है कि लोगों का दिल कहता अरे अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा प्रभाव। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने एकड़ एकड़ डिमॉन्स्ट्रेशन किया है फार्मर्स फील्ड पर और इनको दिखाया है कि किस तरह से जैविक खेती करने से हमारी पैदावार कम नहीं होगी, बल्कि कुछ ऐसे भी हमारे फार्मूले हैं, प्रोटोकॉल हमने खुद बनाया हुआ है कि आपकी पैदावार बढ़ेगी। ये जो काला नमक 2000 से 80,000 में ऐसे थोड़ा पहुंचा है, किसानों को दिखाया गया कि वो भय निकाल दो दिल से, भय निकाल दो दिल से कि तुम्हारी पैदावार गिरेगी, ऐसे गिरेगी जैसे आसमान से पत्थर गिरता है ये इन कंपनियों का, क्योंकि उनकी दुकान बंद हो जाएगी। जैविक खेती अगर आप करोगे तो आपकी पैदावार गिरेगी, ये डर निकालना है हम लोगों का काम। सीइंग इज बिलीविंग, प्रदर्शन करवा करवा के उसके बाद हमेशा 10% 20% जैविक का जो उत्पाद का दाम है वो हम उसको बढ़वा के बेचते हैं और बिना बिका नहीं रह जाता किसी का, सब बिक रहे हैं, आधे बिक रहे हैं। तो एक तो ये जो दूरी है इसको सूचना तंत्र के माध्यम से, इसको जो दुष्प्रचार है इसको हटाना होगा।
1: उम्दा तरीका है लोगों तक ये संदेश पहुंचाने का, क्योंकि मैं समझता हूँ ऐसे ही वार्तालाप से जैसे मुझे बहुत कुछ जानने को सीखने को मिला, हमारे श्रोताओं को जानने सीखने को मिला, वो किसी और को बताएंगे, मैं किसी और को बताऊंगा, इस तरीके से वर्ड ऑफ माउथ से भी ये बातें क्लियर होती हैं। एक और जगह जो मुझे ऐसा लगता है ये चीज क्लैरिफाई किया जा सकता है वो है एग्री यूनिवर्सिटीज में या एग्रीकल्चरल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को, या हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें ये बदलाव ला करके, जो शिक्षा प्रणाली थोड़ा विदेशी प्रभाव में है, जो हमारे स्वावलंबन की बात आती है, हमारे खुद की संस्कृति की बात आती है, उसकी कमी होने की वजह से मैं समझता हूँ कितने ही ऐसे स्टूडेंट्स होंगे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में जो काला नमक चावल के बारे में जानते भी नहीं होंगे, या जानते नहीं थे जब तक आपने उस चीज को लाया नहीं था सामने, या काला नमक जैसे चावल की प्रजाति की तरह से कितनी ही असंख्य प्रजातियां होंगी खाने पीने के, भोजन के, अलग अलग चीजों की, फल सब्जियां आदि की, जिनका आज हमारे जो वर्तमान पीढ़ी है उनमें से वो चीजें निकल गए क्योंकि वो शिक्षा प्रणाली में भी नहीं है। तो शिक्षा प्रणाली में अगर इसको लाना है तो, और युवाओं को अगर इसके प्रति जागरूक करना है, तो आपकी क्या राय होगी, आप कौन से कदम उठाएंगे?
0: आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक तो जो भ्रम है ये लोगों को किस माहौल में जी रहे हैं वो उनको देखना चाहिए। अपने अपने देश में होता है भारत में कि पंजाब सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव है, वहाँ अगर वैज्ञानिक लोग किसान को कहता कि 100 किलो यूरिया डालिए इस खेत में, वो 200-300 किलो डालता है, उसका परिणाम बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है पॉइजन ऑन द प्लेट, आपकी थाली में जहर, आमिर खान की फिल्म में है। तो अब लोग धीरे धीरे कॉन्शियस हो रहे हैं लेकिन जैसा आपने कहा कि विश्वविद्यालय दूसरे और जो शिक्षा के तंत्र हैं उनमें भी जैविक खेती, चाहे वो वातावरण को प्रभावित करने के लिए हो और चाहे अपने हेल्थ को प्रभावित करने के लिए हो, वो उसका शिक्षा होना बहुत जरूरी है। और जैसा मैंने कहा कि मेरे बचपन में मैं तालाब का पानी पीता था, कुएं का पानी पीता था, वो दिन, वो सपना है, वो दिन आएगा।
1: जब आपके जैसे राष्ट्रभक्त जब तक हैं, तब तक हमारी भी आशा है कि ऐसा दिन जरूर आएगा। मुझे यहाँ एक चीज जानने की इच्छा होती है कि वास्तव में आपने जो भी कार्य किया है उसके लिए कोई भी सम्मान वो छोटा ही है, चाहे वो पद्मश्री सम्मान ही क्यों ना हो। लेकिन जैसे आपने कहा कि भूखे देश में एक आशा की नई किरण लाना, भूखे लोगों के मुस्कान का एक कारण बन पाना, ये आपके लिए बहुत बड़ा एक पुरस्कार है। ये वास्तव में सही में बहुत बड़ा पुरस्कार है, दुआओं के आप पात्र हैं। लेकिन जब आप भारत के अलग अलग प्रांतों में जाते हैं, अगर कोई एक चीज आपने गौर की हो आपके हिसाब से जो पूरे भारत को एक बनाती है, समान बनाती है, तो वो कौन सी एक चीज है?
0: देखिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको बांधती हैं, वो है हमारी सोच। हम प्रकृति की पूजा करते हैं। कौन ऐसा धर्म है दुनिया का जिसमें पेड़ की पूजा होती है? कौन ऐसा धर्म है जिसमें नदी की पूजा होती है? कौन ऐसी है जिसमें की पृथ्वी की पूजा होती है? कौन ऐसा धर्म है बताइए? तो हम लोगों का जो जुड़ाव है वो अलग है। हम तो बता रहे हैं ना कि 40 देशों में फिर रह के काम किए हैं, लेकिन ऐसा देश आपको नहीं मिलेगा जहाँ प्रकृति से इतना जुड़ाव है। बरगद का पेड़ कटे नहीं, उसके चारों ओर हम धागा बांधते हैं, चाहे वो शनिदेव के नाम पे हो या कैसे भी हो। हम सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, हम चंद्रमा की पूजा करते हैं, हम सितारों की पूजा करते हैं। तो प्रकृति की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसकी पूजा करते हैं। और ये जो है हमारे सारे प्रांतों में है, ठीक है, खाना पीना सबका अलग है और अलग है, लेकिन ये चीजें बांधती हैं हमको कि हमारी जो सोच है, हमारा जो प्रकृति के प्रति लगाव है, वो हमको इकट्ठा करती है। आप किसी प्रांत में जाओ तो हर जगह आपको प्रकृति पूजा ही होती है। हम किसी का नुकसान करके अपना फायदा नहीं करना चाहते, ऐसा ऐसी बात नहीं है। नहीं तो 40 देशों में रहने के बाद हम तो कहीं बस सकते थे, अपने देश में क्यों लौट के आए? इसीलिए आए कि
1: मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग थोड़े समय के लिए भी, अगर मान लीजिए एक हफ्ते के लिए भी किसी देश में जाते हैं, तो वो वापस आकर के कई बरसों तक उस देश का गुणगान गाते हैं। लेकिन जब भारत देश में वो बरसों तक जी रहे होते हैं, उनको मिनट नहीं लगता है उस देश के विपरीत कुछ बोलने में। एक हफ्ता, दो हफ्ता कहीं घूमने गए किसी देश में, उसकी इतनी महिमा करते हैं। महिमा करना बुरी बात नहीं है,
0: सही बात है,
1: लेकिन मुझे कई बार लगता है कि इतनी महिमा, इतना यादगार क्या भारत भी है उनके लिए? आपके लिए भारत इसलिए इतना महिमा आप कर पा रहे हैं क्योंकि आपका एक प्रेम है उससे। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को कि भारत के प्रति जो ये नैसर्गिक प्यार है, जो ये शुद्ध प्यार है आपका, वो आपको कितना बेनिफिट करता है, आपके जीवन में वो क्यों जरूरी है?
0: देखिए, कुछ ऐसी बात है, अगर आपको गलत इतिहास पढ़ाया जाएगा तो आप अपने देश से प्यार नहीं करोगे, नफरत करोगे। मैं एक छोटा सा दृष्टांत आपको सुनाता हूँ। अभी राष्ट्रपति भवन में जब पद्मश्री अवार्ड लेने गया था, वहाँ हमारे श्रद्धेय मोदी जी थे। मैं वाकई मोदी भक्त हूँ उस मामले में, क्योंकि ऐसी सोच का प्रधानमंत्री आज तक नहीं आया है, और पता नहीं भविष्य की तो नहीं कह सकता, आज तक नहीं आया। मैंने उनसे कहा कि मैं 5 मिनट समय आपका लूंगा। मैंने उनसे प्रणाम किया और मैंने ये कहा, हमसे कोई पूछता था कि आप कौन से देश के निवासी हो, तो मुझे एक अंदर से ग्लानी होती थी, चेहरे पर भी वो भाव आ जाते थे कि मैं भारत कहने में या इंडिया कहने में सकता था। क्यों? क्योंकि ऐसा पिक्चर एक पेंट कर दिया गया था देश का, भूखा नंगा गरीब और सांप और हाथी वाला देश, यही सब पेंट है। मैंने मोदी जी से कहा, मैंने कहा लेकिन जब से आप आए हो, आपने इस देश का मान सम्मान इतना बढ़ा दिया है, अब गर्व होता है। अभी मैं पीछे युगांडा गया था, लोग सम्मान करते थे, अरे भाई आप तो 5वीं जो अर्थव्यवस्था संभाल रहे हो विश्व का। तो हमने कहा देखो, हम भारतीय हैं, भारतीय होने पर हमने गर्व, ये मैंने उनको मोदी जी को कहा। मोदी जी ने मेरा हाथ पकड़ा, तस्वीरें हैं मेरे पास, और अपने सीने से लगाया और फिर अपना हाथ मेरे सीने से लगाया। बोले देखिए, जो आप चावल पैदा करते हो, अगर मैं एक दाना खाता हूँ तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपके प्रति, चावल के प्रति और इस देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाऊं। तो मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उसी कर्तव्य को निभाया, इस देश का मान आगे बढ़ाया। बस एक पॉइंट मेरे दिमाग में रहा, इस देश को आगे बढ़ाना है। तो अगर इस किस्म की चीज लोगों के हो तो जो चाहे, भले वेस्टर्न चकाचौंध से एक हफ्ते में ट्रेवल पर गए लौट के आ जाते हैं, तो उनको इसलिए वो ज्यादा लगता है कि आपको अपना नहीं पता, आपको अपना नहीं पता है कि आप क्या हो, वो चीज ठीक से बताई नहीं गई, पढ़ाई नहीं गई, चाहे वो स्कूल करिकुलम की बात हो और चाहे पेरेंटल एजुकेशन की बात हो। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 7 भाषाएं बोलता हूँ, ठीक है, 4 महीने में हम जर्मन बोलने लगे फ्लुएंट। हमारे प्रोफेसर भी जर्मन के, वो ताजुब करते थे, बोले 4 महीने में और आप जर्मन बोलने लगे। मैंने कहा दुनिया के 2 भाषाएं हैं जिनका ग्रामर एक है, हम संस्कृत का जो कहते हैं रामा रामाऊ रामा, उसी तरह से जर्मन का है, सेम थिंग। तो हमें आइडिया है कि हर वर्ड डिक्लाइन करता है अकॉर्डिंग टू नंबर जेंडर एंड केस। जर्मन एक ऐसी भाषा है जिसमें न्यूट्रल जेंडर होता है, संस्कृत ऐसी भाषा है जिसमें न्यूट्रल जेंडर, तो जर्मन का ग्रामर और संस्कृत का ग्रामर एक है। उसने मुझे मदद की कि हमको समझने में देर नहीं लगी। अंग्रेजी में तो एक डी होता टी एच ई, और जर्मन में जो है अक्षर डी होते हैं, डेन डेयर डी, डेन डेयर डास, डस डेयर डस, तो लोगों को समझने में दिक्कत हुई। मैंने कहा मुझे दिक्कत नहीं हुई, मैं मलेशियन भाषा थोड़ा बोलता हूँ, ठीक है, इंडोनेशियन भाषा थोड़ा बोलता हूँ। कारण ये संस्कृत का बेस इतना तगड़ा है कि सारे भाषाओं का ग्रामर अपने पर है। तो हमको गर्व होना चाहिए कि हमारी भाषा ने दूसरों को इतना दिया है।
1: केवल यही नहीं कि आपने इस भाषा के एग्जाम्पल के द्वारा हम तक ये बात पहुंचाई कि अपने ऊपर नाज करना ही नहीं है सीखा, तो फिर दूसरे के गौरव की उधार वाली जिंदगी कितने दिन तक जिएंगे। मैं ये तो वही बात होगी कि मैं आपके कीर्तिमान का उधार लेकर के खुद को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि मुझे यही नहीं पता कि मेरे पास खुद का कितना खजाना छिपा हुआ है। आपसे बात करते हुए समय का पता नहीं चलता है, लेकिन जाते जाते अगर हम आपसे एक रैपिड राउंड खेलना चाहेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे उसका जवाब आपको एक शब्द या आधे वाक्य में देना होगा। पहला सवाल, भोजन क्या है?
0: भोजन हमको जीने के लिए शक्ति देता है, बस। और कुछ ही।
1: जीवन क्या है?
0: जीवन जब तक आत्मा और परमात्मा दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, प्राण वायु जब तक नसों शरीर में है वही जीवन।
1: देश क्या है?
0: देश तो एक भौगोलिक तरह से क्षेत्र है इस विश्व का, जहाँ हम रहते हैं। हम सोचते हैं कि ये हम यहीं पैदा हुए, यहाँ का भले हमारे पास पासपोर्ट है या हमें यहाँ रहने के लिए जो है अधिकार दिया गया है, वही वही देश है।
1: और भारत क्या है?
0: भारत, भारत तो एक ऐसा देश है जिसने दुनिया को क्या नहीं दिया, दुनिया को चाहे वो सोचने की शक्ति दी, चाहे वो मैथमेटिक्स की बात हो, चाहे वो आर्किटेक्चर की बात हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी की बात हो, कि हर चीज दिया। तो ये विश्व के ज्ञान का केंद्र है भारत।
1: सेवा क्या है?
0: जिसमें अपना स्वार्थ न हो, निस्वार्थ भाव से जो कुछ किसी के लिए किया जाए वही सेवा।
1: कर्म क्या है?
0: अब जब तक के शरीर में हाथ पांव चलते हैं, उससे जो आप करते हैं कुछ काम, चाहे अपने लिए या दूसरों के लिए, वही कर्म है।
1: धर्म क्या है?
0: धर्म एक जीवन की परिभाषा है जिसके अंदर आपके कार्यकलाप संचालित होते हैं और आप ये सोचते हो कि ये हम जो कर रहे हैं ये गलत नहीं है और कोई गलत भाव आपके अंदर नहीं आता।
1: और आखिरी सवाल, डॉक्टर राम चौधरी कौन है?
0: डॉक्टर राम चौधरी एक व्यक्ति हैं जो भारत में पैदा हुए और अभी 82 साल की उम्र में आज़ाद हैं, और जो कुछ समाज के लिए कर बन रहा है वो कर रहे हैं, वही राम चौधरी है।
1: तो आपने खुद को एक सेवक या एक आज़ाद पंछी की तरह परिभाषित किया, इसके लिए बहुत जज्बे की आवश्यकता होती है और इसी में आप भारत का भला देखते हैं। डॉक्टर राम चौधरी जी, आपसे बात करते हुए बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। आपने हर देश की वही सेवा की जो भारत में की जाती है, कभी कोई अतिथि आता है तो जो व्यक्ति बाहर रह करके देश के लिए इतना कुछ करता है वो देश में रहते हुए कितना कुछ करेगा, ये तो देखने जैसी बात है। डॉक्टर राम चौधरी जी, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं की तरफ से हम आपके स्वस्थ जीवन की और सफल जीवन की कामना करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप जो काम किसानों के साथ कर रहे हैं वो दिन दुगनी रात चौगनी आगे बढ़े, भारत का हर किसान अपने को सम्मान से किसान कहने लायक बन जाए, ये हम उम्मीद करेंगे और इस उम्मीद को आप जरूर पूरा करेंगे। आपको हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज के एपिसोड से कितनी बातें जानने को मिली, कितनी बातें सीखने को मिली। यशस्वी भारत कार्यक्रम के एपिसोड्स में यही बहुत खास बात होती है दोस्तों, कि हम एक व्यक्ति के जरिए पूरे देश को समझ लेते हैं। जैसे चावल जब पकाते हैं, आपको पता होगा चावल के हर दाने को दबा करके देखने की जरूरत नहीं होती कि चावल कितना पका है। एक दाने को अगर आप दबाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि चावल पूरा पक गया है। ठीक ऐसे ही यशस्वी भारत कार्यक्रम में डॉक्टर रामशेष चौधरी जैसे महान व्यक्तित्व जब आते हैं, वो भारत का वो परिभाषा बयान करते हैं जिस परिभाषा में वो खुद समाये हुए हैं। उन्होंने अपने जीवन के द्वारा, अपने कर्तव्यों के द्वारा भारतीय होने का सही परिभाषा हर एक भारतीय को सिखाया है। जो सबसे खूबसूरत बात मुझे लगी दोस्तों, वो ये कि वो इतने देशों में रहे हैं, दिल उनका सदा भारत के लिए धड़का है, लेकिन हाथ उनके सदा दूसरों के लिए तैयार थे। उनसे हमने ये सीखा कि जिस भी देश में आप रहते हैं, उस देश के लिए पूरे जी जान से सेवा करें, अपना काम पूरे दिल से करें, और जो आपका प्यार है, जो आपका मान है, आपका जो कृतज्ञता है, वो अपने मातृभूमि के लिए जरूर रखें। बहुत सारी बातें डॉक्टर राम से हमने आज सीखी। काला नमक चावल के बारे में जाना, और भी कई सारी बातें हमने जानने को मिली कि किस प्रकार से उन्होंने अपने साथियों के साथ मिल करके इस चावल को न केवल पुनर्जीवित किया है जो कि बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गया था, खो चुका था, लेकिन कितने किसानों को उम्दा रोजगार प्रदान किया है। एक और एपिसोड में हम आपके बीच में एक और मेहमान को लेकर के आएंगे, उनसे बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा, सुनते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा रेडियो मधुबन। जय हिंद, जय भारत।
2: मित्रांशिवाय आयुष्य पूर्ण हसणं भांडणं आणि गाणं सगळं शेअर करायचं।
3: तेरे जैसा यार कहां,
2: जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जातं।
4: लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा,
2: मनात पीठ वाजले की शरीर अबोप थिरकत। त्याच सोबत
5: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध,
6: कोण दिसा मेले की चलारी बटुरिया,
2: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा,
7: पहला नशा पहला खुमार,
2: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM। आनंदी रहा, आनंद लुटा।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हमारा उद्देश्य है आपके मन में नए विचारों का संचार करना और आपको चिंतन की एक नई दिशा देना। तो आइए ज्ञान की इस रोशनी में आगे बढ़ें और नए दृष्टिकोणों को समझें। ज्ञान चिंतन, एक नई सोच, एक नई दिशा। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और आप सुन रहे हैं ज्ञान चिंतन। हमेशा की तरह मैं आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। आज का विषय है भारतीय दर्शन में जीवन का उद्देश्य। यह विषय सुनने में जितना आध्यात्मिक प्रतीत होता है उतना व्यावहारिक भी है। भारतीय दर्शन केवल शास्त्रों का संग्रह नहीं बल्कि जीवन को जीने की एक गहरी, व्यावहारिक और संतुलित दृष्टि है। यह दर्शन मनुष्य को यह प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है, मैं कौन हूँ, मेरा जीवन क्यों है और उसका उद्देश्य क्या है। भारतीय दर्शन के अनुसार जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति, सामाजिक संतुलन और अंततः आत्मज्ञान की प्राप्ति है। भारतीय दर्शन जीवन को चार पुरुषार्थों के माध्यम से समझाता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों मिलकर जीवन को संपूर्ण बनाते हैं। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि कर्तव्य, नैतिकता और सही आचरण है। अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी निभाना ही सच्चा धर्म है। अर्थ का आशय है जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधनों की प्राप्ति। भारतीय दर्शन यह सिखाता है कि धन अर्जन आवश्यक है लेकिन वह धर्म के मार्ग से होना चाहिए। काम का अर्थ इंद्रिय सुख या इच्छाओं की पूर्ति है किंतु वह भी मर्यादा और संतुलन के साथ। और अंत में मोक्ष, जीवन का परम उद्देश्य। मोक्ष का अर्थ है बंधनों से मुक्ति, दुखों से ऊपर उठकर आत्मा की शांति और परम सत्य का अनुभव। उपनिषद कहते हैं आत्मा व अरे द्रष्टव्य, अर्थात आत्मा को जानना ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है तब उसे यह बोध होता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं बल्कि चेतन आत्मा है। यही आत्मबोध जीवन को नई दिशा देता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कर्मयोग का संदेश देते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। भारतीय दर्शन जीवन को कर्म से जोड़ता है लेकिन आसक्ति से मुक्त होकर। निष्काम कर्म ही मनुष्य को शांति और संतोष देता है। भारतीय दर्शन में जीवन को एक यात्रा माना गया है, अज्ञान से ज्ञान की ओर, स्वार्थ से परमार्थ की ओर और अहंकार से विनम्रता की ओर। यहाँ वसुदेव कुटुंबकम की भावना है जिसमें संपूर्ण विश्व को एक परिवार माना गया है। इस दृष्टि से जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत विकास नहीं बल्कि सामूहिक कल्याण भी है। आज के आधुनिक तनावपूर्ण और प्रतिस्पर्धात्मक जीवन में भारतीय दर्शन अत्यंत प्रासंगिक है। यह हमें सिखाता है कि बाहरी सफलता से अधिक आंतरिक शांति महत्वपूर्ण है। ध्यान, योग, स्वाध्याय और सेवा, ये सभी साधन जीवन को संतुलित और अर्थपूर्ण बनाते हैं। अंततः भारतीय दर्शन के अनुसार जीवन का उद्देश्य है अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए सही मूल्यों के साथ जीना, आत्मा को पहचानना और समाज के लिए उपयोगी बनना। जब जीवन केवल मेरे लिए से आगे बढ़कर सबके लिए हो जाता है तब वह सार्थक बनता है। इसी विचार के साथ मैं विवेक जैन आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ और सुनते रहें इसी तरह प्यार से। खुश रहें, खुशियां बांटें। प्रिय श्रोताओं, ज्ञान चिंतन के आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमें आशा है कि यह चर्चा आपके मन को स्पर्श कर गई होगी और इसने नए विचारों को जन्म दिया होगा। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर एक नई सोच और विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति, खुश रहें, खुशियां बांटें। नमस्कार।
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
2: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे which will not be according to the way I want them to be. Aaj sara din awareness and checking.

0: कौन ज्यादा पावरफुल है। बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माय चेकिंग फॉर टुडे।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति।
2: थैंक यू सो मच
1: सिस्टर। कुछ एक क्लास के बारे में पढ़ना चाहूंगा, समथिंग वेरी क्लासी। इट सेज हैविंग क्लास इज द एबिलिटी टू वॉक अवे फ्रॉम अ बैड सिचुएशन विद अ स्माइल ऑन योर फेस एंड फॉरगिवनेस इन योर हार्ट।
2: वेरी स्वीट।
1: मुख से फॉरगिवनेस नहीं है, दिल से।
2: मुख से भी फॉरगिवनेस नहीं, अंदर से चित से वो बात खत्म हो, लेकिन उससे भी पहले जो इम्पोर्टेंट है कि हैविंग द एबिलिटी टू वॉक अवे फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद अ स्माइल ऑन द फेस। मतलब एंड व्हेन इट सेज वॉक अवे, उसका मीनिंग ये नहीं है कि हम सिर्फ वहां से उठ कर जा रहे हैं, वो तो वैसे भी मीनिंग नहीं है उसका। वॉक अवे मीन्स उस परिस्थिति का सामना जो हम कर रहे हैं, जो भी परिस्थिति है। वॉक अवे डजंट मीन हम उस परिस्थिति को छोड़ के चले जा रहे हैं विद अ स्माइल ऑन द फेस।
1: वॉक अवे फ्रॉम द डिस्टर्बेंस ऑफ योर माइंड।
2: वॉक अवे फ्रॉम द डिस्टर्बेंस एंड ऑल्सो वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन मीन्स जो सिचुएशन को हमने फेस करना है ना, उसको तो उसको खत्म करके वी हैव टू वॉक अवे फ्रॉम दैट सीन नाउ। ये नहीं कि वो सीन लंबा चले, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीन पूरा होने के बाद हमारे चित पर रहे। आज हम सिचुएशन से वॉक अवे तो कर सकते हैं, उस टाइम स्माइल भी कर सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हो गया, ठीक हो जाएगा, भूल जाओ। लेकिन डज इट कीप अ स्माइल ऑन माई फेस, मतलब क्या ये मेरे मन से चित से साफ हुआ? क्या मैंने अंदर से, जो उसने कहा फॉरगिवनेस इन योर हार्ट, क्या मैंने चित से क्षमा करके अपने को, दूसरे को, उस बात को क्लीन किया? देन आई हैव फेस्ड द सिचुएशन इन द राइट वे। अदरवाइज सीन पूरा हुआ, सीन्स तो पूरे होते ही जाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक सीन, लेकिन वो मेरे चित पर अगर रह गया सीन, तो सीन पूरा नहीं हुआ। यू नो, सामने पूरा हो गया लेकिन यहाँ अगर दर्द रह गया तो सीन पूरा नहीं हुआ।
1: यू हैव नॉट वॉक्ड अवे।
2: यू हैव नॉट वॉक्ड अवे बिकॉज द सीन स्टिल रिमेन्स विद यू। वो अभी भी है एंड समय प्रति समय आप वापस उस सीन को रिवाइंड करते जाएंगे, चाहे मन में चाहे कॉन्वर्सेशंस में। तो फिर वो सीन जो पूरा हो चुका था, वो सीन फिर प्रेजेंट में आ जाएगा।
1: नेवर एंडिंग है।
2: सो वी हैव नॉट वॉक्ड अवे फ्रॉम द सीन, इट्स स्टिल कमिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एंड हम प्रेजेंट को कई बार वही क्वालिटी का बना देते हैं जो पास्ट की क्वालिटी थी। अब ये पास्ट साल पहले की बात हो सकती है, कुछ दिनों के पहले की बात हो सकती है, कुछ क्षणों के पहले की बात हो सकती है। रिजोल्व एंड फिनिश, एंड दैट्स व्हाई इट सेज वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन, मींस उस बात को खत्म करके, क्षमा करके, पूरी तरह से उस चैप्टर को क्लोज करके अगर हम चलेंगे, देन वील ट्रेवल लाइट। अदरवाइज बहुत सारे चैप्टर्स ऊपर मन और चित पे खुले हुए पड़े हुए हैं।
1: ऐसी सिचुएशन में हम अपने मन को क्या बोले कि भाई प्लीज वॉक अवे विद लाइक अ रॉयल इन अ क्लासी स्टाइल।
2: क्लास
1: क्या बोले, कैसे बोले?
2: सी, जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा, सीन्स और सिचुएशन सामने आएंगी एंड वी हैव टू हैव द करेज टू फेस द सिचुएशन। दैट्स व्हाट वी सॉ लास्ट टाइम, द पावर टू फेस द सिचुएशन, परिस्थिति का सामना करने की शक्ति।
1: दैट इज नॉट लड़ाई।
2: नो, नॉट लड़ाई, परिस्थिति का सामना करने की शक्ति।
1: सामना करना, फेस करना, मतलब
2: सामना विद रॉयल्टी, विद क्लास ना, सामना विद डिग्निटी, सामना विद प्योरिटी, सामना विद पावर। सामना करेंगे, सामना करेंगे मींस लड़ेंगे नहीं, सामना करेंगे मींस फेस करेंगे, सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सामना ना मीन्स लड़ेंगे, सामना ना मीन्स रूठेंगे, सामना मीन्स उसको सॉल्व करेंगे।
1: डिफेंस का शब्द यहाँ नहीं आएगा।
2: डिफेंस मीनिंग,
1: डिफेंस कोई ऑफेंस है कर रहा है तो मैं डिफेंस कर रहा हूँ, सामना कर रहा हूँ, वापस झगड़ा कर रहा हूँ।
2: अगर एक सीन में वापस झगड़ा, फिर वहां से वापस झगड़ा, फिर वापस झगड़ा, तो सामना क्या किया परिस्थिति का? परिस्थिति का सामना करना और परिस्थिति में उलझना दो चीजें अलग अलग हैं। आप देखो जब हम कोई किसी को देख रहे हैं, हम नहीं है उस सिचुएशन में, कोई और उस सिचुएशन में है और हम देखते हैं कि उस सिचुएशन को वो कैसे क्रॉस करते हैं. हम साक्षी हैं. वी आर नथिंग टू डू विद द सिचुएशन, वी आर नथिंग टू डू विद द पर्सन. हम सिर्फ साक्षी होकर देख रहे हैं. तो हम क्या कहते हैं, इन्होंने इस बात का सामना ना बहुत अच्छे से किया, कहते हैं ना. जब हम कहते हैं इन्होंने इस बात का सामना, मतलब ये जो इनके जीवन में परिस्थिति आई थी
1: उसको हम लोग कहते हैं उसको बड़ी अच्छी तरह से हैंडल किया.
2: हाँ, वो
1: फेस किया नहीं बोलते है ना,
2: फेस किया, क्रॉस किया, हैंडल किया. पर अच्छे से किया मतलब अच्छे से किया किसको कहेंगे, किसको आप कहेंगे कि इन्होंने
1: बड़ी डिग्निटी से,
2: डिग्निटी से किया. अब डिग्निटी भी किसको कहेंगे,
1: कि
2: डिग्निटी से किया तो रॉयल्टी भी किसको कहेंगे.
1: प्यार मोहब्बत से विदाउट गेटिंग एंग्री,
2: विदाउट, सिंपल. सो वी नो द आंसर. तो उसमें लड़ने को तो हम रॉयल्टी कहेंगे नहीं, उलझने को तो हम डिग्निटी कहेंगे नहीं.
1: ये उलझना शब्द बहुत अच्छा है, बिकॉज उलझना मैं समझता हूँ कि हम तो मन से भी तो उलझते हैं,
2: उलझते हैं, थॉट्स
1: उधर से आ रही, इधर से आ रही है.
2: यस,
1: कोल्ड वॉर चल रही है.
2: यस, तो हम उलझ रहे हैं क्योंकि हमने सिचुएशन को क्रॉस नहीं किया, सिचुएशन को फेस नहीं किया. कई बार हम ऐसी कोटेशंस को फिजिकल करते हैं कि वी वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन, वी वॉक अवे फ्रॉम पीपल. सम पीपल वी वॉक अवे फॉर लाइफ कि हम जीवन में इनसे फिर कभी बात नहीं करेंगे, लेकिन वो चित पे से नहीं फिनिश हुए, तो वो पास्ट अभी खत्म नहीं हुआ. तो क्या हमने डिग्निटी और रॉयल्टी से क्रॉस किया उस सिचुएशन को? राजयोग हमें सिखाता है कि वी नीड टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स कि हम जीवन में आने वाली हर सीन को, क्योंकि सीन्स तो आएंगी, आती रहेंगी. कई बार भाई बहने कहते इतना मेडिटेशन किया, इतना ये करते, फिर भी इतनी प्रॉब्लम्स आती है लाइफ के अंदर, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए.
1: बट आप जब पढ़ के सुनाती हैं मुरली है, तो उसमें बड़ा अच्छा शब्द आता है, पेपर तो आना ही है.
2: पेपर तो आना ही है. क्यों पेपर आना है अब, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है. क्यों पेपर आना
1: क्यों
2: है,
1: हमारा टेस्ट नहीं हो बताइए.
2: वो टेस्ट है ही नहीं.
1: हाँ?
2: वो टेस्ट थोड़ी है, कोई बैठ कर ऊपर से
1: पेपर समझ रहा था एग्जाम.
2: नहीं नहीं, कोई ऊपर से बैठ के टेस्ट बना के थोड़ी हमें भेज रहा है.
1: Testing my own self.
2: But why? How is the situation coming? Why is the situation coming?
1: अब जैसे मैंने गलत शॉट मारा गोल्फ में, बंकर में चले गया, मिट्टी में, हैजर्ड उधर ऐसी तकलीफ वाली जगह पे, वहां से कैसे निकलता वो तो स्किल है.
2: वो ठीक है, लेकिन वो बंकर में गया क्यों?
1: रॉन्ग शॉट.
2: सिंपल. अब हमने रॉन्ग शॉट कब मारा था जिसकी सिचुएशन आज आ रही है?
1: पास्ट में.
2: दिस इज इट. तो ये कोई टेस्ट नहीं है, ये कोई और हमारे लिए टेस्ट
1: नहीं, एक्चुअली रिजल्ट है.
2: ये कॉन्सिक्वेंस है. यस, ये एक रिजल्ट है.
1: इट्स
2: अ रिजल्ट ऑफ अ पास्ट कनेक्शन. एंड नाउ एग्जाम मीन्स कि हम इस बार उसको कैसे क्रॉस करेंगे. ये नहीं है कि वो सिचुएशन कोई एग्जाम बनकर आई है. सिचुएशन हमें टेस्ट करने नहीं आती है. सिचुएशन तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास्ट कर्म का रिजल्ट है.
1: अब मैं क्या करता,
2: अब मैं क्या करूंगा, ये मेरा एग्जाम है कि इस बार मैं पास होता हूं या फेल होता हूं. पास्ट का क्या आया जस्ट डजंट मैटर. यू नो कई बार हम उससे गिल्ट में चले जाते हैं, पता नहीं मैंने क्या किया था इसलिए ऐसा आया, मैं इतना बुरा किया था इसलिए मेरे साथ इतना बुरा हुआ. दैट्स ओवर द पास्ट कर्मा. व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ मी टुडे इज ओनली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पास्ट कर्मा. एंड उस कॉन्सिक्वेंस को भी हम जितना चाहें बड़ा कर सकते हैं और जितना चाहें उसको छोटा कर सकते हैं. वो चॉइस भी हमारी है. This we have to always remember कि ये बात मेरे सामने आई क्यों. It's very important. जैसे आपने कहा कि हमने, मैंने wrong shot मारा तो वो एक particular जगह पे गया ना,
1: accepted है वो.
2: हाँ, लेकिन वो ball bunker में जाए ये हमारे लिए सही तो नहीं है ना.
1: नहीं, I wanted a over the bunker.
2: Over the bunker, very good. तो आपका aim objective है कि ball जाए over the bunker. ठीक है, so that's the what we want in life. कि हम जीवन में क्या चाहते हैं,
1: हर्डल के ऊपर से,
2: हर्डल के ऊपर से जाए. लेकिन जो हर्डल है वो आया क्यों जीवन में? क्योंकि हमने पिछला शॉट गलत मारा. नेवर माइंड, दैट इज ऑल्सो ओके. इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम अभी अपना अगला शॉट मारने वाले हैं, तब तो हमें ये याद रखना पड़ेगा ना कि ये पिछला गलत शॉट की वजह से ये हर्डल आया. अब इस हर्डल को क्रॉस करते समय एक और गलत शॉट तो न मार दे. इतना ही तो सिर्फ ध्यान रखना है.
1: वहां पर गलत कब होगा कि मैं बंकर में क्यों गया, मैं हमेशा खराब खेलता हूँ, मुझे कैडी ने गलत क्लब दे दिया, आई विश आई हैड डन दिस, वो सब सोच
2: उससे एक और ज्यादा रॉन्ग भी आ सकता है। ये बंकर बीच में आया कैसे, ये यहाँ रखा किसने, ये परिस्थिति मेरे जीवन में आई क्यों, और ये व्यक्ति इस परिस्थिति का कारण है, मेरी गलती नहीं। तो मैंने इस बार भी एक फिर से रॉन्ग शॉट मार देना है, बस यही तो ध्यान रखना है व्हाइल फेसिंग अ सिचुएशन। व्हाई डिड दिस सिचुएशन कम, वी नो द आंसर, कि ये मेरे पास इसलिए आया पिछली बार रॉन्ग शॉट। कोई बात नहीं, पिछली बार का तो पिछली बार, अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ इतना याद रहना भी कि ये पिछली बार का रॉन्ग शॉट था, मुझे एक वार्निंग तो देगा ना, मुझे एक अटेंशन तो देगा ना कि इस बार तो राइट शॉट मारो ना। अगर इतनी नॉलेज मिलने के बाद कि ये पिछली बार के रॉन्ग शॉट का कॉन्सिक्वेंस है, इस बार फिर से रॉन्ग शॉट मारा, देन वी आर नॉट यूजिंग ज्ञान, देन वी आर नॉट फेसिंग द सिचुएशन इन द राइट वे। सिचुएशन क्यों आई डजेंट मैटर, इतनी बड़ी क्यों आई डजेंट मैटर, किसकी वजह से आई डजेंट मैटर, इस बार का शॉट कैसा होना चाहिए।
1: कई बार अंदर वाला बोलता है कि मत बोल मत बोल, हम बोल देते हैं। इसी तरह कई बार कैडी बोलता है साहब एक क्लब एक्स्ट्रा ले लो, थोड़ा ज्यादा दूर चला जाएगा, व्हाई डू यू वांट, तुम चुप करो। वेयर अगेन आई मेक अ मिस्टेक, अंदर वाले की बात नहीं सुनी।
2: तो जब हमें ज्ञान मिले, किसी से भी मिले, अब ये भी तो ज्ञान ही मिल रहा था ना, तो जब हमें ज्ञान मिले उस समय उसको चेक करके, इज इट राइट, ये मेरे लिए सही है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उसको यूज करना शुरू करना है। जीवन में ऑब्स्टिकल्स, जिसको हम ऑब्स्टिकल्स कहते हैं, विघ्न कहते हैं, आपने कहा पेपर कहते हैं, एग्जाम कहते हैं, ये तो आएंगे, आते रहेंगे, हो सकता है आने वाले समय में बढ़ भी जाएं, क्योंकि सिचुएशंस इन द वर्ल्ड आर चेंजिंग, तो चैलेंजेस बढ़ भी सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट है जब ये ऑब्स्टिकल मेरे जीवन में आए, हम इस ऑब्स्टिकल को अगर एक ऑब्स्टिकल समझते हैं, यू नो, जैसे आपने कहा, जैसे आप सपोज लेट्स से हम यहां से चल के जा रहे हैं, ठीक है, और ये सामने एक पेड़ है, अब एक स्मूथ सीधी सड़क पर हम स्मूथ सीधा चलना चाहते हैं, अब ये बीच में पेड़ कहां से आ गया, यू नो, सो दैट ट्री इट लुक्स लाइक एन ऑब्स्टिकल ऑन दैट पाथ, कि मेरे को सीधा चलना था, ये विघ्न बीच में कहां से आ गया। तो हमें लगता है दिस ट्री, ये वृक्ष मेरे रास्ते का ऑब्स्टिकल है। तो कई बार हम उस वृक्ष के सामने खड़े होकर एक तो उस वृक्ष को कोसते रहते हैं, फिर कई बार कोशिश करते हैं कि इस वृक्ष को हम उखाड़ लें, कि ये विघ्न मेरे जीवन से हट जाए। जस्ट द अदर डे आई रेड अ वेरी ब्यूटिफुल लाइन, इट्स लाइक अ मंत्र विच आई ट्राई टू रिमेम्बर, व्हाट्स इन द वे is the way.
1: Beautiful. What's in the way is the way.
2: Yes. मतलब ये जो वृक्ष आपको बीच में रास्ते में दिख रहा है, जो आपको लगता है ये आपके रास्ते के बीच में आ चुका है,
1: ये वृक्ष रिलेशनशिप्स में भी
2: Yes.
1: हो सकता है,
2: ये लोग हो सकते हैं,
1: लाइफ के, बिजनेस के अंदर, घर में,
2: हर जगह ये वृक्ष कई बार मेरी सेहत भी हो सकती है।
1: डाइवर्जन ले लो,
2: लेकिन जो हम डाइवर्जन ले रहे हैं, दैट इज वेयर दिस लाइन इज वेरी ब्यूटीफुल, व्हाट्स इन द वे इज द वे। हमें क्या लगा हमारा रास्ता ऐसे था सीधा, दैट वॉज माई जर्नी, ये विघ्न बीच में आया, और ये लाइन कि व्हाट्स इन द वे इज द वे, मतलब मुझे याद दिलाती है कि आपका रास्ता ऐसे था ही नहीं, आपका रास्ता ऐसे था। सो आई एम नॉट रियली मेकिंग अ डाइवर्जन, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, माय वे वाज ओनली सपोज टू बी लाइक दिस। देखो सीधी लाइन है एक, ठीक है, हमने सोचा मेरा जीवन एक सीधी लाइन है जिसमें ये ऑब्स्टिकल आया, लेकिन ये लाइन हमें सिखाती है आपकी ये जीवन की लाइन ऐसी थी नहीं, आपके जीवन की लाइन थी ऐसे, और फिर यहां पर आके ऐसे टर्न करके फिर ऐसे जाना। आपने सोचा कि आपके जीवन की लाइन कैसी है, सीधी है, और फिर जो जो बीच में खड़े हुए दिखे आपने कहा ये मेरे जीवन का ऑब्स्टिकल है, ऑब्स्टिकल को हटा दो। वी कांट रिमूव ऑब्स्टिकल्स, वी कांट रिमूव पीपल, वी कांट चेंज देम, वी कांट चेंज सिचुएशंस, वी हैव टू डू दिस। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो बहुत ईजी हो जाता है जब ये याद रहेगा कि ये है भी क्यों। अब अगर हमें ये याद आए कि ये वृक्ष आज मेरे जीवन में है क्यों, क्योंकि कुछ साल पहले मैंने ही इसको बोया था यहाँ पे, ये मेरा लगाया हुआ वृक्ष है, तब हम ये नहीं कहेंगे ये वृक्ष रास्ते में बीच में क्यों आया, कहेंगे ये तो वृक्ष मैंने ही लगाया था यहाँ पे, तो ये यहाँ पे तो होना था, और कहाँ हो सकता है ये वृक्ष। आई सोड द सीड हियर, द ट्री हैज टू बी हियर।
1: कई बार घर में कोई चीज स्टूल बीच में रख के मैं गलती से रात को डिनर में सो जाता हूँ, तो सुबह सुबह अंधेरे में लाइट खोले में मैं ठोकर खाता हूँ, और फिर बोलता हूँ अरे ये तो मैंने ही रात को रखा था, तब गुस्सा नहीं आता।
2: अगर आप सिर्फ सुबह उठे और आपने देखा कि वो स्टूल बीच में और आपका पैर उस पे लगे, तो इमीडिएट रिएक्शन क्या आएगा? गुस्सा, नाराजगी, स्टाफ को कर्सिंग देम ऑल्सो, समझ में नहीं आता कैसे कैसे घर के लोगों ने रखा हो, तो उनको डांट भी सकते हैं हम इमीडिएटली, बहुत कुछ एक टर्मोइल क्रिएट हो जाएगा। फिर धीरे से आके कोई कान में कहेगा, सर आपने रखा था रात को खाना खाने के बाद। एक क्षण में, उसी सेकेंड रिएक्शन चेंज हो जाएगा ना सारा, वो ही सीन, वो ही ऑब्स्टिकल, वो ही सारी चोट, चोट भी लगी, चोट भी लगेगी, लेकिन जब ये पता चलेगा ये चोट लगी क्यों, मैंने ही वो स्टूल रखा था, तो मेरा रिएक्शन बंद हो जाएगा और अब मैं चोट को ठीक करने पे वर्क करूंगा, दैट इज ओके, दैट्स फाइन। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं अगले दिन रात को ध्यान से उस स्टूल को वहां नहीं रखूंगा जहां चोट लगने का चांस है। दिस इज द जर्नी ऑफ माई लाइफ, दिस इज द पावर टू फेस द सिचुएशन। जब हमें ये नहीं पता चलता कि ये जो चीजें हमारे जीवन में बीच में आ रही हैं, ये हमारी रखी हुई हैं।
1: दिस इज द वे,
2: दिस इज द वे, एंड दैट टू आई क्रिएटेड दिस वे। अब दिस इज द वे भी क्यों,
1: मैंने ही रास्ता बनाया,
2: मैंने ही बनाया था वो। इस सीन को अब हमेशा याद रखें कि अगर हमें किसी व्यक्ति के साथ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो वो स्टूल को याद रखना कि धीरे से आके कोई कान में कहे या अपने आप को धीरे से कहे, ये इसलिए मेरे साथ ऐसा कर रहा है क्योंकि मैंने ही इसको ऐसे करने के लिए ऐसा बनाया था।
1: ये सीख जाओ तो मेरी लाइफ कितनी आसान हो जाए।
2: पर है तो बिल्कुल उतने स्टूल जैसी बात ही ना, कि स्टूल रात को मैंने रखा, सुबह याद नहीं था तो रिएक्ट किया, जैसे याद आया रिएक्शन बंद, फुल स्टॉप, एक सेकंड में बंद होता है ना। हम क्या कहते हैं एकदम से, अच्छा मैंने रखा था, अच्छा, इट्स फुल स्टॉप, नो शाउटिंग, नो गेटिंग एंग्री, नो डूइंग एनीथिंग, एंड फिर हीलिंग द वुंड।
1: नो शाउटिंग, नो गेटिंग एंग्री तक तो मैं आ सकता हूँ, लेकिन फिर आप कहेंगे उसको प्यार भी करो, वो नहीं होगा।
2: स्टूल को सही जगह पे रखेंगे ना, रिश्ते को भी सही जगह पे रखना पड़ेगा।
1: मतलब
2: अभी आप कह रहे हैं स्टूल को हटाना इजी है, लेकिन लोगों को हम अच्छा नहीं उनके लिए सोच सकते ना उसके बाद। हम आपने कहा हम उनको प्यार नहीं भेज सकते, प्यार नहीं कर सकते,
1: हम वो भी नहीं करेंगे,
2: नफरत भी नहीं करेंगे, हम नफरत भी नहीं करेंगे। बस हम अगर नफरत भी ना करें ना, मतलब नफरत भी ना करें इन द सेंस एक
1: इग्नोर करेंगे थोड़ा सा,
2: फिर कैसे सोल्यूशन आएगा?
1: थोड़ा सा हो जाता है ना इग्नोर अगर फिर।
2: सी अगेन, वी सॉ लास्ट टाइम कि जरूरी नहीं है हमें बहुत ज्यादा हर एक के साथ रिश्ता, बहुत ज्यादा बातें, बहुत ज्यादा मिलना है, लेकिन अंदर उनके प्रति एक होता है इग्नोर, इन द सेंस मेरी इनसे नहीं बनती, इनको इग्नोर करो, मैं ज्यादा नहीं इनसे बात करता, नहीं, मेरी इनसे इतनी चीजों में इतने प्यार से चलता है, उतना मुझे प्यार से इनके साथ चलना है। माय वाइब्रेशन हैज टू गो राइट टू द पर्सन।
1: या बट व्हेन आई कीप दिस काइंड ऑफ अवेयरनेस, जब मैं रखता हूँ ऐसा कि अवेयर कि भाई इसको लास्ट टाइम इसने मुझे ऐसे बोल दिया था, दोबारा इसको ज्यादा नहीं कुछ बोलूं, उसको एक लिमिट तक, हाँ कैसे हो इतना ही पूछूं, तो उसमें क्या होता है मैं बहुत आर्टिफिशियल हो जाता हूँ,
2: क्योंकि अंदर नहीं हो रहा ना चेंज। मैं अपने अंदर उनके प्रति कुछ नेगेटिव पकड़ के नहीं रखूं, उनका वो हील करेंगे, वी तो कांट हील एनीबडी।
1: लेकिन कम तो कम उलझ हूं,
2: नेवर माइंड, दैट्स ऑल्सो फाइन, लेकिन इनडिफरेंस या इग्नोर, नॉट विद नेगेटिव एनर्जी इनसाइड। मेरी हर थॉट की मुझे चेक, ऐसे रिश्तों में, ऐसे कार्मिक अकाउंट में मुझे बीच बीच में चेक करना पड़ता है कि हम उनके लिए कैसा सोच रहे हैं, कहीं फिर कुछ गलत तो नहीं सोच रहे उनके
1: लिए। लास्ट टाइम मैंने ऐसे ट्राई किया तो मेरी वाइफ ने बोला आज आप इतना खामोश खामोश क्यों हैं, तो बोला नहीं भाई ज्यादा मैं बोलता हूँ तो मुझसे गलतियां हो जाती है और कई लोगों को बुरा लग जाता है।
2: तो फिर वो तो फोर्सफुल हुआ ना आउटवर्डली, इंटरनल चेंज नहीं है, इंटरनल चेंज
1: एक्सट्रीम हो रहा है ना,
2: तो करेंगे ना, ये तो जर्नी है। जर्नी में क्या होता है, जर्नी ये थोड़ी आज शुरू हुई कल खत्म, जर्नी मीन्स जर्नी ऑफ लाइफ। हम एक एक संस्कार तो इतना कुछ तो अवेयर हो रहे हैं, पहले तो देखते भी ना ये सब।
1: आज सुबह की बात देखिए, इतनी इम्प्रूवमेंट है आपके होमवर्क से कि वो जब गाड़ी में आप बैठी तो जो हमको लेने आया किसी को गुड मॉर्निंग बोल के यू आर लुकिंग डल टुडे बोला और आपने मुस्कुरा दिया, और मेरे अंदर बार बार है कि मैं उसको सिखाऊं कि किसी को डल बोलते हो तुम, हॉस्पिटैलिटी के बीच में हो, कोई खराब दिखे तो भी अच्छा बोलो, स्माइल करो, बोले यू लुकिंग नाइस, झूठ तो बोलो। इतना सब मन में चला, देन आई सेड नो, आप चुप रहेंगे। तो मेरे अंदर वाले को ने बोला कि चुप करा,
2: तो डिफिकल्ट तो नहीं था ना,
1: मैं अच्छा लगा, चुप रहा, मैंने बोला इसको क्या सिखाऊं,
2: सिंपल। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दूसरे को जैसा दिखा जो लगा उसने बोला इट्स ओके, अपने अंदर पकड़ के भी नहीं रखना है इन चीजों को। हरेक का नजरिया है, हरेक का दृष्टिकोण है, हरेक अपना ओपिनियन देगा, इट्स ओके। हम हरेक के ओपिनियन को इतना पर्सनली लेकर अफेक्ट नहीं हो सकता।
1: मेरा पर्सनल कहने का सोचने का तरीका यह है कि मैं कभी किसी का वेट बढ़ गया तो भी उसको बोलता हूँ अरे कुछ नहीं होता, लुकिंग नाइस।
2: इसीलिए आप चाहते हैं कि दूसरा भी ऐसा हो।
1: हाँ,
2: वैसा होगा नहीं, लेकिन ये होता है ना, दिस इज ओनली संस्कार स्वभाव, कि जिन चीजों का हम ध्यान रखते हैं हमें लगता है दूसरे भी ध्यान
1: रखते हैं। नहीं अच्छा लगता, यू पुट ऑन वेट, यू लॉस्ट वेट, यू नॉट लुकिंग नाइस,
2: आपको नहीं अच्छा लगता ना, लेकिन जरूरी नहीं है ना सबको भी नहीं अच्छा लगेगा, वो जरूरी नहीं है ना सबको भी वो बात सही लगेगी। ये ही तो एडजस्टमेंट है, सारा दिन में आएगी।
1: यही वृक्ष है बीच का,
2: यही वृक्ष है बीच का, इसको भी कह सकते हैं, यही वृक्ष है बीच का, और उसमें कुछ भी नहीं है। जितना चीजों को हल्का छोड़ते, और सारा दिन में जब हम लोगों को भी देखें ना, अब सपोज इसको भी आप कहे, किसी ने कुछ गलत लाइन कही, ये एक एक्ट है, मतलब ये कर्म है। सपोज हम अभी न्यूट्रल डिटैच होके देखें और हम कहें ये लाइन सही नहीं थी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए जैसा आपने कहा। अब लेकिन इस एक्ट को भी इस व्यक्ति से सेपरेट करना है, ये हमें सारा दिन करना है। राजयोग ये बहुत डीप एक बात हमें सिखाता है, परमात्मा कहते हैं कर्म और आत्मा को अलग करो। जब आत्मा का ज्ञान समझ में आ गया कि हर आत्मा ओरिजिनली ब्यूटीफुल, ठीक है, फिर लंबी यात्रा पे अलग अलग कंडीशनिंग, अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग संस्कार, तो हो सकता है इस क्षण उस आत्मा ने एक गलत शब्द बोला या किसी ने एक गलत व्यवहार किया, लेकिन आत्मा गलत नहीं है, आत्मा बुरी नहीं है। ये सारा दिन सेपरेट करना पड़ता है यहाँ पे कि हाँ इस समय उन्होंने एक गलती कर दी, लेकिन बिकॉज कई बार नहीं तो यहाँ हम रजिस्टर क्या कर देते हैं, व्यक्ति गलत, व्यक्ति बुरा, वो जो होल्ड हम करते हैं फिर उस बात को, वो बहुत लंबा चलेगा। फिर अगली बार जब भी वो मिलेगा, अब क्या है अगर आप कहें आत्मा ब्यूटिफुल, ये वाली बात गलत, ठीक है, एनर्जी विल बी डिफरेंट, एनर्जी भी विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट।
1: में मैं रहता हूँ अभी, आज से पता नहीं 1980s में, पता नहीं, आई डोंट इवन रिमेम्बर कब लिया था, तो वहां अपनी वाइफ को लेके गया था पहली बार देखने के लिए। तो जैसे एंटर किया, सामने सीधा एक वॉश बेसिन और जो बाथरूम की टाइल्स उन्होंने उसमें रखी हुई थी, डाइनिंग हॉल में जहां पर लोग मेहमान आते हैं, और मैं मेरी वाइफ देखी पूरा बंगला, बोले मैं तो इस घर को नहीं खरीदूंगा, मैं जा रही हूँ। मैंने बोला देखो इन्होंने इसको ठीक से नहीं रखा है, ये महल बन सकता है, ऊपर से आपको दिख रहा है, महल को ठीक करके दिखाऊंगा आपको, द हाउस इज ब्यूटीफुल,
2: कितना ब्यूटीफुल है ना,
1: और उसको मैंने इतना सुंदर वही चीज बनी आज देखी आप,
2: बस सिंपल। अब ये अब आप सारा दिन अगर याद रखें हर आत्मा के लिए, तो ये है बहुत सुंदर, अभी उन्होंने उसको ठीक से नहीं रखा हुआ, थोड़ा
1: साफ कर लेंगे हम, ठीक कर लेंगे।
2: मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम उनको कहाँ साफ कर लेंगे, हम उनको यहाँ साफ कर लेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। कई बार हम उनको वहां नहीं साफ कर सकते ना, क्योंकि वो उनका जीवन जीने का तरीका है। आप राय दे सकते हैं, लेकिन फिर भी वो उनका जीवन जीने का तरीका है। लेकिन हम उनको यहाँ रखने से पहले कि हम अपने चित्त पर उनके बारे में क्या स्टोर करके रखेंगे, वहां साफ करके रखना ये हमारी चॉइस है।
1: सुबह राय तक नहीं थी उसको कि नेवर से डल टू एनीबॉडी लाइक दिस इन द
2: मॉर्निंग, सही बात है,
1: राय भी नहीं थी,
2: नहीं, कुछ भी नहीं बोला,
1: एक्सेप्टेड, ठीक है, कोई बात नहीं, निकलो काम करते हैं शूटिंग पे, मुझे अपना काम से मतलब डिस्टर्ब हो गया।
2: एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ जब रजिस्टर करना है वो ध्यान से रजिस्टर करना है, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ बैठा होता है चित्त पर। इसीलिए वो जो लाइन है ना, क्लास टू वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन, वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन मीन्स फिर वो बात कभी याद ना आए, वो मेमोरी वो तब याद नहीं आएगी अगर उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ अच्छी वाली रखी होगी। अगर ये रखी होगी कैसा व्यक्ति है, मैं ऐसे बोल दिया सुबह सुबह, इतना भी नहीं आता, तो जब भी वो दिखेगा तब वो बात याद आ जाएगी, या जब भी वो कोई और लाइन भी बोलेगा जो इतनी गलत होगी भी नहीं, लेकिन हमारा फिल्टर कौन सा वाला होगा जो पुरानी वाली बात रखी थी।
1: बढ़िया, तो मैजिक था, मैंने एक शब्द नहीं बोला और यहाँ एक सेकंड के लिए भी हाँ। उसके लिए बुरा नहीं सोचा।
2: तो फिर अब हम नहीं कह सकते ना कि ये डिफिकल्ट है। देखो
1: यही आज से कुछ साल पहले कोई बोलता तो मैं, तुमको अकल नहीं है हाँ। ये तुम्हारा बिजनेस है हाँ। तुमको मैं बड़ा होकर समझा रहा हूँ क्योंकि तुम छोटे हो, ये और वो, किसी को डल बोलते हो, हाँ मैं गंदा लग रहा हूँ, देखो ठीक है, और फिर नेक्स्ट टाइम डोंट कम टू पिक मी अप,
2: कुछ भी बोल सकते थे। और इतना कुछ बोल के क्या क्या कर देते, वुड बी हैव वॉक्ड अवे विद क्लास फ्रॉम दैट सिचुएशन।
1: यहाँ ये शूटिंग भी नहीं कर पा रहे, इतना मूड ऑफ हो जाता।
2: सही बात है। तो उसने तो सिर्फ बोला आप डल दिख रहे हो, हम तो डल हो जाते फिर उसके बाद। दिस इज हाउ वी लेट इट अफेक्ट अस, दैट्स व्हाई दैट लाइन इज सो इम्पोर्टेंट, वॉक अवे विद क्लास फ्रॉम अ सिचुएशन, डिग्निटी से, रॉयल्टी से। हर बार बात हमारे ऊपर हावी हो गई, हम डल हो गए, हम नाराज हो गए, हम उदास हो गए, तो फिर डिग्निटी कहाँ रही, फिर हमारी रॉयल्टी कहाँ रही। रॉयल मतलब वो जो ऊंचा होता है ना। हम ही अगर सबके सामने हारते गए तो हम कितना नीचे गिर जाएंगे। इसलिए आज सारा दिन याद रखना है, ये विघन विघन नहीं है, यही मेरे जीवन का रास्ता है। व्हाट्स इन द वे इज द वे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको यहाँ लाया भी कौन, इस सीन को सामने लाया भी कौन, मैं खुद। इट्स ओनली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ पास्ट कर्मा। गेम का इस बार का शॉट कैसा होना चाहिए, परफेक्ट, चाहे पहला शॉट कैसे भी था, क्योंकि पहले शॉट का रिटर्न ही सामने से आ रहा है। डजंट मैटर, मेरा इस बार शॉट गलत नहीं होना चाहिए, ये करके अगर चलेंगे तो हर परिस्थिति को बहुत रॉयल्टी और डिग्निटी से फेस करेंगे।
1: थैंक यू सो
2: मच। ओम शांति।
1: ओम शांति। ओम शांति।
3: हैविंग क्लास is the ability to walk away from a bad situation with a smile on your face and forgiveness in your heart. Walking away from the situation means it does not leave any hurt on our mind. If we clean our mind of the impact of the situation, only then we have walked away. When we do not resolve issues of the past and heal the pain and forgive the people, the hurt and the past impression remains on the soul. We then refer to the past in the future and influence the future with the energy of the past. Power to face a situation means not to get entangled, not to hit back, not to magnify, not to blame, not to complain. Power to face means focus on the solution, which is to resolve the situation. And if nothing can be done, then to accept the situation with dignity. There are obstacles, hurdles or people who come in our life and we feel that it is because of them our life is not a happy and smooth journey. With our past karma, we scripted our present life to have them in our way. Accept them and walk smoothly around them.
2: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 559 660.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर। ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: दीवाना।
3: एक दीवाना शहर में।
2: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।

0: पुनेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले, पुनेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले।
1: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
2: अजी सुनते हो?
3: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
2: क्या सुन रहे हो?
3: रेडियो पुणेरी आवाज।
2: ओ रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
4: नमस्कार, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना MP छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं दान की ईश्वरीय विधि। दान का अर्थ क्या होता है इस पे आज हम चर्चा करते हैं। दान अर्थात क्या होता है? देना। इससे सारी सृष्टि चल रही है। अगर सृष्टि का नियम देने की जगह लेना अगर कर दिया जाए तो सृष्टि का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। परमात्मा पिता ज्ञान गुण और शक्तियों के सागर हैं, परंतु जब वे इनका दान विश्व को देते हैं तभी वे रघुपाल पालनहार और भगवान कहलाते हैं। उन्हें ही क्या कहते हैं? भगवान नाम से हम गाए जाते हैं। वो देने का अर्थ है सफल करना। देने का अर्थ क्या होता है? सफल करना। कोई भी वस्तु शक्ति सफल करने पर ही प्रतिफल देती है। किसान एक दाना बीज बोकर सफल करता है तो बदले में कई दाने पाता है। जो बीज सफल ना की जाए वह विफल ही सड़ जाती है। यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति सोचकर काम ना करे कि इससे उसके पास ताकत जमा होकर वह हाथी जैसा बलशाली हो जाएगा तो यह भ्रम है। वास्तविकता यह है कि उसका शरीर और ही निष्क्रिय एवं आलसी हो जाएगा। यदि कोई

भी को चिंतन और सीखने में प्रयोग ना करे तो यह कुंद हो जाएगी। संबंधों को परस्पर प्रेम व्यवहार से सफल ना किया जाए तो उनमें मनमुटाव और निरस्ता पैदा हो जाएगी। धन को भी उपयोग प्रयोग और सहयोग करके सफल ना किया जाए तो वह भी क्या होता है, अभिशप्त हो जाता है। वह संपन्नता की अनुभूति की जगह लोभ और तृष्णा का बोझ बन जाता है, उपयोग में निज काम में आता है, प्रयोग में कार्यों को सिद्ध करता है और सहयोग में क्या होता है, जगहित द्वारा पुण्य जमा करने का साधन बन जाता है। नहीं तो लोभी के प्राण उसके धन में बस जाते हैं, वहीं लोभ उससे अन्याय और शोषण कराता है। हाँ, किसी जमाने में लोभ के कारण लोग क्या करते थे, ना धन कहीं गाड़ कर छुपा देते थे। पुराने लोगों की ऐसी क्या होती थी, मान्यताएं रहती थी कि ऐसे गाड़े हुए धन पर नाग बैठे रहते हैं, तो उस धन को पाने वाले व्यक्ति को चैन से जीने नहीं देते। अब समझा जा सकता है कि गड़े हुए धन के ऊपर जमीन के अंदर तो कोई नाग नहीं रह सकते। उसे लोभी की लोभ वृत्ति ही नकारात्मक ऊर्जा के रूप में नाग की तरह धन में बसी रहती थी। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपसे फिर आकर मिलती हूँ। तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और हमारा आज का विषय है दान की ईश्वरीय विधि। तो बिना सोचे समझे किया गया दान कई बार बुराई के खाते में आ जाता है। विवेकशील जो व्यक्ति होते हैं अपना समय, संपत्ति और शक्ति सूझबूझ से शुभ कार्यों में सफल करता है। सरकार भी आज क्या जोर देती है कि अनावश्यक भिक्षावृत्ति को बढ़ावा न दिया जाए। आपराधिक तत्वों द्वारा बलपूर्वक बच्चों या कमजोर लोगों द्वारा भिक्षावृत्ति कराना, सक्षम होते हुए भी कुछ न करने की प्रवृत्ति के कारण निम्न बुद्धि वाले लोगों द्वारा अपने ही बच्चों को भिक्षावृत्ति में लगा देने की प्रवृत्तियां आज क्या हो रही है, समाज में बहुत बढ़ चुकी है। अच्छी भावना रखने के बाद भी बिना सोचे समझे किया गया दान कई बार पुण्य की जगह बुराई के खाते में ही चला जाता है। हालांकि कई बार समाज सेवी संगठन ऐसे पिछड़े और बेसहारा लोगों को शिक्षित करने, उन्हें भोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसी सेवाएं भी कर रही है, जिससे स्थितियों में काफी सुधार भी हो रहा है। बुद्धिजीवी वर्ग ऐसे प्रयास क्या करते हैं, उनके जो ऐसे प्रयास होते हैं बुद्धिजीवी लोगों के, ये सराहनीय भी है। लेकिन ऐसा तब संभव है जब सभी अपनी इच्छा से और सोच समझ कर कार्य करें। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद में फिर आपसे आकर मिलती हूँ। तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार, तो मैं ज्योत्सना फिर से आपका स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। और हमारा आज का विषय है दान की ईश्वरीय विधि। एक सफल करने की भी विधि होती है। हाँ, सफल करने की सर्वश्रेष्ठ और अनोखी विधि है। समय की मांग देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, परमात्मा पिता हमें क्या करते हैं, सफल करने की सर्वश्रेष्ठ और अनोखी विधि सिखाते हैं, जिससे परिणाम भी सर्वश्रेष्ठ आते हैं और जीवन ही क्या होता है, जीवन ही पुण्यशील बन जाता है, आत्मा महान सौभाग्यशाली बन जाती है। हाँ, आत्मा क्या होते है, सौभाग्यशाली बन जाती है। इसे एक उदाहरण के द्वारा हम गहराई से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में 10,000 लोगों को भोजन कराता है। इसके लिए उसने काफी परिश्रम किया और लोगों की दुआएं भी ली। कोई भी व्यक्ति खुशी से भोजन के लिए हाथ नहीं फैलाता। दुर्भाग्यवश उसे भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। आत्मा अपने बुरे संस्कार और कर्मों के कारण अपनी पुण्य और शक्तियों की पूंजी गवाकर भाग्यहीन और लाचार होकर दूसरों पर निर्भर हो जाती है। परमात्मा हमें ऐसी सेवा करना सिखाते हैं जिससे मनुष्य का दुर्भाग्य, बुरे संस्कार व बुरे कर्म समाप्त हो जाए। वे गुणों की धारणा कराकर जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाते हैं। व्यसन, जुए, दुश्चरित्र आदि बुराइयों से में जो फंसा हुआ व्यक्ति है, परमात्मा का सत्य परिचय पाकर परमात्मा से संबंध जोड़कर अपनी सारी बुराइयों को त्यागने में सक्षम हो जाता है, एक अच्छे जीवन की शुरुआत कर लेता है। उसके साथ उसका परिवार भी है। जीवन बदलने के बाद अब वो क्या होता है, मोहताज होकर उसे दो रोटियां नहीं जुटानी, बल्कि वह मेहनत से अपना और सारे परिवार का पेट भरता है। ऐसा जो होता है, ऐसी सेवा का पुण्य कितने भूखे लोगों को भोजन कराने के बराबर हो गया। पूरे परिवार को ही भूखे रहने और मांगने की दुर्गति से बचा लिया। हाँ, साथ ही उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गया। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर आपसे आकर मिलती हूँ। तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। मैं ज्योत्सना एमपी छत्तीसगढ़ से, और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए, हाँ, आज का हमारा विषय है दान की ईश्वरीय विधि। कम समय में बिना स्थूल धन खर्च किए भी ज्ञान धन का दान देकर सहज ही कितना पुण्य अर्जित किया जा सकता है, इसका हिसाब लगाना भी मुश्किल है। हाँ, जो मनुष्य आत्माएं पुण्य की यह श्रृंखला शुरू करके अपनी सेवाओं द्वारा इसका विस्तार करती जाती है, वे पदम पदम भाग्यशाली बनती जाती है। इससे दीप से दीप जलाते चलो की पंक्ति साकार हो रही है। हमारा सभी मनुष्य आत्माओं से निवेदन है कि वे इस अनोखे भाग्य के खजाने को जमा करने की विधि सीख ले, जिसका एक ही विधि है राजयोग। राजयोग विधि सीखने के लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर अवश्य जाएं और वहां जाकर जरूर राजयोग की विधि सीखें। जो भी पुण्य कर्म और सामाजिक सेवाएं आप कर रहे हैं, उनके साथ साथ परमात्मा द्वारा दी गई श्रीमद् प्रमाण आध्यात्मिक सेवा से भी अपना जीवन सफल करें। बस याद रहे, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि पुरुषोत्तम संगम योग की अनमोल जो ये घड़ियां हैं, अब अपनी पूर्णता के चरण तक आ पहुंची है और समय बहुत थोड़ा है। तो इसी के साथ मैं अपना आज का कार्यक्रम यही समाप्त करती हूँ, और हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या, यहां नहीं कर सकते, यहां नहीं कर सकते। क्यों स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई, क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आप जाइए, वहां वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, लेट्स से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ख्वाबों का सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर ख्वाबों का सफर। मैं हूं आपका हम सफर और आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ फिर से एक बार रीबा जी हमारे साथ हैं। आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार सनी, आपको और हमारे बहुत ही प्यारे लिसनर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: जी जी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप प्यारे प्यारे कलेक्शंस लेके आते हैं 50s एंड 60s के, तो हमारे श्रोता भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि पुराने इतने प्यारे गाने कितने सुंदर है। तो आइए कहते हैं, तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किल में अकेला इंसान डगमगाता है, कांटों से घबराना मत मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है।
2: जी, बहुत सही कहा आपने।
1: जी जी,
2: और ये दोस्ती के ऊपर ही मैं ये पहला गाना लेके आई हूँ। ये इसमें है, लव स्टोरी है, ट्रायंगल है, और बहुत ही प्यारा गाना है। ना आदमी का कोई भरोसा, ना दोस्ती का कोई ठिकाना, दो प्यार करने वालों के बीच में एक दोस्त आ जाता है, और कैसे वो कुर्बानी देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही प्यारे लिरिक्स हैं इसके, और फिल्माया गया बड़ा सुंदर ढंग से फिल्माया गया है। इसमें वहीदा रहमान जी की एक्टिंग बड़ी सुंदर है और दिलीप कुमार की एक्टिंग तो चार चांद लगा रही है। बहुत ही प्यारा गाना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। बहुत ही अच्छा गीत आपने याद कराया। ये आदमी इस एल्बम से है जो 1968 में रिलीज हुई थी, और इस फिल्म में दिलीप कुमार, मनोज कुमार, वहीदा रहमान, प्राण ने काम किया था। और मनोज कुमार, दिलीप कुमार की जो है एक दोस्ती जो है बहुत ही अच्छी बताई है इसमें। और यहाँ पर एक जुनूनी युवक की कहानी इसमें बताया गया है, और बीच में एक दुर्घटना हो जाती है जो एक क्लाइमेक्स का रोल प्ले करता है इस फिल्म में। भीमसेन जी के निर्देशन में ये फिल्म बनी थी। नौशाद साहब का बहुत ही खूबसूरत संगीत इस फिल्म को मिला है, और जो गाना आपने याद किया है, ना आदमी का कोई भरोसा, ना दोस्ती का कोई ठिकाना, शकील बदाई साहब ने इसे लिखा है और मोहम्मद रफी साहब ने गाया है आदमी इस एल्बम का। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत में आपके लिए, आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ख्वाबों के सफर में। और बहुत ही प्यारा सा सफर शुरू हो चुका है आदमी इस एल्बम का। ये बहुत ही खूबसूरत गाना मोहम्मद रफी साहब की आवाज में आपने सुना। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक गीत की तरफ। तो मैं चाहूंगा विभा जी, आपके पास अगला गाना कौन सा है?
1: ये गाना भी बहुत प्यारा गाना है। जो पिछला गाना सुनते हुए मुझे लग रहा था, इसमें कैसे कि इसमें दुख भी है, तंज भी था वो आदमी फिल्म के गाने में। इसके बोल बीच में थे जैसे मेरे ही घर के चिराग ने खुद जला दिया मेरा आशियाना। कभी कभी गलतफहमियां और कहां इंसान को ले जाती हैं, पर उसको पीछे छोड़ते हुए मैं एक सुंदर सा मीना कुमारी पे फिल्माया गया गाना लेके आई हूँ। ना बोले ना बोले ना बोले रे, घूंघट के बट ना खोले रे। इसमें मीना कुमारी बहुत ही अटकेलियां करती हुई, नाचती गाती हुई इस गाने को गा रही हैं, जैसे अपने आप को राधा और महबूब को कृष्ण का नाम देते हुए कैसे वो घूंघट के साथ खेलती हुई इस गाने को गा रही हैं। कुल मिला के बहुत सुंदर गाना है ये भी।
0: चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है। आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। और ये आज़ाद 1955 में फिल्म आई थी। और इस गाने को भी राजेंद्र कृष्ण साहब ने लिखा है, लता मंगेशकर ने गाया है। सी रामचंद्रन का बहुत ही खूबसूरत संगीत इस फिल्म को, इस गाने को मिला है। तो कहते हैं संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। और ऐसा भी कहा गया, जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास भी रचा है। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया आजाद इस एल्बम का, और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मस्ती और चुलबुल भरा गाना था। एक अमीर आदमी की कहानी यहाँ पर बताया गया है, और आजाद नाम का व्यक्ति जो है कुछ डाकुओं के साथ भिड़ जाता है और वहां पर एक मुश्किल सिचुएशन क्रिएट होता है, और पूरी फिल्म इसी पे बनी थी। ये श्री रामलू नायडू का निर्देशन में ये फिल्म बनी थी, सी रामचंद्रन का संगीत से सजा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और कौन सा खूबसूरत गाना आपके पास है?
2: पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी सनी, आपकी शायरी बहुत इम्प्रूव होती जा रही है, बड़ी अच्छी अच्छी शायरी आप इन बिटवीन बोल रहे हो, मैं बड़ा एंजॉय कर रही हूं।
1: थैंक यू सो मच जी।
2: अगला गाना है ना छेड़ो कल के अफसानों को, करो इस रात की बातें। ये भी मोहब्बत भरा गीत है, और इसमें पुराने बीते हुए टाइम को पीछे छोड़ते हुए आज की खुशियां मनाने।
1: जी विभा जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है। रात और दिन एक एल्बम आई थी, फिल्म आई थी 1967 में, और ये जो फिल्म है नरगिस, फिरोज खान, प्रदीप कुमार, के एस सिंह पर पिक्चराइज किया गया था। उस जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट ये फिल्म रही होगी, और मुझे लगता है कि सत्यन बोस का ये निर्देशन में फिल्म बनी थी। अख्तर हुसैन इसके कहानी को लिखा था, और ये कहानी जो है थोड़ा सा अलग हटके हैं, रात और दिन आप समझ सकते हैं। और शंकर जयकिशन साहब ने इस फिल्म को संगीत दिया था। तो इस फिल्म का जो गाना आपने याद किया है, जिसे शैलेंद्र साहब ने लिखा है, लता मंगेशकर जी ने गाया है, और शंकर जयकिशन साहब ने संगीत से सजाया है। तो आइए सुनते हैं इस खूबसूरत गीत को। आप सुनाए हैं रेडियो पुनीरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ख्वाबों के सफर में। और हमारे साथ विभा जी हैं और बहुत ही प्यारे कलेक्शन वो सुना रही हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कहते हैं, जो खैरात में मिलती कामयाबी, तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर न होती किसी उनर की और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। इसीलिए कामयाबी पाने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है और सबको नहीं मिलती, क्योंकि सबके पास वो हुनर नहीं होता। आइए आगे बढ़ते हैं विभा जी, अब अगला गाना कौन सा आप हमारे श्रोताओं को सुना रहे हैं?
1: सनी, आपने ठीक कहा कि कामयाबी पाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है, और यहाँ आशा पारिक मशक्कत कर रही है अपने महबूब को मनाने के लिए और कह रही है, ना जाओ मेरे हमदम सुनो वफा की पुकार। तो ये पूरे कड़कपन से पहले अपने महबूब को नाराज कर देती हैं और फिर उनको पाते हुए गा रही हैं, साथ ही अपने महबूब को प्यार का वास्ता दे रही हैं और वो अपना आने को कह रही हैं। तो कुल मिला के बहुत सुंदर गाना है और अच्छी तरह फिल्माया गया, बहुत ही खेतों में नेचर में दिखाया गया ये गाना है। उदासी के जुल्फों को महका दूंगी, तेरी सुनी सुनी बाहों में मुखड़ा सजा दूंगी, अब आएंगे तो लौटेंगे तेरे ना लौटेंगे तेरे कदम। बहुत अच्छे लिरिक्स है ये।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया, विद लिरिक्स याद कराया है। तो आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोता इस गाने को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और आपने जिस गाने का याद कराया है, ये एक फिल्म आई थी प्यार का मौसम 1969 में, और ये फिल्म जो है राहुल देव बर्मन, शशि कपूर, आशा पारेख और निरुपमा राय पर पिक्चराइज किया गया था। और इसमें ये गाना है, आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। जी हाँ, बहुत ही प्यारे प्यारे गाने आप सुनाए हैं। और भी जो अभी जो गाना आपने सुना प्यार का मौसम, इसमें भी एक प्रेम कहानी है और ये बड़ी अलग टाइप की कहानी बताई गई है। एक लड़का को एक लड़की से प्यार होता है, कॉमन बात है, लेकिन जब लड़की को पता चलता है कि लड़के का असली नाम कुछ और है, तब उसे जो है वो मुश्किल फील करती है। ये चीजें जब पता चल जाता है कि कोई और लड़का का नाम इसने रख के मेरे से प्यार किया, तो उसे धोखा ऐसा फील होता है। तो यहाँ पर एक क्लाइमेक्स बताया गया है। तो नासिर हुसैन साहब ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, प्यार का मौसम का, जो गीत अभी आपने सुना। तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत गीत की तरफ हम लोग चलेंगे अभी। और विभा जी, कौन सा है अगला गाना आपके पास?
1: अगला गाना भी रोमांटिक है, हरी और रजिंद्र कुमार पे फिल्म आया गया गाना है। न जाने कहां तुम थे, न जाने कहां हम थे, या जादू ये देखो हम तुम मिले हैं। और इसमें यही कि कहां दो इंसान जो दूरियों में रहते हुए भी कैसे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, इसका जिक्र है यहाँ। और इसमें रोमांस है, अपनापन है और शर्म है। रोमांटिक गाना होते हुए भी इसमें हर पहलू को दिखाया गया है, एक नेचर को भी दिखाया गया है। और बहुत ही प्यार भरा गाना, दोनों महबूब और महबूबा दोनों ही प्यार में कैसे एक दूसरे को दूर होते हुए भी पास हो जाने का एहसास दिला रहे हैं।
0: जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है। जिंदगी और ख्वाब 1961 में ये फिल्म आई थी, जो राजेंद्र कुमार, मीना कुमारी, जयंत आगा इन पर पिक्चराइज किया गया था। ये फिल्म कमल अमरोही साहब की लिखी हुई है और इसे एस बैनर्जी साहब ने डायरेक्ट किया था। ये उस समय की सुपरहिट फिल्म, क्लासिकल फिल्म है, और दत्ताराम वाडकर ने इस फिल्म को म्यूजिक से सजाया था। तो आइए इस फिल्म का ये गाना अभी आपके लिए, और जिसे खास प्रदीप कुमार जी ने लिखा था और सुमन कल्याणपुरी मन्नाडे इस गीत को गाए थे। दत्ताराम जी का खूबसूरत संगीत से सजा ये अगला गाना आपके लिए खास। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जाने कहां तुम।
1: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ख्वाबों के सफर में। कहते हैं चले हैं जिस सफर पर उसका कोई अंजाम तो होगा, जो हौसला दे सके ऐसा कोई जाम तो होगा, जो दिल में ठान ही ली है कामयाबी को अपना बनाने की, तो कोई ना कोई इंतजाम तो होगा। जी विभा जी, अगला गाना कौन सा है हमारे श्रोताओं के लिए आपके पास?
2: ये गाना है ना जाने क्यों हमारे दिल को तुमने दिल नहीं समझा, ये शीशा तोड़ डाला प्यार के काबिल नहीं समझा। ये गाना शिकायत भरा एक गाना है जो धर्मेंद्र अपनी महबूबा को गाते हुए ये अपने भाव प्रकट कर रहे हैं और मीठी से शिकायत कर रहे हैं। तड़प दी भी तो ऐसे दी कि मुश्किल हो गया जीना।
1: जी जी जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है, मोहब्बत जिंदगी है इस एल्बम से ये गाना है। ये गाना जो है HS बिहारी साहब ने लिखा था, मोहम्मद रफी साहब ने गाया है, OP नैयर साहब का बहुत ही खूबसूरत संगीत से सजा ये गाना अभी आप सबके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना, जिंदगी मोहब्बत जिंदगी है। जी हाँ, ये जो फिल्म थी इसमें कहानी जो है थोड़ा सा अलग था। एक व्यक्ति है जिसको खास जेल की सजा हो जाती है और फिर आश्चर्य ये होता है कि जब उसे सजा मिलती है तब उसके ऊपर वो इल्ज़ाम लगा होता है और बाद में जब पूरी जांच पड़ताल होती है फिर से रिवर्व किया जाता है तो वो व्यक्ति जो है बेकसूर निकलता है। तो इस तरह की कुछ अलग कहानी इसमें बताने की कोशिश की है। जगदीश निरूला ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया था, ओपी नैयर साहब ने संगीत से सजा था, इस फिल्म के म्यूजिक को सजाया था और मुस्तक जलीली ने इस कहानी को लिखा था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारी बातें, प्यारे प्यारे गाने आप सुन रहे हैं 50s एंड 60s के। अब विभा जी, अगला कौन सा गाना है आपके पास?
2: अगला गाना भी प्यार करने वालों की क्या अजीब सी मांग होती है कि मीना कुमारी, बहुत ही प्यारा गाना है और ये मीना कुमारी की सुपरहिट गानों में से एक गाना है। उनकी एक्टिंग कमाल की है। ये गाना है, ना जाओ सैया छुड़ा के भैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। वो दुल्हन की तरह सजी हुई है, एटमोसफेयर बहुत ही रोमांटिक है और अपने पति को और अपने जिनको वो प्रीतम भी मानती हैं, नशे में धुत होते हुए भी उनको पकड़कर अपने पास ही रहने की बात कर रही हैं। बहुत ही नशीला गाना है।
1: जी जी जी, सही पहचाना आपने। और साहेब बीबी और गुलाम जो 1962 में आई थी, ये सुपरहिट फिल्म बनी उस समय की और इसमें जो कलाकार थे जैसे कि आपने बताया मीना कुमारी, गुरुदत्त, वैदा रहमान और रहमान साहब ने काम किया था और इनकी जो है बहुत ही अच्छी ये फिल्म बनी। और उस समय एक थोड़ी सी इसमें जो अलग चीज बताई गई, एक अयाश आदमी की पत्नी की कहानी जिसको बयां करना है इसमें, और ये सारी चीजें जो है घर के अंदर जो माहौल बनता है और अमीर आदमी होने के नाते वो बहुत समय तक बाहर रहता है तो चीजें कुछ अलग बन जाती हैं। आबरा अलवी साहब ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, विमला मित्रा ने इसकी कहानी लिखी थी और हेमंत कुमार मुखोपाध्याय इस फिल्म को संगीत से सजाया था। तो आइए इस फिल्म का ये गीत जो बहुत ही खूबसूरत गाना है, टची गाना है, सभी को अच्छा लगता है, तो आइए सुनते हैं इस खूबसूरत गीत को। शकील बदायूं का लिखा, गीता दत्त का गाया, हेमंत कुमार का संगीत से सजा ये गाना अभी आपके लिए। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया विभा जी। मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोता खुश हो गए होंगे। आइए, अब आखिरी मोड पे हम लोग पहुंचे हैं, तो अगला गाना कौन सा है आपके पास?
2: अगला गाना है ना झटको जुल्फ से पानी ये मोती फूट जाए। ये बारिश की रात में फिल्माया गया गाना है और इसके बोल बड़े प्यारे हैं। इसको कैसे महबूब अपनी महबूबा के लिए, उनके इवन पानी की बूंदें टपक भी रही हैं तो उसको भी कैसे मोतियों का नाम देते हुए अपनी शायरी अपने लफ्जों को प्यार में लपेट के महबूबा तक पहुंचा रहे हैं। और महबूबा बड़े प्यार से उसको सुन के शर्माती हुई इस गाने का लुत्फ ले रही है। और इसके बोल, हाँ, हमारी जान ले लेगा ये नीची आंख का जादू, चलो अच्छा हुआ मरकर जहाँ से छूट जाएगा।
1: जी जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है। राजेंद्र कृष्ण साहब का लिखा, मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ, रवि साहब का बहुत ही खूबसूरत संगीत से सजा ये गाना है। ये शहना ही इस एल्बम का गाना है जो 1964 में रिलीज हुई थी। और ये एक फिल्म है जिसमें वायुसेना के अधिकारी का एक प्रेम कहानी दिखाया गया है और अपने कर्तव्य को निभाने के लिए वो किस तरह से फिर अपने परिवार को छोड़कर अपना कर्तव्य करने के लिए जाता है, अपना कर्तव्य पालन करता है देश के प्रति। तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई है और देश सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति भी देता है। तो चलिए, ये SD नारंग साहब का निर्देशन में बना फिल्म बहुत ही पॉपुलर फिल्म रही। इसके कलाकार थे विश्वजीत राय, राजश्री, जॉनी वॉकर, निरुपमा रॉय इस फिल्म के कलाकार थे। चलिए, अब वक्त हो गया है आप सभी से इजाजत चाहने का। और जाते जाते विभा जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही प्यारे कलेक्शन आज के इस एपिसोड में हमारे सभी श्रोताओं को सुनाया, एंड बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी धन्यवाद सुनी, आपका और हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं का जिन्होंने बड़े प्यार के साथ हमें सुना और अपना कीमती टाइम देके हमारे साथ ये वक्त गुजारा, मैं उनके आभारी हूँ। और आपको भी शुक्रिया करती हूँ, आपने मुझे मौका दिया इस शो में आने का।
1: जी जी, शुक्रिया आपका, बहुत ही अच्छा लगा, आपने बहुत ही अच्छे कलेक्शंस को सुनाए। और जाते जाते दो लाइनें हमारे सभी श्रोताओं के लिए और इसी के साथ मैं चाहूंगा इजाजत। कहते हैं, आज बादलों ने फिर साजिश की, आज बादलों ने फिर साजिश की, मेरा घर मिट्टी का था, मेरे ही घर बारिश हुई। आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। Lifestyle is not only about what we are eating, drinking, wearing. Lifestyle is about what we are thinking, speaking, behaving. That's my lifestyle.
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरवसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होके बात कर ही लेनी है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, व्हेरेवर एंड फॉर हाउएवर लॉन्ग आई वांट, सो देन इट्स माय चॉइस, सो नाउ इट्स योर चॉइस। आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन, आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत

0: स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
3: रेडियो मधुबन 90.4 FM पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यशस्वी भारत। भारत का जो गौरव है वो देश और दुनिया तक फैला है, लेकिन दोस्तों भारत का गौरव फैलाने वाले कौन हैं? कुछ ऐसे भारतीय जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी कलाओं को ऐसा निखारा, ऐसा उन्होंने उभारा कि भारत ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में उन्होंने अपना साथ साथ देश का नाम रोशन किया।
4: एक ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने अपने जीवन को खुद संवारा, जिन्होंने अपने ही नहीं बल्कि कई जीवन को संवारा, जिन्होंकि आप अगर लाइफ स्टोरी सुनेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक व्यक्ति अगर ठान ले तो वो क्या नहीं कर सकता, अपना क्या लाखों जीवन वो परिवर्तित कर सकता है। और उनकी इंस्पायरिंग बेहद बहुत मुझे लगता है महिलाओं को जरूर सुननी चाहिए ये कहानी। हमारे साथ जी हाँ पद्मश्री उषा चौमर जी हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट हैं सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की, जो अपनी कहानी हम उनके मुँह से सुनेंगे, तो बेहद लकी हैं हम। उषा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
5: ओम शांति जी, बहुत खुशी हो रही है और बहुत मुझे अच्छा भी लग रहा यहाँ पर आए में ब्रह्मचारी कन्याकुमारी की धरती पर, तो मुझे इतना सुकून मिला और इतनी खुशी हो रही है कि मेरी जिंदगी में शायद मुझे कभी ऐसी खुशी नहीं मिली होगी, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, 7 साल की थी, मेला ढोने के लिए जाती थी मम्मी के साथ, तो बस मेला ढो रही थी। फिर मेरी 10 साल की थी, तो मेरी 10 साल की उम्र मेरी शादी हुई बड़े वाली दीदी के साथ, तो 4 साल के बाद मेरा गौना किया, तो वहाँ पर तो मम्मी के साथ मुझे मेला ढोने का काम करने को मिला। जो ससुराल में आई अलवर में, तो माँ मेरी सासू माँ के साथ काम करने को मिला मेला ढोने, तो मेरी जिंदगी में तो कोई बदला भी नहीं, सिर्फ हम लोगों को क्या था घर बदला, काम तो वही था, तो वही काम मैं कर रही थी। जैसे कि उनके घर काम करती थी तो वो लोग ऊपर से पानी पिलाना, ऊपर से खाना देना, बासा हुआ खाना देते थे वो लोग, ऊपर से पैसे फेंक के देना, ऐसा उन लोगों का व्यवहार था। लेकिन बस उसी जिंदगी में जी रहे थे, तो पता नहीं हम लोगों को किस तरह से भाग्य बदला। और डॉक्टर पाठक जी हमारे अलवर में आए
4: जी,
5: तो उन्होंने हम लोगों से पूछा कि आप ये काम क्यों करते हो। अब देखिए हम लोगों को तो पीढ़ी दर पीढ़ी काम चला रहा था मेला ढूंढने का, तो वही काम हम कर रहे थे
4: जी।
5: तो फिर उन्होंने कहा कोई अच्छा काम करने के लिए दूं तो क्या करोगे तुम। अब देखिए मैम इतना गंदा काम कोई करना नहीं चाहता, जिससे सबको नफरत होती है और घिनौना होती
4: जी।
5: तो हम लोगों ने वो काम छोड़ा, तो वहां पर हम लोगों ने पढ़ना लिखना सीखा, अचार पापड़ जवे कोटन की बत्तियां जूट बैग पार्लर का काम सिलाई कढ़ाई सब सीखा। तो जिससे कि हम लोग सामान बनाने लगे, तो हमने डॉक्टर पाठक जी से कहा कि सर सामान तो हम बनाएंगे लेकिन इसको खरीदेगा कौन
4: जी,
5: क्योंकि हमारे वहाँ पर बहुत छोटी छोटी अलवर में राजस्थान में। तो उन्होंने कहा सामान मैं खरीदूंगा, आप बनाओ तो सही। देखिए आज वही सामान जो हम बना रहे हैं वो तो आज तक खरीद रहे हैं सुलभ, तो लेकिन जिनों के घर में शौचालय कभी साफ करती थी 2003 से पहले, आज वही लोग जो मेरा सामान बना हुआ खरीद के खा रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है, उसी गिलास से मुझे वो पानी पिलाते, उसी चेयर पे वो मुझे बिठाते जब स्वयं बैठते हैं। लेकिन आज मुझे उन्होंने डॉक्टर पाठक जी के ऊपर हम लोगों ने विश्वास किया। देखिए हमारे गांधी जी हैं, मैंने गांधी जी नहीं देखे, मैंने सिर्फ उनमें देखा गांधी जी, और मैं ये कहती हूँ वही हमारे भगवान है, वही हमारे बाबा हैं
4: जी,
5: जिन्होंने हम लोगों की जिंदगी बदली। तो मुझे यहाँ पर आके बड़ी खुशी हो रही और बहुत अच्छा लगा
4: जी,
5: क्योंकि देखिये यहाँ पर मैंने देखा ना तो कोई ऊंच नीच, यहाँ पर बिल्कुल इतना बड़ा मतलब एक संस्था है, यहाँ पर कोई छोटा बड़ा कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, बिल्कुल एक साथ रहे। लेडीजों का सबसे ज्यादा मुझे खुशी होती है क्योंकि लेडीज सबसे आगे हैं, मतलब लेडीजों के हाथ में सारा पावर है यहाँ पर
4: जी।
5: तो बिल्कुल सारी जगह में ये कहती हूँ कि ये नहीं कि भाई हम लोग यहीं पर अपना पावर जमा सकते हैं, हम कहती हूँ लेडीज हर जगह अपना पावर जमा सकती हैं
4: बिल्कुल।
5: तो मुझे यहाँ पर इतना अच्छा लगा और इतनी खुशी हो रही है मुझे कि मैंने देखो कल की आई हूँ यहाँ पर, मैंने अभी तक मेरे बच्चों से बात नहीं की है कि मुझे यहाँ पर आके इतनी शांति मिल रही है, क्या आपको क्या बताऊँ, इतनी खुशी हो रही है मुझे। तो यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही इज्जत और सम्मान दिया इन्होंने मुझे, इज्जत सम्मान हर जगह से मिला है
4: जी,
5: लेकिन जो मुझे आज यहाँ पर मिला है
4: जी,
5: यहाँ ब्रह्म कुमारी में, तो मुझे यहाँ का जैसा सम्मान शायद मुझे नहीं मिला होगा और मुझे बड़ी खुशी हो रही है।
4: हमें बहुत खुशी है उषा जी आज आप हमारे साथ जुड़े, क्योंकि आप एक एग्जाम्पल है
5: जी,
4: कि कैसे बदलाव।
5: हाँ, रोल मॉडल हूँ मैं यहाँ के लिए भी और यहाँ के लिए भी, क्योंकि हम लोगों से पहले जब मैं काम करती थी तो आपको पता लोग अच्छी तरह से नहीं बात करते थे, भंगी क्या के बोलना उनका, जमादार नहीं, मेहतरा नहीं, इस तरह से कहेगा। अब देखिए मैं, हम भी तो इंसान थे
4: बिल्कुल,
5: लेकिन आज ये डॉक्टर पाठक की वजह से, सुलभ इंटरनेशनल की वजह से हम लोगों को इस काम से मुक्ति मिली
4: जी,
5: और आज आपके सामने है कि हर जगह से हम लोगों को सम्मान मिल रहा है
4: जी,
5: तो बड़ी खुशी हुई मुझे। लेकिन मुझे यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुकून मिला मुझे, वो मुझे थोड़ा बोलने के स्टेज में मौका नहीं मिला, कभी फिर कभी आऊंगी, बाबा की कृपा बनी रहेगी तो फिर कभी आऊंगी यहाँ पर और तब स्टेज पे चढ़ तब बताऊंगी कि मुझे कितना अच्छा और कितनी खुशी हो रही मुझे यहाँ पर।
4: बिल्कुल, और मुझे लगता है ये रेडियो के माध्यम से भी बहुत लोग जान पाएंगे उषा जी।
5: जी मैम,
4: वैसे तो आपका नाम सभी जानते हैं
5: जी,
4: आपके बारे में पढ़ा है, जाना है, लेकिन आपके जीवन से जैसे बहुत सारे गांव में लोग हैं जो अभी आपको सुनेंगे या सुन रहे हैं इस वक्त, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे खास तौर से मैं?
5: देखिए महिलाओं को मैं ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ, हम लोग क्या समझते कि बस अपना घर का ही काम करना, हमको अपने बच्चों की पालन पोषण करना, पति की सेवा करनी बस। अब वो नहीं ये समझते कि बाहर जब निकलते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि वो पति के भरोसे रहती है कि पति मुझे ला के देगा, उसमें मैं खुश हूँ। लेकिन मैं कहती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, लेडीज पति के बराबर है, बल्कि पति से दो कदम आगे है
4: जी।
5: तो हम क्यों ना, मतलब ये थोड़ा ना पति के पीछे आएंगे, पति के आगे एक रुपये दो रुपये क्या लगेगा, हाथ पसारेंगे। हमें खुद ना इतना हुनर है लेडीजों में कि खूब कुछ भी काम कर सकती है
4: जी,
5: बहुत अच्छे से। तो मैं सभी लेडीजों से कहना चाहूंगी कि प्लीज बाहर निकले कुछ देखें, जब तक हम लोग बाहर नहीं निकलते तो कुछ हम लोगों को समझ नहीं आता, हम लोग बाहर निकलते बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए विदेशों में देखिए लेडीज से कंपनी चला रही है, एरोप्लेन चलाती है
4: जी,
5: गाड़ी चलाती है, तो अपने यहाँ क्यों नहीं, अपने राजस्थान और इंडिया में क्यों नहीं, वहां पर इतनी साफ सफाई रहती है। अब मैंने यहाँ पर देखा कन्याकुमारी यहाँ पर काफी साफ सफाई
4: जी,
5: और ऐसी जैसे कि हम लोग पहले शौचालय काम करते थे तो डॉक्टर पाठक जी ने हर जगह पर शौचालय बनवा दी वहाँ पर, क्योंकि हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता था जेंट्स, तो आपको पता है कहीं भी मतलब
4: जी जी
5: बैठ जा सकते, लेकिन लेडीज को तो बहुत प्रॉब्लम होती है
4: जी।
5: उन्होंने हर जगह पर पक्के शौचालय बनवाए, तो लेडीज अच्छे से अपने इज्जत से इस्तेमाल करती है, जैसे कि आपको पता शाम को अगर उन्हें परेशानी हो जाए तो जैसे सोचती है कि सूरज छुपे तब हम जाएं
4: जी,
5: अगर दोपहर में पेट खराब हो जाए तो झाड़ियों के नीचे बैठना पड़ता है, गड्ढों में बैठना पड़ता है उनको, और शाम को वो कहते हैं शाम को भगवान, सुबह सुबह 4 बजे से पहले उनको उठना पड़ता
4: है
5: या 5 बजे 6 बजे से पहले, मतलब कितना कि आदमी हमें कोई नहीं देखे
4: जी।
5: तो डॉक्टर पाठक जी ने हम लोगों की इतनी अच्छी से जिंदगी बदली है कि हम लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, और सभी लेडीज से अपने घर में, अब तो शौचालय सबके घर में देखिए। हाँ, तो मैं तो यही चाहती हूँ हर जगह पर शौचालय बनने चाहिए, जो अपने देश के पहले प्रधानमंत्री जी हैं गांधी जी के बाद, जिन्होंने शौच और सफाई की बात की है, और वहाँ डॉक्टर पाठक तो कम से कम 50-60 वर्षों से इस कार्य में लगे कि हर जगह पर साफ सफाई रहनी चाहिए, हर जगह पर शौचालय बनने चाहिए
4: उषा जी,
5: और लेडीजों के आगे रहना चाहिए
4: बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि महिलाओं को दिक्कत ज्यादा होती है पुरुषों से, तो जरूरी है कि महिलाएं भी एकजुट हों, वो भी कई बदलाव ला सकते हैं, इसे आप लेकर आ रहे हैं
5: बिल्कुल मैम।
4: तो उषा जी आप क्या कर रहे हैं, जब ये बदलाव आपके जीवन में आया तो आपने कैसे सोचा कि आपको दूसरों के जीवन के लिए भी कुछ करना है?
5: मैंने बस यही सोचा कि मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूंगी, चाहे मुझे और काम करने को मिले लेकिन ये काम बिल्कुल नहीं करूंगी। जैसे मुझे भी वहां पर विरोध किया गया अलवर में, ये नहीं करूँ तो और क्या करोगे, क्या महारानी बनोगी तुम?
4: अच्छा,
5: तो मैंने कहा चाहे महारानी ना बनू पर ये काम नहीं करूंगी मैं, मुझे बहुत ही गंदा लगता है ये काम, क्योंकि ये काम से मुझे बहुत अपमान मिला। एक तो देखिए उनके शौचालय साफ कर रही हूँ और उस ऊपर से उनका ऊट पटांग बोलना, तो मैम किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम लोगों को तो क्या पहले मजबूरी थी
4: जी।
5: लेकिन बस मैंने यही ठाना मन में कि बिल्कुल नहीं करूंगी और अब ना ही किसी को करने दूंगी ये काम।
4: ये आपने ठान लिया?
5: बिल्कुल बिल्कुल नहीं करने दूंगी, और खासतौर से लड़कियों को ये कहना चाहूँ कि पढ़े वो, क्योंकि जब तक हम लोग पढ़ते लिखते नहीं है तब तक तो कुछ नहीं जानते, लेकिन पढ़ना लिखना ही बहुत जरूरी है। यहाँ पर तो सभी लड़कियां लेडीज से पढ़ी हुई हैं, लेकिन खासतौर से गांवों की बात बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि गांवों में नहीं पढ़ती, थोड़ी सी लड़कियां सियानी होती है तो उसे घर बैठा लेते हैं, तो मैं चाहूंगा वो लड़कियां भी अच्छे से पढ़े लिखे, क्योंकि लड़कियां तो दो दो घर संभालते हैं
4: जी,
5: उनकी शादी हो जाती है तो दूसरा घर भी संभालती है वो
4: जी।
5: तो मैं चाहती हूँ कि अच्छे से लड़कियाँ पढ़े लिखे और लेडीज से आगे बढ़े, क्योंकि लेडीजों में बहुत ताकत है, अगर एक साथ रहें
4: जी
5: तो बिल्कुल जैसे कहते हैं बंद मुट्ठी
4: जी,
5: तो उनमें बहुत ताकत है, बहुत आगे जा सकती है। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मुझे पद्मश्री मिलेगा, मैं सुलभ इंटरनेशनल की प्रेसिडेंट भी हूँ, तो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मुझे पद्मश्री से सम्मानित करा जाएगा भारत सरकार
4: जी।
5: लेकिन भारत सरकार को भी धन्यवाद देती हूँ कि मुझे एक महिला ढोने वाले के लिए इतना उन्होंने सोचा और इस लायक समझा मुझे कि मुझे पद्मश्री से सम्मान कराया उन्होंने। अब उनकी वजह से देखिए मुझे हर जगह पर सम्मान मिल रहा है
4: जी। तो मैं तो आपकी मेहनत है उषा जी, आपका डेडिकेशन
5: जी मैम, तो मैं तो उनको भी धन्यवाद देती हूँ कि मुझे राष्ट्रपति जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने भी मुझे बुलाया और इतना बड़ा सम्मान दिया। तो आज मैं यहाँ पर भी आई हूँ तो कन्याकुमारी में आकर मुझे बहुत ही ब्रह्मचारी कन्याकुमारी में बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मुझे बड़ा सुकून मिला और यहाँ भी मुझे सम्मान मिला। और यहाँ पर तो मैंने ऐसे बिल्कुल देखा कि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि कोई मतलब भेदभाव हो, कोई छुआछूत, तो उसी गिलास में पानी पी रहे वहाँ पर और उसी गिलास हम लोग पी रहे, यहाँ पर कुछ ऐसा है ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर।
4: तब एक ईश्वर की संतान है, कैसा भेद
5: बिल्कुल। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि शायद मैंने एक कर्म करा होगा लेकिन मैंने कभी फल की इच्छा नहीं की, लेकिन मैंने जो कर्म किया ईश्वर जाने
4: जी।
5: तो मैं यही कहती हूँ कि भगवान सबके ऊपर अपना हाथ बनाए रखे और सब में शक्ति दे।
4: उषा जी, आप जो आपने बताया कि सुलभ इंटरनेशनल की प्रेसिडेंट हैं, तो ये आपने सफर कैसे तय किया, कैसे बस आपने काम छोड़ा फिर आपको, आपने शुरुआत की, आपने बताया कि बहुत कुछ सिखाया गया, तो ये प्रेसिडेंट के पद तक आप कैसे पहुंचे, वो कैसा सफर था आपका?
5: ये मैम ये कैसा था कि हम तो वही काम कर रहे थे मेला ढोने का
4: जी।
5: तो जैसे कि हमने काम छोड़ा तो उन्होंने कहा कि हम एक लेडीज को प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं सुलभ का, क्योंकि हम भारत का राष्ट्रपति तो बनाना नहीं चाहेंगे क्योंकि इतना पावर नहीं है हमारे हाथ में। उन्होंने कहा गांधी जी का सपना है कि एक स्केवेंजर महिला भारत की राष्ट्रपति होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा डॉक्टर पाठक जी ने कि मेरे हाथ में इतना पावर तो नहीं है कि तुम राष्ट्रपति बना सको, लेकिन इतना तो कर सकता हूँ कि मेरे सुलभ का प्रेसिडेंट तो तुम्हें बना ही सकता हूँ। तो बहुत सारी लेडीज थी, हम 115 तो हमारे अलवर में लेडीज हैं जो मेरे नीचे काम कर रही हैं वो, और 250 से 300 लेडीज है और एक जगह से है टॉक से, तो सब मेरे नीचे। तो उन सबसे पूछा था कि हम एक लेडीज को प्रेसिडेंट बनाना चाह रहे, तो सबने कहा मुझे तो पता भी नहीं था मैम, तो उन्होंने मेरा नाम लिया कि उषा जी को बनाना चाहते हैं। तो मुझे कहने लगे अरे मैम कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने किस बात की, अरे आपको प्रेसिडेंट बनाया जा रहा, मैंने मुझे क्या पता भाई प्रेसिडेंट का मतलब, क्योंकि पहले मैं तो मेला ढोती थी। 16 में 2003 से मैंने काम छोड़ा, तो फिर उन्होंने कहा अरे तुम बहुत बड़े पद पे जा रही हो, मैं कोई बात नहीं है। तो पत्रकार वगैरह मुझे पूछने लगे कि मैम अब क्या करोगे, इस समझती हो इस चीज के लिए
4: जी।
5: कि भाई तुम्हें जो बनाया गया प्रेसिडेंट इस चीज को मानती हो समझती हो, मैंने कि भाई उनके साथ चलाऊंगी देखूंगी बैठूंगी तो मुझे सब समझ में आ जाएगा। तो मेरे प्रेसिडेंट का मतलब मैम यही है कि कोई भी लेडीज है
4: जी,
5: हमारे समाज की मैं कह रही हूँ इस टाइम, तो वैसे मैं सभी लेडीज को कहना चाहती हूँ ना कि मेरी समाज के लिए, क्यों खासतौर से हम लोगों के समाज के लेडीज मेला ढोने का काम करती है, तो मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि जब से मुझे प्रेसिडेंट सोलह ने बनाया है तो वैसे मैं यही मैं कहती हूँ कि बिल्कुल ये काम नहीं करना हूँ मेला ढोने का
4: जी,
5: मुझे बहुत ही गंदा लगता है ये काम। अरे वो बहुत कुछ सीखना चाहती हैं और जानती भी हैं, अचार बनाती हैं, देख लीजिए वहां पर पापड़ बनाती हैं, चाय बनाती हैं, सब लोग खरीद के खा रहे हैं,
4: कितने टैलेंट है,
5: अपने पैरों पे खड़े हैं, उन्हें एक रोजगार मिल गया
4: जी।
5: क्योंकि सुलभ में हम लोगों को दो जिंदगी जी ली हम लोगों ने
4: जी।
5: जैसे कि मेला ढो रहे थे तो मैं यही कहती हूँ बिल्कुल नरक ऐसा ही होगा, और जब से सुलभ में आए हम लोग तो ये कहती हूँ बिल्कुल मैं स्वर्ग बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो मैं कहती हूँ मुझे तो स्वर्ग भी जाने की जरूरत नहीं, बस भगवान भोलेनाथ कृष्ण जी, क्योंकि मैंने यहीं पर देख लिया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हम लोगों को वहाँ यहाँ पर ऐसा कहा गया कि भाई तुम कौन सी बिरादरी में जाना चाहते हो, तो मैं बोली कि हम लोगों को पंडित ही बनाया उन्होंने, तो उन्होंने कहा तुम तो मत पंडित तो मंत्री बोलते हो उच्चारण करते, मैंने कहा बिल्कुल, तो थोड़ा समय तो मैं बोल देती हूँ।

0: धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। हम बिल्कुल एक अलग ही मूड में चले गए थे और मैं खुद ईश्वर को याद कर रहे हैं, जो शब्द हैं उनके मतलब भी समझे तो हमें बराबरी समझ में आ जाती है, क्योंकि हम सब ईश्वर के
0: संतान।
1: उषा जी, मैं बस लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि हम भारत की उन्नति की बात करते हैं और जब तक भेदभाव है तब तक उन्नति नहीं।
0: बिल्कुल सही।
1: तो आप और कोई ऐसी बात कहना चाहें, क्योंकि आप हैं जो आप में बदलाव आया, जो आप लेके आए हैं बदलाव, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे समाज के लिए, हमारे लिए, हम सभी के लिए। तो आप भारत के लिए क्या सपना देखते हैं, अपने देश के लिए क्या सपना देखते हैं?
0: बस भारत के लिए मैं यही सपना देखती हूँ कि भारत हमारा बहुत आगे जा सकता है, ऐसा नहीं, और जा भी रहा है। क्योंकि हम लोग पहले ये जानते थे कि हमारा मतलब विदेशी आगे जा सकता है, विदेश के लोग, क्योंकि हम लोगों में क्या करता भारत में, क्योंकि हमारा भारत बहुत सी चीज है, ऐसे नहीं कि नहीं है, बहुत सी चीज है, तो उसको हम लोग यूज करते हैं, तो हम बिल्कुल अपने भारत को आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि पहले हम लोग क्या करते थे कि कितनी, आप देखिए अपने इंडिया में कितना मतलब माहौल ऐसा था कि कोई भी चीज खा के वो डाल दिया
1: जी,
0: कोई मतलब लेडीजों की इज्जत नहीं थी
1: जी।
0: जैसे कि अपने यहाँ पर विदेशों में देखिए सब कुछ लेडीजें करती हैं और वहाँ पर साफ सफाई बहुत है, लेकिन अपने यहाँ पर देखिए अब जब से नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए अपने देश में, खूब अच्छे से साफ सफाई यहाँ पर भी हो रही है और अपना भारत भी बहुत आगे जा रहा है, और लेडीजों को भी खासतौर से वो भी सम्मान दिला रहे हैं। जब लेडीजों को सम्मान मिलता है तो लेडीजों का हौसला बढ़ जाता है, तो वो सोचती है कि आज मुझे मिला है तो दूसरी बहन को मैं दिलाऊं। कि जब एक लेडीज निकल के आती है, मैं मेरी बस्ती में सजे से निकल के आई अलवर में, तो देखिए कभी मेरी समाज को कभी नहीं मिला था पद्मश्री, तो आज वो है, मेरा इतना इज्जत और सम्मान करते हर जगह पर, मुझे बुलाते, जो भी कुछ भी वहां पर होता पहले मुझे याद करते
1: जी।
0: तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इतनी खुशी मिलती है कि मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं, मुझे इतनी खुशी मिलती है। तो मैं डॉक्टर पाठक जी को धन्यवाद देती हूँ, वही हमारे बाबा, वही हमारे गांधी जी और वही हमारे भगवान, क्योंकि मैंने तो गांधी जी इतनी उम्र मेरी नहीं है कि मैंने देखे, लेकिन डॉक्टर पाठक जी मैंने देखा, जो भी देखा।
1: लेकिन उषा जी, मुश्किल तो हुआ होगा, चैलेंज तो आया होगा ना, आसान तो चेंज नहीं होता।
0: मैं बहुत मुश्किल से चेंज आया, जैसे कि 2003 से मैंने छोड़ा तो जो शौचालय कच्चे थे दूसरी लेडीज ने पकड़ लिए, फिर दूसरे ने छोड़े तो तीसरे ने पकड़े, फिर मैं डॉक्टर पाटिल जी से कहा कि सर हम लोगों की जिंदगी में तो कोई बदलाव कभी आएगा ही नहीं, नहीं हम बदलेंगे, क्योंकि मैंने छोड़ा तो दूसरे ने पकड़ लिए वो, तो डॉक्टर पाटिल जी ने क्या करा, जो जड़ फैली हुई थी वही उन्होंने काट दी, हर जगह पर उन्होंने शौचालय बनवा दिए पक्के, तो ना तो कच्चे शौचालय है ना ही उन्हें साफ करते हैं उन्होंने, और हम वहां पर अब संस्था में जुड़े हुए हैं सुलभ इंटरनेशनल में
1: जी।
0: तो 2003 से मैंने छोड़ा, फिर 2006 में दूसरी लेडीज ने छोड़ा, फिर 2009 में तीसरी ने छोड़ा, तो हम लोगों ने काम छोड़ दिया, आप इज्जत और सम्मान की जिंदगी जी रहे और आपके सामने यहाँ पर भी आए, हम लोग हर जगह पर सम्मान पा रहे, तो बहुत खुशी होती है कि हम लोगों को, मुझे कि मैं एक मेला ढोने वाले के लिए कल तक कोई पहचान नहीं थी, लेकिन आज कि मुझे सब इज्जत और सम्मान की नजर से देखते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं उनके लिए यही कहती हूँ, डॉक्टर पाठक जी के लिए, कि देखिए उनके जिन्होंने उनको जन्म दिया है, मैं उनको भी सत सत नमन करती हूँ, उनको जन्म दिया इतने मतलब महान एक सपुत्र है उनके, जिन्होंने हम लोगों की जिंदगी बदली।
1: हम भी उन्हें इस मंच के द्वारा बहुत प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, जिन्होंने इतने जीवन परिवर्तन,
0: क्योंकि मैम देखिए ना तो वो हमारे अलवर के रहने वाले थे न ही हमारे समाज के थे, वो दूसरी बिरादरी के है, पंडित है वो, आज तो मैं पंडित खुद ही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने उन्हें कहा कौन सी बिरादरी में जाना चाहते हो, लेकिन आज मैंने यहाँ पर आके देखा
1: जी,
0: ब्रह्मचारी कन्या में, कन्या तो यहाँ पर मुझे कन्याकुमारी में, तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर, बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि इतना अच्छा लगा कि मैम आप, मैं कह नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा लगा है।
1: हमें भी बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि हम सभी परिवार हैं, एक बार जब मिलते हैं सीखने को मिलता है, एंड आपको हम स्पेशली बहुत धन्यवाद देते हैं उषा जी, क्योंकि जो आपने बातें कही यहाँ गांव-गांव तक जाएंगी
0: जी।
1: बहुत सी महिलाएं हैं जो लगता है कि हमारे जीवन में शायद कभी बदलाव नहीं आएगा, हमारी किस्मत में यही लिखा है, लेकिन वो जब ये सुनेंगी तो उन्हें समझ में जरूर आएगा कि किस्मत में ये नहीं लिखा।
0: हमारी किस्मत खुद बदलने वाले हैं,
1: खुद बदल सकते हैं, बस एक कदम बढ़ाना।
0: हाँ, बस लेडीजों को थोड़ा सा घर में से बाहर निकलना, उसके बाद बहुत सी कुछ जान सकते हैं और बहुत आगे जा सकते हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया उषा जी, एंड आपको आगे का भी कार्यक्रम है तो मैं आपका बहुत समय नहीं लूंगी, लेकिन आपका बहुत हृदय से आभार, आप यहाँ आए हमारे साथ अपने अपनी कहानी शेयर की, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।
1: नमस्कार दोस्तों, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और उषा जी की कहानी आप आगे भी एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, एक दूसरे को हिम्मत दीजिए और आगे बढ़िए। रेडियो मधुबन 90.4 FM सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: मित्रांशिवाय आयुष्य पूर्ण हसणं भांडणं आणि गाणं सगळं शेअर करायचं।
3: तेरे जैसा यार कहां, ऐसा यार आला।
2: जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जातं।
4: लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा।
2: मनात पीठ वाजल्या की शरीर आपोआप फिरकतं।
5: I am a disco dancer।
2: त्याच सोबत
6: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध।
7: कोण दिसा मेले की चलारी पटुनिया।
2: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा।
8: पहला नशा, पहला खुमार।
2: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM। आनंदी रहा, आनंद लुटा।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुश

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज़, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: संत कबीरदास का जन्म संवत 1456 और निर्वाण संवत 1575 माना जाता है। उनका पालन पोषण नीमा और नीरू नामक जुलाहे दंपत्ति ने किया था। वे पंडित रामानंद के शिष्य थे और वीतरागी जीवन जीते थे। उनका चित्त राम में रमा था, मगर उनके राम दशरथ नंदन नहीं, शून्य स्वरूप परम तत्व थे। सारा जीवन काशी में बिताने के बाद अंतिम समय वे मगहर चले गए। यही था उनके आचार और विचार से एक होने का परिचायक। कबीर काव्यगत रूढ़ियों के न तो कायल थे और न ही जानकार। उन्होंने कहीं काव्य लिखने की प्रतिज्ञा भी नहीं की। वे पंडित, शेख, अवधू और योगी सब पर आक्रमण करते, लेकिन बदनीयत से नहीं। भाषा उनकी चेरी थी, लेकिन वे शब्दों का आडंबर नहीं रचते। उनके लिए प्रेम ही परम पुरुषार्थ था। आपाद मस्तक प्रेम में भीगे कबीर आडंबर से कोसों दूर थे। वे न पूजा करते, न नमाज पढ़ते, न हज जाते और न तीर्थ। उनका ऐसे लोगों से कोई सरोकार न था जो पढ़ पढ़कर पत्थर हो जाएं, लेकिन जिन्हें प्रेम की एक छींट भी न लगे। कबीर ने अगर कुछ पढ़ा था तो वो थे प्रेम के ढाई अक्षर, और यही ढाई अक्षर उन्हें विलक्षण बांकपन देते थे। कबीर औरों से अलग थे, भाषा में अलग, विचार में अलग, सलीके में अलग, सलूक में अलग। उनका प्रभामंडल सौम्य नहीं, प्रखर था। न वे किसी खांचे में ऐंठते, न उनके लिए खांचा बनाना संभव। उनके साथ चलने के लिए घर फूंकना पड़ता। वे अपूर्व और इकलौती शख्सियत बनकर एक ऐसे मैदान में खड़े थे जिसकी कोई हद नहीं थी। चीजों को पकड़कर या ढोते हुए कबीर के मार्ग पर नहीं चला जा सकता। उनका मार्ग न तो हिंदू का मार्ग है और न ही मुसलमान का। कबीर नाम है ढाई अक्षर के बांकपन का।

0: क्या भजन आया रेडियो पे, सुन के दिल एकदम खुश हो गया। अच्छा काका, कबीर जी की भजन तो बड़े अच्छे होते हैं, इतना क्यों मानते हैं कबीर जी को, कुछ बताओ ना काका।
1: अरे काका बता दो, नहीं तो दिन भर जान खा जाएगा आपकी, अभी तो वैसे भी ढाबे पे कम लोग हैं।
0: तू चुपचाप रह। हाँ तो काका, कबीर दास जी बहुत पुराने समय से हैं ना।
2: हाँ।
1: अरे काका आज तो सुनाई डालो, आज का दिन अच्छा जाएगा और वैसे भी सल्लू तो मानने वाला है नहीं।
0: हाँ हाँ काका, सुना दो कबीर दास जी के बारे में।
2: अरे बेटा सल्लू, समय था आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 1456। शहर बनारस गंगा किनारे बसा हुआ, अरे वहाँ पैदा हुआ कबीर।
1: कबीर?
2: हाँ।
0: मतलब कि कबीर दास काका?
2: हाँ सल्लू, कबीर दास।
1: अरे हाँ काका, उनका तो हमने पढ़ा भी है।
2: हाँ, एक मुस्लिम जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा को बनारस के लहर तारा तालाब किनारे पड़ा मिला था।
0: तालाब किनारे?
2: हाँ तालाब किनारे।
0: अरे ये सब तो नहीं मालूम था काका।
1: हाँ ये तो बिल्कुल नहीं मालूम था काका।
3: बहुत थक गई मैं तो चलते चलते।
4: मेरी थकान तो तालाब किनारे की ठंडी हवा ने दूर कर दी।
3: मेरा तो प्यास के मारे गला सूख रहा है।
4: तालाब से 2 घूंट पानी पी लो और 2 घड़ी सुस्ता लो।
3: नहीं रहने दो, बहुत रात हो गई है अब।

0: कुछ सुना तुमने?
1: हाँ, जैसे कोई नन्ना बच्चा रो रहा है, पर यहाँ तो कुछ नजर नहीं आता।
0: चलो चलो उधर चलकर देखते हैं, आवाज वहीं से आ रही है।
1: ये रहा, बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ है।
0: या अल्लाह, कौन जालिम बच्चे को इस तरह छोड़ गया? देखो देखो ना, मेरे गोद में आने के बाद कैसा चुप हो गया।
1: समझ नहीं आ रहा इस बच्चे का क्या करें।
0: अरे चलो इसे अपन घर ले चलते हैं।
1: पागल हो गई हो?
0: हाँ मैं पागल हो गई हूँ। अरे अल्लाह ने हमें कोई औलाद नहीं दी, हम इसी को पालेंगे।
1: अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पता नहीं किस मजहब या जाति का है, हम कल किसी झंझट में न पड़ जाएं।
0: इस डर से इस मासूम को मरने के लिए यहाँ पर छोड़ दें क्या?
1: ये तो इंसानियत के खिलाफ होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। मगर
0: अगर मगर कुछ नहीं, हम इसे पालेंगे। अरे मालिक की भी शायद यही मर्जी है।
1: हम बे औलाद हैं, लोगों को क्या जवाब देंगे?
0: लोगों से क्या मतलब है हमें, कोई चोरी या बुरा काम तो नहीं कर रहे ना हम?
1: तू क्या समझती है कि बच्चे के मिलने से तू अकेली खुश है? मैं भी खुश हूँ।
0: बेशकीमती औलाद मिल गई है हमें, मन की साथ पूरी हुई।
1: तेरा लाख लाख शुक्र है परवरदिगार। चल उठा, बच्चे को घर ले चलते हैं।
0: हाँ, चलो जल्दी घर चलो।
2: ये तो बहुत अच्छा हुआ काका कि नीरू और नीमा ने कबीर दास जी को तालाब के पास से उठा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। हाँ काका।
3: हाँ बेटा, कबीर के आने से नीरू और नीवा के जीवन में बहार आ गई थी। नन्ना बाला कबीर दोनों की आंख का तारा था। लाड़ प्यार से पलता कबीर अब 6 वर्ष का हो गया था। था नन्ना, पर सवाल बड़े बड़े करता था। अपड़ नीरू और नीमा उसके सवालों को सुनकर हैरान रह जाते थे।
4: अब्बा एक बात पूछनी है। पूछू क्या?
1: साथ आते हुए तूने वादा किया था कि सवाल पूछकर मेरी खोपड़ी नहीं चाटेगा।
4: बस एक सवाल।
1: तू मानेगा नहीं, पूछ।
4: अब्बा वो जो आदमी खड़ा है उसने माथे पर तिलक क्यों लगा रखा है?
1: क्योंकि वो ब्राह्मण है बेटा।
4: ब्राह्मण क्या होता है?
1: हिंदुओं में सबसे बड़ी जाति है बेटा।
4: हिंदू कौन होते हैं?
1: जैसे हम मुसलमान हैं वैसे ही वो हिंदू हैं।
4: पर वो तो बिल्कुल हमारे जैसे दिख रहे हैं, फिर हिंदू कैसे हुए?
1: दोनों मनुष्य ही हैं, बस अलग पहचान के लिए हिंदू और मुसलमान हुए।
5: अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर।
4: अब्बा ये इतनी जोर से किसकी आवाज आ रही है?
1: चुप चुप, बिल्कुल चुप। ऐसा नहीं कहते, मौलवी साहब मस्जिद में अजान दे रहे हैं, खुदा के बंदों को इबादत के लिए बुला रहे हैं।
4: पर मैंने तो मस्जिद में किसी खुदा को नहीं देखा, वहाँ तो मौलवी साहब रहते हैं ना।
1: खुदा तो हम सबके दिल में रहता है।
4: फिर हम मस्जिद क्यों जाते हैं?
1: या अल्लाह, अच्छा अब तू चुप कर।
4: अब्बा बताओ ना, ये अल्लाह कौन है?
1: अल्लाह और खुदा एक ही हैं, जिसने हम सबको बनाया है, इसीलिए हम उसकी इबादत करते हैं।
4: इबादत माने?
1: खुदा को खुश करने का तरीका।
4: इबादत से खुश हो जाते हैं वो?
1: लोग तो ऐसा ही कहते हैं।
4: इबादत तो आप भी करते हैं, फिर उसने हमें गरीब क्यों बनाया? और लोग तो अमीर हैं।
1: अपना नसीब है बेटा, खुदा ही हमें बनाता है और हमारा नसीब भी।
4: इसका मतलब खुदा भेदभाव करता है।
1: अल्लाह चुप कर, बीच बाजार पता नहीं क्या क्या बके चला जा रहा है, खुदा के लिए ऐसा नहीं कहते बच्चे।
4: पर अब्बा ये तो
1: अब बता। और सवाल नहीं, तेरे सवालों से मेरा माथा दुखने लगता है।

0: काम हो आई, दिन भर से काम कर रहे हो, अब बस भी करो।
1: महाजन को कल ही थान देना है। सुनो, जब से कबीर घर में आया है तब से हमारी हालत सुधर गई है।
0: मैं भी वही देख रही हूँ।
1: कबीर घर में नहीं दिख रहा है, कहाँ गया?
0: बाहर खेलने गया होगा बच्चों के संग। बुलाती हूँ अभी मैं। कबीर, ओ कबीर।
1: वो बच्चों के संग नहीं होगा।
0: हाय अल्लाह, फिर कहाँ गया होगा मेरा लाल?
1: पास वाले चबूतरे पर कुछ साधु बैठे हैं, उन्हें अटपटे सवालों से परेशान ना कर रहा हो।
0: अरे मुझसे भी पूछता है, खुदा कौन है, भगवान क्या है, अब मैं भला क्या जानू।
1: बड़ा डर लगता है उसके सवालों से, कहीं किसी दिन बड़ी मुसीबत ना खड़ी हो जाए। हम ठहरे छोटे लोग।
0: मौलवी साहब से कहें क्या कि इसे तालीम दे दे?
1: पगला गई हो, एक बार बात की थी, दुत्कार दिया मौलवी साहब ने। कहने लगे जुलाहे की औलाद दीनी तालीम हासिल करेगी तो कपड़े क्या हमारी औलादें बुनेंगी?
0: अरे बोलो।
2: अम्मा।
0: लो आ गया तुम्हारा लाडला।
2: क्या बात है अम्मा, क्यों परेशान हो? अब्बा भी परेशान दिख रहे हैं।
0: तेरी तालीम को लेकर परेशान है बेटा, मौलवी साहब मना करते हैं तालीम देने से।
2: मना करते तो करने दो, मैं साधु संतों से हासिल कर लूंगा।
0: ना मेरे लाल, सुना है वो बच्चों को भगा ले जावे हैं।
2: अरे अम्मा, मुझे कोई नहीं भगा सकता।
0: उनके फुसलाए से कहीं तू साधु बनकर अपनी अम्मा को तो ना छोड़ेगा बिटवा?
2: अरे मैं अपने अब्बा और अम्मा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे तो बस ज्ञान पाना है, साधु से मिले या मौलवी से।
0: सुनो जी, मुझे तो बस यही चिंता खाए जाती है कि कहीं मेरा लाल मेरी नजरों से दूर ना हो जाए।
1: और मुझे तो फिलहाल यही चिंता सता रही है कि आज खाना कब मिलेगा।
0: अच्छा।

कहते हैं ना बेटा कि पूत के पांव पालने में दिखने लगते हैं, कबीर के भी दिखने लगे थे। दुनिया, खुदा, धर्म, पाप, पुण्य, मुक्ति और ऐसी तमाम बातों को लेकर उसकी जिज्ञासाएं बतलाती थीं कि वो एक साधारण बालक नहीं है। कबीर अब किशोर अवस्था में आ गया था, ज्ञान देने वाला कोई गुरु तो मिला।

0: बैठो और सुनो।
1: आप भजन क्यों गाते हैं?
0: ईश्वर की महिमा है, सब अपने अपने ढंग से गाते हैं बच्चा।
1: ईश्वर? ईश्वर कौन है?
2: हम सबका मालिक।
1: अब्बा तो कहते हैं हम सबका मालिक तो खुदा है।
2: एक ही बात है बेटा, जो खुदा है वही ईश्वर है, एक ही मालिक के दो नाम।
1: क्या आपने उस मालिक को देखा है?
0: देखा तो उसे किसी ने नहीं।
1: फिर आप कैसे कहते हैं कि ईश्वर है?
2: क्योंकि हम हैं, ये दुनिया है, हमको इस दुनिया को उसी ने बनाया है और ये दिखती भी है।
1: ये दुनिया उसने बनाई, तो उसे किसने बनाया?
0: उसे कौन बनाएगा, वो सर्वशक्ति संपन्न ही इस दुनिया को बनाने वाला है।
1: अच्छा बाबा, फिर उसने भेदभाव क्यों किया? किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को ऊंची जाति का और किसी को नीची जाति का क्यों बनाया?
2: अपने कर्मों के फल भोगते हैं हम सब।
1: पर जिस दिन पैदा होते हैं उस दिन तो किसी का कोई कर्म नहीं होता, सभी जीव बराबर होते हैं। जब सबको बराबर मिला तो बाद में भेदभाव और छोटा बड़ा कैसे हो गया?
0: क्योंकि हर आदमी बाद में अपनी बुद्धि से ही कर्म करता है।
1: पर बुद्धि तो एक सिपाही, फिर सोच अलग क्यों?
2: ताज्जुब है बच्चा, बहुत बड़ी बात कह दी तुमने।
1: बाबा, ये दुनिया उसने क्यों बनाई? यहाँ तो सभी दुखी हैं।
0: उसकी लीला वो ही जाने, हम तो बस उसके हाथ के खिलौने हैं, नचाता रहता है वो हमें।
1: कब तक?
2: जब तक हम उसको प्रसन्न कर इस माया मोह से मुक्त नहीं हो जाते।
1: मुक्त होकर कहाँ जाते हैं?
0: दूर तारों के पार, वहाँ आसमान में जहाँ स्वर्ग है।
1: किसी ने उस स्वर्ग को देखा है?
2: उसी को देखने की कामना में तो घर बार छोड़ आए हैं बच्चा।
1: फिर भी वो नहीं दिखा तो?
3: कबीर, अरे ओ कबीर, कब लो तू यहाँ बैठा है और मैं तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ आई।
1: तू नाहक परेशान ना हुआ कर अम्मा।
2: बहन, अद्भुत बालक है तुम्हारा।
3: सब उसकी कृपा है और आपका आशीर्वाद है।
4: मुझे तो ये किसी जन्म का अवधूत जान पड़ता है।
2: ऐसे सवाल खड़े कर दिए इसने हमारे सामने कि अब तक की सारी साधना बेकार जान पड़ रही है।
4: अरे बच्चा, हमारे साथ चलेगा क्या?
1: नहीं, मैं अपनी अम्मा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा बाबा, मुझे आज्ञा दीजिए।
2: कल्याण मस्तु।
5: बालक तो चला गया पर हमें झिंझोड़ गया।
2: लगता है हम क्या अब तक अंधेरे में ही भटक रहे हैं।
4: यहाँ से चलो किसी और ठोर। अरे ना धी ना ना ना नी ना ना।
6: क्या बात है, बहुत उदास बैठी हो।
7: और क्या करूं, गरीब को औलाद भी दी तो निर्मोही।
6: बात क्या है, कुछ खुलासा तो करो।
7: अरे, उसके दोस्त अनवर की शादी हो गई और एक ये है कि साधु संतों के बीच ही भटकता फिरता है।
6: उसके यही लक्षण देखकर तो मुझे उससे शादी करने के लिए कहने की हिम्मत ही नहीं होती। कौन भी आएगा अपनी लड़की इससे?
7: क्यों, क्या कोई चोर उचक्का है मेरा बेटा? कौन सी बुराई है मेरे बेटे में?
6: अरे ये सत्संग बत्संग।
7: अरे सत्संग करना तो ज्ञानी का काम है।
6: कौन है भाई वहाँ?
0: नीरू भाई, मैं हूँ।
6: आओ आओ, और सुनाओ क्या हाल है?
0: हमारा तो ठीक है, अपनी सुनाओ। कबीर नहीं दिख रहा?
6: हाँ, उसी को लेकर फिक्रमंद हूँ। रोज नया बखेड़ा खड़ा कर देता है। आज किसी पंडित से उलझ लिए तो कल किसी मुल्ला को छेड़ दिया।
0: अरे यही बताने तो मैं आया हूँ, पकड़ो उसे वरना फुर्र हो जाएगा।
7: मैं भी तो यही कह रही थी कि उसकी शादी कर देते हैं।
6: बावली हुई हो, वो कभी नहीं मानेगा।
0: कल मैंने भी सुना कबीर को, खुलेआम पंडो पुजारियों और मुल्ला मौलियों को चुनौती देता है।
6: कैसे समझाऊं, मेरी तो वो बिल्कुल नहीं सुनता।
7: अरे बड़े बड़े कर्म कांडी पंडित रहे हैं यहाँ काशी में, वो क्या कर रहा है?
0: पंडित और मौलवी दोनों नाराज हैं, कुछ करना बैठे ये दोनों।
7: यही तो डर है मुझे।
6: अब रोने से कुछ ना होगा, कुछ उपाय करना होगा। आने दो आज उसे, जुलाहा है जुलाहे से रहे अपने ओहदे में। चले हैं दुनिया को ठीक करने।
0: कह रहा था जाति वाति कुछ नहीं होती, सब इंसान बराबर हैं। हिंदू और मुसलमान भी केवल भरम है, इंसानों का बनाया हुआ।
6: या मेरे मौला।

0: मेरे बच्चे की हिफाजत करना, वो नादान है। मूर्ख को ये सब कहने की क्या जरूरत है?
1: अरे यही नहीं, कहता था गंगा में डुबकी भर लगाने से न पाप कटता है और न ही राम का नाम जपने से मुक्ति मिलती है। और सुनो, देवी देवता सब झूठे कहता है, बलि के नाम पर पशु मारने वाले पंडित कसाई हैं, ऐसा कह रहा था।
0: तुम ही कुछ उपाय बताओ भैया।
1: अब मैं क्या बताऊं, वो तो बहुत खरा खरा बोलने लगा है। कहता है ईश्वर तो कुछ भी कर सकता है, तो हमसे क्यों जानवर कटवाता है? खुद ही खेत जंगल से उठाकर उन्हें क्यों नहीं खा जाता?
2: अरे लगता है ये हमें चैन से नहीं रहने देगा।
1: कुछ भी कहो भाभी जान, पर अच्छे अच्छे पंडितों और मौलियों की जबान पर लकवा मार जाता है उसकी बातें सुनकर। अब पता नहीं इतनी बुद्धि कहाँ से आई उसमें।
2: अरे साधु संतों की संगत में सीख गया लगता है।
0: अब तक घर नहीं लौटा, फिक्र हो रही है।
1: कहीं भटक रहा होगा ज्ञान की खोज में। अच्छा भाई मैं चलता हूँ।
2: सुनो मैं भी जाती हूँ उसे खोजने के लिए।
0: अब तुम ना जाओ कहीं।
2: क्यों?
0: आ जाएगा खुद ही, बच्चा थोड़ी है।

0: वाह वाह कबीर वाह, क्या खूब बात कही।
1: अरे तुम कब आए?
0: अरे कुछ देर हुई,
1: चुपके चुपके मेरा भजन सुन रहे थे।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: अरे रेदास, गंगा पार कुछ नागपंथी योगी ठहरे हैं, दो दिन से वहीं था, कुछ दिन और उनकी संगत में रहने का मन है।
0: सुना है उनकी साधना बड़ी निराली और रहस्यमय होती है।
1: वे ज्योति निरंजन के उपासक होते हैं।
0: तुम्हें ठीक लगा इनकी संगत में?
1: आडंबर तो है इनकी साधना में, पर कुछ बातें अच्छी हैं। जैसे घोर तांत्रिक क्रियाओं के सहारे सहज अवस्था में पहुंचने की बात करते हैं। सहज अवस्था में जो पहुंच गया वो अवधूत हो जाता है। अवधूत के एक हाथ में त्याग और दूसरे में भोग होता है, इसके बावजूद निर्लिप्त बना रहता है वो।
0: अजीब बात है,
1: मुझे तो ये योग और त्याग की आड़ में भोग भोगने की चालाकी जान पड़ती है।
0: फिर तुम क्यों उनकी संगत में?
1: क्योंकि उनका परम पुरुषार्थ मुक्ति है। इनका निरंजन ना सृष्टि करता है ना उनका सहारक।
0: इधर सराय के पास कुछ पंडित लोग जमे हैं, खूब किस्से कहानियां सुनाते हैं। चलो आज वहीं चलें कबीर।
1: चलो।

0: सर्वशक्तिमान परमपिता भगवान के चाहे बिना जगत में एक पत्ता भी नहीं हिलता।
1: पंडित जी, तो क्या ये चोरी चकारी व्यभिचार और सारे दुराचार भी क्या उसकी मर्जी से ही होते हैं?
0: नास्तिक लगते हो तभी कुतर्क करते हो।
1: मंदिर मस्जिद में तो आपका सर्वशक्तिमान परमपिता खुद रहता है, फिर हमारे मंदिर मस्जिदों की ऐसी दशा क्यों?
0: ईश्वर की निंदा करने वाले तुम हो कौन?
1: मेरा नाम कबीर है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए।
2: 100% की बात कहते हैं कबीर, इनके आगे आपका झूठ ठहर ना पाएगा।
3: सच्ची बात है कबीर,
4: कोई नहीं मिट सकता।
0: हम वही कहते हैं जो शास्त्रों और वेदों में लिखा है।
1: पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अच्छा बताइए, आपका वो ईश्वर कहाँ रहता है?
0: अरे हर जगह हर प्राणी में रहता है।
1: ईश्वर पत्थर की मूर्ति में रहता है क्या, जिसके सामने आप भैंसा और बकरा काटते हो? उनमें भी तो वही ईश्वर रहता होगा, ठीक कहा ना मैंने?
0: हमारे धर्म का अपमान करने आए हो।
1: संतों देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। संतों देखत जग बौराना, संतों देखत जग बौराना।

0: मतलब कबीर दास जी की चर्चा हर जगह होने लगी थी काका?
1: हाँ सल्लू, काशी में कबीर की चर्चा होने लगी थी। पंडितों और मुल्लाओं पर उनके द्वारा किए जा रहे प्रहारों से वे जन सामान्य में लोकप्रिय होते जा रहे थे।
2: वो तो होंगे ही काका।
1: बिल्कुल ठीक कहा। अरे ये धर्म के ठेकेदार उनकी खरी बातों से भय खाने लगे थे। और उधर उधर अम्मा अपने लाल की चिंता में मरी जाती थी।
3: अम्मा कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है।
4: देती हूँ बेटा, पर मेरी एक बात मानेगा, मेरे लिए एक बहू ला दे बेटा।
3: अम्मा मैं शादी ब्याह के झंझट में नहीं पड़ूंगा।
4: तेरे दोस्त अनवर ने भी तो कर लिया ना ब्याह।
3: वो भी मुझसे शादी कर लेने को कह रहा था।
4: ठीक तो है।
3: मुझे माया मोह के बंधन में मत बांध अम्मा, मैं तो परम आनंद पाना चाहता हूँ।
4: तू छोटा था ना, तब से मैं आस लगाए बैठी हूँ बेटा कि एक दिन मेरी भी चांद से बहू आएगी, घर में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी।
3: तू रो मत अम्मा, नहीं तो मैं सच्ची में शादी कर लूंगा।
4: हाँ, सच्ची।
3: अम्मा अपने आप को पहचान अम्मा, छोड़ दे मोह माया के बंधन, दुनिया को मेरी नजरों से देखने की कोशिश कर।
4: माँ होकर तुझसे मोह न पालू, ये नहीं हो सकता बेटा।
3: आखिर कितने दिनों का साथ है हमारा, जो उगता है वो डूबता भी है, आया है तो जाना भी है, वियोग तो होकर रहता है, इस कटु सत्य को जान अम्मा।
4: कल की सोच कर आज का सुख छोड़ दूं बेटा मैं।
3: पल भर के सुख में मत पड़, इसमें पड़कर हम दुखी ही होते हैं।
4: अपनी अम्मा को भरमाने की कोशिश मत कर, शादी कर ले।
3: फिर वही बात अम्मा, सारे रिश्ते नाते पलक झपकते मिट जाते हैं, कौन कब साथ छोड़ दे नहीं कहा जा सकता। जोगी का जीवन ही मेरी नियति है अम्मा।
4: जोगी बनना चाहता है, पर मैं जाऊंगी तेरे ही कंधों पर बेटा।
3: दुआ कर कि मैं कामयाब हूं।
4: तेरी ज्ञान की बातें तो मुझे समझ में आती नहीं, पर माँ हूं ना, इसलिए मेरी दुआ तो हमेशा तेरे साथ ही रहेगी बेटा।
3: इस माया ठगनी की गति आज मैं तुझे सुनाता हूँ अम्मा।
4: अच्छा।

0: हमें और इस संसार को किसी ईश्वर या खुदा ने नहीं बनाया।
1: फिर ये मुल्ला, मौलवी और पंडित किसकी इबादत या पूजा करते हैं?
0: ये सब मन के भरमा, उन्हें कुछ भी नहीं पता।
2: अरे भाई, पता तो तब चले जब कुछ हो।
0: वो मानते हैं कि कोई सर्वशक्तिमान है इस संसार को चलाने वाला।
2: और वो वहां ऊपर आसमान में रहता है, क्यों कबीर?
0: रैदास, सब कोरी कल्पनाएं जिनके प्रति विश्वास पैदा किया गया है।
1: पूजा पाठ के पाखंड के फंदे में फंसते जाते हैं, है ना साहेब?
2: जानते हैं सब, पर कोई आवाज क्यों नहीं उठाता?
0: रैदास, अव्वल तो सब जानते नहीं और विरोध की आवाज को कुचल दिया जाता है।
1: साहेब, निराकार और निर्गुण जैसा कुछ होता है क्या?
0: ऐसे नहीं मानोगे तो निराकार और निर्गुण ईश्वर कहकर मनवाएंगे।
2: परंतु साहेब, फिर उपासना किसकी करें?
0: मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे

0: आत्मा ही परमात्मा है, तुम स्वयं परमात्मा हो।
1: क्या कबीर, ये कैसी बात कही?
0: रैदास, बिल्कुल सच्ची बात है। ईश्वर को पाना है तो वो तुम्हारे भीतर ही है। तेरा साहिब है घटमाही, बाहर नैना क्यों खोले।
1: कबीर, तो क्या मैं मोक्ष प्राप्त कर सकता हूं?
0: अवश्य अवश्य रैदास, सब कर्मों के बंधन में बंधे हैं और जन्म मरण की भूल भुलैया में भटक रहे हैं।
1: तो फिर मुक्ति कैसे मिलेगी कबीर?
0: अच्छे कर्मों से, तुम्हारा कर्म ही असली पूजा है।
1: अच्छा, समझ लो, अपने आप को पहचान लिया, अब फिर उसके आगे?
0: तो सब कुछ समेट कर अपने आप में मस्त रहो, ना कुछ कहना और ना कुछ सुनना।
2: भाइयों, शांत हो जाइए सब, अब आज का सत्संग शुरू होता है।

0: भाइयों, किसी आदमी को उसके कर्म ही छोटा और बड़ा बनाते हैं।
1: किंतु कबीर, कुछ लोग अपने आप को ऊंचा और श्रेष्ठ बताते हैं।
0: ये उनका झूठा अहंकार है।
2: कबीर झूठ फैलाकर आप लोगों को बरगला रहे हैं।
3: वर्ण व्यवस्था का जन्म स्वयं वेद से हुआ। कबीर धर्म विरुद्ध बात करते हैं। अरे जिसे कहना है और सुनना दोनों ही पाप हैं।
4: शांत हो जाइए आप दोनों। आप दोनों कौन हैं भाई?
5: हम गुरु रामानंद के शिष्य हैं।
0: पंडित जी, क्या आप ब्राह्मण हैं?
3: हाँ हाँ।
0: कैसे कह सकते हैं आप ऐसा?
5: क्योंकि हम ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं।
0: जो तू बामण बमणी का जाया, आन राह से क्यों ना आया? आप ही लोगों ने ऊंच नीच के भेद स्वार्थवश पैदा किए हैं।
3: नहीं कबीर, आपकी वजह से ही लोगों का विश्वास धर्म कर्म से उड़ता जा रहा है।

0: आप ईश्वर के खिल्ली उड़ाते हैं, वो आपको दंडित करेगा।
1: पत्थर की बेजान मूर्तियाँ तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए हमारी मोहताज हैं।
2: अरे चलो भाई, बिना गुरु वाले से ज्ञानी से बहस बेकार है।
0: चलो चलो,
2: फालतू की बातें करता है। चलो
3: साहेब, ये दोनों रामानंद के शिष्य हैं। रामानंद हाल जानकर आग बबूला होंगे।
1: रैदास, स्वामी रामानंद ज्ञानी हैं, हम उनका दर्शन अवश्य करेंगे।
3: लेकिन साहेब, स्वामी रामानंद तो पूजा आराधना वाले हैं।
1: हाँ रैदास, वो मूर्ति पूजक हैं, वो भी मानते हैं कि परमेश्वर कहीं है।
3: साहेब, फिर तो आपकी और उनकी राह भिन्न हुई।
1: फिर भी रैदास, वो ज्ञानी हैं और ज्ञानियों के दर्शन तो करना ही चाहिए।
3: साहेब, फिर तो आपकी और उनकी राह भिन्न हुई।
1: स्वामी जी प्रणाम।
4: कल्याण हो, कहो कैसे आना हुआ?
1: आपके दर्शनों का मोह खींच लाया। ये दोनों मित्र हैं, रैदास और सेना नाई।
5: स्वामी जी प्रणाम।
4: कल्याण हो, सुना है तुमने मेरे शिष्यों को निरुत्तर कर दिया।
1: मैं तो केवल सच कहता हूँ।
4: गुरु के बिना भी तुम ज्ञान के भंडार हो कबीर।
1: बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई।
4: वाह कबीर वाह। खैर, भगवान को भोग लगाने का समय हो गया है, जाओ कहीं से गाय का दूध ले आओ।
1: जी बहुत अच्छा।
0: देखा गुरुजी, कितनी देर हो गई, हम न कहते थे कि ये बहुत विचित्र हैं।
4: अब कौन सी विचित्र बात देखी तुमने इसमें?
0: अरे ये अपने शिष्यों के साथ गाय के कंकाल के पास बैठे कंकाल से दूध देने की प्रार्थना कर रहे थे।
4: कंकाल से दूध? अरे भाई कबीर, क्या बोरा गए हो, कंकाल भला दूध कैसे देगा?
1: गुरुजी, जब आपका पत्थर का भगवान दूध पी सकता है तो कंकाल दूध क्यों नहीं दे सकता?
4: वाह कबीर वाह, तुम धन्य हो कबीर, यूं ही ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहो, धन्य हो।
1: स्वामी जी, मेरा कोई गुरु नहीं है।
4: उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्ञान तुम्हारे भीतर है, ज्ञान की गंगा बहाते रहो।
1: लेकिन मैं जाति से जुलाहा हूँ।
4: अरे पगले, साधु की कोई जाति नहीं होती।
1: मैंने अपना घर भी नहीं त्यागा है, फिर साधु कैसे हुआ?
4: जिसे छोड़ना था, जैसे मोह, लोभ, अभिमान, वो सब तो छोड़ दिया ना आपने।
1: गुरुजी, आज्ञा दीजिए, फिर आऊंगा आपके दर्शन करने।
4: कल्याण हो।
1: कौन?
6: अरे साहेब, मैं और रैदास।
1: आओ भाई।
3: साहेब, आपके सत्संगों ने काशी के पंडितों और मुल्लाओं दोनों के बीच कोहराम मचा रखा है।
6: अरे वो दोनों मिलकर लोगों को आपके खिलाफ भड़का रहे हैं।
3: और तो और कबीर, सत्संग में आने से रोकने के लिए लोगों को धमका भी रहे हैं।
6: अरे कबीर, सुना है कोतवाल के साथ लेकर कोई साजिश रची जा रही है।
1: जितनी उनकी समझ है वो उतना ही तो करेंगे।
3: लेकिन कबीर, काशी में वो बहुत ताकतवर हैं और किसी भी साजिश को अंजाम दे सकते हैं।
6: हाँ, हुकूमत भी उनके साथ ही रहेगी।
1: तो उनका मुकाबला हम लोगों को जगाकर करेंगे।

0: मियां कोतवाल साहब आदाब अर्ज है।
1: अरे आदाब अर्ज है मौलवी साहब, कहिए कैसे तकलीफ की?
0: अरे मियां तकलीफ में तो हम खुद हैं, कबीर ने जीना हराम कर रखा है।
1: अरे तो आप उसका जीना हराम कर दें।
0: अरे तो उसी के लिए तो आपके पास आए हैं।
1: अरे मैं भला इस मामले में क्या कर सकता हूँ?
0: आप ही इसमें कुछ कर सकते हैं कोतवाल साहब।
1: अरे देखिए मौलवी साहब, ये मजहब का मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ।
0: लाहौल बिला कुवत एक सिरफिरा मजहब के खिलाफ बातें फैला कर फसाद करने पे आमादा है, और शहर कोतवाल कान में तेल डालकर बैठे देंगे क्या?
1: मौलवी साहब अदब कायदा ना भूले।
0: बेअदबी के लिए माफी चाहता हूँ। पर आप उसका मुंह बंद करें।
1: हाँ ठीक है, सोचेंगे हम इस पर।
0: बेहतर होगा। अच्छा, खुदा हाफिज।

0: शिव शिव शिव शिव। कोतवाल साहब नमस्कार।
1: नमस्कार पंडित जी। अरे कहिए, क्या आपको भी कबीर से तकलीफ है? पर पंडित जी, हमको तो पता चला है कि उसके साथ हिंदू और मुसलमान दोनों काफी तादाद में हैं।
0: अरे बरगला दिया है साहब उसने, और अपने आम आदमी को अकल ही कितनी होती है।
1: अरे इसी बात का फायदा तो आप लोग उठाते हो।
0: देखिए गोतबा साहब।
1: अरे छोड़ो पंडित जी, खैर हमने सुना है कुछ दोहा मोहा कहता फिरता है, मजमा भी लगाता है। वो
0: दोहा नहीं है, वो बर्छी है। बर्छी?
1: बर्छी
0: जो सीधे कलेजे में उतरती है हमारे।
1: अच्छा, अब फिर आप ही बताइए कि हम क्या करें।
0: अरे उसे जेल में डाल दो, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी।
1: तो समझिए पंडित जी, आपका काम हो गया।
0: तो हम चले।
1: अरे कोड़े पड़ेंगे तो सारी गर्मी निकल जाएगी तेरी, समझा? अबे बोल, अरे बात गर्मी चढ़ गई है।
2: छोड़ दो इस गरीब को, शर्म आनी चाहिए आपको एक लाचार पर हाथ उठाते हुए।
3: साहब साहब मुझे बचाइए साहब, साहब दे।
2: इस गरीब का अपराध क्या है?
1: अरे महसूल देने में आनाकानी करता है ये बदमाश।
2: तो इसका मतलब ये होगा कि आप इसे सरे रहा पीटेंगे?
1: देखो भाई, मैं तो हुक्म का गुलाम हूँ, इसे थाने ले जाकर ही रहूंगा। हाँ चल। क्या बात है? आप हैं कौन?
2: मेरा नाम कबीर है। किस गुनाह के लिए इस गरीब को सताया जा रहा है?
1: सुनो, हम तो हुकूमत का काम कर रहे हैं।
2: गरीबों पर अत्याचार?
1: अरे देखो भाई, हम सिर्फ हुक्म की तामीर कर रहे हैं।
2: गरीब को सताने का हुक्म मिला है क्या आपको?
1: अरे लगता है आप ऐसे नहीं मानोगे। सिपाही जरा कबीर को भी गिरफ्तार तो कर लो।
4: कोतवाल साहब, ऐसा गजब ना कर बैठिएगा। कबीर को गिरफ्तार करने के पहले एक पल सोचिएगा जरूर।
5: अरे जरा अकल से भी काम लीजिए कोतवाल साहब।
1: अरे हाँ भाई, समझ रहे हैं समझ रहे हैं। चलो ठीक है सिपाही, छोड़ दो इसको, छोड़ो।
3: साहब साहब, आपने मेरी जान बचा ली साहब, बहुत मारा।
2: जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक यूं ही जुल्म सहोगे, कुचले जाओगे।
3: पर अब हम जुल्म ना सहेंगे साहब, हम में हिम्मत भी नहीं है।
2: ऐसा ना कहो भाई, तुम्हारे पास हिम्मत है, बस एकजुट होने की जरूरत है।

0: मेरी अम्मा, अरे अब तू भी कबीर के कवित्त गाती है?
1: अरे आप भी गाया करें हुजूर, बहुत अच्छे कवित्त हैं।
0: अरे चुप, बंद करवा दूंगा, समझे कि नहीं?
1: अरे मगर कोतवाल साहब, किस जुर्म में, मैं तो गरीब बुढ़िया हूँ।
0: अरे कबीर के कवित्त गाने के जुर्म में, और क्या?
1: अरे हम तो पेट भरने के लिए गाते हैं, ये तो जुल्म है ना कोतवाल साहब।
0: अरे अम्मा तो कुछ और गाओ ना।
1: पर हमें तो कबीर साहब के कवित्त ही अच्छे लगते हैं। अरे माटी का है कुमार से माटी।
0: अरे,
1: का
0: अरे, अरे अरे अरे अम्मा सुन, तो पैर भुगतने के लिए भी तैयार हो जा।
1: अरे अब आप कबीर साहब से ही कहिए, वो देखिए इधर ही आ रहे हैं। अरे माटी का कुमार से माटी का कुमार।
2: क्यों भाई कोतवाल जी, अब क्या भिखारियों को भी पकड़ने का विचार है?
0: अरे नहीं नहीं कबीर जी जी जी जी, वो मेरा मतलब है कि
1: आपके कवित्त के गाने के जुर्म में ये हमें गिरफ्तार करने वाले थे।
2: कोतवाल जी, भजन गाना तो कोई जुर्म नहीं।
3: साहेब हम सब इसका विरोध करेंगे।
4: लगता है रेदास, हुकूमत भी हमारे सत्संग से दहशत में आ गई है।
3: हुकूमत से डरकर सत्संग ना करें, ये हो नहीं सकता।
2: ठीक कहा रैदास, हम मिलकर इसका विरोध करेंगे।
0: अरे भैया कबीर, अरे हम कहाँ गिरफ्तार कर रहे हैं।

0: प्यार कहते हैं वो यही छूट जाता है।
1: मरने पर तो ये शरीर यही छूट जाता है, फिर इसे हम अपना क्यों कहते हैं?
0: यही तो हमारा अज्ञान है।
2: इसका मतलब ये कि इस संसार में हमारा अपना कुछ भी नहीं?
0: हाँ रैदास, यही सच है। किंतु एक चीज हमसे कभी अलग नहीं होती।
1: वो कौन सी चीज है कबीर?
0: हमारी आत्मा, वो ही परमात्मा है।
2: फिर ऋषि मुनि किसकी खोज में कठोर तपस्या करते रहते हैं?
0: जो पहले से उनके भीतर है रैदास, पर उन्हें कुछ भी नहीं पता। अज्ञानवश उसे ही पाने के लिए कर्मकांड करते हैं।

0: भैया, अपने कबीर की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है।
1: हाँ अम्मा हाँ, हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों के बीच में वो तो समान रूप से लोकप्रिय हैं।
2: अरे अम्मा, उन्होंने अपना अधिकांश समय काशी में बिताया, पर जीवन में यात्राएं भी काफी की। काशी में अपनी मंडली के साथ सत्संग के माध्यम से ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहे वे।
0: अरे भैया, अपने कबीर ने जीवन भर धार्मिक अंधविश्वासों, कर्म कांडों और पाखंड के खिलाफ जन चेतना जगाने का कार्य किया है। और भैया, सुनो।
3: हाँ भैया,
0: और सुना है कि कबीर काशी छोड़कर मगहर जा रहे हैं।
1: क्या?
2: अम्मा, मैंने भी सुना है। इस बात से पंडितों में सनसनी फैल गई है।
0: लेकिन जानते हो कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं?
2: नहीं अम्मा।
0: लेकिन भैया, काशी में छोटे तबके के लोग और शोषित जन इस समाचार से बहुत दुखी हैं।
2: हाँ अम्मा, अब हम सबका मसीहा जा रहा है।
0: सच कहा भैया।
2: हाँ अम्मा, इसका मतलब क्या होता है?
0: अरे मगहर यानी इस नाम का गांव नहीं, बल्कि ज्ञान का मार्ग।
2: अच्छा।
0: अपने कबीर कहते हैं,
2: हाँ,
0: मग यानी रास्ता और हर यानी ज्ञान।
2: वाह, सही कहा अम्मा, सही कहा।
4: अरे अम्मा, अम्मा, अम्मा, अपने कबीर नहीं रहे, कबीर का देहांत हो गया।
0: अरे बेटा, क्या कह रहे हो?

0: शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए भाइयों, अब कबीर को अच्छी तरह नहला धोकर हम उसके अंतिम संस्कार के लिए अपन ले चलते हैं।
1: अरे लाहौल विलाकुबत कैसी बात कर रहे हो, उनको सुपुर्द

निर्देशन वीनस उमेश तरकसवार, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा है। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज़, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। अगर पिछली कड़ी को देखें, हमने बात की थी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं जो हमारी हैप्पीनेस हमारे साथ नहीं रहने देते हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर आया था स्ट्रेस, जो आज जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसे हम मानने लगे हैं कि वो नॉर्मल है। लेकिन क्या वो नॉर्मल है? और जब हमने बहुत सी बातें देखी तो हमें समझ में आया कि यही बिलीफ सिस्टम है जिसके चलते हम खुश नहीं रह पाते हैं। तो आज थोड़ा सा और देखते हैं कि स्ट्रेस से जुड़े कैसे कितने बिलीफ सिस्टम्स हैं जिन पर चलते हुए हमने अपनी हैप्पीनेस को खो दिया है। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। जो कल हमारी बातचीत हो रही थी उसमें अगर पिछली कड़ी को देखें तो एक बहुत बड़ा मुद्दा आया, इसीलिए बहुत से कॉल्स भी कल हमारे पास आए कि ये जो स्टूडेंट लाइफ को लेके ही या बच्चों के एजुकेशन को लेके हमने कहा था कि एग्ज़ाम्स के दौरान जो होता है वहीं सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि अपनी नॉर्मल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में मैंने एक्सेप्ट किया हुआ है, यू नो नॉर्मल अपने रिलेशनशिप्स में मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन बच्चों का जब फैक्टर आता है एग्ज़ाम्स का, उसमें इतना क्लियरली विजिबल हो जाता है, क्योंकि उसके रिजल्ट्स कई बार बहुत घातक जब हो रहे हैं।
1: जैसे मेरी प्रोफेशनल लाइफ में अगर कोई स्ट्रेस है, मैं उसको अपने तक ही रखते, यू नो, मेरी पर्सनल में कुछ अंदर कॉम्प्लेक्स चल रहा, मैं उसको अपने तक ही रखती हूँ। लेकिन जब घर में बच्चे का एग्जाम है, वो एक घर में, वो एक माहौल में आ जाता है, इसलिए वो शायद ज़्यादा ऑब्वियस दिखता है कि, क्योंकि इट्स समथिंग जो हर एक फैमिली मेम्बर, पेरेंट भी, बच्चा भी, छोटे भाई बहन के ऊपर भी, क्योंकि यू सी अगर बड़े का टेंथ है तो छोटे के ऊपर ऑटोमेटिकली बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, एंड प्लस सारे पेरेंट्स की अटेंशन भी एक पर ज़्यादा चली जाती है। बहुत सारे सी अ चाइल्ड, अ यंगर चाइल्ड विल ऑल्सो गो थ्रू अ लिटिल बिट ऑफ निग्लेक्ट कि मेरी तरफ तो कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो तब इसलिए कहते कि लगता कि सबका एग्जाम है घर के अंदर। इसलिए भी एग्जाम एक ऐसा वो है कि यू नो पूरा घर, पूरा परिवार उसको एक्सपीरियंस करता, तो वो एक बहुत बड़ी फिर फीलिंग आती है कि दिस इज स्ट्रेस। बाकी सब में देर इज लॉट ऑफ स्ट्रेस इंटरनली दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग, but we probably, you know, don't realize it because it doesn't hit everyone in the family equally.
0: और इनफैक्ट वो हिट तो कर रहा होगा, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट यू नो डायरेक्ट नहीं कर रहा है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इसमें जो कल बात जो पिछली कड़ी में निकल के आई थी वो था वो फॉर्मूला, यू नो अगर हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन माई इनर स्ट्रेंथ, यू नो। सो मेरी इनर स्ट्रेंथ इसमें और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है।
1: इनर स्ट्रेंथ ही इसमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज दिन तक हम प्रेशर्स को ब्लेम करते आए कि कंपटीशन बढ़ रहा है, सिलेबस बहुत बढ़ रहा है, सिलेबस को चेंज कर दो ताकि बच्चों का स्ट्रेस खत्म हो जाएगा।
0: अच्छा, और पिछले
1: ग्रेडिंग सिस्टम को, या ग्रेडिंग सिस्टम
0: को हुआ भी है चेंज।
1: सो यू सी फोकस सारा किस पर है, व्हिच इज ओके, डू लेट्स डू व्हाटएवर फॉर द एजुकेशन सिस्टम, लेकिन फोकस सारा किस पर है कि ये प्रेशर, ये न्यूमरेटर अगर कम होगा तो स्ट्रेस कम हो जाएगा। डेफिनेटली न्यूमरेटर कम होगा तो स्ट्रेस कम हो जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, एंड अगर जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है उसी के ऊपर मैं सारा अटेंशन दूँ तो मेरा स्ट्रेस और भी बढ़ता है, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में नहीं और मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करूँ। तो जब भी कोई परिस्थिति आती है, 10% न्यूमरेटर प्रेशर, 90% डिनोमिनेटर इनर स्ट्रेंथ। तो 10% यस मेरे कंट्रोल में नहीं, लेकिन 90% मेरे कंट्रोल में है, लेकिन हम वो 90% को इग्नोर करके उस 10% के ऊपर ही सारा देते। तो राजयोग जब हम सीखते तो वी वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड प्रेशर है, रहेगा, बढ़ता भी जाएगा जैसे जैसे परिस्थितियां चेंज होंगी। न्यूमरेटर को हमें बढ़ाना है और बहुत तीव्र गति से बढ़ाना है। सी अगर सिचुएशंस बहुत फास्ट चेंज हो रही है तो डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, उससे भी ज्यादा फास्ट स्पीड से हमें अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना।
0: इनफैक्ट वी शुड स्टार्ट एंटीसिपेटिंग, यू नो, कि क्या क्या हो सकता है।
1: नो नो, आप और फियर क्रिएट करोगे वो
0: एंटीसिपेट करके अंदर, यू नो, लाइक अपने अंदर।
1: नो, सी अगेन, ये कैसे वर्क नहीं करेगा। जैसे अर्थक्वेक आया, ठीक है, तो अर्थक्वेक जो गुजरात में हिट हुआ तो बहुत नुकसान हुआ, तो उसके बाद सारा फोकस गया कि अर्थक्वेक की प्रिपरेशन होनी चाहिए, बिल्डिंग्स को क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सब, विच इज ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उसके बाद फिर सुनामी आ गया, एंड वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द सुनामी, वी हैड प्रिपेयर्ड फॉर द अर्थक्वेक. सो हम सिचुएशन स्पेसिफिक अपनी प्रेपरेशन नहीं कर सकते हैं कि ये सिचुएशन आएगी तो मुझे कैसे फेस करना है. मुझे सिर्फ स्ट्रांग रहना है और बहुत स्ट्रांग बनना है ताकि कोई भी सिचुएशन आ जाए, फिर वो चाहे
0: तभी वो डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया.
1: एग्जैक्टली, इट्स नॉट अर्थक्वेक मैनेजमेंट, इट्स नॉट, इट इज डिजास्टर. एनी डिजास्टर इट हिट्स यू, यू शुड बी एबल टू फेस इट. तो उसमें भी डिजास्टर मैनेजमेंट ना करके हम सेल्फ मैनेजमेंट करते कि सेल्फ मैनेजमेंट हो जाए तो कोई भी डिजास्टर आ जाए यू आर एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि आपको ही तो क्रॉस करना है. तो इसलिए डिनोमिनेटर इनर स्ट्रेंथ पर फोकस करेंगे, आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे, परिस्थितियाँ वही हैं, कंपटीशन वही है, लेकिन आपका स्ट्रेस फैक्टर कम होता जा रहा है.
0: तो शिवानी, यहाँ एक मेल में हमारे पास आया है जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ इसी को लेकर, कि एक पेरेंट का मेल है कि हमने पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो कंफर्टेबल रखा हुआ है और सारी चीज़ें जो होनी चाहिए वो की हुई हैं, लेकिन मुझे अपना फियर है, तो क्या वो मेरा फियर भी पहुंच रहा है? उस फियर को मैं कैसे ना पहुंचने दूं, यू नो, बच्चे तक? दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि हम अपनी तरफ से, क्योंकि इतना इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है, हर चैनल, हर अखबार जो है, हर हेल्पलाइन इसी पर बात करती है कि क्या किया जाए, तो उसको करने के लिए हम बच्चे को रिलैक्स करने के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन वो जो एबनॉर्मलिटी है, एंड देयर वाज दिस मेल, इट सेड कि मेरे को रियलाइज हो गया कि मैं इतना कुछ उसे रिलैक्स करने के लिए कर रही थी लेकिन मैं एबनॉर्मल थी.
1: हम रिलैक्स करने के लिए, इट्स वेरी गुड कि हम रियलाइज कर रहे हैं कि हमें रिलैक्स करना है, लेकिन हम बाहर तो सब कुछ कर रहे हैं कि एक बहुत अच्छा वातावरण बना रहे हैं जिसमें बच्चा बहुत कंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर फियर क्रिएट हो रहा है तो वो वाइब्रेशन है. तो फिजिकल रिलैक्सेशन एक छोटा सा पार्ट प्ले करते, लेकिन मेंटल रिलैक्सेशन वो बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड मेंटली रिलैक्स होना मीन्स नो फियर. सी, हम फियर कैसे नहीं क्रिएट करें, हम किस चीज़ का फियर क्रिएट कर रहे हैं कि सपोज नहीं सक

0: डेवलपमेंट होती है, बच्चे की एक इमोशनल डेवलपमेंट भी तो हो रही है। अब इस इमोशनल डेवलपमेंट की स्टेज में हम कौन सी एनर्जी सारा दिन देते हैं? अगर उस बच्चे को नेगेटिव एनर्जी, फियर की, इनसिक्योरिटी की मिलेगी, विल दैट चाइल्ड ग्रो अप टू बी अ स्ट्रॉन्ग चाइल्ड? हमें आज अगर हम देख रहे हैं कि आज के कॉरपोरेट सेक्टर में इमोशनल इंटेलिजेंस इज समथिंग विच इज लुक्ड फॉर, गो 20 ईयर्स बैक एंड वो था इंटेलिजेंस क्वेश्चन देखा जाता था, उसका एप्टीट्यूड टेस्ट होता था। आज हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इमोशनल स्टेबिलिटी का टेस्ट लिया जाता है। क्यों? देयर इज अ शिफ्ट ना, कि ठीक है अब तो बहुत सारे लोग हैं जो IIT से आ रहे हैं, IIM से आ रहे हैं, बट वी वॉन्ट वो लोग जो स्टेबल हैं। तो अब अगर कॉर्पोरेट सेक्टर का, जिसके लिए आप अपने बच्चे की तैयारी कर रहे हैं, जब उनका फोकस इमोशनल स्टेबिलिटी पर आ गया है, तो ये इमोशनल स्टेबिलिटी कौन क्रिएट करेगा बच्चे के अंदर? हमें क्रिएट करना पड़ेगा। हमारा बच्चा सक्सेसफुल जीवन में तभी हो पाएगा अगर वो इमोशनली स्टेबल है। हम इतना फियर, इतनी एक्सपेक्टेशंस का भी प्रेशर क्रिएट कर देते कि बच्चे उस एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर के कारण भी परफॉर्म नहीं कर पाते। यू नो, अगर हम अपने बच्चे को कह पाते कि यू स्टडी हार्ड एंड देन वट एवर हैपन्स आई एम फाइन विद इट, जितने भी आपके मार्क्स आए आई एम फाइन विद इट, बट प्रोवाइडेड आप अपना बेस्ट एप्टीट्यूड उसके अंदर लगा दो।
1: I don't think there is any parent जो ये नहीं कहता होगा।
0: नहीं, हम ये सोचते हैं कि अगर हम ये कहेंगे कि आपके जितने भी मार्क्स आएंगे आई बी फाइन विद इट, तो हमें लगता है कि फिर बच्चे के ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं डेवलप हो रहा।
1: सिस्टर शिवानी, मैं इसी पे आना चाहती थी। मैक्सिमम पेरेंट्स यही कहते हैं कि आप जो भी आएगा, यू आर माई चाइल्ड, आई एक्सेप्ट यू, आपके हम मुझे कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप अपना काम करते रहो। और मैक्सिमम पेरेंट्स से जब बात करो,
0: सिर्फ बोलने के लिए या सोच में भी, सी बोलने वन थिंग इज कि आप ये बोल रहे हैं, लेकिन इंटरनली तो आपकी सोच और आपकी आपस में जो कॉन्वर्सेशन है, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर है, तो आप चाहते हो कि उसको यू नो रिलैक्स करो, तो हम कहते हैं कि कोई बात नहीं तुम पढ़ो, लेकिन क्या हमारी सोच वही है? हमारी सोच में क्या है? आई मेट वन गर्ल हुज इन द 12th स्टैंडर्ड, तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में बहुत मेरे ऊपर प्रेशर है कि आपको IIT से क्लियर करना है एंट्रेंस एग्जाम। तो कहती जैसे ही घर पहुंचती हूँ ना, तो मेरे फादर शुरू हो जाते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एंड शी सेइंग अब मैं एक्चुअली एक डिप्रेशन की स्टेज एक्सपीरियंस कर रही हूँ, कि अब मैं जितना पढ़ती थी ना, मेरे से उतना भी नहीं पढ़ा जा रहा है, क्यों मैं एकदम वो हो गई हूँ सुन सुन के। हाँ, एंड शी सेज पता है मेरा स्कूल के बाद घर जाने को दिल नहीं करता, कि जैसे ही घर जाएंगे ना तो वो शुरू हो जाएंगे। तो आई जस्ट थॉट के वी विल मीट हिज मीट हर फादर, तो उनके फादर से मिले, तो आई जस्ट सेड कि आई सेड भाई साहब वी अंडरस्टैंड कि आपकी बहुत यू नो अच्छी भावना है बच्चे के प्रति, लेकिन कई बार थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सो ही जस्ट रिएक्टेड लाइक दैट, ही से तो आपका क्या मतलब है, नहीं बोलो नहीं बोलो उसको पढ़ने के लिए, 6 महीने में फिनिश हो जाएगा, ये 6 महीना है मेरे को सिर्फ
1: आपकी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट,
0: ये मेरे पास सिर्फ 6 महीना है उसके ऊपर वो प्रेशर बिल्ड करके उससे वो क्लियर करवाने का। अगर ये 6 महीना मैंने नहीं बोला, नहीं करवाया, एंड इफ शी डजंट क्लियर देन वॉट, बट वी आर नॉट रेडी टू सी कि वो जो मैं बोल रहा हूँ, वो जो मैं एनर्जी दे रहा हूँ, उसका उस बच्चे पे क्या इम्पैक्ट, बिकॉज वो गर्ल के तो फेस पे विजिबल था। आई डोंट नो व्हाई द पेरेंट कांट सी इट, कि उसके फेस पे विजिबल है कि वो एकदम ऐसी स्थिति में चले गए।
1: प्रेशर, यू नो, अनदर थिंग व्हिच आई वांट टू टॉक अबाउट, इफ वी आर रियली टॉकिंग अबाउट दिस इशू, इज कि डू द पेरेंट्स और टीचर्स रियलाइज कि हो क्या गया है इन सिर्फ 2 सालों में? हम उन्हें मशीन बना देते हैं। आई मेट अ मदर, वो कहती है मैं नहीं चाहती हूँ, उनका बेटा आता है 3 बजे स्कूल से वापस, अभी 11th में है, 3:30 बजे वो चला जाता है इतनी दूर, आई थिंक 15 किलोमीटर गाड़ी उनके साथ जाती है कि वो कुछ क्लासेस ज्वाइन की हुई हैं IIT की में एडमिशन के लिए। अभी 12th में तो वो बाद में आएगा, वहाँ पे वो 3:30 बजे निकल के 4:30 पहुँचता है, 7:30-8 बजे वापस आता है, हर रोज़ का उसका स्केड्यूल है। उसके बाद स्कूल में भी उसका एक कोचिंग का पैटर्न है जिसको वो अटेंड नहीं कर पा रहा, सैटरडे संडे वहाँ जाना होता है। तो शी ओनली सेड कि मैं परेशान, क्योंकि मदर को उसके साथ ही सारा काम छोड़ के पूरे 2 साल उन्होंने इस पर लगाया है। आई डोंट अंडरस्टैंड, शी सेड बिकॉज दिस इज व्हाट माय यू नो सन वांटेड, बट डू वी रियलाइज हम कई बार बच्चे के साथ भी तो काउंसलिंग नहीं कर पा रहे, उसको हम समझा नहीं सकते क्या?
0: True,
1: why do we get under this pressure also?
0: Of course, अब बच्चा क्या करियर चूज करना चाहता है या फैमिली ने क्या डिसाइड किया आपस में, दैट ऑफकोर्स ईच वन विल डिसाइड फॉर themselves.

0: उसके लिए क्या एफर्ट करना है, वो भी शायद नीड ऑफ द आवर है कि एफर्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है. लेकिन उस चीज़ के साथ साथ सिर्फ इधर ध्यान रख लें, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको एफर्ट करना पड़ रहा है, जैसे आपने कहा वीकडे भी सुबह से रात तक, सैटरडे संडे भी सुबह से रात तक,
1: वट यू थिंक सिस्टर शिवानी एक्चुअली, और ये बहुत बच्चे गुजर रहे हैं, आई थिंक टुडे वी रियली नीड टू टेक अ पॉज. मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ उसके उस बच्चे पे जो ऐसे इससे जा रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमें इतना मेंटल परसिवरेंस है, हम कर लेंगे, और वो सिर्फ 17-18 साल के जो बच्चा है, जो जिसपे खाने का भी उनका जो हालत हो चुकी होती है और जिस तरह से वो पूरा उनका लाइफ स्टाइल हो चुका होता है, आई जस्ट वॉन्ट टू नो वट इज़ गोइंग टू हैपन टू दीज चिल्ड्रन जब ये आगे बड़े भी होंगे, और इनका फिजिकल क्या बर्नआउट नहीं होगा?
0: नो, सी व्हाट हैपेंस, इस एज ग्रुप में हमारे अंदर स्टैमिना बहुत है, फिजिकल भी बहुत स्टैमिना है, मेंटल भी बहुत स्टैमिना है. लेकिन आप इसलिए हमें लगता है कि एक साल की तो बात है ना, लेट मी जस्ट गिव इट, क्योंकि अगेन ये एक यू नो जो वर्डिंग्स हैं वो है इस एक साल पर तुम्हारी पूरी जीवन
1: की
0: यू नो निर्भर करती है. हमने ये नहीं सोचा हमारी जिंदगी बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करती है, बट चलो कोई बात नहीं. इवन देन इफ दिस वन ईयर हैज़ एवरीथिंग, put in your best, whatever you want to do, but then equally take care. See, अगर आप इस शरीर से और इस मन से इतनी मेहनत करवा रहे हो तो साथ साथ उतना ही ज़्यादा आपको उसका ध्यान देना पड़ेगा कि फिजिकली तो फिर भी आई थिंक वी मस्ट बी लुकिंग आफ्टर आर सेल्व्स, लेकिन मेंटली आई डोंट थिंक वी लुकिंग आफ्टर आर सेल्व्स, क्योंकि जितना ज़्यादा हम ये एफर्ट कर रहे होते हैं उतना ज़्यादा हम उसके फ्यूचर के साथ अटैच्ड भी हो गए हैं कि जहाँ मैंने इतना एफर्ट किया है तो उसका रिजल्ट तो
1: आना है.
0: अच्छा होना ही होना है, रिजल्ट अच्छा ही होता है, लेकिन फिर कुछ एक केसेस में जहाँ रिजल्ट नहीं उतना फेवरेबल होता तो हम उसके लिए रेडी नहीं थे. क्योंकि वो हर दिन दिन और रात मेहनत करना बहुत अच्छी बात, लेकिन मेहनत के साथ साथ उस रिजल्ट के साथ पहले ही अटैच हो जाना कि ये होना ही है, आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होना ही, मतलब देर इज जस्ट नो पॉसिबिलिटी कि आप कुछ और करने वाले हैं, वो अटैचमेंट वो पूरा जो घर के अंदर क्रिएट हो जाता. फिर बाई चांस अगर वो नहीं होता है तो फिर बच्चे के अंदर वो ताकत नहीं, तब पता चलता कि ताकत एक्चुअली नहीं थी.
1: नहीं यू नो वही मैं कह रही हूँ, क्योंकि आप इतने ऑलरेडी इन दो सालों में ड्रेन्ड आउट हो चुके.
0: ड्रेन्ड आउट पढ़ने से नहीं होते हो, ड्रेन्ड आउट मेहनत करने से नहीं होते हो, ड्रेन्ड आउट इस प्रेशर को फेस करने का राइट तरीका नहीं है उसे. एंड अगेन वी वुड से बी इन द प्रेजेंट, रोज मेहनत करनी है, रोज पढ़ो विदाउट क्रिएटिंग ऑल दीज फियरफुल थॉट्स, क्या होगा, होगा नहीं होगा, उसका तो हो गया, मेरा क्या होगा, यू नो इसमें कंपैरिजन आता, कंपटीशन आता, ये वाली थॉट्स को अगर आप सारा डिलीट कर सकते हो, इसलिए मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है एक स्टूडेंट लाइफ में. अगर एक स्टूडेंट रोज सुबह अपना दिन ये चार्जिंग से, पॉजिटिविटी से और राइट काइंड ऑफ थॉट्स से शुरू करे, मेहनत इज नॉट डैमेजिंग, मेहनत कर सकते हैं हम, बहुत मेहनत, इनफैक्ट हम जितना करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन प्रोवाइडेड हमारी लीकेज नहीं कहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ एनर्जी तो उतनी ही है, उस एनर्जी को आप किस पर्पस के लिए फोकस
1: पकड़ के आप चल रहे हो ना, वो बहुत डैमेजिंग हो सकता है.
0: तो कई बच्चों का फिर ऐसे मालूम पड़ता कि अगर उनको वो रिजल्ट नहीं मिला जो जो एक्सपेक्टेड था, जरूरी नहीं होता कि फेलियर है, लेकिन जो रिजल्ट मैंने एक्सपेक्ट किया था वो रिजल्ट नहीं हुआ. दिल्ली में ये पिछले साल की बात है, देयर वाज दिस गर्ल हु केम सेकंड इन क्लास, वांटेड और एक्सपेक्टेड टू कम फर्स्ट इन क्लास, शी कमिटेड सुसाइड. How can someone commit suicide for coming second in class? I mean, second in class, you're one of the toppers of the class. Aap class mein second aane ke liye suicide commit jis bacche ne kiya hai, uski mental state ka hum imagine kar sakte ki wo first aane ke idea se itna zyada attached the ki wo second ko face karne ki unke andar ताकत ही नहीं
1: थी, और वो पूरा जो एनर्जी वो ऑलरेडी उतने टाइम में हो चुके हो.
0: इट वाज जस्ट ओवर. तो हियर द चाइल्ड प्लस द पेरेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वर्क हार्ड, स्टडी, फोकस, एवरीथिंग, लेकिन रिजल्ट इट्स ओके, क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो रिजल्ट तो अच्छा आना ही आना है, लेकिन वो फियर वाली थॉट्स अभी क्रिएट करके अपने आप को ड्रेन आउट नहीं करो. क्योंकि क्या होता है, जब पेरेंट्स भी बहुत मेहनत कर रहे होते हैं बच्चे के साथ, बच्चा देखता है कि मेरा रिजल्ट पेरेंट्स के लिए बहुत मैटर करता है. यू नो, फॉर ए चाइल्ड पेरेंट्स आर एवरीथिंग. जब मुझे दिखाई देता कि मेरा ये मार्क्स जो आने वाले हैं ये मेरे पेरेंट्स के लिए, यू नो, इट्स बिकम लाइक लाइफ एंड डेथ. यू कैन सी द पेरेंट्स की सारी खुशी, अगेन वो खुशी वो मार्क्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गई है, वो भी एक प्रेशर बच्चे के ऊपर क्रिएट हो जाता कि मुझे परफॉर्म करना है तो किसके लिए, अपने पेरेंट्स की हैप्पीनेस के लिए. मेरी हैप्पीनेस से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स की हैप्पीनेस मेरे मार्क्स पर जुड़ी है. ये सारे जो प्रेशर्स है ना, ये अननेसेसरी प्रेशर है. पढ़ाई का प्रेशर है वो इतना सही है, वो फेस कर लेंगे, लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर, मेरी हैप्पीनेस इस पर डिपेंडेंट है, आपकी पूरी लाइफ इस पर, ये जो प्रेशर्स हैं ये फिर वो न्यूमरेटर को बहुत ज़्यादा बड़ा कर देते हैं. एंड देन आई रियली डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू फेस अप विद इट. एंड देन वी कम अक्रॉस डिप्रेशन, स्टूडेंट्स गोइंग टू डिप्रेशन. नहीं तो स्टूडेंट लाइफ में डिप्रेशन अनहर्ड ऑफ, स्टूडेंट लाइफ में डायबिटीज, हाइपरटेंशन अनहर्ड ऑफ. लेकिन आज क्यों? क्योंकि प्रेशर्स बहुत बढ़ते जा रहे एंड कोपिंग स्किल कोई सिखा नहीं रहा. कोई भी नहीं सिखा रहा कि राइट थिंकिंग क्या है इसमें. कोई भी नहीं सिखा रहा कि कंपटीशन हेल्दी नहीं है, कंपैरिजन है. सभी यही सिखा रहे हैं कि कंपैरिजन करना है, कंपटीशन करना.
1: जब तक नहीं, अगेन एंड अनदर थिंग व्हिच आई रियलाइज इज, जब उनके फादर ने कहा कि अगर मैं स्ट्रेस क्रिएट नहीं करूंगा तो वो पीक परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा. सो दिस इज अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम हमारा कि जब तक स्ट्रेस नहीं होगा. इवन ऑफिस में, मतलब अगर हम मल्टीनेशनल में देखते हैं तो बॉस बोलता है अगर मैं नहीं क्रिएट करूंगा, कॉम्पिटिशन नहीं क्रिएट करूंगा, प्रेशर नहीं क्रिएट करूंगा, स्ट्रेस नहीं दूंगा,
0: परफॉर्मेंस. अब ये भी एक हमें सोचने की बात है कि स्ट्रेस मतलब फियर. फियर, और हम फियर को यूज कर रहे हैं मोटिवेशन क्रिएट करने के लिए ना. फियर इज अ मोटिवेटर. तो फियर एक नेगेटिव एनर्जी, मोटिवेशन एक पॉजिटिव एनर्जी. तो एक नेगेटिव एनर्जी से आप एक पॉजिटिव एनर्जी कैसे क्रिएट कर सकते हो? गिव लव, गिव कंपैशन, गिव सपोर्ट, लेकिन गिविंग फियर, ताकि फियर से वो मोटिवेट हो जाए. इट विल नेवर हैपन. कभी भी ऑफिस में अगर हम देखें कि सब लोग काम कर रहे हैं तो अपना बहुत अच्छा काम करते हैं अपने आप, जैसे ही अगर कोई ऐसा सीनियर आकर खड़ा हो जाए जो हमेशा ऐसे वाला है, यू नो, बहुत ऐसे, आप देखेंगे कि सबकी क्या, you know, just things to, because we've seen lot of people, वो कहेंगे गलतियाँ तो निकालनी चाहिए. क्रिटिसाइज करते रहोगे ना तो ये अपने आप को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे. अगर इनको अप्रिशिएट ही करते रहे ना सारा दिन, तो अप्रिशिएट करेंगे तो इनकी परफॉर्मेंस, आई मीन दिस इज थॉट पैटर्न, कि अगर अप्रिशिएट करेंगे तो ये तो फिर अपना बेस्ट एफर्ट नहीं देंगे, ये सोचेंगे वी हैव रीच्ड आवर बेस्ट.
1: दैट्स व्हाट वी डू विद किड्स आल्सो. You know, we've stopped appreciating them because अगर हमने किया तो इनको फिर आगे पढ़ना बंद कर देंगे या ये कर नहीं पाएंगे आगे.
0: What we have to understand is energy का खेल है सर. Appreciate करोगे वो पॉजिटिव एनर्जी है. पॉजिटिव एनर्जी कभी भी किसी को ऐसे नहीं कर सकती है. पॉजिटिव एनर्जी हमेशा empower करेगी. And critical हो जाएंगे बात बात में, और वो भी इस इंटेंशन से. क्रिटिसाइज करेंगे ना तो अपने आप वो और ज़्यादा मेहनत करेगा, क्योंकि हम अपने बॉस की या अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को बीट करना चाहते हैं. तो अगर वो हमारे काम में गलतियाँ निकालेंगे तो हम मोटिवेट हो जाते हैं. ये बिलीफ सिस्टम है कि ये फिर मोटिवेट होंगे और मेहनत करने के लिए. अगर बॉस नहीं आके जूनियर्स को प्रेस कर दिया, फिर तो वो बहुत अच्छा, बॉस खुश हो गया तो चलो, व्हाट एफर्ट डू आई हैव टू पुट. वेरी वेरी, what to say, call it wrong or what, this belief system
1: doesn't
0: needs to
1: work
0: be checked.
1: Actually it is not working.
0: It doesn't work. Kyunki jahan koi mehnat kar raha hai aur aap jaakar us par critical ho jate hain, aap turant uski energy ko, फिर या तो वो सामने वाले के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो आपकी क्रिटिसिज्म के साथ, यू नो, इन्फ्लुएंस्ड ना हो जाए. लेकिन क्योंकि आज हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं एक दूसरे की एनर्जी से.
1: पर हम चाहते भी हैं कि वो हमारे क्रिटिसिज्म से इन्फ्लुएंस हो.
0: हाँ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो हमारी क्रिटिसिज्म से और अच्छा करें. बट दैट्स नॉट व्हाट इज गोइंग टू हैपन. क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज डिसएम्पावरमेंट. आपको फीडबैक देना है, यस, इट इज़ नॉट कि आप काम ठीक नहीं है फिर भी आप कहेंगे कि योर वर्क इज़ परफेक्ट. लेकिन एक है काम पर फीडबैक देना और एक है क्रिटिकल एनर्जी देना. दोनों में बहुत फ़र्क है. इसलिए वर्ड्स मैटर नहीं करते, वर्ड्स के पीछे का इंटेंशन मैटर करता है. आप फीडबैक देते हुए भी किसी को एम्पावर कर सकते हो, और कई बार ये बोलते हुए भी कि हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसको डिसएम्पावर कर सकते हो. तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा फोकस है काम पर, कि ये काम और अच्छा करे, ये काम और अच्छा करे. हमें ये याद रखना पड़ेगा काम करने वाला कौन है. जो काम करने वाला है, ये शक्ति, उसको जब तक हम एम्पावर नहीं करेंगे तो काम और अच्छा नहीं होगा. हमारा रोल एज अ बॉस और एज अ पेरेंट इज टू फैसिलिटेट, टू गाइड एंड टू एम्पावर. काम वो लोग करेंगे, काम तो अपने आप हो जाएगा. जब एक सीनियर आकर खड़े होते हैं जो थोड़ा इस तरह की एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं, तो अगर मैं सही भी काम कर रहे होते हो ना, तो वो एनर्जी के इन्फ्लुएंस के अंदर मेरे से गलतियां होने लगती हैं, एंड फिर वो गलतियां ढूंढ लेते हैं क्योंकि उसके अंदर अब गलती आ गई. लेकिन वो गलती इसलिए हो जाती क्योंकि वो फियर मेरे अंदर क्रिएट हो जाता, क्योंकि माई पास्ट एक्सपीरियंसेस ये आए हैं, अब ये उस तरह की एनर्जी देते हैं. और उनका आना ही, खड़े होना ही, और उस इंटेंशन के साथ खड़े होना, इट क्रिएट्स अ वाइब्रेशन इन द रूम. एंड मतलब आप देखेंगे कि विद द एम्प्लॉयज जो अभी तक अच्छा काम कर रहे थे, अब सडनली उनसे गलतियां हो जाती, क्योंकि स्ट्रेस मेरी परफॉर्मेंस को इन्हेंस नहीं करता, वो हमेशा मेरी परफॉर्मेंस को नीचे ही लेकर आएगा.
1: लेकिन एक बात, बहुत लोग बहुत बार सोचते हैं कि जैसे ही मैं इनको प्रेज करता हूँ या अप्रिशिएट करता हूँ, किसी के साथ भी अगर हम ले, तो इनका सर चढ़ जाता है. हमसे ये शब्द बहुत बार यूज़ किया जाता है, एंड दिस इज समथिंग अ वेरी दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज, लेकिन ये बात कही जाती है मैक्सिमम लोग, चाहे वो घर पे हों, चाहे वो बाहर हों, या और डिसरिस्पेक्ट शुरू कर देंगे. ज़रा सा मैंने इनको ढील दी ना, ये मेरे सर पर चढ़ के बैठेंगे.
0: चलो उनके बारे में नहीं बात करते, अपने बारे में सोचते हैं, क्योंकि अगर मैं सीनियर हूँ तो मेरे से ऊपर कोई और सीनियर है, नहीं भी है तो आई कैन इमेजिन तो ना, कि कोई अगर मेरे से सीनियर हो तो मुझे क्या अच्छा लगेगा कि वो मेरे से कैसे काम करवाए, वो मेरे से कैसे बात करे. अच्छा मैं सीनियर हूँ, बच्चा तो कभी था ना, तो जब मैं बच्चा था तो मैं क्या चाहता था कि मेरे पेरेंट्स कैसे बात करें मुझसे. क्या मेरी पर्सनालिटी ये थी कि अगर मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार से बात करते तो मैं उसका अनड्यू एडवांटेज ले लेता?
1: नहीं,
0: कभी भी नहीं. एंड भले
1: मैं तो अच्छा था,
0: सारे ही अच्छे होते हैं ना, नहीं सारे ही वैसा करते. वी थिंक दैट हम ऐसा करते, बट एक्चुअली सारे ही ऐसे हैं. एवरी वन लाइक्स लव, एवरी वन लाइक्स सपोर्ट, एवरी वन लाइक्स कंपैशन. कोई मिला आज तक जो कहे मुझे क्रिटिसाइज करो तो मैं ज़्यादा अच्छा काम करूँगा? तो ये कई बार, हाँ ये होता, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें आदत पड़ी है डांट से काम करवाने की. इसी तरह सामने वाले को भी आदत पड़ी है कि डांट तो पढ़नी ही है, तो हम दोनों के संस्कार थोड़े वैसे वाले हुए हुए. लेकिन आप एक बार ट्राई करके देखो कि डांट से नहीं, प्यार से ही काम करना है. भले वो काम करें, हो सकता है 2 दिन 4 दिन 1 महीना 4 महीना लग जाए कि वो पूरा जो वर्क कल्चर है उसमें एक चेंज आए, लेकिन चेंज ज़रूर आएगा. एंड अब जो काम होगा ना पूरा, एक तो सब लोग बहुत आपस में नज़दीक हो जाएंगे, क्योंकि देन देयर इज द राइट एनर्जी फ्लोइंग. अभी देयर वाज नेगेटिव एनर्जी फ्लोइंग. आप किसी को क्रिटिसाइज करो, फिर वो आपसे नफरत करे, तो बिटवीन द बॉस एंड द जूनियर, नॉट वेरी गुड एनर्जी. लेकिन जब ये प्यार और सपोर्ट, एक्सेप्टेंस की एनर्जी फ्लो करती, वी ऑल कम लाइक दिस, एंड देन हमें कोई कहेगा नहीं कि काम करो. हमारा खुद मन करेगा कि हम काम करें इनके लिए, इनकी कंपनी के लिए, क्योंकि इनकी कंपनी हम हमें अपनी लगती है. देयर इज अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द वर्क. आज कॉर्पोरेट सेक्टर में कहते हैं यू शुड फील, ब्रिंग योर हार्ट टू वर्क. आप अपना दिमाग तो लेकर आ रहे हैं ऑफिस में, लेकिन अपना दिल घर पर छोड़कर आते हैं. योर बिलोंगिंगनेस इज एट होम, बिलोंगिंगनेस इज नॉट एट वर्क. व्हाई? बिकॉज दिस एनर्जी इज नॉट देयर. फिर आपको काम करवाना नहीं पड़ेगा, काम होता जाएगा, और इतनी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी. किसी से कोई गलती होगी, वो खुद से आकर सच बताएंगे आपको, क्योंकि उनको पता है कि आप डांटने वाले नहीं हैं. सो दैट ट्रस्ट एंड दैट बॉन्डिंग विच विल गेट क्रिएटेड, इट जस्ट हैज टू बी सीन, एक्सपेरिमेंट एंड करके देखें.
1: एंड फिर गलतियां भी कम होंगी, क्योंकि डर नहीं होगा ना. ऑफ कोर्स डर के कारण बहुत कुछ गलत होता जाता है.
0: डर के कारण एक विशेष साइकिल बनता, गलती हो जाती, फिर गलती को छिपाते हैं डर के कारण, फिर छिपाकर उसका ब्लेम किसी और पर डालते हैं. अगर बॉस ने मुझसे पकड़ लिया कि मेरी गलती हुई, मैं तुरंत बोलूंगी मेरी वजह से नहीं, उनकी वजह से. ब्लेम डाला, जैसे ही ब्लेम डाला मेरा और उस सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप भी अफेक्ट हुआ, होल एनर्जी फ्लो गेट्स अफेक्टेड. एंड अगर ट्रांसपेरेंसी है, आई कैन से यस आई एम सॉरी, मेरे से गलती हुई एंड इट्स फिनिश्ड.
1: और समवेयर यू नो मेरी कभी इंटेंशन थी नहीं ना, तो वो कॉन्फिडेंस रहेगा मुझे कि हाँ ठीक है मैंने इंटेंशनली नहीं किया. अगेन अमेजिंग, हमने बच्चों से शुरू करके आज बात जो है, और स्ट्रेस को हमने जब ये देखा कि जब जितनी मेरी इनर स्टेबिलिटी, मेरा इनर रेजिस्टेंस पार बढ़ता जा रहा था, वो जो स्ट्रेस जो था वो और कम होता जाता. इनफैक्ट जिसको हमने नॉर्मल मान के, जब हमने कहा कि जितना स्ट्रेस होगा उतनी मेरी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, तो यहाँ ये समझ में आया है कि स्ट्रेस जो था वो मेरी परफॉर्मेंस को इनफैक्ट और वीक कर रहा था, और उसके लिए मुझे स्ट्रेस को निगेट करना या निल पर लेकर आना बहुत ज़रूरी हो जाता है. सिस्टर शिवानी थैंक यू सो मच.
0: ओम
1: शांति. अगर आपके पास कोई सवाल मन में उठ रहा है, कोई बात है, आपका हम स्वागत करते हैं. आप हमें ईमेल पर या फिर फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 999-344-555, 999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही. आने वाली कड़ियों में कुछ और बातें आपके साथ शेयर करेंगे. अभी आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुश।

पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: मनन से मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक। पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: एक ख्वाब था और उस ख्वाब की एक आवाज थी। आरती उस आवाज की उंगली पकड़े एक लंबे बहुत लंबे ख्वाब में सफर कर रही थी। एक ही ख्वाब कई बार देखा है मैंने।

मेरी चाबियां घर की।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। इन दिनों हम ये बात कर रहे हैं कि जिंदगी जीते जीते कितनी बार ऐसा होता है कि हम हर्ट हो जाते हैं और फिर हमें लगता है कि जैसे किसी ने कोई गलती की है तो न्याय होना चाहिए, उसे पनिशमेंट ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन पनिशमेंट कौन देगा? क्या हम पनिशमेंट दे सकते हैं और पनिशमेंट क्या होनी चाहिए? ऐसे ही कई एस्पेक्ट्स हैं ज़िंदगी की, वो बातें जिन्हें आज तक हम स्वीकारते चले आ रहे थे कि यही नॉर्मल है, उन्हें एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, हमने बात ये की थी कि जब हम हर्ट हो जाते हैं तब कई बार मन करता है कि पहला रिएक्शन ये होता है कि आई वॉन्ट टू गिव बैक, और वही रिवेंज का, चाहे वो छोटे से छोटा एस्पेक्ट ले लें या क्रिमिनल जब बनते हैं तब भी वो एस्पेक्ट। और फिर बात आ जाती है कि पनिशमेंट की। न्याय ये कहता है, कानून ये कहता है कि अगेन छोटे से छोटा गलती, छोटे से छोटी गलती हो या फिर बड़े से बड़ा क्राइम, सज़ा बहुत ज़रूरी है। लेकिन सज़ा का एक बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट हमने पिछली बार बात की थी। जहाँ तक क्राइम की बात है, बहुत से लोग हैं जिनके पास अब ये सवाल ये है कि अगर क्राइम घटता है, अगर क्रिमिनल जिसे कहते हैं अपराधी ने अपराध किया है, तो फिर क्या करना चाहिए उसके साथ?
1: क्रिमिनल शब्द ही, जैसे हमने देखा कि वो हम किसको देते हैं। हम सब कहीं ना कहीं उस तरह से सोचते हैं, लेकिन किसी ने उसको कर्म में ला दिया तो हमने उसको क्रिमिनल टैग दे दिया। क्रिमिनल किसको हमने वो टैग दिया? हम में से ही कोई एक व्यक्ति, एक ह्यूमन बीइंग जो है अपने आप में एक बहुत शुद्ध पवित्र आत्मा, लेकिन अपने आप को भूला हुआ है, अपने आप को भूल चुका, लोगों के साथ व्यवहार करने के तरीके को भूल चुका, एंड हाउ दिस होल वर्ल्ड वर्क्स ही हैज़ फॉरगॉटन। सो ही इज़ लिविंग इन अ यू नो इग्नोरेंस, वो अज्ञानता की नींद में जिसको कहते हैं चल रहा है, और उस अज्ञानता के कारण से उससे कोई ऐसा कर्म हो गया है, चाहे वो क्रोधवश है, लोभवश है, लेकिन वो अज्ञानता से हुआ है और वो कोई ना कोई बात से अभिज्ञ है, उसे स्मृति नहीं है। अब वो स्मृति वापस लाने हैं। सो इट्स बेसिकली अ बिलीफ सिस्टम which is a wrong belief system. He has forgotten the truth. सत्यता भूल चुका है और किसी wrong belief system पे उसका thought चल रहा है। और ये सिर्फ so-called criminal के साथ नहीं, ये हम सब के साथ होता है। हमारी इस पूरी series में ही हमने अपने कितने सारे wrong beliefs लिए हैं। तो criminal thinking ये हम सब की चलती है, एंड किसी की थिंकिंग बिहेवियर में आ जाती
0: convert है।
1: There are so many beliefs which working in each one of us. Let's say for example, the belief is that the more I have, the more happy I will be. अब ये मेरी belief है कि मेरे पास जितना होगा या मेरे जो दूसरों के पास है वो मेरे पास अगर होगा तो मुझे खुशी मिलेगी। अब ये एक belief है। इस belief को हम में से कितने लोग नहीं सोचते हैं कि जो उसके पास है वो अगर मेरे पास होगा तो मुझे खुशी मिलेगी। सत्यता क्या है?
0: खुशी तो मुझे अपने आप से मिलेगी,
1: अपने आप से मिलती है, लेकिन ये सत्यता ना जानने के कारण हमसे कोई ना कोई अपराध हो जाता है, क्योंकि जितने भी क्राइम्स हम हैं वो कितने सारे इस बिहेवियर पर बेस्ड है। सो द बिलीफ इज कि जो औरों के पास है वो मेरे पास होना चाहिए, और सत्यता क्या है कि मैं अपने आप में ऑलरेडी खुश हूँ। बिलीफ है कि दूसरे मेरे दुख का कारण है, दूसरों ने मेरे साथ गलत किया, दूसरों ने मुझे धोखा दिया। इस बिलीफ को लेकर कितने अपराध आज होते हैं।
0: एक्चुअली जब ये बिलीफ इतना हावी हो जाता है सो देन वी
1: लेकिन है तो हम सबके साथ ना। है तो ये बिलीफ सबके साथ। और सत्यता क्या है कि कोई मुझे दुख नहीं दे सकता, कोई मुझे धोखा नहीं दे सकता। सक्सेस क्या है? सक्सेस है कि हम जितना अक्यूमुलेट कर लें, जहाँ हमारे पास सब कुछ आ जाएगा, वो सक्सेस है। इस एक को लेकर आज कितने अपराध हो रहे हैं, कितने सारे आज हम जो पढ़ते हैं न्यूज में या जितने इंसिडेंट्स आज हो रहे हैं दिल्ली शहर में, कि जो डोमेस्टिक हेल्प है घर में वो अपने ही जिनके लिए वो काम कर रहे थे उनको मार देते हैं। फॉर व्हाट?
0: एक्युमुलेशन एंड एंगर, मेजर एंगर बहुत बार देखा गया है।
1: एब्सोल्युटली। तो अक्यूमुलेट करने के लिए, वेल्थ अक्यूमुलेट, मेजोरिटी क्राइम्स वेल्थ अक्यूमुलेट करने के लिए हो रहे हैं। और सत्यता क्या है? दैट यू डोंट नीड एनी ऑफ दिस। सक्सेस इज क्या? हमारी इंटरनल सेटिस्फैक्शन। तो कितने सारे ये रॉन्ग बिलीफ्स ही हैं, और वो रॉन्ग बिलीफ जब इतने बड़े इस तरह से कर्म में आ जाता, वी विल कॉल देम अ क्रिमिनल। अब उनको जिसने इस तरह की कोई गलती की, उनको दुनिया से दूर कर देना, उनके घर के लोगों से दूर कर देना और एक कटघरे में बंद कर देना सिर्फ, उससे उनके बिलीफ में परिवर्तन नहीं आएगा। तो उनकी हीलिंग के लिए, बिकॉज आफ्टर ऑल वी वॉन्ट कि वो जो पर्सनैलिटी वापस आएगी आफ्टर द सो कॉल्ड पनिशमेंट, दैट शुड बी अ हील्ड पर्सनैलिटी, रिफॉर्म्ड पर्सनैलिटी। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? उसके लिए हम कुछ नहीं करते। तो वो आत्मा ऑलरेडी इग्नोरेंस में है और हम भी एक और इग्नोरेंस का कर्म करते जब हम कहते पनिशमेंट से परिवर्तन हो जाएगा। तो ये भी तो एक इग्नोरेंस है। पनिशमेंट से कौन सा परिवर्तन आज दिन तक हुआ? तो ये सिर्फ सो कॉल्ड क्रिमिनल के लिए नहीं, लेकिन बचपन से लेकर जो आज हमारे बच्चों के साथ भी इस तरह से पनिशमेंट देकर सिर्फ परिवर्तन करने की कोशिश करते, उसके ऊपर थोड़ा सा हमें मंथन करना होगा।
0: बहुत से हमारे दर्शक हैं जिनके दिमाग में ये सवाल आएगा कि तो फिर जब अपराध हो रहा है तो अपराधी को क्षमा कैसे किया जाए? अपराधी को अपराध की सज़ा तो मिलेगी ही, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट करना ज़रूरी है। इतना अपराध क्योंकि उसने कहीं ना कहीं वायलेट किया है दूसरे की इंडिपेंडेंस,
1: दैट इज ट्रू,
0: है ना, दूसरे की, कहीं ना कहीं दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो चोरी हो, चाहे कुछ हो, कहीं ना कहीं ही इज रिस्पॉन्सिबल।
1: We are not saying that you know the judiciary system doesn't work and all this should not be there. But the thing is ki ek bar you have got the person in your custody, ab aapne kya karna hai unke saath? उसमें आपके पास बहुत सारा पोटेंशियल है कि सिर्फ ये नहीं कि उनके अंदर जो एंगर है, रिजेंटमेंट है, उसको और बढ़ने दें, उनको हील करें। द सो कॉल्ड प्रिजन एरिया कैन बी मोर लाइक अ काउंसलिंग सेंटर, इट कैन बी मोर लाइक अ हीलिंग सेंटर, जहाँ क्योंकि पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ना, तो उसके लिए हम क्यों नहीं कुछ करते? बिकॉज दैट्स नॉट ओनली फॉर देम, इट्स फॉर ईच वन ऑफ अस। लेकिन उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि वो बिटरनेस से नहीं लेकिन हील्ड होकर बाहर।
0: एक्चुअली उनके साथ तो बहुत ही बुरा ना सिर्फ सलूक किया जाता है, एटीट्यूड में, हमारी पूरी सोच में ही जहां अपराधी की बात आती है, जहां जेल की बात आती है, वहां हमें घृणा, एक घृणा से भर जाते हैं हम।
1: ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम, क्योंकि हमारा भाव क्या है, पनिशमेंट जब हम दे रहे हैं उसका भाव क्या है? सुधार लाना। पनिशमेंट हम इसलिए देते हैं ताकि व्यक्ति फिर से वो चीज ना करे, लेकिन उसके लिए हम कोई मेजर नहीं उठाते, सिर्फ उसको दुनिया से दूर एक यू नो पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपने रख दिया, उससे वो कर्म फिर से नहीं करेगा, देयर इज नो गारंटी, क्योंकि अंदर की हीलिंग तो हुई नहीं, उसने उसके परिवर्तन के लिए हमने कोई स्टेप उठाया नहीं। सो दैट इज समथिंग यू नो वी हैव टू टेक केयर ऑफ, एंड उसके लिए चाहिए कि जहाँ पे भी सब हैं वहाँ पे देयर हैज टू बी अ लॉट ऑफ एजुकेशन, अ लॉट ऑफ लर्निंग एंड अ लॉट ऑफ काउंसलिंग एंड अ लॉट ऑफ हीलिंग। एंड दिस सिस्टम इज नॉट फॉर क्रिमिनल्स बट फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर ईच वन ऑफ अस। जो आज गलतियाँ अगर हमारे से होती हैं तो जो हमारे साथ हैं उनकी ये एक सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि सिर्फ पनिश ना करें या सिर्फ रिवेंज ना लें। वो रॉन्ग मेथड क्यों हो जाता है? बिकॉज वो हमारे अंदर की बिटरनेस को और बढ़ा देता है। हमें इवन ऑफिस में, आपने ये गलत काम किया, आपके अगेंस्ट ये एक्शन लिया जाएगा, इट्स ऑलवेज एक्शन लिया जाएगा आपके अगेंस्ट, उससे क्या रिजल्ट निकलेगा? बिटरनेस और बढ़ती जा रही है, दूरियां और बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो मेथड वर्क नहीं कर रहा है, वी नीड टू वर्क ऑन दैट, कि मेथड ऐसा होना चाहिए जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो। अभी हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि गुस्से को और ये सारा जो अंदर बिटरनेस है इसको खत्म करना है, बट एक्चुअली हम जो कर रहे हैं उससे वो बढ़ रहा है। यू नो ऑफिस में भी कहेंगे डिसिप्लिनरी एक्शन, डिसिप्लिनरी एक्शन मीन्स यू वॉन्ट टू डिसिप्लिन द पर्सन, हैव यू रियली सक्सीडेड?
0: वही इसलिए मान लिया हमने कि भय से डिसिप्लिन हो जाता है। अगेन दिस इज अ मेजर मेजर बिलीफ विद व्हिच वी आर वर्किंग, कि भय से ही डिसिप्लिन हो सकता है, भय जो है वो काम करवा सकता है, भय से आप कोई क्राइम भी नहीं करेंगे। एक और मुद्दा जो उठता है वो है कि एक बार माफी वाला फैक्टर जो है कि एक बार मिस्टेक को आप माफ कर सकते हैं। इवन ये भी कहते हैं कि कृष्ण भी जो है 99 टाइम्स माफ कर देते थे, 100वीं बार जो था he said that it has to be punished. So बार बार जब repetition of the same mistake happens, then
1: तो बार बार repetition of the same mistake is happening because nobody is working on that person. आपको कहीं ना कहीं तो किसी को समय निकालना पड़ेगा ना उसके लिए, किसी को बैठकर चेक करना पड़ेगा कि why is that mistake happening? Because it's a deep rooted संस्कार। तो मिस्टेक वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, वो उससे होती जा रही है। हो सकता है कई बार आप देखो, हम अपने आप से नहीं होता, हम कितनी बार डिसाइड करते हैं कि गुस्सा नहीं करना फिर भी करते हैं, हम कितनी बार डिसाइड करते हैं कि हर्ट नहीं होना फिर भी करते हैं, तो 99 बार करते हैं या उससे ज्यादा बार करते हैं, तो हो रहा है।
0: लेकिन शिवानी अगर बात यही आ जाती है कि हम ये कहते हैं कि हम अपने ऊपर तो काम कर नहीं पा रहे, अब उनके साथ काम, और उनके साथ मतलब क्योंकि हमने उन्हें बिल्कुल एक उस कैटेगरी में डाल दिया, खासकर क्रिमिनल्स की अगर हम बात करें, उनके रिफॉर्म्स की या उनके ट्रांसफॉर्मेशन की बात तो हम कभी सोच ही नहीं पाते। और इसी तरह से जुवेनाइल क्राइम जो है, वो बच्चे जो क्राइम करके रिफॉर्म हाउसेस में जा रहे हैं, दे आर आल्सो यू नो।
1: आप देखो रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ था शूट आउट का स्कूल में, जो गुड़गांव में हुआ, द होल स्कूल मतलब जितने बच्चों ने उस इंसिडेंट को विटनेस किया उस टाइम पर, दे वेंट इनटू अ डिप्रेशन। अब उन बच्चों के लिए जिन्होंने वो शूट आउट को देखा, उनके लिए बहुत काउंसलिंग हुई, साइकाइट्रिस्ट आए, लेकिन उस बच्चे के लिए कुछ भी नहीं हुआ जिसने एक्चुअली वो मर्डर किया था, क्योंकि उस बच्चे को अब एक बच्चा ना देखकर
0: एक क्रिमिनल
1: कर दिया। बाकी सब बच्चों के लिए हुआ, और सबसे ज्यादा किसको जरूरत थी? सबसे ज्यादा उस बच्चे को जरूरत थी, उस बच्चे के लिए नहीं कुछ किया गया।
0: व्हाई इज इट, व्हाई डू वी हैव हेट्रेड?
1: हेट्रेड आ गई ना, कंपैशन खत्म हो गया, प्यार खत्म हो गया, क्योंकि हमने टैग कर दिया दे आर बैड पीपल। जैसे हमने, क्योंकि हम गुड और बैड के लेबल्स लगा देते हैं बहुत जल्दी, तो वी डोंट अंडरस्टैंड कि द एक्शन इज डिफरेंट एंड द पर्सन इज डिफरेंट। एक्शन गलत किया है, एब्सोल्युटली कर्म गलत किया है, लेकिन हमने बैड पीपल की कैटेगरी में उनको डाल दिया, फिर उनको काउंसलिंग या हीलिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो
0: है ही खराब,
1: तो खराब लोग हैं। अब जो बहुत सारे वो बच्चों से बात की गई, तो ये पता चला कि क्योंकि जैसे बुली सिस्टम या रैगिंग सिस्टम है इंस्टीट्यूट्स के अंदर, तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि हम लोग तो कितनी बार जैसे मन ही मन ये सोचते हैं कि मैं तो मार दूं इसको, या हम आपस में भी बात करते हैं मेरा बस चले कि मैं तो मार दूं इसको, यू नो। हम लोग भी आपस में जब बात करते हैं, अगर किसी से हमें बहुत नफरत है या बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा दिल कर रहा है मैं मार दूं इसको,
0: किल हिम, आई वांट हिम डेड, यू नो, कितनी बार, दैट मींस
1: द थॉट इज देयर विद सो मेनी of us. तो इतने सारे बच्चों ने कहा कि हमारे अंदर ये thought आती है। अब किसी बच्चे ने वो thought को implement कर दिया, लेकिन वो भी उन्हीं की तरह है। और इस समय उससे शायद सबसे ज़्यादा, क्योंकि the pain that he will be going through, so punishment is not, you know, just that separating them from everybody and he'll reform.
0: Loneliness जो उसको
1: मिलेगा. What will be the future of that child? So that somewhere the entire education system, parents, judiciary system, everybody needs to start working on that little bit. Ke counseling, healing, ye bahut important hai saath mein. Aap action, jo judiciary action hai, wo to lenge. Lekin ek bar wo aapke paas aa gaye, phir aapko unke saath kya karna hai, wo bahut important ho jata hai. Reform karne ke liye actually kya chahiye hota hai? Jaise aapne kaha, ek to motivation. कि हम अपने आप को ही नहीं आज रिफॉर्म कर पा रहे, या हम अपने आप को ही नहीं हील कर पा रहे, तो हम औरों के लिए कहां से करेंगे? और दूसरा टाइम, टाइम फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
0: एंड देन अगेन माइंडसेट्स हैं कि क्रिमिनल्स कभी नहीं होते, आप कुछ भी कर लीजिए। इनफैक्ट एक और बहुत बड़ा माइंडसेट हमारे साथ चलता है कि जो सपोजिटली लोअर वर्कर्स हैं, दे नेवर चेंज, यू नो, दे विल ऑलवेज बी लाइक दिस।
1: लेबलिंग, अगेन लेबलिंग, तो वो जितना लेबल हम करते जाएंगे, तो वो जो स्टैम्पिंग है वो और ज्यादा होती जाती है। अगेन हम क्या कर रहे हैं, वही जो हमने कहा, उनको अपने बिलीफ सिस्टम के अंदर फिट कर रहे हैं। अगर किसी ने कुछ भी ऐसा किया कर्म थोड़ा सा, हम कहेंगे लेबर, वो तो सारे ही ऐसे होते हैं, यू नो, बिलीफ सिस्टम, वो बिलीफ सिस्टम में उनको फिट कर लेते हैं। तो रिफॉर्मेशन करने के लिए टाइम चाहिए, पेशेंस बहुत चाहिए, कंटिन्यूस दोनों तरफ से, जो जिसे रिफॉर्म होना है और जिसे वो करना है, दोनों के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए।
0: आई थिंक और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक बात है जो रिफॉर्म नहीं होने देती, वो समवेयर ये भी है, जो रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है उसको कंटिन्यूअसली अवेयरनेस है कि मैं रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा
1: हूँ। एब्सोल्युटली, एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग। और वो पहली बात जो उसकी कॉन्शियसनेस है वो ये है, अगर जो रिफॉर्म करने के निमित्त है, अगर उसके अंदर ये कॉन्शियसनेस होगी कि ये क्रिमिनल है, तो वो उसे रिफॉर्म नहीं कर सकता। उसका हर एक शब्द और हर एक एक्शन एक पनिशमेंट ही है, क्योंकि वो क्रिमिनल को कर रहा है। तो वो, और फिर एक रिफॉर्मर के अंदर एक नेचुरल संस्कार ये क्या बन जाता है, गलतियां निकालने का, कमजोरियां देखने का और जजमेंटल बनने का। दैट इज नॉट रिफॉर्मेशन, क्योंकि फिर तो आप एक सटल तरह से पनिशमेंट ही दे रहे हैं. नॉर्मली अगर आप एक सीन ऑफ क्राइम को देखते हैं या एक गलती होते हुए देखते हैं, किसी ने किसी के साथ गलती की, एंड आई एम थर्ड पर्सन, लेकिन जब इन्होंने इनको दर्द दिया, सो कॉल्ड जैसे हम सोचते, और मुझे भी वो दर्द महसूस होना शुरू हो गया, तो आई एम ऑल्सो अ विक्टिम. एंड अब आई एम इन द रोल ऑफ रिफॉर्मिंग, लेकिन बिकॉज आई एम अ विक्टिम, तो मुझे लगता है इन्होंने अत्याचार किया.
0: Because I empathized with that victim.
1: Yeah, but I could feel the pain, ना? मैंने पेन अपने साथ ले लिया, तो मुझे लगता है ये अपराधी है, ये क्रिमिनल है, इन्होंने गलत किया, तो मैं कभी उनकी हेल्प नहीं कर सकती. जैसे ही मुझे ये रियलाइजेशन आएगा कि ये जो पेन मैंने अभी अभी क्रिएट किया इस सीन को देख कर, ये मेरा अपना क्रिएशन था. उन्होंने जो करना था वो किया, लेकिन जो पेन मैंने क्रिएट किया, ये मैंने अभी अभी अपना क्रिएट किया. Let it go. Let the pain go. जैसे ही पेन चला जाएगा, I will be able to see that person as the person is, without judgment, without that good, bad, right, wrong. वो judgmental नहीं होना है. हम उसके साथ, जिसने अटैक किया है या जिसने गलती की है, उसके साथ एम्पथाइज करना अब शुरू कर सकते हैं. उनको समझना शुरू कर सकते हैं कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया. When I understand कि मेरे अंदर क्लैरिटी आई है कोई, मुझे जो चीजें जैसी हैं वैसे समझ में आने लग गई है, now I only have to empower. रिफॉर्म नहीं करना है मुझे, मुझे उनको सशक्त करना है. वो भी मेरी तरह ही आत्मा है, लेकिन वो कुछ बातों को भूल चुकी है, तो मुझे सिर्फ उन बातों की स्मृति को लाना है. लेकिन मैं वो तब ला पाऊंगी जब मैं उनको वो रिस्पेक्ट से देख सकती हूँ. क्योंकि जैसे क्रिमिनल देखा, देयर यू गो.
0: जैसे ही हमने वो आत्मा देखा, आत्मस्वरूप अपना वाला, जैसे मैं हूँ वैसे ही देखा. बट आई थिंक
1: तब हम वो वाइब्रेशन भेज पाएंगे जो एम्पावरमेंट क्रिएट करेगी. और वो एम्पावरमेंट के लिए तभी हम कर पाएंगे जब हम उनको जज नहीं करेंगे कि ये क्रिमिनल है, वो भी मेरी तरह एक आत्मा है. जैसे वो थॉट क्रिएट कर लिया, यू सी व्हाट यू विल डू मैजिक विद देम. वो आप उनको रिफॉर्म नहीं करते हैं, बिकॉज द वर्क इज ऑल डन बाय मी माई सेल्फ. लेकिन वो खुद जो करने की उनको शक्ति चाहिए, बस वो हमें देनी है, वो स्मृति वापस लानी है. और उसके लिए हम ये टैग हटा दें कि क्रिमिनल है, और गुड बैड ये जो जजमेंटल हम बनने की कोशिश करते हैं ये हटा दें, और उनको रिस्पेक्ट और डिग्निटी, क्योंकि उस समय क्या हो गया, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है. तो वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो हम सबको देते हैं, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी अगर हम उनको दें, अपने आप को वो एम्पावर कर देंगे. हमें नहीं करना. सोल कॉन्शियसनेस विल वर्क एवरीवेयर, एवरीवेयर. ये हम जो ऑलरेडी थॉट क्रिएट कर देते हैं, वो ऐसा कहेंगे, वो ऐसा करेंगे, तो हम वो ऑलरेडी एनर्जी ट्रांसमिट कर देते हैं, एंड देन वो ऐसा ही करेंगे.
0: तो हर नेगोशिएशन पे एक एम्पावर होके हम खुद जा सकते हैं.
1: अभी क्या होता है, या तो हम सुपीरियर फील करते हैं या इंफीरियर फील करते हैं, और सोल कॉन्शियसनेस में वी आर इक्वल. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हम तो सोल कॉन्शियस हैं, सामने वाला तो नहीं है, वो अपने अहंकार में है.

0: सामने वाला एक अपराधी है, सामने वाला, ये थॉट ट्रेस में भी नहीं होगा, तब वो प्योरिटी ऑफ वाइब्रेशन, इसको हम कहेंगे प्योरिटी ऑफ थॉट, जहाँ एक इम्प्योरिटी का ट्रेस भी नहीं है, दैट विल रीच टू द अदर सोल एंड दैट विल ब्रिंग अबाउट एम्पावरमेंट.
1: दैट्स वंडरफुल. एक्चुअली अगर हम पूरे एस्पेक्ट को देखें तो सारे क्राइम जो सीन्स हैं और इस वक्त जिस हालात में पूरा समाज है, मुझे लगता है कि आज हम में से हर कोई क्रिमिनल है, यू नो, थॉट में नहीं, मतलब एक्शन में नहीं तो कहीं ना कहीं थॉट में तो है ही, लेकिन एक्शन में भी हम में से हर तीसरा बंदा जो है, तीसरा व्यक्ति क्रिमिनल नजर आ रहा है. यहाँ अगर हम क्राइम के सीन से हटके अपने घर पे भी आ जाते हैं तो यही फिलॉसफी शायद हम अपने रिफॉर्मिंग ऑफ किड्स, यू नो, रिफॉर्मिंग ऑफ चिल्ड्रन, हमारे कि हमारा बच्चा बात नहीं मान रहा है, यही सही रास्ता है, ये ऐसे करना चाहिए उसे, लेकिन वो क्यों नहीं समझ पा रहा है, रिबेल हो रहा है, तो यहाँ शायद वो पनिशमेंट की वजह.
0: हम पनिशमेंट को यूज करते हैं तो मेजोरिटी केसेस में ये देखा जाता कि जो रिबेल होने की नेचर है वो संस्कार और भी ज़्यादा कड़क होता जाता है. जो हम यू नो कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे बहुत ज़िद्दी हो गए हैं या बहुत ढीठ हो गए हैं, कि अब कितना भी बोलो वो नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा जो शिक्षा देने का तरीका था वो कहीं ना कहीं, यू नो, वी यूज़ अ शॉर्टकट मेथड because again lack of time, lack of patience, and more than that I think lack of awareness myself.
1: I don't know. See, that's the biggest thing. क्योंकि कभी भी कोई पेरेंट जानते बूझते नहीं करना चाह रहा होगा, लेकिन शायद वो जान ही नहीं पाते हैं कि कितना नुकसान हो रहा है इस पूरे एटीट्यूड से.
0: तो अपनी अवेकनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है इसलिए कि जब हम जागृत अवस्था में रहेंगे तो हम औरों को भी अपने साथ लेकर चलेंगे. और अभी भी आपने देखा होगा कि अपनी इस पूरी यात्रा के दौरान जितना हम अपने आप को समझ लेते हैं और हमें अंदर का पूरा मैकेनिज्म समझ में आता है कि ये सारा सिस्टम कैसे वर्क करता है, हम औरों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं. यू नो, जब कोई सामने से गुस्सा करता है, नाउ फॉर एग्जाम्पल, हमें पता चलता है कि ये गुस्सा गुस्सा नहीं है, एक्चुअली ये अंदर कोई दर्द है, ये अंदर हर्ट है कोई, और ये दर्द एक गुस्से के रूप में बाहर आ रहा है. तो पहले हम कैसे रिएक्ट करते थे, गुस्सा कर दिया मुझे कैसे गुस्सा कर दिया, अब समझ में आता है ये गुस्सा थोड़ी है, ये तो अंदर कितना दर्द है. सो नाउ यू कैन नॉट हैव हेट्रेड, यू विल हैव कंपैशन. वो खुद इतने दर्द में है तो वो आपको भी सही पर्सपेक्टिव में नहीं देख पा रहे, तो उन्होंने वो कर्म किया, लेकिन उनको किस चीज की आवश्यकता है. अब वही बात होगी, एक दर्द में है, अब मैं उसकी बात को लेके मैं भी दर्द में चले जाऊं तो हम दोनों को हेल्प कौन करेगा, और फिर मैं उनको और दर्द दूं. बच्चे ने गलती की पेरेंट के साथ, तो पेरेंट भी दर्द में चला गया, बच्चे को और दर्द दिया. It's become a cycle. And then it is, how do we come out of this cycle? And then we say we're all in pain. So who will heal who? Everyone is a patient now. So that's why let me take up the responsibility. एंड इसीलिए जो हम कहते हैं मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं है या आई डोंट हैव टाइम फॉर माई सेल्फ, व्हाट वी डोंट रियलाइज इज इट्स नॉट जस्ट फॉर माई सेल्फ, इट्स फॉर माई फैमिली आल्सो,
1: माय ऑल लव्ड वंस, यू नो, जिनके लिए मैं जिंदगी देने को तैयार हूँ, सब कुछ करने को तैयार हूँ. अनअवेयरनेस में मैं कहाँ तक, कितना नुकसान. रिश्तों की बात करें, मतलब हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है, लेकिन इसको मैं जरूर थोड़ा सा छूना चाहूंगी कि आज जो रिश्तों में इतनी कड़वाहट, इतनी दूरियाँ, इतना कम्युनिकेशन गैप इधर इधर होते हुए नजर आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की बात करें या किसी भी तरह का रिश्ता, तो वहाँ पे भी शायद एक भी अगर जागरूक अवस्था में,
0: ओनली वन, यू नीड ओनली वन. कई बार घरों में लोग कहते हैं, ओ जी, मैंने अगर अपने ऊपर मेहनत की लेकिन बाकी सब लोग तो वैसे ही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बाकी सब वैसे ही रहेंगे. वन पर्सन हैज टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो एक करे, उससे औरों को तो बेनिफिट होगा, औरों को प्रेरणा भी मिलेगी करने की.
1: और उसमें एक को ये नहीं समझना पड़ेगा कि मैं एहसान कर रहा हूँ, यू नो, समवेयर ये इसके साथ भी कि मैं ही करता जा रहा हूँ, मैं ही कब तक करूँगा, मैं ही कर रहा हूँ.
0: जब अभी जब हम कुछ करते हैं इस तरह से तो हमें लगता है कि मैं एहसान कर रहा हूँ, लेकिन जब अवेयरनेस से करेंगे तो हमें समझ में आएगा दिस इज द वे टू बी, इसके अलावा तो और कोई रास्ता ही,
1: और ये मेरे लिए जरूरी
0: है, वे दिस इज द नेचुरल वे ऑफ लिविंग. अभी तक जो हमारा वे ऑफ लिविंग था, बिटरनेस को पकड़ के, हर्ट को पकड़ के, दैट वॉज नॉट अ नेचुरल वे ऑफ लिविंग. और सफरिंग किसके लिए, बहुत प्राउडली हम कहते हैं उन्होंने ये कहा, मैंने अभी तक वो बात नहीं भूली, इतने साल से मैंने वो बात पकड़ के रखी हुई है. नुकसान किसका है, उनका, वो भूल चुके, अपना. तो सारा दिन अपनी सफरिंग सेल्फ क्रिएटेड है. इवन ये अगर हमें समझ में आ जाए, बॉटम लाइन, आई क्रिएट माय ओन सफरिंग, टिल व्हेन,
1: टिल आई अंडरस्टैंड, टिल आई अवेक,
0: लेट मी स्टॉप नाउ. Nobody creates suffering for me.

0: Nobody can cause me pain, only and only me. So how much more do I want to cause pain for myself? When will I stop?
1: Mm.
0: That's it. And then मेरे को लगता है 10 minutes अपने लिए निकालना
1: मुश्किल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं. In fact, that's it. ये तो हम अंडरस्टैंड कर ही चुके हैं और अब हर बार और क्लैरिटी से आता जा रहा है कि मेडिटेशन इज एम्पावरिंग माई ओन सेल्फ. यू नो, हीलिंग की हम बात कर रहे थे, ना सिर्फ हीलिंग अपने लिए, पूरे परिवार के लिए और ग्रेजुअली पूरे समाज के लिए. जो अब बात ये करते हैं कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं, तो ये दिस इज द वे एक्चुअली टू गो आउट एंड यू नो लाइक फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ. सर शिवानी, आज की इस बातचीत ने कई परिपेक्ष तोड़े हैं, एक नया अंदाज दिया है जिंदगी को देखने का और किस तरह से क्राइम या क्रिमिनल्स को देखना है बड़े परिपेक्ष में देखें तो वो भी बदल रहा है. आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: ओम शांति.
1: ओम शांति. बहुत कुछ हमारे आसपास हो जाता है, चाहे वो समाज में हो या फिर घर में. एक ही अंदाज से अभी तक हम देखते आ रहे थे. देखने का नज़रिया अगर थोड़ा सा बदला जाए, जहाँ हम ये कहते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है या किसी और के साथ गलत हुआ और ऐसे में जिसने गलत किया है उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, तो एक बार फिर खुद को टटोले और जिस परिपेक्ष में आज हमने देखा है क्राइम को, क्रिमिनल को और पनिशमेंट को, उसे कुछ देर बैठ के अपने साथ रखें और ये समझने की कोशिश करें कि क्या वो परिपेक्ष सही है. अगर अभी भी आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है. आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में अब वक्त है कि आपसे विदा लें, लेकिन इसी वादे के साथ कि ये सफ़र खुद को पहचानने का और पूरी ज़िंदगी को जो जिन रॉन्ग बिलीफ्स पे या जिस बिलीफ सिस्टम पर हम अभी तक ज़िंदगी जीते आ रहे हैं, जहाँ उसने हमें हील नहीं किया है, एक ऐसे प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें हीलिंग की तरफ लेकर जाएगा. फिर होगी मुलाकात. दीजिए इजाज़त. ओम शांति.

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। दोस्तों, हमारा हिंद भी फूले फलेगा एक दिन, लेकिन मिलेंगे खाक में लाखों हमारे गुल बदन पहले। हमें दुख भोगना, लेकिन हमारी नस्ल सुख पाए, ये दिल में ठान लो अपने ए हिंदी मर्दो जन पहले। भारत के ऐसे स्वर्णिम भविष्य के संकल्प को जीने वाले भाई परमानंद का जन्म 4 नवंबर 1876 को पंजाब के करियाला गांव में भाई ताराचंद के घर पर हुआ। पिता ताराचंद सेना में कार्य करते थे। लंबे चौड़े बलिष्ठ शरीर वाले पिता ताराचंद के सभी गुण भाई परमानंद को मिले। परमानंद बचपन से ही मेधावी थे और गणित उनका प्रिय विषय था। चकवाल में अंग्रेजी स्कूल स्थापित होने के साथ ही वहां के जीवन में भी बदलाव आने शुरू हो गए। भाई परमानंद भी इसे अंगीकार कर उसमें रम गए। उनकी प्रतिभा के कारण सभी अध्यापकों का ध्यान उन पर रहा करता था। उनके गांव से चकवाल लगभग 8 किलोमीटर पर था। ये सभी छात्र वहां छात्रावास में रहते तथा अध्ययन करते। ये वो समय था जब आर्य समाज का प्रचार स्वामी दयानंद ने शुरू किया था। अपनी मां की मृत्यु के पश्चात संतप्त भाई जी आर्य समाज की विचारधारा के साथ जुड़ गए। धार्मिक आडंबर और मिथ्या धारणाओं पर आधारित विचार उन्हें रास नहीं आते थे। स्वामी दयानंद ने देश में मजहबी मतभेदों को मिटाने का बहुत यत्न किया। भाई परमानंद ने इसी विचार को अपना जीवन सूत्र बना लिया। 1901 में भाई परमानंद ने लाहौर के दयानंद कॉलेज में अपना अध्ययन शुरू किया और कॉलेज में पढ़ने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया। भाई परमानंद को दुनिया देखने का बहुत शौक था और वो पैदल जम्मू से श्रीनगर और अमरनाथ होते हुए वापस लौटे। 2 महीने के इस प्रवास में उन्होंने कुल 15 रुपए खर्च किए। यही सादगी उनके जीवन का आधार बनी। फिर बाद में हरिद्वार, दिल्ली और राजस्थान आदि कई जगह वे घूमकर देश की संस्कृति से अपने आप को परिचित कराते रहे। पंजाब विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद वे लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज में पढ़ाने लगे। उनके भीतर त्याग की भावना आरंभ से ही विद्यमान थी और समाज की सेवा उनके जीवन का आदर्श बना रहा। वे अपने छात्रों का नैतिक चरित्र सुधारने और उन्हें राष्ट्र प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए वीर पुरुषों, महापुरुषों और शहीदों की जीवन गाथाएं सुनाया करते थे।

दयानंद कॉलेज में कार्य करते हुए भाई परमानंद को 3 वर्ष हो गए। इन वर्षों में पंजाब के लगभग सभी कस्बों में उन्होंने भारतीय संस्कृति और देशभक्ति का प्रचार किया। 1905 में पूर्वी अफ्रीका के भारतीयों ने कॉलेज के प्रधान आचार्य हंस राज से प्रार्थना की कि कोई धर्मनिष्ठ विद्वान वहां प्रचार के लिए भेजा जाए। प्राचार्य जी ने आर्य समाज के पहले मिशनरी के रूप में भाई परमानंद को दक्षिण अफ्रीका भेजा। डर्बन उतरकर कई भाषण देने के पश्चात भाई जी नाटाल की राजधानी पीटर मैरिट्सबर्ग पहुंचे, जहां असंख्य लोग उनका भाषण सुनने आए। यहां तमिल भाषी भारतीयों के बच्चों के लिए उन्होंने स्कूल भी खोला और इसी प्रकार कई अन्य संस्थाएं भी उनके द्वारा खड़ी की गईं। यहां से वे यात्रा करते हुए जोहान्सबर्ग पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। स्वागत समिति के अध्यक्ष के रूप में बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी भी उपस्थित थे। धर्म के विषय में परमानंद जी के विशुद्ध सात्विक और तपःपूत विचारों ने गांधी जी पर ऐसा प्रभाव डाला कि उन्होंने भाई जी को अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित किया। वो लगभग 1 महीने गांधी जी के साथ रहे। अफ्रीका में अपने 5 महीने के प्रवास के दौरान उन्होंने भारत के सांस्कृतिक दूत के रूप में सबके मन में अपना स्थान बना लिया। उन दिनों लाला लाजपत राय लंदन में थे। उन्होंने चिट्ठी लिखकर परमानंद जी को अफ्रीका से लंदन बुलवा लिया। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा भी लंदन में ही थे, जो ऑक्सफोर्ड में संस्कृत पढ़ाया करते थे। श्याम जी वर्मा भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले युवकों को एकत्रित करने और प्रेरित करने के प्रयास में जुटे हुए थे। 4 मई सन 1906 को होम रूल लीग की ओर से लंदन में श्याम जी की अध्यक्षता में एक सभा हुई, जिसमें विट्ठल भाई पटेल और भाई परमानंद के साथ कई लोग शामिल हुए। ये लोग भारत में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे, जिन्होंने बंगाल में एक जुलूस में राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया था। इसके बाद परमानंद जी ने अमेरिका, पेरिस, दक्षिण अमेरिका, फ्रांस आदि कई देशों का दौरा कर अपना प्रचार कार्य जारी रखा। गदर पार्टी से अपने संपर्कों के कारण उन्हें राजद्रोही मान लिया गया था। 1915 में गदर द्रोह में भाग लेने के कारण उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, जो बाद में आजीवन काला पानी की सजा में बदल दी गई और वे अंडमान की जेल में भेज दिए गए।

अंडमान की जेल में अपने अनुभवों के बारे में विचार करते हुए उन्होंने लिखा कि अंडमान में दंड का केवल एक उद्देश्य समझा जाता था, वो था कैदियों से काम लेना, और जेल के अधिकारियों की उन्नति इसी बात पर निर्भर करती थी। 1200-1300 कैदियों के श्रम से जो आय होती थी, उससे वहां अधिकारियों को वेतन मिलता था और वहां की स्वतंत्र आबादी का गुजारा होता था। अंडमान में कई महीने बीत जाने पर एक दिन एक कैदी मेरे पास आधा प्याज का टुकड़ा लेकर आया। उसका प्रेम देखते हुए मैंने उसे स्वीकार कर लिया। उस दिन मुझे लगा कि प्रकृति ने ये कितनी छोटी छोटी चीज हमारे लिए पैदा की है, इसका मूल्य हमें तभी पता लगता है जब हम उससे वंचित हो जाते हैं। जेल में गुड़, शक्कर, तेल और प्याज जैसी छोटी छोटी चीजें भी प्राप्त नहीं होती थीं। और तब मेरे मन में विचार आया कि किसी चीज की आवश्यकता ही न रखने से आवश्यकता पूरी की जा सकती है। इस बीच प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था और लंदन टाइम्स का साप्ताहिक संस्करण राजनैतिक कैदियों को दिया जाने लगा। इससे देश और दुनिया में हो रहे परिवर्तनों की उन्हें सूचना मिलने लगी। भारत में स्वाधीनता आंदोलन की गतिविधियां तेज हो गई थीं। 19 नवंबर 1919 को यंग इंडिया में गांधी जी ने संपादक के रूप में लिखा कि 1915 में भाई जी पर जो लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया, वो जिस गवाही पर आधारित था, वो अविश्वसनीय झूठी कहानी थी। भाई परमानंद ऐसे राष्ट्रभक्त हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत की राष्ट्रभक्ति के आदर्श को ऊंचा रखते हुए देश की सेवा की। किसी को भी उनके अपराध का विश्वास नहीं, और जो अभियोग उन पर लगाया है उस पर पुनर्विचार कर उन्हें मुक्त करने की आवश्यकता है। 20 अप्रैल सन 1920 को भाई परमानंद जेल से मुक्त होकर अपने घर लौटे तथा लाहौर में गांधी जी और लाला लाजपत राय के साथ मिलकर कौमी महाविद्यालय की स्थापना की। नवयुवकों को भारत की स्वतंत्रता के लिए वे आजीवन प्रेरित करते रहे। भाई परमानंद अक्सर कहा करते थे, जिंदगी अपनी फसाना है जमाने के लिए, गुम हुए हैं हम जहां में याद आने के लिए, मर गए लेकिन जमीन पे नाम पैदा कर गए, जान जाने के लिए है मौत आने के लिए। ऐसे महान क्रांतिकारी भाई परमानंद जी को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया श्री राजेश प्रसाद मिश्र ने, समन्वय किया संजय यादव ने, इसे प्रस्तुत किया सुनीता सिंह ने।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति।
2: थैंक यू सो मच
1: सिस्टर। आप माइंड के ऊपर बात कर रही थी, थॉट्स पे बात कर रही थी, और थॉट कितनी पावरफुल है, कैसे ट्रेवल करती है। तो एक साइंटिफिक रिसर्च किया कुछ साइंटिस्ट ने हार्वर्ड में। साइंटिस्ट रिसेंटली कंडक्टेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर मेडिएटेड ब्रेन टू ब्रेन टेलीपैथी एक्सपेरिमेंट इन विच अ पर्सन इन मुंबई बॉम्बे सेड होला एंड हेलो to three people in France. The greetings were not spoken, not typed or texted. The communication took place between the brains of a set of study subjects. The team whose members belong to Harvard Medical School seem all set to script a new chapter in communication. And that is all in the mind.
2: Oh, see. हम तो अवेकनिंग में हर समय ये बात करते हैं, साइंटिफिक भी एविडेंस मिल गया आपको।
1: ऑल इन द माइंड इसका टाइटल है।
2: परमात्मा हमें बार बार एक एक थॉट का कितना महत्व समझाते हैं कि एक एक थॉट आपकी आप पर भी प्रभाव डालेगी और दूसरी आत्मा तक पहुंचेगी। अब हम ये बात कितनी बार सुनते हैं, मतलब जिस दिन से फर्स्ट डे पे सेंटर पे आते हैं तब से सुनते हैं, कहीं कोई कोटेशंस पढ़ते हैं उस पे पढ़ते हैं, कोई किताब आज उठा लो उस पे पता चलता है। लेकिन फिर भी अगर हम देखा जाए तो सारा दिन में उस बात पर उतना ध्यान नहीं देते हैं।
1: हाँ, क्योंकि जब स्पिरिचुअलिटी में कोई बात कहता है, कोई सत्संग में कहता है, कोई मंदिर में कहता है, तो वो इतनी इफेक्ट नहीं करती जिसको साइंटिफिक।
2: उसके पीछे ये रीजन है कि साइंटिफिक क्यों हमें एविडेंस इमिजिएटली क्लिक करती है, क्योंकि साइंटिफिक चीज दिखती है, यू नो, इट्स अ फिजिकल प्रूफ। जैसे इसमें इन्होंने कहा दे प्रूव्ड इट। क्या प्रूफ किया? कि मुंबई में एक व्यक्ति है, फ्रांस में दो लोग बैठे हैं, यहां से किसी ने एक थॉट क्रिएट की, ना लिखी ना बोली, और वहां उन लोगों ने फ्रांस में वो थॉट को कैच किया। अब ये साइंटिफिकली प्रूव हो जाता है, मतलब दिख जाता है ना प्रूफ, कि यहाँ किसी ने थॉट क्रिएट की, वहां उन तीन लोगों ने कैच की वो थॉट और बता दिया कि ये
1: बोला हेलो होला।
2: हाँ,
1: तो उन्होंने बोला हेलो होला,
2: दैट्स इट, एंड इट वॉज नॉट रिटन, इट वॉज नॉट टेक्स्टेड, इट वॉज नॉट स्पोकन। तो जब हमें साइंटिफिक प्रूफ मिलता है, मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण दिखता है ना उस चीज का। स्पिरिचुअलिटी में जो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है वो होता है अनुभव का, और साइंस में जो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है वो होता है फिजिकल कोई चीज। यही चीजें हम सब ने अनुभव भी की है, हम में से कोई नहीं होगा जिसने ये अनुभव नहीं किया होगा।
1: ये भी सही है।
2: किया है कि नहीं अनुभव?
1: 100%।
2: अब ये कोई
1: कितनी बार फोन बोलते टेलीपैथी, देखो हाँ। मैं तो याद ही कर रही थी तेरे को,
2: बस
1: तू तेरा फोन आ गया,
2: हमारे मन में कोई बात ही थी, सामने वाले ने कह दिया,
1: इकट्ठे भी बोलते,
2: इकट्ठे भी बोल दिया, जो एकदम से रैंडम दो लोग वही बात सोच रहे हैं। ये सारी चीजें किसने अनुभव नहीं की है? ये हम सब ने अनुभव की है। कोई थोड़ा कम अनुभव करते हैं, कोई ज्यादा अनुभव करते हैं, अनुभव तो हरेक कर रहा है ना। जब आपने कहा किसी ने फोन किया और हम उनको याद ही कर रहे थे, तो इसका मतलब उस क्षण क्या हुआ था?
1: वो फोन डायल कर रहा था।
2: हाँ,
1: तो उसकी थॉट मेरे पास आ गई कि आई वांट टू टॉक टू यू,
2: व्हिच मींस उस क्षण क्या हुआ था? थॉट टू थॉट कम्युनिकेशन ही तो था ना?
1: हाँ,
2: तो ये कोई आज की चीज तो है नहीं, ये तो कोई नई बात है नहीं, ये तो हमने हमेशा अनुभव किया है, हरेक ने अनुभव किया है कि हमने थॉट क्रिएट किया, दूसरे ने कैच किया, दूसरे को भी वही थॉट आया। जो इसको हम हमेशा कहते थे टेलीपैथी मींस थॉट टू थॉट कम्युनिकेशन, अब सिर्फ ये क्या हुआ, साइंटिफिकली प्रूफ हो गया। लेकिन साइंस से भी बड़ी चीज अनुभव होती है।
1: कई बार स्टेज पे मैं कभी कुछ बोलते रहता हूँ ना, तो मेरी फैमिली सोचती है आई होप ही सेज दिस, आई होप ही सेज दिस, ये वाली लाइन अगर यहाँ बोले ये अनुभव बड़ा अच्छा था।
2: yes.
1: और वो मेरे मन में कहीं से आ जाता और बोल देता
2: बस।
1: फिर जब बाद में बोलते हैं, अरे हम तो सो

0: उचित है थी कि आप ये बताएं।
1: हम लोग हमेशा कम्युनिकेट कैसे करना चाहते हैं कि हम फटाफट इनको उठ के बता कर आए, चिट्ठी लिख कर दे दे। सी दिस इज द कम्युनिकेशन वी वॉन्ट टू यूज बिकॉज वी फील दिस ऑलवेज वर्क्स। अगर वो आपको चिट्ठी लिख कर भेज दे या धीरे से आके कान में बोल दे तो उनको 100% गारंटी है कि ये तो मेरा मैसेज कन्वे हो गया। लेकिन जिस समय हम वो नहीं कर सकते हैं तो उस समय आत्मा ज्यादा स्ट्रांग थॉट क्रिएट करती है, बता भी नहीं सकते कैसे मैसेज पहुंचाए, लेकिन ये होना ही चाहिए। ये इतनी स्ट्रांग थॉट गई और आपने कहा बिना कहे, बिना कोई चिट्ठी पढ़े आपने वो थॉट कैच कर ली और आपने वो बोला, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
0: बिना अपनी वाइफ की तरफ देखे आई टू आई कॉन्टेक्ट भी नहीं, इशारा भी नहीं,
1: व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट एंड दिस एक्सपेरिमेंट? क्या फर्क है? ये भी तो यही कह रहे हैं,
0: ये कंप्यूटराइज्ड प्रूव्ड है।
1: हाँ,
0: वो एक्सपीरियंस
1: अनुभव अनुभव। अब जब आप साइंटिफिक एविडेंस भी हम पढ़ रहे हैं, वो तो किसी और ने एक्सपेरिमेंट किया और वहां उनको रिजल्ट मिली तो उसको एक साइंटिफिक स्टैंप लगी, लेकिन जो चीज हमने अनुभव कर ली है,
0: मेरा स्वयं स्टैंप लगा खुद का,
1: उसके ऊपर तो हमें साइंटिफिक एविडेंस भी नहीं चाहिए होती। अब जब इन्होंने आर्टिकल का टाइटल रखा कम्युनिकेशन इज ऑल इन द माइंड, क्यों? क्योंकि उनको प्रूव हो गया, यहाँ से सोचा वहां कैच। हम सारा दिन अनुभव कर रहे हैं कि हमने सोचा दूसरे ने कैच किया, दूसरे ने सोचा हमने कैच किया। जब हमने इतना कुछ अनुभव कर लिया तो हमारे लिए स्टैंप नहीं हो जानी चाहिए कि जो कुछ हम सोचते हैं वो दूसरे तक पहुंचता है?
0: ये तो डर लगने वाली बात
1: नहीं, पर ये स्टैंप हमारे लिए हो जानी चाहिए ना। क्यों हम अपने अनुभवों को ही ऐसे ही हल्के में छोड़ देते हैं? जब अच्छा वाला अनुभव होता है, जैसे आपने कहा आप स्टेज पे थे, सामने वाले को कोई बात आपसे बतानी थी, आपने वो कैच की, तो बाद में जब हम शेयर करते हैं एक दूसरे के, वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड द अदर पर्सन विल से आई वांटेड टू से इट टू यू एंड यू कॉट इट, सो बोथ द पीपल आर वेरी हैप्पी। बोथ द पीपल आर हैप्पी, जो मैसेज भेजना चाहते थे और जिसने मैसेज कैच किया, वो दोनों खुश हैं कि हमें वो रिजल्ट मिला जो हम चाहते थे। लेकिन जब हम नेगेटिव मैसेजेस दे रहे हैं, जब हम किसी के लिए गलत सोच रहे हैं, जब हम किसी के लिए अच्छा नहीं सोच रहे, तब हम बैठ के एक दूसरे के साथ क्रॉस चेक नहीं करने वाले हैं कि मैंने आपको ये भेजा था आपने कैच किया।
0: यहाँ पर एक छोटा सा मुझे क्लारिफिकेशन चाहिए कि मैं अगर किसी के बारे में, फैमिली मेंबर के बारे में कुछ गलत सोच रहा हूँ या थॉट्स आ रही हैं, तो वहां से कितना आ रहा होगा, हो सकता है मेरा उसका, दैट इज आई एम रिसीविंग। How do I know कि I'm receiving or sending?
1: Very true. Both the things are happening.
0: उधर से आ रहा है कि मेरे मन में आ रही है, कैसे बताऊं?
1: उधर से आ रहा है या हम क्रिएट कर रहे हैं, हमें नहीं पता। आपने किसी को याद किया और वहां से फोन आया, अब हमें ये नहीं पता कि आपने याद किया तब फोन उन्होंने किया या उन्होंने फोन उठाया था करने के लिए तब आपको याद आई। We don't know.
0: Both are right.
1: Both are possible. No? इसका मतलब पहला तीर किसने फेंका? We don't know. हमें सिर्फ ये पता है कि तीर का रिटर्न तीर आता है, थॉट का रिटर्न थॉट आता है। हमें ये नहीं पता पहले किसने शुरू किया, और अब तो हम उस स्टेज पर आ गए हैं कि हम पहले तीर पर तो है नहीं।
0: मैं सोचू भी कि वहां से आया कि मैंने पहले किया। हाँ, आया ना, उसको निकालो।
1: लेकिन अगर पहले भी शुरू किया उन्होंने
0: तब भी वही करना है,
1: तो भी वही करना है, और अगर मैंने शुरू किया तब भी वही करना
0: है। इसको तो हटाना है ना, तो बेडरूम में जाऊं वहां पर कचरा पड़ा हो, हाँ, तो मैं लेटू नहीं लेटू एक कचरा किसने रखा और मैं थका हुआ हूँ, तो मैं बोला यार।
1: अगर आप सपोज उस टाइम बोले जिसने रखा है वो ही आकर उठाए पहले, मैं क्यों उठाऊं,
0: किसने किया, कैसे किया,
1: पहले तो ढूंढो कि रखा किसने, फिर उसी को बुलाओ, वो जहां भी है उसको पहले बुलाओ कि उसने रखा है वो उठाए। ये सब तो हम करते नहीं।
0: इतना थक गया हूं मैं, इसको हटाऊं और लेटूं ना, आराम करूं,
1: दैट इज इट। तो वो थॉट उन्होंने भेजा या हमने भेजा, इट डजंट मैटर। प्रेजेंट मोमेंट में ट्रुथ क्या है, सत्य इस समय का क्या है? मेरे चित पर कुछ नेगेटिव किसी के लिए चल रहा है, आई जस्ट हैव टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। मेरे चित पर किसी के लिए नेगेटिव इस टाइम चल रहा है, मैं कुछ कुछ किसी के लिए सोच रहा हूं, आई जस्ट नीड टू आस्क माई सेल्फ वन सिंपल क्वेश्चन, अगर उनको ये सब कुछ पहुंच जाए जो मैं अभी उनके लिए सोच रहा हूँ, इज इट ओके फॉर मी?
0: नो.
1: इज इट कम्फर्टेबल फॉर द रिलेशनशिप?
0: नो.
1: सो व्हाट विल आई हैव टू डू?
0: आई हैव टू स्टॉप सेंडिंग दैट.
1: बिकॉज सी, ये अगेन साइंटिफिक एविडेंस भी मिल गया, एक्सपीरियंशियल एविडेंस भी मिल गया.
0: अगर जो जो मैं सोच रहा हूँ उनके SMS बन के उनके फोन पे जाता रहे, अगर ये टेक्नोलॉजी निकल जाए.
1: ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है ना, वही तो उन्होंने.
0: मगर मेरे फोन में अगर वो ऐप आ जाए.
1: देखो अभी इन्होंने क्या बोला, उसने हेलो बोला, उसने होला बोला और उन्होंने होला ही कैच किया. मतलब क्या हुआ उसका फिर, कि जो सोचा एग्जैक्टली वो ही कैच कर लिया उसने.
0: थॉट यहाँ प्रिंट हुई, वहां से प्रिंट कन्वर्ट होके
1: दूसरे तक पहुंच गई. अब हमें सिर्फ अपने आप को बार बार ये चेक करना है, जो हम सोच रहे हैं उनके लिए वो एज इट इज अगर पहुंच जाए, वर्ड टू वर्ड, वैसे का वैसे, एम आई ओके विद इट?
0: नो.
1: देन नाउ व्हाट टू डू?
0: देन स्टॉप.
1: अब आपका अनुभव देखो, पहले वाला स्टेज पर आप कुछ सुना रहे हैं, फैमिली ऑडियंस में बैठकर कहती है इनको ये ये ये वाली बात बोलनी चाहिए. स्पेसिफिक है ना, इट्स नॉट अ जनरल थॉट, इट्स अ स्पेसिफिक थॉट, राइट? और सपोज आपने वो ही की वो ही बात बोली, तो मतलब आपने मैसेज को एज इट इज कैच किया ना.
0: करेक्ट.
1: इसका मतलब मैसेजेस एज इट इज कैच होते हैं.
0: उस साल पहले का ये एक्सपीरियंस सुरेश रॉय को आज सुनाना चाहिए. ये वाला एक्सपीरियंस या ये शेर, ये पोएट्री. एग्जैक्टली वो थॉट कैच हो गई मेरी, और कई बार वो.
1: तो इजंट इट एज सेम एज जो आपने कहा, मैसेज भेजे SMS भेजे, एज इट इज ही जाने वाला है, एज इट इज जा रहा है.
0: बट वहां तो रिटर्न प्रूफ आता है ना.
1: किस चीज का?
0: कि मैंने ऐसा सोचा आपके बारे में. जब मिलके बात करते हैं, मेरी आपसे कोई नाराजगी हो सकती? कमाल है आप. हाँ. तो हम तो भाई भाई हैं, कमाल.
1: अब हम ऐसा क्यों कहते हैं, नहीं जी मुझे तो आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो हमेशा आपको एक फैमिली मेंबर, एक फ्रेंड की तरह ही देखा. क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि उनको हमारे सारे मैसेजेस पहुंच चुके हैं.
0: मैं पूछ चुका हूँ लोगों से. क्या भाई कुछ नाराजगी है? हमने आपसे कभी कुछ बुरा बोला? कुछ होगी तो माफ कर दो. आपका कुछ वो व्यवहार उतना पहले जैसा नहीं लग रहा, क्या प्रॉब्लम है बताओ? कमाल है बाजी. तुम इस तरह कर रहे हो. आपके बारे में मैं बुरा सोच भी नहीं सकता. आप तो बड़े भाई हो मेरे.
1: बुरा सोचे बिना दूसरे को बुरा फील हो नहीं सकता.
0: अच्छा,
1: हो नहीं सकता ना. अभी देखो इस एविडेंस को फिर से ले लो.
0: इमेजिनेशन तो नहीं कर सकता ना बंदा.
1: फीलिंग की इमेजिनेशन नहीं होगी, यू विल फील इट. इसकी इमेजिनेशन नहीं हो सकती कुछ भी. ये है, यहाँ से हेलो बोला, फ्रांस में उसने हेलो कैच किया.
0: होला बोला, होला कैच,
1: होला कैच किया. ये यहाँ से बिना बोले वहां कैच नहीं कर सकता. और ये एक वर्ड बोले और वो दूसरा कैच करे, ये भी नहीं हो सकता. ये भी नहीं हो सकता. जो बोला वो कैच किया.
0: तो क्या करें, फंस गए यहाँ.
1: लेकिन अब फर्क ये है कि अगर इसने यहाँ से हेलो बोला, उसने फ्रांस में हेलो कैच किया, ठीक है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो फ्रांस वाला भी वापस हेलो बोले. दैट्स नॉट नेसेसरी.
0: ओके,
1: है ना, दैट्स नॉट नेसेसरी.
0: दिस इज अ गुड एंगल टू.
1: मुंबई में हेलो बोला साइंटिस्ट ने, फ्रांस में उसने हेलो कैच कर लिया, इज ओके, दिस इज गोइंग टू वर्क. हम इसको रोक ही नहीं सकते.
0: जरूरी नहीं है कि फ्रांस वाला जवाब दे.
1: जरूरी नहीं है कि वो हेलो बोले. वो नमस्ते भी बोल सकता है. वो गुड मॉर्निंग भी बोल सकता है. वो कुछ भी भेज सकता है वापस. अब अगर उसने वहां से गुड मॉर्निंग बोला, तो ये मुंबई वाला अभी क्या कैच करेगा?
0: गुड मॉर्निंग.
1: गुड मॉर्निंग कैच करेगा. फिर उस गुड मॉर्निंग को कैच करने के बाद ये मुंबई वाले ने क्या थॉट भेजनी है, वो चॉइस इसकी होगी. दिस इज क्लियर एविडेंस, राइट? विच मीन्स अगर कोई मेरे लिए नेगेटिव सोच भी रहा है, वो मेरे पास आने ही वाला है. फाइन. लेकिन उसको अपने चित पर कितनी देर मैंने रखना है, उसको कितना एनर्जाइज करना है, और ये सब सोच के मेरी तरफ से उनके पास क्या जाना है, वो कंप्लीटली मेरी चॉइस है. आज हर एक बैठकर अपने कुछ एक रिश्तों को चेक करे, जिनके लिए कारण चाहे कुछ भी हो, सामने वाले का व्यवहार चाहे कुछ भी हो, आज हम जो उनके बारे में सोच रहे हैं, हमें सिर्फ अपने आप से सिर्फ एक क्वेश्चन आज पूछना है. अगर हमारी सोच एज इट इज वहां पहुंच जाए, इज इट ओके फॉर अस, एम आई कंफर्टेबल विद इट, बिकॉज इट इज हैपनिंग, ये हो रहा है। और फिर जब वो सोच मेरी वहां पहुंच जाती है, सामने वाला भी वैसा ही सोचना शुरू कर देता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर के मोड में तो कोई लगा नहीं हुआ, वी नॉट सो अवेयर कि हमें ट्रांसफॉर्म करना है, हमारे पास तो जो आ रहा है हम वैसा ही वापस भेज रहे हैं, फिर आ रहा है फिर भेज रहे हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एस्केलेट बहुत हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, अगर हम इसको आज ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना एस्केलेट हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
0: जैसे बलून में हम हवा भरते गए भरते गए भरते गए भरते गए, फाइनली फिर फट ही जाता है।
1: यस, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जितने समय अपने अंदर भरते गए उसको, जब फटेगा तब तो नुकसान होगा ही, लेकिन जितने समय भरते गए, कुछ दिन कुछ साल कई बार कुछ जन्म, वो नुकसान नहीं हो रहा है।
0: एक थॉट आई सिस्टर कि मैं एक से ऐसा करूं नेगेटिव भेज रहा हूं, उसके मतलब बैड हैबिट्स देख रहा हूं, ये ऐसा उठता है वैसा बैठता है, सुबह लेट उठता है, या खाता कैसे देखो, कपड़े कैसे पहनता है, एक को देखा, दो को देखा, तीन को देखा, तो एक रेगुलर एक पैटर्न और एक हैबिट इसकी जब बन जाए अगर, और हर एक में कुछ देखो, हर एक में देखो, तो फिर उसका फूगा कि मेरा ही फट जाएगा,
1: अपना ही फटने वाला
0: है। कितना भरूं?
1: यस, अपना ही फटने वाला है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप देखो आपको रिटर्न में भी कौन सी एनर्जी मिलेगी। सपोज आप मेरे लिए ये थॉट क्रिएट कीजिए, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते, कैसे बात करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, उस दिन भी गलत किया, इस दिन, नाउ दिस इज ऑल कमिंग टू मी, नाउ जस्ट इमेजिन एक सेकेंड के लिए अगर हमें ये सच्ची में बैठ जाए ना आज अंदर बुद्धि के, तो हमारी सोच बदल जाएगी। आप जब ये मेरे लिए सब सोच रहे हैं, ये बोल तो नहीं रहे आप मेरे को, आप बोलते क्यों नहीं मुझे ये सारा कुछ, आप बोलो मुझे कैसा बैठ रहे।
0: मैं सोचता हूं कि बोलने से लड़ाई हो जाएगी।
1: ये लाइन कितनी इम्पोर्टेंट है, बोलने से
0: लड़ाई हो जाएगी।
1: मतलब ये लाइन बोली नहीं जा सकती उनको, लेकिन अभी हमें पता चल गया कि लाइन जो हम सोच रहे हैं वो उनको पता पड़ रही है,
0: फार स्ट्रॉन्गर ना,
1: पता चल रही है,
0: स्ट्रॉन्गर।
1: अब लड़ाई होने का चांस, अब लड़ाई होने का चांस
0: डबल हो गया।
1: तो जो चीज को हम बचा रहे थे, लड़ाई मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, रिश्ता
0: रिलेशन
1: स्मूथ रहना चाहिए, उसमें वो जो फ्रिक्शन आती है वो नहीं आनी चाहिए, वी वॉन्ट कॉर्डियल रिलेशन।
0: खुलेगी ना, तूने ये बोला मैंने ये बोला,
1: इसीलिए हम नहीं बोल रहे ना। अब यही हमें यहाँ आज पक्का कर लेना है अपने आप तक कि हम इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि हमारा रिश्ता बिगड़ जाएगा, लेकिन अब अनुभव ने और विज्ञान ने, साइंस ने, दोनों ने मुझे सिखा दिया कि जो मैं सोच रहा हूं वो सामने वाले तक एज इट इज पहुंच रहा है, फिर सामने वाला भी मेरे लिए ऐसा ही सोचेगा। व्हेन यू रिजेक्ट मी कि ऐसा खाते हैं, ऐसा उठते हैं, ऐसा बैठते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा करते हैं, वो जब थॉट्स और मैसेजेस अगर आप मुझे बोल दें सपोज ये बात, तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगी ऊपर से? आई विल ऑल्सो फाइंड 10 थिंग्स इन यू ना, कि आपने अपने आप को देखा है, आप कैसे खाते हैं, आप ऐसे चलते हैं, आप मुझे बोल रहे हैं, अपना देखा आपने, आप कैसे चलते हैं, दिस इज हाउ कॉन्वर्सेशंस गो ना। अब ये जो कॉन्वर्सेशंस जब शब्दों में होती हैं तब ऐसे होती हैं, तो थॉट लेवल में ये कॉन्वर्सेशंस कैसे होती होंगी?
0: बहुत स्ट्रांग
1: ऐसे ही होती होंगी कि आप मेरे अंदर गलतियां ढूंढे तो मैं आपके अंदर गलतियां ढूंढू, वो आप तक पहुंचे तो आप मेरे अंदर और गलतियां ढूंढे तो मैं आपके अंदर और गलतियां ढूंढू। अब हम ऊपर ऊपर से तो कुछ कह ही नहीं रहे एक दूसरे को, हम बहुत प्यार से बात
0: रिश्ता निभा रहे हैं,
1: हम रिश्ता निभा रहे हैं। यस, वेरी ब्यूटीफुल। कहते हम तो बहुत अच्छे से बात करते हैं उनसे, वो जब भी मिलते हैं, जब भी आते हैं, हम उनसे बहुत प्यार से बात करते हैं, लेकिन नाउ सी द रिजल्ट, हम सारा दिन क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसलिए उसकी एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी, कम्युनिकेशन इज ऑल इन द माइंड।
0: सिस्टर एक बार किसी ने मुझे आके बोला था कि मेरी सास अजीब सी है सुरेश, मैंने हुआ क्या, मैंने बोला वो टोन कॉपी करके, मैंने इतने प्यार से पूछा, ऐसे ही पूछा जैसे आपको सुना रही हूँ, लेकिन वो भड़क गई।
1: See, yes.
0: तो मतलब फिर चांसेस भड़कने का 1% भी नहीं होता अगर ये पहले उसके थॉट।
1: बिल्कुल, दिस इज इट। जब हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमने कुछ बोला ही नहीं, सामने वाला इतना रिएक्ट कर गया सामने से। हमें लगता है सामने वाले का जो रिएक्शन है वो हमारी वो एक लाइन के रिस्पॉन्स में आया है। अभी सपोज यही वाला एग्जाम्पल वापस लेते हैं, आप मेरे लिए मेरी गलतियां सोच रहे हैं, ये ऐसे बैठते हैं, ये ऐसे करते हैं, बहुत समय से सोच रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स इन योर माइंड रीचिंग मी, मैं भी आपकी गलतियां ढूंढ रही हूँ, वो आपको कम्युनिकेट कर रहे हो। ये कम्युनिकेशन इन द माइंड हमारा बहुत समय से चल रहा है, ठीक है। अब मैं सुबह सुबह आई यहाँ बैठी और आपने बहुत प्यार से, बहुत रिस्पेक्टफुली और कर्टसी से आपने कहा आप थोड़ा सा ऐसे होकर बैठ जाइए, मेरा फुग्गा बस्ट हो जाएगा। बोला आपको सुबह सुबह मेरे अंदर ही गलतियां दिखाई देती हैं, मैंने क्या किया, मैं ठीक से तो बैठी हूँ, कंफर्टेबल हूँ, कमाल है, आपको तो हर चीज में मेरी प्रॉब्लम
0: होने वाली थी, चेंज करने वाली थी, तुमको तो चेंज वो ही नहीं।
1: ये जो हाउ आई विल रिएक्ट,
0: और लोग क्या बोलेंगे सुनने वाले,
1: इसको क्या हुआ, इसको क्या हुआ, एक लाइन से इसने इतना रिएक्ट कर दिया वो। और एक्चुअली कई बार मुझे भी अजीब लगेगा बाद में कि मुझे हुआ क्या था, उन्होंने तो एक लाइन बड़े प्यार से नॉर्मल बोली थी, ये मैंने ऐसा क्यों बिहेव कर दिया सारा। वो इसलिए हुआ क्योंकि ये जो एक लाइन और इस एक लाइन का रिएक्शन आया, दिस वॉज इन फॉलो अप टू द लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग कम्युनिकेशन इन द माइंड दैट हैज बीन हैपनिंग सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये वो एक लाइन और एक रिएक्शन का कम्युनिकेशन था ही नहीं, ये बहुत समय से जो हमारा मन में कम्युनिकेशन चल रहा था, वो एनर्जी जो भरी हुई थी, ये उसका रिजल्ट था। अब आपने जैसे कहा कि वो लेडी ने आपको आकर कहा, मैंने अपनी सास को ऐसे एक लाइन कही, देखो मैंने ऐसे बोला, इतने प्यार से बोला, एंड सामने वाला जब आपने भी सुना होगा, आपने कहा होगा अजीब सास है, इसने इतने प्यार से ऐसी एक लाइन बोली, क्योंकि आप सिर्फ वो लाइन सुन रहे हैं, आपको वो कम्युनिकेशन पता ही नहीं है सारी जो वो बहू ने अपनी सास को भेजी होगी, पता नहीं कब कब कब कब से,
0: सुबह से भेज रही होगी घर आने तक,
1: सुबह से घर आने तक क्यों, सार रोज ही भेजती होगी, कितनी ओवरऑल कितने सालों से भेज रही होगी कम्युनिकेशन। ये रिएक्शंस ऐसे नहीं आते हैं, इसीलिए अगर हमें किसी सीन का पूरा पर्सपेक्टिव जानना है तो हमें वो जानना होगा कि ये दो लोग आपस में एक दूसरे के लिए सोचते कैसे हैं। कई लोग जब हमारे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए तो कहेंगे सिस्टर मैंने बस इतना बोला, फिर सामने वाले ने ऊपर से ऐसा बोल दिया, फिर उसने ऐसा बोला ना, फिर मैंने ऐसा बोला। अगर हम उनके सिर्फ ये वर्ड्स को देखें और उस पर सीन को इवैल्यूएट करने की कोशिश करें कि क्या हुआ होगा, द इवैल्यूएशन विल बी रॉन्ग। तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क देम इज, आप उनके बारे में सारा दिन सोचते कैसा है, आपके मन में क्या चलता है उनके बारे में, विच इज नॉट वेरी इजी उनके लिए बताना, लेकिन जो वो बोलते हैं उसके बेसिस पे तो कभी भी चेकिंग नहीं हो सकती कि कौन सही था और कौन सही सोच रहा था, कौन गलत सोच रहा था। आप उनके बारे में सोचते कैसे हैं, इसकी चेकिंग है, और आज साइंस ने वो हमें प्रूफ करके दिखा दिया कि ऑल इन द माइंड।
0: हमारे घर में एक VIP ब्रेकफास्ट पे आने वाले थे, तो उनका स्टाफ और उनका छोटा भाई आके पहले बोला पैसा वो मीठा खा जाते हैं, वो बड़ी वो जो रसगुल्ले और गुलाब जामुन बड़े हैवी जो मिठाइयां होती है ना, प्लीज नाश्ते की टेबल पे मत रखना, रखेंगे तो वो खा लेंगे। अब इस थॉट में मैंने बोला वाइफ को कि भाई ये सब टेबल पे रखना, ये उन्होंने बोला खास नहीं रखना। तो व्हाट माय वाइफ डिड कि उन्होंने बहुत कम शक्कर डाल के हलवा बनाया, ताकि बाहर का जो हैवी स्टफ मिठाई नहीं,
1: राइट,
0: तो वो उनको मैंने दिया तो इतने प्यार से खाए, ये भी खुश वो भी खुश, कैसे थॉट।
1: यस एब्सोल्युटली, एक थॉट ही तो चाहिए सिर्फ सब कुछ।
0: वही मैं किसी के घर जाऊं और कोई खाना भूख लगी हुई हो सडनली मर जाती है, मैं सोचा तीन चार रोटी खा जाऊं, थोड़ा सा खा के मैं नहीं, थोड़ा आई एम नॉट फीलिंग
1: गुड, क्योंकि सामने वाले ने किस थॉट से बनाया है, किस वाइब्रेशन से बनाया है, हमारे आने पर सामने वाले ने कितनी वेलकमिंग एनर्जी क्रिएट की है, कितनी मजबूरी की एनर्जी क्रिएट की है।
0: बाद में भी फोन करके बोला आपकी वाइफ ने जो हलवा बनाया था करेक्ट शुगर थी साहब के लिए, देवर सो
1: बिकॉज इट वॉज नॉट अबाउट द मिठाई, उसके पीछे की वाइब्रेशन, थॉट्स जो क्रिएट हुई थी वो थॉट थॉट तक पहुंचती है कि आप आए, आपके लिए हमने इतने प्यार से ये बनाया,
0: अपने हाथ से इसलिए बनाया क्योंकि स्टाफ ज्यादा अच्छा
1: लगा। आपका आना हमें अच्छा लगा, आपके आने पर हमें अच्छा लगा आपके ये करना, और यही अगर हमने ये किया होता कि किसी को बोल दिया होता वो आ रहे हैं बना देना, कुछ ध्यान रखना कि ठीक बने, जो जो उन्होंने बोला है वैसा
0: डालना, इतने बोल दिया
1: तो फिर वो चीज भी अच्छी बनेगी, टेस्ट उसका ठीक होगा, लेकिन उसमें वो थॉट्स एंड वो वाइब्रेशंस नहीं होंगे जो दूसरे तक पहुंच के दूसरे को भी अच्छा फील कराते हैं। ये तो सारा दिन के अनुभव है ना, अनुभव इतने होने के बाद भी अगर हम ध्यान नहीं रखें तो वो अज्ञानता हो जाएगी कि हमें मालूम है कि जो हम सोचते हैं वो सामने तक पहुंचता है। तो आज अपनी थॉट्स की थोड़ी चेकिंग करनी पड़ेगी,
0: बिल्कुल,
1: और अपने आप को बार बार याद दिलाना पड़ेगा, आई कैन नॉट अफोर्ड टू थिंक लाइक दिस।
0: आज दोनों बात डिस्कस हुई, वो लड़की ने अपनी सास को छोटी सी बात बोली, फट कर कितना बड़ा रिजल्ट हो, और यहाँ वाइफ ने किया कि अगर हलवे को थोड़ा ऐसे
1: छोटा किया,
0: अपने हाथ से बना के दिया तो उसका इतना बड़ा
1: रिजल्ट मिला,
0: इतनी खुशी में भी एक इतना ओवर था
1: राइट,
0: और इनका एंगर भी ओवर था,
1: बिकॉज वो खुशी ना हलवे की थी और उस केस में ना वो एंगर एक छोटी सी लाइन का था, दोनों का बेसिस था पहले के क्रिएटेड थॉट्स सेंट एंड कम्युनिकेटेड टू द अदर माइंड, ऑलरेडी वो पहुंच चुके थे दूसरे के मन में, तो वहां तो भाव एंड भावना ऑलरेडी प्रेजेंट थी, जैसे ही सामने वो चीज आई वो भाव एंड भावना भी ऑटोमेटिकली बाहर रेडिएट होते हैं। तो आज पक्का करना है और अपने किसी रिश्ते को चेक करना है कि किसी के लिए भी कोई ऐसी थॉट क्रिएट कर रहे हैं जो हम नहीं चाहते कि उन तक पहुंचे। अगर ये नहीं चाहते कि वो बात उन तक पहुंचे तो उस थॉट को आज चेंज करना ही पड़ेगा, इट विल हैव टू बी डन राइट नाउ।
0: अब मैं एक आगे आप ही की लैंग्वेज में बात करूंगा, हम ये नहीं चाहते उन तक पहुंचे से ज्यादा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे अंदर ये गंदी थॉट मुझे डिस्टर्ब करे।
1: ब्यूटीफुल,
0: थैंक यू सो मच सिस्टर,
1: ओम शांति।
0: Thank you.
2: In August 2014, scientists conducted the world's first computer-mediated brain-to-brain telepathy experiment, where a person in India said hola to three people in France. The greetings were not spoken or typed, but their brain received the message. The communication took place between the brains of the people involved, proving that it is all in the mind. Telepathy is thought-to-thought communication. We have all experienced telepathy when we are thinking of someone and we receive they call. When we have a question on our mind and the other person starts answering. When we speak the same things together. When we create thoughts, they are vibrations and they radiate to people. Telepathy, which we have experienced and proved scientifically. Can we afford to create thoughts which we do not wish other people to know? Let us take care of our thoughts like we take care of our words. The negative thoughts we send people keep reaching them, and then the slightest trigger, even a simple word, gets a powerful negative reaction from them. Whether we are receiving from them or creating them, let us not keep negative thoughts on our mind. Let us transform them and radiate pure energy.
3: If you wish to discuss your problem or have a question to ask, or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 09999559660।

मनन से मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक। पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: शर्माए काहे, घबराए काहे, शर्माए।
1: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है। पर स्थिति किसी और की स्थिति, वो पर स्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सब ने कहा, हमने भी मान लिया, सब ने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है। टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है, और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी, लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल

0: अबाउट आई नो वॉट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी, ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें. आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू. आप सच बोलेंगे, देयर इज नो रीजन. कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जेट से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बीइंग।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो मधुबन 90.4 FM सुन रहे हैं आप। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। और आज मेरे साथ बहुत ढेर सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। प्रोग्राम है बच्चों की दुनिया, जहां हम बात करते हैं बच्चों से उनकी दुनिया के बारे में, उनकी ख्वाहिशों के बारे में, उनकी अपनी अलग सोच के बारे में। तो मिलते हैं सभी बच्चों से। सबसे पहले हमारे साथ है शिवम। शिवम, आप अपने बारे में बताओ।
1: मेरा नाम शिवम गुप्ता है, मैं MP बजोड़ से आया हूँ।
0: और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो शिवम?
1: 5th।
0: और उसके बाद युग। युग आप बताओ।
2: मैं सूरत ओराछा से आया हूँ, मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ।
0: और हर्ष?
3: मेरा नाम हर्ष है, मैं गुजरात के सूरत ओराछा से आया हूँ।
0: और कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप?
3: मैं 9th में पढ़ता हूँ।
0: ईश्वरी?
4: मेरा नाम ईश्वरी है, मैं पुणे से आई हूँ।
0: और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
4: 2nd।
5: मेरा नाम पायल सोलंकी है, मैं MP से आई हूँ, मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ।
6: मेरा नाम मुस्कान गुप्ता है, मैं MP मध्य प्रदेश से आई हूँ, मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ।
7: मेरा नाम है कशिश सोलंकी, मैं MP मध्य प्रदेश से आई हूँ, मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ।
0: अरे वाह। तो अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोग सपने देखते हो?
8: हाँ दीदी।
0: तो रात को देखते हो कि दिन में देखते हो?
8: रात को
0: देखते हो। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे अपना कौन सा सपना कौन बताएगा, जिसको याद है, जो सबसे फेवरेट वाला सपना देखा हो, जो अभी तक याद है, कौन बताएगा? आपको याद है युग, आप बताओ।
9: मुझे एक सपने में संगीत का शौक आया ना, तो मैं संगीत के क्लास में जाने लगा, इसलिए मुझे बहुत शौक है संगीत का।
0: अच्छा, मतलब आपने सपना देखा कि आपको संगीत सीखना, तो आप संगीत सीखने लगे?
9: हाँ दीदी।
0: क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छा सपना था जिसको आपने रियलिटी में बदल दिया, है ना? और किसी को अपना सपना याद है? और पायल, मुस्कान, आप लोगों को कोई सपना नहीं आया ऐसा जिसको देख के आप डर गए हो, या कोई ऐसी बात हुई हो जो आपको नहीं अच्छी लगी हो या अच्छी लगी हो? कोई भी नहीं, किसी को नहीं याद। अच्छा, आप लोगों ने कभी कोई हॉरर मूवी देखी है? देखिए, नहीं ना, तभी तो अच्छी बात है, क्योंकि डरावने सपने आते हैं ना उसको देख के। फिर
9: मैंने देखी थी।
0: तो कोई सपना आया आपको?
9: हाँ।
0: उसको देखने के बाद
9: जग गए?
0: नींद से ही जग गए? इतना डर गए कि नींद से जग गए। अच्छा, ये तो हमारे सपने जो हम रात को देखते हैं, आपको पता है हम खुली आंखों से भी सपने देखते हैं? किसी को पता है? नहीं पता। वो सपने होते हैं जो हमारी ड्रीम्स होती है ना, जो हम पूरा करना चाहते हैं, हमें लगता है हम स्कूल में ये करेंगे, वो करेंगे, या हम बड़े होके ये बनेंगे, वो बनेंगे, ऐसा सब सोचते हैं ना। अच्छा, तो फिर ये बताओ पायल, आप क्या सोचते हो, आप क्या बनोगे बड़े होके?
5: मैं डॉक्टर बनूंगी।
0: डॉक्टर बनोगे? और डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो आप?
5: दीदी, मरीजों का इलाज।
0: मरीजों का इलाज करने के लिए? ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुस्कान, आप बड़े होके क्या बनोगे?
6: मैं भी डॉक्टर ही बनूंगी।
0: आप भी डॉक्टर बनोगे? आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हो? क्या अच्छा लगता है आपको? पता है उसके लिए ढेर सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, करोगे?
8: हाँ।
0: और कशिश, आप क्या सपना देखते हो, क्या बनना चाहते हो बड़े होके?
10: टीचर।
0: टीचर? और आप टीचर क्यों बनना चाहते हो?
10: सब बच्चों को पढ़ाने के लिए।
0: सब बच्चों को पढ़ाने के लिए, मतलब आपको अपने टीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा शिवम, आप बताओ, आप क्या सपना देखते हो बड़े होके क्या बनोगे?
11: मैं बड़ा होके सोचूंगा।
0: बड़ा होके सोचोगे कि क्या बनना है? अभी कुछ मन नहीं करता आपको बनने का, किसी को देख के? कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो शिवम बड़ा होके डिसाइड करेगा। पर युग ने तो डिसाइड किया होगा क्या बनना है?
9: संगीत कलाकार।
0: संगीत कलाकार? अरे वाह, संगीत कलाकार क्यों बनना है आपको?
9: मुझे एक बार देखा था ना एक संगीतकार को, इसलिए मुझे ऐसा रस जग गया कि मुझे जाना ही है इसलिए।
0: अच्छा, मतलब इतना मन करता है आपको उनको देख के। कि कौन सा म्यूजिक बजाओगे पहले ये बताओ, क्या बजाओगे? कोई इंस्ट्रूमेंट सीखते हो आप?
9: आधा गिटार है, थोड़ा सा, दो कड़ी।
0: अच्छा चलो ठीक है, वो तो हम युग से बाद में सुनेंगे। फिर हर्ष, आप बताओ क्या बनना चाहते हो बड़े होके?
3: बड़ा होकर CID बनना चाहते
0: हो? CID बनना चाहते हो? CID क्या होता है, मैं बताओ तो?
3: वो देश की रक्षा के लिए एक कानून होता है।
0: अच्छा, तो आप क्या करोगे CID बनके?
3: हम सभी देख रहे हैं कि अभी देश में कितना जुर्म बढ़ रहा है, और उसको मैं मिटाऊंगा।
0: देश में जुर्म बढ़ रहा है, उसको आप मिटाना चाहते हो, तो बहुत अच्छी बात है। और जुर्म मिटाना चाहते हो तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, हर चीज में किसी ना किसी की सेवा होती है, है? और ईश्वरी, आप क्या बनना चाहते हो?
4: टीचर।
0: टीचर? टीचर क्यों बनना चाहते हो?
4: दीदी, बच्चों को पढ़ाने के लिए।
0: बच्चों को पढ़ाओगे आप? अच्छा, और पुलिस में कोई नहीं जाना चाहता यहाँ पे? नहीं ईश्वरी, आपको तो पुलिस में जाना था ना? नहीं अच्छा हम अच्छा ये बताओ, आप लोग के जो मम्मी पापा है वो आप लोगों को कभी कुछ कहते हैं कि हम लोग आपको क्या बनाना चाहते हैं या क्या बताते हैं? कुछ बोलते हैं आपको कभी? किसी के भी नहीं? अच्छा स्कूल जब जाते हो तो कुछ ऐसा मनता है काश मैं ये करती या मैं वो करता स्कूल में, ऐसा वैसा कुछ भी सोचते हो कभी? क्या सोचते हो बता?
12: मुझे कभी टीचर बोर्ड पे लिखने का कहते हैं इसलिए।
0: अच्छा मतलब आपको बोर्ड पे लिखना अच्छा लगता है? हाँ भाई सही बात है, बोर्ड पे लिखते हैं तो टीचर्स हमें बहुत तारीफ करते हैं ना। और कौन क्या सोचता है ईश्वरी आप?
4: मुझे टीचर बताते हैं मैं स्कूल के बाहर जाऊंगी तो सब बच्चों का ध्यान रखना।
0: सब बच्चों का ध्यान रखना, और ये आपको अच्छा लगता है? अरे वाह। और पायल?
5: दीदी बोर्ड पे लिखना अच्छा लगता है।
0: बोर्ड पे लिखना अच्छा लगता है। और मुस्कान को क्या चाहिए?
6: बोर्ड पे लिखना अच्छा लगता है।
0: बोर्ड पे लिखना। आप बताओ पहले कशिश? कोई से भी कर लेते हो? तो क्या मन करता है सबसे ज्यादा आपका करने?
5: डांस।
0: डांस, अरे वाह। और आपका क्या मन करता है हर्ष?
3: मैं हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा और मैं अपनी मेहनत से उसमें
0: प्राइज प्राप्त करोगे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ, अगर प्राइज नहीं मिलता है तो क्या बुरा लगता है? किसी को भी नहीं?
9: किसी को लगता है पर हम वैसे नहीं।
0: आप वैसे किसी को भी नहीं लगता?
5: नहीं लगता।
0: क्यों बुरा नहीं लगता? अच्छा बताओ, बाकी लोगों को तो लगता है?
3: क्योंकि कभी कभी हमको भी प्राइज मिलता है तो औरों को भी बुरा लगता है।
0: इसलिए औरों को
3: जब भी औरों को प्राइज मिले तो हमें यह सोचना चाहिए कि मैंने भी मेहनत की, मैं उस स्टेज पर गया, यही सबसे बड़ा प्राइज है।
0: बात तो बिल्कुल सही है। और आप लोगों को क्या लगता है?
5: दी हमको भी यही लगता
0: कि उन्होंने भी मेहनत की है ना? बात तो सही है। अच्छा ये बताओ, बड़े हो जाओगे जब सब कुछ करोगे तो मम्मी पापा के लिए क्या करोगे? अभी तो मम्मी पापा हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, है कि नहीं? तो जब बड़े हो जाओगे तो मम्मी पापा के लिए क्या करोगे बताओ?
5: उनका नाम रोशन करेंगे।
0: उनका नाम रोशन करोगे? और ईश्वरी आप क्या करोगे मम्मी पापा के लिए?
4: उनका नाम रोशन करेंगे।
0: मम्मी तो अभी आपके लिए कितना सब कुछ करके ना खाना भी बनाती है, आपको लेके घुमाने भी जाती है, तो आप नहीं घुमाओगे मम्मी को जब बड़े हो जाओगे? तो बड़े हो जाओगे तो ये सब चीजें याद रखना है ना, अच्छे से मम्मी का बर्थडे मनाना। और पता है क्या, मम्मी से आप प्यार से हैप्पी बर्थडे बोलोगे ना तो मम्मी खुश हो जाएंगे। और युग?
9: बड़ा सा घर बनाऊंगा उसमें वो आराम से रहेंगे। ऐसा
0: बड़ा सा घर बनाओगे जिसमें मम्मी आराम से रहेंगी, अरे वाह। और हर्ष?
3: हम इस समय देख रहे हैं कि कैसे बड़े बड़े बड़े बड़े लड़के कैसे अपनी मम्मी पापा को घर से निकाल देते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, उसको अपने पास रखूंगा और वो जैसे कहेंगे वैसे ही करूंगा और उसका नाम रोशन करूंगा।
0: बात तो बिल्कुल सही है, मम्मी पापा को अपने साथ रखना चाहिए, तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे और उनको बहुत सारा प्यार देंगे जो वो हमें अभी देते हैं, है ना? तो पायल आप क्या करोगे जब बड़े हो जाओगे? और आप लोग मुस्कान? और
6: मैं मम्मी पापा की सेवा करूंगी और बड़े होके उनका नाम रोशन करूंगी।
0: मम्मी पापा की सेवा करोगे? आप क्या करोगे?
5: दीदी हम
0: आप भी सेवा करोगे। और ईश्वरी क्या करेगी? घुमाने लेके जाएगी मम्मी को। अच्छा मुझे ये बताओ, आपके फैमिली में कौन कौन है? आप बताओ फैमिली में कौन कौन है घर पे?
5: मम्मी।

0: दादी दादा और मैं और मम्मी पापा।
1: तो दादी दादा के साथ आप खेलते हो? अच्छा, तो उनसे
0: वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जब भी मैं जो कुछ मांगू वो मुझे देते हैं।
1: दादी दादा, अरे वाह। और आप बताओ पायल, आपकी फैमिली में कौन कौन है?
2: मम्मी पापा दादा दादी।
1: और सबसे अच्छा?
2: जी मम्मी पापा।
1: और सबसे फेवरेट कौन है आपका? मम्मी के पापा।
2: मम्मी।
1: क्यों, मम्मी क्यों अच्छी लगती है? अच्छा, ईश्वरी की फैमिली में कौन कौन है?
3: दीदी, अजी, अज्जा एंड मम्मी पापा।
1: और सबसे अच्छा कौन लगता है आपको?
3: मम्मी पापा।
1: मम्मी पापा अच्छे क्यों लगते हैं ईश्वरी को?
3: तो मुझे मैं कल ही चप्पल मांगी थी और आज ले आई।
1: अच्छा, और मुस्कान?
4: मेरी फैमिली में मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाचा।
1: और आपका फेवरेट कौन है?
4: मम्मी और पापा दोनों।
1: दोनों मम्मी पापा हमारी विशेष पूरी करते हैं। और कोई भी स्पेशल क्वालिटी है उनमें जो आपको बहुत अच्छी लगती है?
4: वो हमें बहुत प्यार करते हैं।
1: प्यार तो करते हैं, अगर डांटते हैं तब भी बहुत प्यार करते हैं, नहीं है कि नहीं?
0: तब भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं।
1: हाँ, और आप बताओ?
3: दीदी हमको भी
0: वैसे कि हमको चित्र दौड़ना नहीं आता, बहुत मुश्किल होता है, तो हमको हमारी दीदी दौड़ दे।
1: मतलब जो मुश्किल लगती है वो दीदी सॉल्व कर देती है। अच्छा ये बताओ, घर में कभी लड़ाई होती है आप लोगों की? कभी गुस्सा होते हो क्या आप लोग?
0: हाँ, कभी कभी होती है।
1: होते हो?
3: हाँ दीदी।
1: क्यों होते हो? क्या होता है जब आप गुस्सा होते हो?
0: जब एक क्वालिटी लाए होता उसमें से दो भाग करने पड़ते हैं, इसलिए भाई बहन में किसी का ज्यादा आता है किसी का कम आता है इसलिए।
1: अच्छा, जब दो भाग करने पड़ते हैं तब लड़ाई होती है, और इक्वल हो जाए तो नहीं होती। हाँ, और शिवम तो कभी लड़ता नहीं होगा? नहीं। क्यों लड़ते हो आप? कान आपको मारती है? अच्छा, क्यों मारते हो मुस्कान? क्या करते हो आप? ऐसे शरारत करते हो? बताओ, ऐसे ही मारते हो? क्या शरारत करते हैं मुस्कान, बताओ?
4: वो कभी भी मस्ती करता रहता है, मेरी चीजें हमेशा कहीं ना कहीं पे फेंक देता है।
1: आपकी चीजें फेंक देते हो ऐसा शिवम? कोई नहीं, तो दीदी की चीजें लेने का और फिर सही जगह पे रख देना, है ना? तो फिर दीदी नहीं डांटेगी, ठीक है? हाँ युग बोला,
0: एक साइकिल होती है तो दोनों झगड़ते हैं, क्योंकि मुझे चलाना है इसलिए।
1: साइकिल एक होती है तो दोनों झगड़ते हो, और फिर जीतता कौन है
0: भाई?
1: आप नहीं जीतते हो?
0: टीवी में भी सब लोग लड़ते हैं, आधा घंटा मेरा आधा घंटा तुम्हारा।
1: अच्छा, टीवी के लिए लड़ाई होती है?
0: हमारे घर में तो है ही नहीं, और मैं एक ही हूँ।
1: अच्छा, तो फिर लड़ाई होती है तो उसके बाद क्या करते हो?
0: चुप हो जाते।
1: जो देख रहा होता है उसको देखने देते? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा बच्चा है। और ईश्वरी, आप कभी गुस्सा होते?
3: नहीं।
1: ते? लड़ाई करते? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं, मम्मी से भी नहीं? मम्मी जब कहती है सब मानते हो आप?
3: हाँ, मेरी फैमिली में भी कभी कभी झगड़ा होता है।
1: झगड़ा होता
3: है, पर मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ।
1: आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो? अच्छा, क्या होता है और फिर आप क्या करते हो उसमें?
3: टीवी के लिए मेरी दो बहनें हैं, वो झगड़ती है और मैं टीवी बंद कर देता हूँ।
1: टीवी के लिए झगड़ा होता है तो आप टीवी बंद कर देते हो, और फिर जब दोबारा ऑन होता है फिर
3: रिमोट लेके भाग जाता
1: हूँ। अच्छा, और आप लोग बताओ, कशिश कभी झगड़ते हो?
2: हाँ दीदी।
1: क्यों झगड़ते हो?
2: दीदी मेरी छोटी बहन है, वो टीवी के लिए हमको रिमोट नहीं देती, तो हम झगड़ते तो दीदी फिर कुछ नहीं करते, चुपचाप बैठ जाते।
1: फिर उनको टीवी देखने देते हो?
3: हाँ।
1: अरे वाह, ये तो सारे बहुत ही अच्छे बच्चे, झगड़ते नहीं और देखने देते हैं।
0: नहीं तो कोई प्लान बनाता है कि ऐसे करने का है, फिर ऐसे करने का, जब वॉशरूम जाते हैं तब कोई ले लेता है ऐसे।
1: क्या प्लान बनाते हो?
0: मैं तो नहीं बनाता हूँ।
1: अच्छा अच्छा, क्या प्लान बनाते हैं बताओ सब लोग?
0: कोई बना रहा होगा, मैं तो कह रहा हूँ।
1: अच्छा, और ईश्वरी आप तो झगड़ते नहीं हो ना?
0: और कोई टीवी देख रहा हो, पानी पीने के लिए जा रहा हो, तब भी कोई रिमोट ले लेता है, ऐसा भी बनाते हैं।

0: अच्छा, घर में तो सब लोग रिमोट के लिए लड़ते हैं।
1: हाँ,
0: और किसी बात पे लड़ाई होती है?
1: खिलौने से होती है।
0: खिलौने से? तो आप लोग भी तो छोटे बच्चे हो ना। अच्छा, जब स्कूल जाते हो और फ्रेंड्स के साथ रहते हो तब किसी की लड़ाई होती है क्या?
1: हाँ, कभी कभी होती है।
0: होती है?
2: हाँ दीदी,
0: सबकी होती है।
1: फिर हम सब दोस्त बन जाते हैं।
0: मतलब लड़ाई होती है फिर हम सब अपने दोस्त भी बन जाते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुस्कान?
3: दीदी, मेरी फ्रेंड्स हमेशा मेरा बैग नीचे फेंक देती है बेंच।
0: तो मतलब वो आपको ऐसी टीज करते हैं, है ना? तो फिर आप क्या करते हो?
3: मैं भी उनका बैग नीचे फेंक देती हूँ।
0: तो बाद में फिर लड़ाई नहीं होती?
3: फिर टीचर से बोल देती है, टीचर उसको अलग बिठा देती।
0: और वापस फ्रेंड्स कैसे बनते हो फिर?
3: बन जाते हैं
0: तुरंत तुरंत। अरे वाह, है ना? तो क्या हुआ, लड़ाई की उसके बाद तो फ्रेंड्स बन जाना चाहिए, है ना? और ईश्वरी, आप लड़ते हो क्या अपने फ्रेंड्स के साथ कभी?
2: मेरे फ्रेंड्स मुझे धक्का देते हैं, फिर मैं भी फिर हम फ्रेंड्स बन जाते हैं।
0: अच्छा, और धक्का दे दो तो लगती नहीं है?
2: थोड़ी
0: थोड़ी। अच्छा, मतलब खेल खेल में ऐसा होता है। लेकिन जोर से नहीं देना, नहीं तो लग जाएगी चोट, फिर तो मम्मी से डांट पड़ेगी, है ना? और आप बताओ?
1: कभी झगड़ा हो जाता है।
0: क्यों?
1: बातचीत करते हुए।
0: बातचीत करते हुए झगड़ा हो जाता है?
1: हाँ।
0: फिर क्या करते हो?
1: मैं उसको अपना सीक्रेट बात बताता हूँ और वो किसी और को बता देता है।
0: अच्छा, और किसी के साथ भी ऐसा होता है?
2: दीदी, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं किसी को, मेरी फ्रेंड को बताती हूँ तो वो दूसरी को बता देती है।
0: अच्छा, तो फिर क्या करते हो आप लोग? तो फिर क्या करते हो आप लोग?
1: कभी सीक्रेट हम किसी और को बता देते हैं।
0: अच्छा, दोनों लोग ऐसे करते हो?
1: हाँ।
0: और उसके बाद क्या होता है, फिर लड़ाई नहीं होती?
1: लड़ाई नहीं होती, ठंडा हो जाता है।
0: तो फिर अपने फ्रेंड्स से हमें बात करनी चाहिए और बोलना चाहिए कि हमारी जो बात है वो सबको नहीं बताने का। वैसे आप लोगों के सीक्रेट्स होते क्या है? क्या सीक्रेट होते हैं बताओ?
1: कहीं छुपने की जगह, जब खोपड़े खोपड़े खेलते हैं तब छुप
0: छुपने की जगह सीक्रेट होती है, वो आपका फ्रेंड किसी और को बता देता है। हाँ, तो फिर आप उसको क्या सीक्रेट बताते हो?
1: उसकी भी जगह बता देते।
0: उसकी भी जगह बता देते हो?
1: वो तो पता कैसा चलता है कि उसकी जगह यहाँ है।
0: अच्छा, फ्रेंड ने जो जगह दिखाई होती है वो बता देते हैं। और आप क्या करते हो पायल?
2: दीदी, हमारी जो बात रहती है वो दूसरों को बताती है मेरी फ्रेंड, तो हम भी उसकी बात बता देते हैं।
0: क्या बात रहती है आपकी?
2: दीदी, ये तो भूल गए।
0: और उसकी क्या बात रहती है? अच्छा,
2: सब भूल गए।
0: सब भूल गए। कशिश?
4: दीदी, हमारे साथ
0: क्या होता है?
4: दीदी, कभी मेरी फ्रेंड कटर मांगती है तो हम नहीं देते तो लड़ने लग जाते।
0: कटर नहीं देते? अच्छा, तो शार्पनर जब आप नहीं देते हो और आपकी फ्रेंड लड़ती है उसके बाद क्या करते हो?
4: कुछ भी नहीं करते, फिर से बोलने लग जाते।
0: फिर से बोलने लग जाते हो? अच्छा, अरे वाह। और यू?
5: हमारे स्कूल में एक लड़का बहुत ताकतवर है ना, मेरी ताकतवर सब उसकी टीम में ही जाते हैं। जब मेरी टीम मेरे साथ साथ ही आओ और फिर झगड़ा होता जाता है, फिर सब साथ हो जाते हैं।
0: आपकी टीम में कोई नहीं आता, सब उसकी टीम में चले जाते हैं।
5: मैं तो टीम रखते ही नहीं।
0: तो फिर आप भी उसी की टीम में चले जाया करो, है ना? अच्छा, ये बताओ मुझे, आप लोगों को अब तक सबसे ज्यादा मजा कब आया या सबसे ज्यादा खुशी कब हुई है, जब आपने बहुत एंजॉय किया हो या आपको बहुत अच्छा लगा हो, बताओ?
5: मैं मेरे मामा के साथ जब छुपा छुप गया था ना, वहाँ बहुत मजा आया था।
0: मामा के साथ क्या किया था?
5: वहाँ बहुत बड़ी राइड्स होती है ना, वो पानी में गिरती है ना
0: लहरें,
5: वहाँ बहुत मजा आता है।
0: अच्छा, मतलब आपको पानी में खेलने में मजा आता है मामा के साथ?
5: मेरे मामा भी आए थे।
0: अच्छा,
5: पहले तो मुझे बताया नहीं था, फिर मेरे मामा कह रहे थे ले जाओ ले जाओ मेरी मम्मी को, पहले तो नहीं कह रहे थे, फिर मेरे फिर क्या चल चल ले चलते हैं, फिर मुझे पता चल गया ना तो मैंने कहा मम्मी को, देखा मुझे पता चल गया ना, मेरे मामा से भी नहीं बोलते ले जाते हैं।
0: मामा आपको लेके गए खेलने के लिए पानी में लहरों पे, तो आपको बहुत मजा आया। अरे वाह। और आप बताओ शिवा, आपको सबसे ज्यादा मजा कब आया?
6: जब मेरे पापा उज्जैन में सीएसए में मेरे को डुबकी लगवाते हैं तब।
0: डुबकी लगवाता उज्जैन में? अच्छा, क्या करते हो वहाँ पे? और
6: मेरा वहाँ पे साथ साथ तैरते हैं, डुबकी लगाते हैं और फिर हम बाहर निकल जाते हैं।
0: अच्छा, डुबकी लगाने में बहुत मजा आता है, यानी सबको पानी में खेलने में मजा आता है?
6: हाँ दीदी।
2: हाँ
0: नहीं
2: दीदी।
0: हाँ, तो फिर बताओ हर्ष, आपको बताओ।
1: मेरा एडवेंचर्स बहुत ही फेमस है।
0: एडवेंचर में आपको बहुत अच्छा लगता है? हाँ। क्या करते हो?
1: पीछे मैं एडवेंचर्स सीखूंगा तो बड़ा होके भी बड़े बड़े एडवेंचर्स करूंगा।
0: अभी क्या किया है आपने?
1: तेज स्केट चलाना और पानी में स्विमिंग करना।
0: तो आप स्केटिंग करते हो और पानी में स्विमिंग करते हो। स्विमिंग तो स्केटिंग कैसे आप सीखते हो? स्केटिंग तो उसको चलाने में मजा आता है आपको?
1: हाँ।
0: कभी किसी कंपटीशन में पार्ट लिया है आपने?
1: हाँ।
0: क्या लिया है बताओ?
1: कंपटीशन में एक बार मैंने पार्टिसिपेट किया था और उसमें मेरा सेकंड नंबर आया था।
0: अरे वाह, तो चलो सब लोग भैया के लिए ताली बजाएंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें नई नई चीजें सीखते रहना चाहिए। ईश्वरी, आपको कब मजा आता है सबसे ज्यादा?
2: डांस में।
0: डांस में? कौन से गाने पे डांस करते हो आप?
2: राधा के।
0: राधा के? अच्छा, तो स्कूल में डांस करते हो? और कौन सिखाता है आपको?
2: मैं, टीचर।
0: टीचर? और आपके बर्थडे पे मजा नहीं आता आपको? क्या करते हो बर्थडे पे?
2: सब लोग केक खिलाते हैं।
0: सब लोग आपको केक खिलाते हैं, इसलिए मजा आता है। और आप सबको केक नहीं खिलाते?
2: खिलाते।
0: खिलाते हो? अच्छा, पायल आप?
7: मुझे भी डांस में बहुत मजा आता
0: है। डांस में बहुत मजा आता है। आप किस गाने पे डांस करते हो?
7: दीदी सारे गाने पे करते हो? सारे गाने?
0: सारे? बहुत सारे? मतलब स्कूल में जब भी डांस कंपटीशन होता है आप पार्ट लेते हो?
7: हाँ दीदी।
0: अरे वाह। और मुस्कान?
3: दीदी मुझे भी डांस में।
0: आपको भी डांस में मजा आता है?
4: दीदी मुझे।
0: अच्छा, डांस करना तो हमारी हॉबी, हमें पसंद है। कोई ऐसा दिन या कोई ऐसी मेमोरी आपको याद है जिस दिन आपने बहुत एंजॉय किया हो? कुछ याद है आप लोगों को? कभी घर पे, स्कूल में कोई प्रोग्राम, कोई फंक्शन हुआ हो तो आपको बहुत मजा आया हो, या कहीं गए हो घूमने? नहीं।
1: हाँ
0: बताओ।
1: बार एक योगा में कॉम्पिटिशिपेट किया था और उसमें मेरा फर्स्ट नंबर आया था। वो दिन मेरे को बहुत
0: मजा आया था। वेरी गुड। तो कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हमें प्राइज मिलता है तो मजा आता ही है।
1: और नहीं मिलता तब भी आता है।
0: नहीं मिलता तब भी आता है? नहीं मिलता तब क्यों आता है?
1: क्योंकि हमें जब प्राइज मिलता है तो औरों को भी बुरा लगता होगा ना। हम ऐसा सोचे कि वही हमको अगले साल मिलेगा, इसीलिए हम दुगनी मेहनत से फर्स्ट प्राइज में मिलेंगे हमको।
0: ये बात तो बहुत अच्छी कही आपने, दुगनी मेहनत करेंगे। और वैसे भी जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमें मजा आता है ना, वो हॉबीज में, गाने में, सिंगिंग में, डांस में, तो उसको एंजॉय करके हमें मजा करना चाहिए, है ना? अच्छा, अब ये बताओ आप लोगों को मजा आता है, कभी बुरा लगता है किसी चीज का? घर पे या स्कूल में टीचर ने कुछ कहा या फ्रेंड्स के साथ या मम्मी पापा के साथ किसी चीज का बुरा लगता है कभी आप लोगों को?
2: नहीं।
0: नहीं?
2: नहीं,
0: किसी चीज का बुरा नहीं लगता कभी भी?
2: नहीं,
0: कभी नहीं लगा। युग?
5: कभी खाने में अच्छा नहीं होता इसलिए करेला का साग होता है ना।
0: क्या होता है?
5: कभी खाने में करेला का साग होता है ना इसलिए
0: करेला। अच्छा, तो करेला होता है इसलिए बुरा लगता है आपको। और फिर क्या करते हो, खाते हो कि नहीं?
5: फिर खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा।
0: थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं।
5: रात में दूध पी के सो जाते हैं।
0: रात में दूध पी के सो जाते हैं। अच्छा, और आपको पायल?
2: दीदी किसी से नहीं किया जो।
0: कभी बुरा नहीं लगता? कभी कोई डांटता है या टीचर ने कुछ बोला तभी भी नहीं?
3: नहीं लगता।
0: और आपको?
4: नहीं लगता।
0: ईश्वरी?
2: नहीं,
0: ईश्वरी को तो कुछ बुरा लगता ही नहीं कभी, है ना? बहुत समझदार है। तो हम बात कर रहे थे नन्हे मुन्ने बच्चों से, उनकी दुनिया के बारे में, उनकी बातों के बारे में, उनके सपनों के बारे में, उनकी आशाओं और उनके प्यार और उनके झगड़ों के बारे में। फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में, बात करेंगे और नई और बच्चों के साथ। तब तक के लिए रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय बच्चों।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: What is he saying?
1: कहता है कि पूरे पश्चिम के मिलन से इतिहास के पन्ने सुनहरे हो जाएंगे.
0: Is that so? Then let him continue.

अरे तुम भक्षक हो हम रक्षक है, ये संग कभी ना फलता है।

0: दाइयों को चीरता हुआ ये दर्द, ये कसक, ये चुभन।
1: दिल पर दर्द तो

एक साथ धड़के हैं।

0: सूरत पाऊं।
1: मैं 60 रुपए दूंगा, क्यों कहा था?
0: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना को फिर।

मचा के छोड़ूंगा क्योंकि मेरी लॉटरी लग जाने वाली है। वो मेरी लॉटरी।

0: तक पहुँचे रेस्तरा जान में आई जान।
1: हाय हीरो, हाय हीरो, हाय हीरो,
2: हाय बेबी, हाय बेबी, हाय बेबी,
1: हाय हाय
2: हाय हाय हाय।
0: हनी मैं तो बोर हो गया।
1: डोंट टेल मी दैट, डोंट टेल मी दैट डार्लिंग।

मिलन में कब कदम कदम पर धोती वाले मोटी कोंधों वाले लाले क्रिसमस में जापान चलेंगे नहीं तो इंग्लिश स्थान चलेंगे।

झटपट पन घट पर चटक मटक इक नार नवेली गोरी गोरी ग्वालन की छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलवेली कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हई ने पकड़ी बांह और की अटखेली भरी पिचकारी मारी सरा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा र